شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: मर्तबे में छोटा हो उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करें, और जो इल्म उम्र अहदे और मनसब में हमसे बड़े हैं उनका अदब और एहतराम बजा लाए। कहावत है, अकबर मिन कबीयों अअरफ मिन कबीसना। सिर्फ एक ही दिन की वजह से किस तरह बड़ों के एहतराम के हवाले से ये बहुत ही अहम एक कहावत है, यानी जो सिर्फ एक दिन बड़ा हो तुमसे तो उसका एहतराम करो, उसकी उम्र की कदर करो, उसके तजुर्बे से मुस्तफीद हो।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
4: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारती दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
5: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
6: हेलो,
7: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट्स।
6: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद RJ सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
8: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं हेल्थ फॉर ऑल, जहां हम आपको बताते हैं कि सेहत और खुशगवार जिंदगी गुजारने के आसान राज क्या हैं। तो मैं हूं फौजिया शफीक और आज हम बात करेंगे एक नहायत अहम मौजू पर, वो है इम्यूनिटी सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम के किन तरीकों को अपनाकर हम उसे मजबूत बना सकते हैं। आजकल हर तरफ बीमारियां आम हैं और अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे, तो फिर ये है कि हमें अपना जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मजबूत करना होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा महंगी अद्वियात या बहुत ही पेचीदा तरीकों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चंद सादा हिकमत अमली अपनाने से ही हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज कि वो आसान तरीके क्या हैं जो हमें तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुराक की, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसे ही सेहत बनेगी। आपकी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को ताकत दें और मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में मदद दें, क्योंकि हम लाइफस्टाइल पर और जो बैलेंस डाइट है उस पर ही जोर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मेजर्स अपनाकर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। फल और सब्जियाँ, इससे बड़ी ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने उन्हें रंग दिए हैं, रंग बिरंगे फल हैं और सब्जियां हैं, जैसे कि कैरेट है, ऑरेंज है, सेब है, पालक है, ब्रोकली है, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। इसी तरह विटामिन सी, जो कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देती है, और नींबू में है, माल्टे में है, बल्कि हर फल में शामिल होती है। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां खून साफ करती हैं और हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाती हैं और मजबूत करती चली जाती हैं। ड्राई फ्रूट और सीड्स, जो कि बहुत अहम हैं, उनमें बादाम हैं, अखरोट हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं, उनमें विटामिन ई और ओमेगा 3 होता है, जो जिस्म की जो हमारी दिफाई सलाहियत है, यानी जो किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने में जो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है उसको बढ़ा देते हैं। इस तरह योगर्ट है और यीस्ट है, दही में मौजूद या योगर्ट में मौजूद प्रोबायोटिक्स मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं। जब आपका मैदा सेहतमंद होगा तो फिर जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है या मुदाफ़ती निज़ाम है वो मजबूत होगा। गार्लिक और जिंजर में कुदरती एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और जो वायरल बीमारियां हैं उनसे बचाने में मदद देते हैं। और लिस्ट अगर हम अपनी खुराक में इन चीज़ों को शामिल कर लें तो फिर हमारा जिस्म बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बन जाएगा। मगर उसके लिए ये है कि खुराक के साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारा तर्ज ज़िंदगी भी हमारी कुव्वत मुदाफ़त पर बहुत असर डालता है। कुछ बहुत ही आसान सी आदत अपनाकर हम अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं, जैसे नींद बहुत अच्छी लें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद कम होगी तो जिस्म कमज़ोर होगा और बीमार होने के इम्कान भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह एक्सरसाइज या जो एक्टिव लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा करने के लिए, उसे बूस्ट अप करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। तो कम से कम 30 मिनट की चहलकदमी या फिर जो एक्सरसाइज है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर रखती है। इसमें योगा और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत मुफीद हैं। पानी की जब हम बात करें तो ये बहुत अहम है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने से जिस्म के में जो टॉक्सिक मादे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और उससे फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो कि हमारी सेहत में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। और अब हम बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देता है। जी लिसंस, वो है जहनी दबाव या स्ट्रेस। अगर हम अपने जहन को पुरसकून रखें तो हमारी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होगी। तो उसके लिए हमें स्ट्रेस जो भी कोई हो उसे कम करना है। रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करनी है और इसी तरह दुआ में मेडिटेशन या फिर हल्की मौसीकी सुनना ज़हनी सुकून के लिए बेहतरीन है। तो इसके लिए क्या करना है, खुश रहना है और सबसे अहम बात ये कि मुस्बत सोच अपनाएं यानी पॉजिटिविटी अपने अंदर हम लाने की कोशिश करें। खुश मिजाज जो अफराद हैं हमने देखा होगा वो कुछ कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि खुशी जिसमें हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं पैदा करती है जो कि हमारे मुदाफती निज़ाम को हमारी इम्यूनिटी को बेहतर या मजबूत बनाते चले जाते हैं। तो लिसनर्स अगर आप अपने जहन को पुरसकून रखेंगे तो फिर हमारी और आपकी सेहत भी खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी। चलिए अब कुछ बहुत ही आसान और घरेलू सी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम आम तौर पर अपने खाने में इस्तेमाल करती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको फौरी ताकत दे सकते हैं। जैसे अदरक और शहद की चाय है वो आपको बनानी आती है, वो आप खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप पानी में थोड़ा सा जिंजर और लेमन डालकर पकाएं और फिर इसमें शहद मिलाकर पी लें। ये हमारी सेहत के लिए बेहतर है। इससे फिर गले की सोजिश और नज़ले से भी हमें दूर रखता है ये। इसी तरह से जो हल्दी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट अप करती है। तो उसमें आप अगर रात को सोने से पहले एक चुटकी पानी में या दूध में अगर आप हल्दी डालकर पियेंगे तो उससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत बेहतर होगा और मुदाफती निज़ाम के लिए बेहतरीन है। ग्रीन टी या फिर आप लेमन पानी भी आप पी सकते हैं। ये हमारे जिस्म को डिटॉक्स करके मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उससे लड़ने में मदद देते हैं। तो लिसनर्स ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और फ़ायदेमंद भी हैं, आप इन्हें ज़रूर आजमा लीजिए और अपनी रोज़मर्रा की जो खुराक है, रोज़मर्रा के जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें शामिल कीजिए। तो लिसनर्स आज हमने जाना कि मुदाफती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बस अपनी खुराक बेहतर करें जो कि आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, ज़हनी दबाव कम करें और चंद ऐसी चीज़ें जो कि घरेलू होती हैं उन्हें अपनाएं। तो फिर आप देखेंगे कि हमारा जिस्म हमेशा बीमारियों के खिलाफ मजबूत रहेगा। ये थे सेहतमंद जिंदगी के कुछ आसान मगर बहुत ही मौसर राज। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई मौजू के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए और इसके साथ ही फौजे शफीक और हमारे साउंड डिजाइनर मिस्टर शकीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हेल्थ फॉर ऑल
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
0: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Cricket ho,
3: and he's hooked that away. That's 4 runs.
2: Football ho, या कोई और बड़ा sporting action. हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM.
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की.
5: बस बहुत हो गया रूटीन. नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है. बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
6: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
1: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। वो एक बहुत ही मेहनती शख्स था और हमेशा अपने खेतों में दिन रात काम किया करता था। इसके खेत में पानी की कमी थी और वो चाहता था कि इसके खेत को पानी देने के लिए एक अच्छा कुआं हो। एक दिन उसने अपने पड़ोसी से सुना कि वो एक अच्छा कुआं बेच रहा है जो कि उसकी जमीन के करीब था। किसान ने उस कुएं को खरीदने का फैसला कर लिया ताकि वो अपने खेत को पानी दे सके। किसान ने पड़ोसी से बात की और उससे कुआं खरीदने की कीमत तय कर ली। दोनों ने कुएं की कीमत पर बातचीत की और आखिर में एक मुआहदा तय पा गया। फिर क्या, किसान ने पड़ोसी को पैसे दे दिए और कुआं खरीद लिया। लेकिन ये क्या दोस्तों, जब किसान कुएं से पानी लेने गया, पड़ोसी ने कहा, भाईजान तुमने कुआं खरीद लिया है, लेकिन याद रखो मैंने तुम्हें इस कुएं से पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। किसान बहुत हैरान हुआ और बोला, हैं, ये कैसी बात कर रहे हो भाई, क्यों, ये पानी तो इस कुएं का हिस्सा है ना, और मैंने इसे खरीद लिया है। पड़ोसी ने चालाक हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तुमने कुएं को खरीद लिया है लेकिन पानी नहीं खरीदा, ये पानी मेरा है और तुम इसे नहीं निकाल सकते, बस मैंने बोल दिया। किसान इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। वो सोचने लगा कि ये क्या जवाब है, उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे इसे दे दिए थे और अब इसे पानी की जरूरत थी लेकिन वो इससे महरूम हो चुका था। किसान ने फैसला किया कि वो इस मामले को खत्म करने के लिए इंसाफ की तलाश करेगा। किसान ने गांव के हुक्मरान के दरबार में जाने का फैसला किया। वो हुक्मरान के दरबार में पहुंचा और अपना मसला पेश किया। हुक्मरान किसान की बात सुन के बहुत हैरान हुए। किसान ने कहा, हुक्मरान साहब, मैंने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा है लेकिन वो मुझे उस कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करने देता, मुझे इंसाफ चाहिए। हुक्मरान साहब ने अपने मुशीर से कहा, इस किसान का मसला क्या है भाई? मुशीर ने कहा, हुक्मरान साहब, किसान ने पड़ोसी से कुआं खरीदा था लेकिन पड़ोसी ने पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। पड़ोसी का कहना है कि उसने कुआं तो बेच दिया है मगर पानी बेचने का कोई वादा नहीं किया। हुक्मरान ने पड़ोसी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने किसान को कोई कुआं बेचा है क्या? अच्छा चलो बेचा भी है तो ये क्या बात हुई कि तुम उसे वहां से पानी ही नहीं निकालने दे रहे? पड़ोसी हंसते हुए बोला, हुक्मरान साहब, मैंने कुआं तो बेच दिया लेकिन पानी का कुछ नहीं कहा था। किसान ने मुझे पैसे देकर कुआं खरीदा है मगर मैंने इससे कहा कि पानी इसका नहीं, कुआं बेशक इसका हो। हुक्मरान ने अपने मुशीर की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब ये है कि तुमने किसान को धोखा दिया है, तुमने उसे कुआं तो बेच दिया लेकिन उसका पानी नहीं दिया। आखिरकार ये सब पंचायत सुनकर हुक्मरान ने एक फैसला सुनाया, पड़ोसी को कहा जाए कि वो इस पानी का किराया अदा करे क्योंकि पानी तो पड़ोसी का है लेकिन वो ये कुआं बेच चुका है, तुम्हें किसान के साथ इंसाफ करना होगा और अगर तुम पानी निकालना चाहते हो तो तुम्हें इसका किराया देना पड़ेगा ताकि किसान अपने खेतों में उस पानी का इस्तेमाल कर सके। पड़ोसी ने हुक्मरान के फैसले को सुना और

से इंसाफ मिल चुका था और वो अपनी मेहनत से खेत की फसल बेहतर बना रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धोखाधड़ी का कोई फायदा नहीं होता। इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के साथ इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वो आखिरकार खुद नुकसान उठाते हैं। और ये याद रखें कि जीत हमेशा सच की ही होती है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअ الرسول فقد اطاع الله, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीन किराम, नेकी के बड़े बड़े आमाल को अंजाम देने वालों को ही सिर्फ नेकोकार नहीं कहा जाता, बल्कि नेकी तो छोटे छोटे रवैयों और इशारों में भी है। एक मुस्कुराहट, एक नरम बात और एक खुशगवार चेहरा भी नेकी है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को हकीर मत समझो, चाहे वो ये हो कि तुम अपने भाई से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलो। इस तरह ये सुन्नत हमें ये सिखाती है कि नेकी के दरवाजे हर इंसान के लिए खुले हैं। अगर आप किसी को पैसे न दे सके, किसी की कोई खास मदद न कर सकें, तो कम अज़ कम अपनी मुस्कुराहट के जरिए उसके दिल को खुश ज़रूर कर सकते हैं। आइए बशाशत और खुश रुई की सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नाफिज करें, इसे अपनाएं ताकि हमारी मुस्कुराहट दूसरों के लिए राहत और खैर का जरिया बने।
2: नूर अला नूर यहदी अल्लाह लिनूरिही मन यशा, रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
3: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूरे इस्लाम,
4: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान, इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
6: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
7: Number one
8: hits
7: music station.
8: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
8: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

सोन ह्यूनमिंग मॉडर्न जनरेशन का सबसे पुरजोश विंगर्स में से एक है और वो एशियन और जनूबी कोरिया से हैं। फिलहाल सोन अपने मुल्क और एशिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो 21वीं सदी के सब कामयाब एशियाई फुटबॉल के तौर पर लेजेंडरी पाक जी सुंग की लेगेसी को बराबर कर सकते हैं नहीं बल्कि कर चुके हैं। जरा इस फैक्ट को चेक करें और आप समझ जाएंगे कि मैं इस मेवरिक जीनियस की तारीफ क्यों कर रहा हूं। 2021-2022 के सीजन में सोन प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर के तौर पर खत्म करने वाले पहले एशियाई फुटबॉलर बन गए और ये कारनामा सोन ने लिवरपूल के मोहम्मद सलाह के साथ शेयर किया था। 2015 के एशियन कप के बाद सोन ने जब जर्मन क्लब बायर लेवरकुसन से इंग्लैंड के टॉटनहम हॉटस्पर में साइन किया तो उन्हें पहले ही बेहतरीन विंगर्स में से एक समझा जाता था। एक खिलाड़ी के तौर पर सोन कितना अच्छा है, वेल रफ्तार और गोल करने का एक विजन हमेशा से ही है। प्रीमियर लीग के उन ओपोनेंट डिफेंडर्स और उनके कोचेस से पूछिए तो ये पता चलता है कि सोन पेनल्टी बॉक्स के अंदर काफी खतरनाक है। सोन की फिनिश और दोनों पांव से गोल करने की सलाहियत और बढ़िया लिंकअप यानी साथी खिलाड़ियों के साथ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ जनूबी कोरिया में बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक नहीं बल्कि एशियन फुटबॉल की तारीख के एक टॉप लेजेंड भी बन गए हैं। तो हमें मुनाकिदा 2011 के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के दौरान सोन ने एशियन कप में डेब्यू किया था। हालांकि वो उस वक्त 18 साल के एक नौजवान खिलाड़ी थे, फिर भी अल गराफा स्टेडियम में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूट गोल करके अपनी पहचान बनाई। साउथ कोरिया 2011 में टाइटल नहीं जीता था लेकिन सोन ने अपना तासीर छोड़ा। उसी साल सोन की बढ़ती हुई पॉपुलरिटी ने उन्हें जर्मनी के क्लब हैम्बर्ग में ले गया और दो साल बाद एक और बुंडेसलीगा क्लब बायर लेवरकुसन ने एक नई ट्रांसफर रिकॉर्ड के साथ उन्हें अपने टीम में शामिल किया। देखते देखते उनकी फॉर्म ने उन्हें आलमी फुटबॉल के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक के तौर पर कायम किया। एंड इन 2018 ही वॉज इंटीग्रल टू द मॉरिशियो पोचेटिनो साइड। उसी साल प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर रनर्स अप रहा और एक साल बाद यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और हाँ, एक और बात, सोन पहले से ही अपने मुल्क के नए जनरेशन फुटबॉलर्स के लिए एक अहम गेम चेंजर बन चुके हैं।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता ऑन FM 107 पर, और यहाँ पर कुछ मजेदार जीनियस लाइफ हैक्स आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली आसान बना देंगे। यस, तो सबसे पहला हैक है टेनिस बॉल जार ओपनर। हाँ जी, तो ये अक्सर होता है जो अचार की बॉटलें होती हैं, कई बार हम खोलना चाहते हैं वो खुलती नहीं, हमारा हाथ फिसलते जाता है, और जब नहीं खुलती हैं तब क्या करना होता है। इन जार को ओपन करने के लिए मैंने एक तरीका लगाया है कि अगर आपके घर में टेनिस बॉल है, मतलब पुरानी टेनिस बॉल, ऐसा नहीं कि नई वाली टेनिस बॉल ले ली और फिर गड़बड़ हो गई, ठीक है, पुरानी टेनिस बॉल लीजिए, उसमें एक छोटा सा ना कट लगाइए, उतना जितना कि वो आपके जार की, अचार की जार या कभी किसी भी जार की लिड में अच्छे से फिक्स हो जाए, और फिर आप उसे घुमाएं। जब आप घुमाएंगे तो ढक्कन पर आपकी पकड़ भी बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी, और फिर ये ढक्कन खोलने में खचाक आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो मिल गई ना एक बड़े काम की चीज, अब हाथ भी नहीं फिसलेगा आसानी से, कोई भी टाइट जार जो है वो आप खोल सकेंगे। दूसरा है वाटर बॉटल एज फनल। आई एम वेरी श्योर कि ये तरकीब आप सभी ने अप्लाई की होगी, जिन्होंने नहीं की उनके लिए बड़ी आसानी है। मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रॉब्लम होती है जब भी हमें कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म

0: फॉर्म में एक बॉटल से दूसरी बॉटल ट्रांसफर करनी होती है, फिर चाहे वो ऑयल हो, दूध हो, कोई भी चीज हो, किसी भी तरह का लिक्विड। और आधा इधर उधर जब गिरने लगता है तो फिर हमें ऐसा लगता है, अरे यार हमने इतना ट्राई किया, ये गिर क्यों गया। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है, जो पुरानी है, कोई यूज नहीं है, उसको आपको बीच से काट देना है। और फिर जिस बॉटल से आप दूसरी बॉटल में चीजें ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्पेशली लिक्विड, वहां पर उस कटी हुई बॉटल को एज अ फनल आप यूज कर सकते हैं, और कहीं पर भी आपका जो लिक्विड है वो नहीं गिरेगा, सीधा बॉटल टू बॉटल ट्रांसफर होगा और ये जुगाड़ बिल्कुल रॉक करेगा। तो यस जनाब, डू ट्राई इट और हमसे जरूर शेयर करें। फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल फैशन के बारे में। हमारी वार्डरोब को इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है और इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है बल्कि हमारी फैशन चॉइसेस भी बेटर हो सकती हैं। फास्ट फैशन का इस्तेमाल कम करें, हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग क्लोथ्स को खरीदना ज्यादा बेहतर है। पुराने क्लोथ्स को नए फैशन में बदल सकते हैं, अपने ओल्ड क्लोथ्स को क्रिएटिवली रीडिजाइन करें और उसको रीयूज करें। ऑर्गेनिक कॉटन, हेम्प और बैम्बू जैसे फैब्रिक्स को अपनी वार्डरोब में शामिल करें। विंटेज और सेकेंड हैंड क्लोदिंग का इस्तेमाल करना ज्यादा सस्टेनेबल होता है और ये यूनिक पीसेस भी मिलते हैं। सस्टेनेबल फैशन आपको स्टाइलिश और इको फ्रेंडली लुक दे सकता है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामने के नाम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अशरफुज़्ज़मान। कुरान मजीद की एक नहायत अजीम और ईमान अफरोज मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वो है नुज़ूल कुरान करीम। सामने के नाम ज़रा तसव्वुर कीजिए, आज से 1400 बरस पहले अरब के गर्म सहरा मक्का मुकर्रमा

0: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावशान. और एक दफ़ा फिर मैं आ गई हूँ. 6:21 हो चुके हैं और आप जानते ही हैं कि 9 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे. रे जी, तो मौसम का कुछ हाल अहवाल जान लेते हैं. आज मैं आपको बताती चलूँ कि कम से कम जो दर्जे हरारत है उसको भी मैं 2 डिग्रीज में बांट देती हूँ. वो ये कि 30 से 34 तक जा सकता है, 30 भी हो सकता है कम से कम, और उससे मतलब अगर देखें तो कम से कम 34 तक भी हो सकता है. वैसे इस वक्त 33 है. खैर जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा वो 42 तक जाएगा, और लेकिन फील्स लाइक जो है वो थोड़ा सा 45 तक हो सकता है आपको. अच्छा, आज आप लोगों ने भी नोट कर ही लिया होगा, बल्कि कल मेरा ख्याल है जब मेरी वापसी हो रही थी ना, उसी वक्त से काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है. तो वो जो एक फॉगी सा जो एक वेदर हो जाता है वैसा हो चुका है, और कुछ मतलब नमी है लेकिन उसके साथ ही वो चिपचिपाहट वाली गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है. तो अभी जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो मसला ये होता है कि जो लोग चश्मे पहनते हैं उनके चश्मे धुंधले हो जाते हैं. सबसे बड़ा मसला होता है ये वाला कि आपको एकदम से, आप कहीं से निकलो, गाड़ी से उतरो कहीं से, तो एक थोड़ी सी देर के लिए तो आप बिल्कुल ही अंधा फील करते हैं अपने आप को. तो ये सबसे बड़ा मसला है. तो ये वाला इशू जितने भी चश्मे पहनने वाले लोग हैं ना, वो इससे रिलेट कर सकते हैं. खैर जी, तो ये वाला सीन तो रहेगा, अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा. लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे लगता है कि थोड़े सी जो ड्राइनेस और ये सारे इशूज़ हो रहे थे वो तो क्या किसी हद तक कम ही हो जाएंगे. और सूरज की आबोताब भी मुझे इसकी वजह से थोड़ी सी कम लग रही है, जैसे क्योंकि है ना फॉग बहुत ज़्यादा, तो उस पर आपको मतलब थोड़ा सा एक लेयर सी आ गई है सूरज के सामने. तो ये वाला सीन है. खैर जी, तो ये थी कुछ मतलब वेदर से रिलेटेड चीज़ें. पानी आपने वैसे ही पीते रहना है, बल्कि कुछ अपडेट्स मैं आपको और दे दूँ जो कि हमारे रोज़ाना समर हैक्स में होता है, कि गर्मियों में सिर्फ ठंडा पानी नहीं पीना है आपने, यही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जो ग़िज़ा आप खाते हैं मतलब वो भी आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा, हाइड्रेटेड और फ्रेश रखने में बहुत क्या अहम किरदार अदा करती है. मतलब आपने देखा ही होगा, हम लोग वैसे भी बात कर रहे थे, अभी एक वो भाई है ना जो कि सऊदीया से पाकिस्तान की रवानगी हो गई थी जिनकी, और वो बता रहे थे पाकिस्तान जाऊंगा और खूब सारी सब्जियां खाऊंगा. तो ये सब्जियां वाकई बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी आती है जो हमें देखने को मिलती है गर्मियों के मौसम में. और उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली अब चूंकि हमारे बच्चे वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते, तो हम ये सिर्फ बोलते हैं, कर नहीं सकते. लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर, आपको सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में. अगर आप सही फूड शामिल करेंगे तो आपको गर्मी की शिद्दत का जो एक एहसास है ना वो कम होगा, थकन कम होगी, और डिहाइड्रेशन भी काफ़ी हद तक आप उसको कम कर सकते हैं मतलब सही खाने के थ्रू. तो रोज़ाना की मील्स में एक तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जियों से हटकर भी, वो ये कि आप दही का इस्तेमाल कीजिए. योगर्ट जो है ना वो आप गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. तो ये बॉडी को काफ़ी हद तक ठंडा कर देता है, और आपका जो निज़ाम हाजमा है उसको भी बेहतर करता है, और पेट को भी बिल्कुल हल्का फुल्का रखता है. तो आप दही को इस्तेमाल कीजिए. दही का इस्तेमाल आप वैसे भी कर सकते हैं, मतलब रायता शायता बना कर भी, चावलों के साथ भी, या फिर वैसे जो है आप ऐसे भी सिर्फ सादा दही खा सकते हैं. लस्सी पीना बहुत अच्छा होता है भाई, मतलब लस्सी बनाएं, झटपट वाली लस्सी बनाएं और लस्सी रोज़ाना पिएं. तो इस मौसम में बहुत अच्छा है कि आप लस्सी, रायता और जिस तरह से भी मतलब जिस शक्ल में भी ले सकते हैं या सिर्फ ऐसे ही, तो आप रोज़ाना थोड़ा बहुत जो है वो दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा रखेगा, गर्मी की शिद्दत को कम करेगा, और उससे आप काफ़ी मतलब महसूस करने वाले जो असरात हैं ना वो महसूस करेंगे. खैर जी, इसके अलावा क्या है कि जैसे अभी जो फल वगैरह आए हैं, जो मौसमी फल हैं, ख़ास तौर पे तरबूज और खरबूजे, इनका जो है ना इस्तेमाल आप ज़रा ज़्यादा कीजिए. गर्मा और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इनका कोशिश कीजिए, क्योंकि इनमें एक तो पानी भी बहुत होता है, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, और इसके साथ ही साथ डिहाइड्रेशन आपकी कम होगी, आप हल्का फुल्का फील करेंगे, आपको अंदर से जो है वो गर्मी का एहसास कम से कम होगा. इसके साथ लंच और डिनर के साथ आप कोशिश करें कि फ्रेश सैलड आप ज़रूर लें, खीरा, टमाटर, गाजर और गोभी, सैलड लीव्स, जो भी मिलता है, तो फ्रेश आप कोशिश कीजिए कि गर्मियों के मौसम में अपनी बॉडी को हल्का रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फाइबर मतलब दोनों होता है सैलड के अंदर, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. ये आपको आपकी जो बॉडी है उसको एक्स्ट्रा हैवीनेस से बचाएगा, और हर मील के साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा सैलड शामिल करेंगे तो इससे वेट भी कम होगा. वैसे मैं सोच रही हूँ कि हाँ वाकई सैलड का इस्तेमाल करना चाहिए, अभी कुछ अर्से पहले तक मैं कर रही थी, लेकिन फिर वो टाइमिंग वगैरह इस तरह हो जाती है कि कुछ एक चीज़ छूट जाए ना कुछ दिनों के लिए. अच्छा ये मेरा बहुत ही बड़ा इशू है कि मैं कोई चीज़ रेगुलर कर रही होती हूँ तो कर रही होती हूँ और वहाँ पे कहीं बीच में थोड़ा सा वक्फा आया तो मैं वो भूल जाती हूँ कि भाई ये करती भी थी. तो ये करना चाहिए भाई लंच के साथ जो है ख़ासतौर पर. अच्छा वैसे ये बात भी कही जाती है कि खीरा जो है वो आप दोपहर के वक्त खाएँ, रात के वक्त ना खाएँ. और इसी तरीके से तरबूज के बारे में भी ये बात बोली जाती है कि तरबूज जो है वो इस तरह के जो भी जितने भी फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल्स होते हैं ना जिसमें पानी ज़्यादा होता है उनका कहा जाता है कि उनको दिन के वक्त इस्तेमाल करें. पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता लेकिन मैंने ये बात बचपन से सुनी है कि तरबूज खीरा ये रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, ये आपको दोपहर के वक्त में खाना चाहिए या सुबह के वक्त में भी खाना चाहिए. तो ये भी जहन में रखें, होता है इससे कुछ ना कुछ होता है. कुछ कहते हैं बड़े तो सही ही कहते होंगे, मुझे इसके पूरे जो लॉजिक है वो नहीं पता लेकिन ये कि ऐसा है, ऐसा सीन है. तो ये कीजिए. अच्छा जी इसके साथ ही पानी तो अपने पीना ही पीना है. पानी के अलावा कुछ और मशरूब वगैरह जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बादाम का शरबत. मैं आपको सत्तू बता रही थी, मैं तो खुद रेगुलरली पीती भी आ रही हूँ. मतलब जब मैंने उस वक्त बताया था ना उस वक्त से रोज़ाना भाई मैंने अपनी आदत बना ली है सुबह निकलने से पहले सत्तू लाजमी पीना है. क्योंकि होता ही है ना कि इस वक्त नाश्ता तो करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती इतनी अर्ली मॉर्निंग. तो ये है कि आप सत्तू पी लो, काफ़ी हद तक जो है ना पेट आपको एक भरा भरा लगता है, 3 घंटे गुजर जाते हैं आराम से. मतलब ये वाला सीन होता है. तो इसलिए जो है ना सत्तू हो गया, बादाम का शरबत अगर अवेलेबल है यहाँ पे तो मुझे भी बताइएगा कहाँ पे मिल रहा है. और मतलब बोलते हुए मेरा खुद दिल जा रहा है बादाम के शरबत का. और इसके अलावा और भी इस तरह के जो मशरूबात हैं, लेमन, लेमन का जूस ये बड़ा ही ज़बरदस्त है तो वो इसका इस्तेमाल करते रहे. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम अब्दुल्ला. आपने आज डाइट के हवाले से बात किया, हम बोले आज हट के थोड़ा सा पहले बतिया लेते हैं बाद में देखा जाएगा.
0: तो आप क्या बताना चाह रहे हैं डाइट के हवाले से?
1: जी जी बिल्कुल, आप जो बता रही हैं सही बिल्कुल बता रही हैं कि सुबह के टाइम पे नाश्ते में हमें बिल्कुल जो हाई जो ये होता है जैसे पराठे और ये समोसे या मतलब फ्राइड चीज ये सब चीज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमें, खासकर गर्मियों में. तो शाम के टाइम हम तो नाश्ते में हमारा बहुत मतलब ये इजी सब मैं रात को भिगो देता हूँ, चिया सीड हो गया, पंपकिन सीड और ये सेसम सीड और क्या क्या ये थोड़ा मेथी के दाने, थोड़ा ये सब सारी चीजें एक साथ में.
0: अच्छा मेथी के दाने भी डालते हैं आप?
1: थोड़ा सा मतलब अभी यूज करना शुरू किया मैं थोड़ा सा. अच्छा. अलग से मतलब वो उसको ये करते हैं यूज करते हैं, उसको भी बताते हैं कि लोग थोड़ा बहुत फायदेमंद होता है खासकर जो बॉडी में जो घुटने उठने के उसमें अगर कहीं दर्द वर्द ये रहता है तो ब्लड को थोड़ा सा ये बेहतर करने में अभी मैं थोड़ा हो गया. और बादाम ये सारी चीजें जो है मतलब ये हम लोग जो डॉक्टर से छुट्टी रहेगा तकरीबन और ये फल का जरूर हम इस्तेमाल करें, हमारा रेगुलरली फल जरूर हम इस्तेमाल करते हैं फल, खासकर मतलब एप्पल हो गए, बनाना हो गए या ये मतलब समझ लो माल्टा, ये सब यूज हमें हर दिन करते रहना चाहिए क्योंकि जो ये खाने अगर हमारे बॉडी फिट रहेंगे तो हमारे काम करने के लिए भी अच्छा रहेगा और हम अपने आप को फिट महसूस करेंगे और काम करने में भी, और अगर सेहत अच्छा है तो हम कहीं भी कितना दिन भी काम करने में इतना मसला नहीं होगा सबसे ज्यादा. और हम जो यहाँ पे खा लिए सही से बॉडी अपना फिट करके रखे ये हमारे काम है, काम आता है. अगर घर सारे पैसे जमा करके भेज दिए तो वही वो 10 रास्ते निकल जाएंगे और हम समझ लो कि बहुत जल्द कमजोर होगे और मजबूरी में हमको घर पे लौटना पड़ेगा. तो ये सब चीज हमें अपने डाइट का ख्याल कर, पानी का खासकर, और ज्यादातर बहुत ज्यादा ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक से हमें बचना चाहिए खासकर ये गर्मियों में, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. ये सब हमारे लिए बिल्कुल सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, जहर है ये सब. तो आला आप लोग का एक टाइम था कि इसको बहुत अच्छा समझते थे लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च किए और लोगों का सुने तो हमें पता चला कि नहीं ये तो बिल्कुल बिल्कुल जहर है ये, यहाँ तक कि अगर वॉशरूम में डाला जाए और ये कट बताते हैं कि मतलब यही तो हम लोग तो अच्छा क्लीन करके और पूरे उसको समझ लो कि उसमें और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना ज्यादा मतलब खतरनाक इसके अंदर केमिकल सारे डाले रहते हैं. जी बिल्कुल. तो ये सब हमें ठंडी के मौसम में, अभी तो आप ह्यूमिडिटी का थोड़ा सा हालात ज्यादा बढ़ गया रात में पानी मतलब जिस तरीके से बहुत ज्यादा अगर छत से पानी टपक रहा है तो ये समझ लो कि टाइम ह्यूमिडिटी बहुत तगड़ा हो जाएगा. और गर्मी हम तो देखते हैं गाड़ियों के ऊपर जब पानी का और ये सब का और या हमारे उससे सबसे थोड़ा पानी टपका तो हमें पता चल जाता कि सुबह भैया गर्मी अब थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा ए सी की. खैर बनाते हैं कि अल्लाह ताला, बस हम लोग थोड़ा सा गाड़ियों में होते हैं तो समझ लो कि जब तक बैठे रहते हैं तो बहुत सुकून रहता है, अल्लाह का करम है. और जो बेचारे बाहर काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बहुत देख के अफसोस होता है कि बेचारे इतना मेहनत करते हैं और इतना ये करके उन लोग का बॉडी समझ लो कि ये करने के लिए उनके अंदर वो कुवत पैदा हो जाता है, और हम लोग को अगर उस जगह पे खड़ा किया जाए तो नहीं खड़े हो सकते उस जगह.
0: सही बात है, सही बिल्कुल है. अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर जो चीज डालनी होती है ना उसको इतनी हिम्मत दी होती है. बिल्कुल ऐसे ही.
1: अब यही बात बता रहा हूँ मैं महवेश कि मैं गया था अगस्त सितंबर में महीने में, आधा कट करके मैं मुलुक अपने गांव में गया, लेकिन वहाँ की गर्मी और वहाँ का देख के ऐसा लग रहा था कि यार हम क्यों चले आए सितंबर में, हमें तो बस जनवरी फरवरी या उसमें आना चाहिए था. वो थोड़ी दिन की गर्मी, 10-15 दिन की गर्मी, इतना मतलब समझ लो कि हमारे यहाँ का भी इतना ज्यादा वेदर का ये हालात हो गया है, और खासकर दरख्तों को उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया आज की जनरेशन ने कि लोगों ने काटने का ज्यादा ये किया और लगाने का बहुत कम समझ लो इसके ऊपर ख्याल. आप दरख्तों के ऊपर भी मतलब इस पे ज्यादा ये किया जाता है और बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें यहाँ से कतर से. जब ज्यादा मैं देख रहा हूँ वेदर हमारे यहाँ का, कभी कभी यहाँ से 4-5 degrees ज्यादा वेदर होता है गर्मी का. मतलब अब ये बताओ कि जब जिस वक्त यहाँ पे वेदर का ये हाल होता था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी, आपने यहाँ फिर भी बोलते थे यार सुकून है, लेकिन अभी उल्टा हो गया.
0: उल्टा हो गया
1: हमारे यहाँ,
0: उल्टा हो गया
1: जी. दरख्तों को इतना ज्यादा लोगों ने जाया कर दिया इस तरीके से कि गांव में पहले निकलते थे हम लोग छोटे थे तो कि इतने बगीचे के पूरे खत्म नहीं होते थे आम से लेके, और सारे बगीचे तरह तरह के अमरूद के कि पूरा एकदम उसका ये होता था लाइन से पूरा गांव की तरफ. लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर लोगों ने समझ लो इसके ऊपर हालांकि थोड़ा सुधार आ रहा है, लोगों के अंदर अवेयर हो रहे हैं, लोग थोड़ा लगा रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम लगेगा ये करते करते.
0: और
1: उसके बदले में उल्टा यहाँ पे अभी गल्फ कंट्री में ये इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया दरख्तों के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का वेदर बेहतर हो गया
0: बहुत बेहतर हो गया. सही बात है.
1: तो हमें इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि अपने गाँव में जाएं.

0: एहसास कर रही है। मकसद अल्लाह के नबी सल्लम का था कि भाई इतना ज्यादा अहमियत दो इस चीज को, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम खाली दीनी लिहाज से नहीं, दुनियावी लिहाज से सारी चीजों के ऊपर आप सल्लम ने हमें मतलब इसको आगाह किया है, फोकस किया है कि लोगों की जिंदगी कैसे मुतासिर ना हो, उससे बचो। और हमारे दीन ने भी जहाँ पे भी हमें आगे मतलब मुश्किल और परेशानी का ये सबब बनता है, जरिया बनता है, हर चीज से वहां पर रोक दिया गया।
1: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही दरख्त लगाने चाहिए। बाकी मतलब अपने अपने मुल्क जाके एक जो है ना कैंपेन ये भी शुरू करें कि दरख्त लगा कर कुछ पौधे लगा कर आए।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: अच्छा रईस साहब, आज का सवाल भी कर लूँ मैं आपसे?
0: जी जी बिल्कुल।
1: हाँ तो आज का सवाल है थोड़ा सा जरा मतलब हटकर, वो ये कि अगर मतलब आज आपका मूड जो है, जो भी इस वक्त मूड हो रहा है आपका, उसका कोई रंग होता तो वो कौन सा रंग होता? कोई नाम देना चाहेंगे मतलब कौन सा रंग देंगे अपने आप को आज?
0: मैं भैया उसका रंग मतलब सफेद रंग की तरफ हम ज्यादा मतलब ये हैं।
1: अच्छा क्यों?
0: क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा पसंदीदा ये रंग सफेद रंग की तरफ था। और बाकी अभी इसके तरफ समझ लो कि ये इसमें कोई तब्दीली ना आए, आपस में अपने आप को साफ शफाफ की तरफ बहुत सी मतलब चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं।
1: तो
0: शफाफ के अंदर शफाफियत पाया जाता है, और इसके अंदर इसके ऊपर कोई भी चीज को अगर ये करोगे तो फौरन वो जाहिर हो जाता है। ये ऐसा रंग है कि कोई भी कलर को बर्दाश्त नहीं करता है, जैसे भी उसके ऊपर कोई भी ये करके कोरने की कोशिश,
1: कोई मिलावट नहीं, कोई मुनाफकत नहीं, बिल्कुल प्योर। ओए होए होए क्या बात है,
0: फौरन वो जाहिर हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा, जाहिर हो जाता है।
1: जबरदस्त चॉइस भाई, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त, ग्रेट।
0: मतलब आप आपका आवाज मतलब मुझे एक मैं जब बीबीसी के उस पे बीबीसी रीड के उस पर आता है बीबीसी रीड, तो मैं सोचता हूँ कि यार लगता मेहनत मैम ने अपनी आवाज को उसमें रिकॉर्डिंग करवा दिया क्या। जी आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड।
1: अच्छा मुझे भेजिएगा, मैं सुनूंगी कौन सा है, मैंने नहीं सुना हुआ।
0: उर्दू उर्दू उर्दू वाली आप सुने
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैं फौरन आपको याद कर लेता हूँ यार, इतना इतना एकदम हुबहू सेम टू सेम।
1: अच्छा
0: आवाज आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड।
1: अच्छा।
0: और मैं हूँ तुम्हारे पास, मतलब ये बाद में आगे ये करके जो भी होता है वो जरूर उसका ये आता है पीछे से आवाज पहले।
1: अच्छा,
0: शुरू करने से मूव को शुरू करने से पहले।
1: सही, तो यानी मेरी बीबीसी के लिए आवाज हो गई है, क्वालिफाई कर गई हूँ मैं।
0: एकदम हूबहू आपकी आवाज तो मतलब उसमें कोई भी अगर सुनेगा ना तो सोचेगा लगता है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लिए क्या कुछ वक्त के लिए।
1: अच्छा, अच्छा इतना क्या बात है, जबरदस्त, सुनूंगी मैं भी जरूर, सुनूंगी,
0: अच्छा लगता है।
1: ये बड़ी दी, मतलब ऑनर की बात है क्योंकि अच्छी आवाजें होती है वहाँ पे, तो गुड, जबरदस्त। जी जी जी रईस भाई, आवाज
0: उर्दू लाइन से ही ज्यादा उर्दू और अरबी लैंग्वेज, तो मुझे इतने लैंग्वेज आते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, ये भोजपुरी, मराठी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, नेपाली, इतने लैंग्वेज आते हैं लोग मतलब चक्कर में पड़ जाते हैं, जिस जो जैसे मिलता है जिस लैंग्वेज का बस उसके साथ में शुरू हो जाता हूँ।
1: क्या बात, जबरदस्त भाई, ये तो बड़ा आला टैलेंट है आपका।
0: जी तो इतने लैंग्वेजेस मतलब हालांकि नेपाली मुझे पहले नहीं आता था, बहुत बाद में मैंने कवर, जिस टाइम स्कूल टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं ये कर पाया क्योंकि मेरा पढ़ाई ज्यादा इंडिया में ही हुआ सारा नेपाली, तो बाद में मैंने इसको कवर किया और बहुत अच्छा कवर कर लिया। और पंजाबियों के साथ में पंजाबी में लगा तो समझ लो कि उनकी लैंग्वेज को इतना अपने ऊपर ये कर लिया कि वो लोग ऊपर पूछ जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि कौन सा गाँव है आपका, कौन सा इलाका है, तो बोलता हूँ यार। फिर
1: गुड है भाई, जबरदस्त, बहुत आला रईस भाई।
0: ये किया अपना मैकेनिकल लाइन का काम, तो वहाँ पे मराठी लैंग्वेज को, फिर अपने उर्दू, हिंदी और अरबी, अरबी स्कूल से तो समझ लो कि पढ़ाई था और हम लोग अरब में रह के तो वो बहुत ज्यादा काम आया कि वो पढ़ाई जो किए थे नहो और सर्फ की अरबी अरबी।
1: अच्छा बीच बीच में आपकी आवाज ना कट जाती है, हेलो अब तो लग रहा बिल्कुल ही।
0: कैसे आपको पता चला, तो हम बता दें यार हमारा तालीम।
1: अच्छा ये आप मतलब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज आती है और अचानक कभी ना कभी मतलब चली जाती है, बिल्कुल काफी देर के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइन कट गई है।
0: अच्छा, हाँ। ये हो,

0: तो चले रईस भाई, बहुत अच्छा लगा, यानी आपने चूज किया है सफेद रंग अपने लिए। अच्छा फिर गायब हो गए। चले रईस भाई फिर हम आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि आपकी आवाज जो है वो बहुत ब्रेक हो रही है, अब कट ही गई है लाइन ना। चले जी, तो फिर भाई हमारे साथ थे हमारे कॉलर और मैंने सवाल भी कर लिया, अगर आज आपको अपने मूड को डिफाइन करना हो तो कौन सा रंग इंतखाब आप करेंगे, किस रंग का इंतखाब करेंगे, ठीक है? तो ये आपने मुझे बताना है। ये हमारा सवाल भी हो गया था साथ साथ, और रईस भाई भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो है टिप्स दे के चले गए, उन्होंने भी बता दिया किस तरह से नाश्ता वाश्ता करते हैं वो। तो वैसे ही आपने भी अपनी रूटीन में रखना है कि नाश्ता ऐसे कीजिए जिससे आप हल्का फुल्का रहें, दिन का खाना वाना भी। और सैलेड तो भाई आज मैं खुद भी शुरू करती हूँ, बहुत दिन हो गए कि सैलेड मैंने नहीं बनाया, तो सैलेड ज़रूर बनाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, अगर लस्सी नहीं बना सकते किसी भी फॉर्म में आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल अपने आप को ठंडा ठंडा रखने के लिए कुछ ना कुछ करें ज़रूर। चलें जी पढ़ेंगे हम ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी। एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ एफएम 107 हमेशा आपके साथ है।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
4: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान 642 और इसके साथ ही हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: जी खादिम भाई, क्या हाल चाल है? सुबह खैर।
5: सुबह खैर।
4: जी तो हाल चाल अच्छे हैं, नाश्ता हो गया आपका?
5: अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाश्ता भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी तैयारी, ड्यूटी पे जाने की तैयारी हो रही थी
4: जी, थी
5: तो सोचा पहले आपसे बात करूं, मौजू किया है ये सब, थोड़ा आप मुझे थोड़ा हाँ बता दो।
4: आज वैसे सवाल तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे हटकर भी आपको बात करना चाहे तो कर लीजिएगा। सवाल हमने ये किया है कि अगर आज आपके मूड को डिफाइन किया जाए किसी रंग से तो वो रंग कौन सा होगा?
5: रंग
4: कलर
5: तो वैसे मुझे, अगर मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है।
4: अच्छा,
5: रेड कलर बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे, और उसके अलावा जो है व्हाइट कलर मुझे अच्छा लगता है।
4: रेड एंड व्हाइट, अच्छा कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त ग्रेट।
5: लेकिन रेड कलर एक तो ये कि थोड़ा सा शौक कलर है, यानी बस मुझे अच्छा लगता है ये बात है, मैं और आगे नहीं जाऊंगा, बहरहाल एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए इसमें। और इसके साथ ग्रीन कलर, ग्रीन एंड व्हाइट।
4: हाँ अच्छा, मैंने मैंने सुना हाँ। है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत रेड कलर को पसंद करते थे, ये मैंने पढ़ा है। हाँ, और उन्होंने एक आध दफा अपना कुर्ता भी बनवाया था इस रंग का,
5: रेड कलर का।
4: तो मैंने सुना
5: लोग है। हमारे माशरे में ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रेड कलर अच्छा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, ये नहीं किया, बाकायदा हवाला दिया हुआ है उलमा कराम ने कि नहीं।
4: अच्छा नहीं, मैंने तो ये बात पढ़ी है, मैंने पढ़ी है ये कि ये तनह से एक दफा कोई बकायदा कोई खास मौका था जिसके लिए उन्होंने बनाया था।
5: जी वो असल में जो हमारे लोग है वो एक और तनाजुर से वो बात पेश करते हैं, वो आप समझते सियासी उस पे।
4: अच्छा,
5: तो हाँ, तो लिहाजा ये लोग गलत रंग देते हैं उसको। नहीं तो ये जो है रेड कलर, ये सब ये भी पसंद है, हर कलर पसंद करते थे, लेकिन रेड कलर और ग्रीन कलर ये बहुत पसंद। ये मैंने खुद भी ये रिवाइज पढ़ी थी और मुझे
4: मैं इसलिए कंफर्म भी कर रही थी क्योंकि मैंने पढ़ा
5: है ना। मैं खुद पढ़ चुका हूँ ये, और मैंने सुना भी उलमाए कराम से भी मैंने सुना है, इस पे बहुत बहस हुई थी।
4: अच्छा।
5: और लोग किस्म किस्म बातें कर रहे थे, फिर उलमाए कराम ने उसमें ये हवाले दिए कि ये मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलर इसका जिक्र किया हुआ है।
4: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो
5: बहरहाल आगे तो हम लोग ज्यादा वो बात नहीं कर सकते, इसलिए कि हम लोग को इतना इलम नहीं है, मालूमात नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये है कि ये खबर ये बात गलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पसंद नहीं करते, ये बात गलत।
4: सारे रंग अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना।
5: बिल्कुल
4: हर चीज, हाँ
5: हर कलर अपनी जगह पे बहुत अच्छी और प्यारी लगती है। आप देखें तो अगर ब्लू कलर को अलग रखो तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर और दूसरों के साथ ऐसे मिला के ये जैसे ग्रीन के साथ या रेड येलो के साथ हो वो ब्लू कलर अच्छा लगता है फिर।
4: हाँ।
5: या ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर को आप व्हाइट के साथ, येलो के साथ और ऐसे पिंक कलर के साथ हो तो वो ब्लैक कलर जो है सबसे अच्छा लगता है।
4: हाँ, और सर ब्लैक को भी तो हमारे यहाँ क्या क्या कुछ मतलब ना, ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये तो हमने अपने तौर पे बना ली है चीजें, वरना इनमें कुछ भी नहीं होता।
5: देखो हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी, कोई भी बात हम लोग अपनी तरफ से बस ऐसे ही कि ये उसने ये कहा, उसने किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने मना नहीं किया कि ये कलर नहीं पहनो या ये कलर। और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मर्दों के लिए ये हराम है, मैं बोला फिर कौन सी, एक बंदे से मेरी बहुत बहस हुई, फिर मैंने उसको वो दिखाई, वो दिखा के मैं बोला ये पढ़ो और ये जो है एक मौलाना साहब है, आलिमुद्दीन है, बड़े आलिमुद्दीन है, उसका बयान मैंने सुना है, मैं बोला ये भी सुनो, ये गलत है कि रेड कलर मर्द हजरात ये नहीं, या टोपी हो गई या कोई शर्ट हो गया। तो मैं बोलूं एक बंदे ने मुझे मना किया, बोला कि रेड कलर पे नमाज नहीं पढ़ सकते, मैं बोला किसने आपसे कहा ये, कौन सी रिवायत पे है, कौन सी जगह पे, मुझे बता दो। ये बातों में हम थोड़ा से आगे फिर जाते हैं।
4: ऐसा हाँ, मुझे ऐसा लगता है खातिम भाई कि बाज़ औक़ात ना मतलब हमारे जो पुराने बुजुर्ग वगैरह गुजरे होंगे उनको जो कोई चीज खुद अच्छी नहीं लगती होगी ना वो कुछ ऐसे ही बोल देते होंगे, फिर मैंने कहीं
5: बस वही बात
4: है, वही वाली चीज है। हाँ ऐसे ही
5: उसी बात, एक ये कि प्रोपेगेंडा ये होता है ना कि अगर आप, मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज, आप एक चीज रेड कलर का मैं बता दूं और वो मैं करता रहूं सोशल मीडिया पे भी हो या दूसरे लोगों को ऐसे बता दूं तो वो बात पूरे माशरे में फैलेगी कि हाँ ये कलर जो है ये अच्छा नहीं है। तो ये बात गलत है, नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, नहीं करनी चाहिए जो मालूमात नहीं हो। ये मेरे ख्याल में एहतियात, ये बातों में एहतियात
4: करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
5: और अक्सर लोग सियासी रंग देते हैं हमारे उधर, ये है ना आपको तो मालूम है, बहरहाल वो मैं नहीं बोलूंगा, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे बात करूंगा तो बताऊंगा।
4: ठीक है, हाँ मुझे इसका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं पता, मैं जानना चाह रही हूँ लेकिन नहीं ऑन एयर नहीं।
5: जी ऑन एयर बिल्कुल ये बात है। देखो कोई कुछ बातें ऐसी होती है जो ऑन एयर नहीं करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप हमारी बहन है, हम आपके साथ अगर बात करते हैं तो वो रेडियो के जो मयार के मुताबिक जो बातें वो हम करेंगे, और जो ये तो एक फैमिली चैनल है, कोई आम चैनल भी है नहीं है कि आम लोग सुनते हैं या, तो इसमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि लोग कुछ सीखे इससे.
0: हाँ, exactly,
5: और हम जब ये सुनते हैं तो सीखने के लिए कुछ मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं और ये FM 107 लगाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस गाने सुनो या ऐसे ही बस महवेश बहन जो है वो बात कर रही है और हम लोग रेडियो ऑन है और बस ऐसे ही सुनते जा रहे हैं, एक कान से सुनो और दूसरी से नहीं. सबक लेनी चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
5: कल एक कॉलर की कॉल बहुत लंबी हो गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आज भी मैं कॉल जो है वो कट करता हूँ. ऐसे नहीं दूसरे कॉलर जो है वो वेट कर रहे
0: हैं.
5: मैं आपसे हमेशा कहता आ रहा हूँ कि 3 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए.
0: हाँ नहीं, मैं खुद भी बोलती हूँ लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोग सोचेंगे कि यही बोलती है और कोई नहीं बोलता, तो इसलिए फिर मैं मतलब मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मतलब बात करने दो, थोड़ी बहुत बंदा अपनी बात कर ले उसके बाद फिर चला जाए.
5: कोई बात ऐसी होती है कि अगर वो एक माशरे के बारे में एक इज्तिमाई बात हो तो वो नो प्रॉब्लम, वो अच्छी लगती है. लेकिन अगर पर्सनल बात, एक बात को बार बार एक से गोल गोल ऐसे घुमा घुमा के फिर उसी जगह पे आ जाओ, ये गलत लगता है,
0: अच्छा नहीं लगता. सही कह रहे हैं.
5: तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह
0: आप
5: खुश रखे, सलामत रखे,
0: खादिम भाई आपका,
5: तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम और सुबह खैर.
0: सुबह खैर. हमारे साथ है खादिम भाई और उसके साथ और कॉल्स भी हमने लेनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज क्या खास है वो भी मैं आपको पहले बता दूँ फिर मैं कॉल लेती हूँ, ठीक है. तो आज यानी 24 जून को क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में ये मैं आपको बताती चलूँ. एक तो बहुत ही मज़े का दिन है, वो ये कि आज मनाया जाता है एक दिन जिसको कहते हैं इंटरनेशनल फेरी डे. और ये फेरीज मतलब परियां और फोकलोर, फैंटेसी स्टोरीज, बच्चों का जो क्रिएटिव वर्ल्ड है उसको बेसिकली सेलिब्रेट करता है आज का दिन. और इस दिन लोग फेरी टेल्स, फैंटेसी बुक्स, आर्ट, कॉस्ट्यूम्स और स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज से इस थीम को इन्जॉय करते हैं. और ज़्यादातर ये मतलब जो है मनाया जाता है, फॉर्मल यूएन डे नहीं है बेसिकली ये, लेकिन ये कल्चर और क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक इनफॉर्मल ऑब्जर्वेंस है और उसके तौर पर ये मनाया जाता है. तो दुनिया भर में आज ये दिन मनाया जाता है फेरी टेल्स. वो जो जितने भी लोग हैं जो फेरी टेल्स में रहना चाहते हैं, और मैं तो खैर अभी भी रहना चाहती हूँ, तो बिल्कुल जो है ना ये दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं. और इसके साथ ही 24 जून को है वर्ल्ड रिफिल डे. और ये वर्ल्ड रिफिल डे जो है वो मार्क किया जाता है आज का दिन. और इसका बेसिकली मकसद ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना और लोगों को रिफिल कल्चर की तरफ लाना होता है, जैसे कि रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, रिफिल स्टेशंस और कम जो है ना वेस्ट लाइफ स्टाइल. ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड दिन है जो सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ अवेयरनेस फैलाता है. तो आज ये दिन भी है वर्ल्ड रिफिल डे, तो ये भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं. और बिल्कुल बाकी मतलब पानी की बोतल हो गई या कोई भी चीज़ ऐसी है, प्लास्टिक को बहुत गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल कर करके फेंके नहीं, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप जो भी चीज़ आपके पास है उसे जितना भाई जितना चल रहा है चलने दें, उसे मतलब रीयूज़ किया करें चीज़ों को. मेरा तो इस बात के ऊपर बड़ा मतलब जो है ना वो है, क्या कहना चाहिए, कि आपकी चीज़ जब तक ख़राब नहीं हो रही है तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल करें या फिर किसी को दे दें, मतलब बिला वजह ज़ाया ना करें. जी एक और जो दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यूके में 24 जून के करीब. ये जो है एक दिन है जिसको नेशनल राइटिंग डे कहते हैं. और ये दिन मनाया जाता है और इसका मकसद ये होता है बच्चों, स्टूडेंट्स और एडल्ट्स को लिखने, अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने, इसके साथ स्टोरीज, थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की तरफ मोटिवेट करना होता है. तो ये वाला सीन है. स्कूल लाइब्रेरीज और राइटिंग कम्युनिटीज़ इस दिन क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाती हैं. तो ज़बरदस्त भाई, मतलब नेशनल राइटिंग डे तो ये सेलिब्रेट किया जाता है यूके में. इसके साथ ही साथ और कौन सा दिन ऐसा है जो कि मुझे आपको बताना चाहिए? अच्छा हाँ, ये वाला भी एक इंटरेस्टिंग डे है और ये है म्यूज़ियम कम्स टू लाइफ डे. और ये बेसिकली होता यह है कि जो लोगों को म्यूज़ियम्स, हिस्ट्री और लर्निंग की तरफ इंस्पायर करता है. और इसका आइडिया ये होता है कि म्यूज़ियम सिर्फ पुरानी चीज़ों का एक स्टोर नहीं है, बल्कि कहानियों, तहजीब और तालीम का जिंदा हिस्सा है. तो म्यूज़ियम जो है वो जाना चाहिए, उनका रुख करना चाहिए और जाके वहाँ पे मतलब जो है ना चीज़ें देखनी लिखनी चाहिए, हिस्ट्री को याद रखना चाहिए. कहते हैं वैसे भी जो कौम अपने माजी के साथ कनेक्शन नहीं रखती ना उनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा नहीं होता, तो अपने माजी के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसके अलावा एक और जो दिन है वो है सेलिब्रेशन ऑफ द सेंसेस. अजीब सा है लेकिन ये बेसिकली दिन है जो इंसान के 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, चखना यानी टेस्ट करना, सूंघना, महसूस करना,
4: तो ये इन इन सेंसेस को सेलिब्रेट करता है बेसिकली, और इससे क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, अप्रिसिएशन और

0: सेंसरी एक्सपीरियंसेस के हवाले से इस दिन को देखा जाता है। तो ये है भाई, इसके साथ ही साथ कुछ और जो दिन हैं वो हैं 24 जून को नेशनल पार्चमेंट डे, इसके साथ स्वीमा लैप डे और भी कुछ इस तरह के होते हैं, बेकवेल टार डे, ये इस तरह के कुछ डेज जो है ना दुनिया भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है दुनिया में, अच्छी चीज़ है, मतलब कुछ ना कुछ हैपनिंग है हर वक्त का। तो ये वाला सीन है भाई। और इसके साथ ही मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, आज अगर अपने मूड को डिस्क्राइब करना है तो कौन से रंग का इंतखाब करेंगे। एक ने कहा वाइट, एक ने कहा रेड, मैं देखती हूँ कि आप क्या चूज करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, रेडियो ऑफ कर दीजिए।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू।
0: जी जावेद भाई, क्या हाल हैं आपके?
1: अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, खैरियत है? इतना आपने मुझे थरथली डाल दी कि रेडियो ऑफ कर दिया और बस।
0: जी
1: खैरियत
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसा सुबह का आगाज हुआ?
1: माशाल्लाह, हसबे जायका, हसबे मामूल, जबरदस्त चाय, नमाज और ब्रेकफास्ट।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। जी
1: तो आज के हवाले से वैसे तो मेरी जो अपनी चॉइस है वो दो कलर्स हैं, मतलब दो तीन कलर्स हैं, जिसको काला तो मैं बहुत बेतहाशा पसंद करता हूँ क्योंकि वो हर चीज के साथ आप वो शूज हैं ड्रेस अप यूज कर सकते हैं। ग्रे मुझे बहुत पसंद है।
0: वाओ, गुड।
1: और जी, और जो डार्क ब्राउन जिस तरह का, मतलब चॉकलेट कलर, मतलब डार्क मुझे वो पसंद है वो भी। बहरहाल जो रंग सफेद है वो उसकी तो एक अपनी मुनफरद, मतलब उसकी खूबसूरती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है सफेद रंग के बारे में कि इसको पहना करो, और बहुत पसंद भी फरमाया। और जो सब्स कलर है इसका जिक्र जन्नत में भी है कि मतलब इस वहां पर भी सब्स कलर होंगे। तो बाकी चॉइस की बात है तो मुझे वन ऑफ द, मतलब काला रंग,
0: एक कलर, अगर एक कलर, अच्छा ब्लैक, ब्लैक हो गया।
1: मुझे ब्लैक पसंद है। मतलब बाकी दुनिया जो कहती है कि वो देखे जितने मुंह उतनी बातें, हर बंदे की अपनी चॉइस है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम, मतलब हम जब ड्रेस पहनते हैं तो मुख्तलिफ पहनते हैं। कुछ लोग येलो कलर की शर्ट टी शर्ट, यार ये क्या पहन लिया भाई, उसकी चॉइस है, उसकी पसंद है वो। और देखने में भी, मतलब अगर पहना, अगर ब्लैक के साथ येलो पहले तो उसकी कॉम्बिनेशन बड़ी खूबसूरती है। बड़ी खूबसूरती है उसकी।
0: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ना वो जो ये माइयों मेहंदी होती है ना, उसका मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। और मुझे पता भी है कि वो मतलब काफ़ी वैसी वाली रस्म है जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। लेकिन मतलब हमने अपनी जो है ना, मतलब वो एक घर वाले सब मामू खाला वगैरह को बुला के इस तरह का एक फंक्शन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे येलो कलर का सूट पहनना था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था।
1: हाँ बिल्कुल, वो अभी तो मतलब नया ट्रेंड चल गया ना, जितने भी फीमेल थे वो तो खैर येलो पहनती हैं, जितने भी मेल्स हैं उन्होंने ऊपर मफलर भी लिया है। अभी रिसेंटली हम शादी पे जब मैं पाकिस्तान गया था तो ऑफ वाइट कलर के उन्होंने शलवार कमीज पहनी थी, मरून उन्होंने मफलर लिया हुआ था और नीचे पश्तो चप्पल पहनी हुई थी। मतलब उसकी बहुत खूबसूरत लग रहे थे सारे।
0: हाँ।
1: बहुत सारे शहजादों की तरह दिख रहे थे, मतलब शहजादे जिस तरह शहजादी, मतलब एक ठीक है वो हमारा हिस्सा नहीं है।
0: हाँ।
1: लेकिन वो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा,
0: देखने में अच्छा लगता है। और वो ये कि मतलब ये छोटी सी खुशियां अगर आप अपने तौर पे किसी और से एसोसिएट हुए बगैर, अगर आप खुद से मतलब चाहते हैं कोई रंग पहनना, कुछ घर में कुछ थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसा मुजायका नहीं है। खुशी के दिन होते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। बिल्कुल
1: बिल्कुल पहनना चाहिए। बाकी मतलब कि देखिए हालात और वक्त जो है ना बहुत तब्दील, आप कोई भी ऐसा काम ना करें, बहुत सी चीजें हैं जो मतलब जिसका हुक्म नहीं हम कर जाते हैं उसको, लेकिन फिर चलना पड़ता है। डेफिनेटली आपके पास वही बात आ गई, तीन दिन से मैं एक बात करूं कि जब जिंदगी शुरू हुई थी बड़ी सादा थी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी खानदान के अंदर अगर किसी की शादी है और आप इनकार करते हैं कि नहीं ये मैंने नहीं आना, तो 100 लोग तो बात करने वाले बैठे हुए हैं, इनके नखरे हैं, प्राउड हैं, ये है वो है, इसलिए वो बंद भी करना पड़ता है ताकि खुला ना रहे। पर ओवरऑल ये है कि मेरी चॉइस जो है वो ब्लैक कलर इज माय बेस्ट।
0: चलिए गुड, जबरदस्त, अच्छी जबरदस्त चॉइस आपकी, तो बहुत आला, जबरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब कॉल करने का। मुझे लग रहा है कि आप ऑफिस के करीब पहुंच चुके हैं।
1: नहीं, मैं बस वो गाड़ी पार्क कर रहा था, भाई साहब का हुक्म भी आया ना कि 3 मिनट से, मैंने कहा पौने 3 मिनट से पहले बंद कर दूं मैं।
0: सही सही। नहीं नहीं, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू, टेक केयर। रोहित जी तो हमारे साथ थे, जावेद साहब, और उसके साथ ही हमें कॉल लेनी है, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, तो ब्रेक लेके फौरन से वापस आते हैं।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देश

0: FM 107. Time check. Time check.
1: Righty right, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 107 Summer Morning with RJ Mabish Khan. Good morning to all of you. सलाम उन तमाम लोगों को जो अभी अभी उठे हैं, जिन्होंने अभी भी रेडियो ट्यूनिंग किया है. रही जी, आ जाते हैं कहाँ, आ जाते हैं यहाँ पे कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 666-22107 पे तो मैसेज भेजेंगे, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आप 443-443-77 पे हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि आपने कर ली है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: जी शहजादा सलीम, क्या हाल हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
1: गुड
2: एंजॉय प्रोग्राम, एंजॉय
1: सही, गुड, जबरदस्त. और ये बताएं भाई, रंग कौन सा चूज करना चाहेंगे आप?
2: रंग मेरा जो पसंदीदा मेरा अपना है, मुझे मरून कलर बहुत पसंद है.
1: अच्छा, मरून कलर अच्छा लगता है. सबकी अलग अलग चॉइस आ रही है, जबरदस्त, ग्रेट.
2: मरून कलर है. और अगर जहाँ तक ये रंगों की बात है, कलर की बात है, रंग की बात है, ये भी कुदरत की तरफ से कितना नायाब तोहफा है ना.
1: अच्छा, पता है शहजादा सलीम, मैं आजकल देख रही हूँ, आजकल बड़ा इस चीज के ऊपर ना, मतलब लोग पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, जो मुझे लगता है काफी, मतलब ना, जरूरत है इस वक्त की. आप देखें, पहले के वक्त में आप जितनी भी जगह देखे हैं, जितनी चीजें देखे, बड़ी कलरफुल हुआ करती थी. आज बिल्कुल ब्लैंड हो गई है, मतलब ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, इन तीन कलर्स के अलावा आपको ज्यादातर जगहों पर चीजें नजर नहीं आएंगी. जैसे पहले जो बड़े बड़े ये जो होते थे ना, मतलब फूड आउटलेट, नाम में नहीं लूंगी, लेकिन वो बड़े कलरफुली डिजाइन किए जाते थे, मतलब उसमें येलो होता था, रेड होता था, बहुत और दूसरे कलर्स होते थे, लेकिन अब वो सब ग्रे, ब्लैक, वाइट, मतलब इस तरफ चले गए, सब मतलब कलर्स खत्म कर दिए दुनिया से. तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए.
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुदरत ने एक नायाब तोहफा दिया है ना इंसानों की जिंदगी में, जो कलर का, पूरे रंगों का. तो रंग भी, रंगों का भी एक अपना अपना, अगर उनका हम दूसरे नजरिए से देखा जाएगा कि रंगों की एक अपनी एक जिंदगी में किस तरह के वो हर रंग में रंग के ना खिल के सामने आते, हर एक कलर, हर एक रंग ना अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपनी अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी रेपुटेशन बनाता है. तो अगर हम इंसान अगर आपस में ना इस तरह से ना, तो हमको एक सबक देता है कि हम इस तरह से मिलकर, तो हर एक इंसान का एक इंसानी जिंदगी में एक अपनी अपनी रेपुटेशन, एक अपनी अपनी पहचान निकल के, एक अपनी अपनी सब निकल के सामने आती है देखा जाए तो. तो अगर ये रंगों का, अगर कुदरत ने इसको पैदा किया, कुदरत ने इसका एजाद किया है, तो जाहिर सी बात है हर चीज पे कुछ ना कुछ मकसद, हर चीज पे कुछ ना कुछ रहता है अल्लाह का. तो ये रंग जो है, रंगों से हमने ना बहुत कुछ, मतलब है ना, हम सीख सकते हैं कि ये किस हिसाब से तरह तरह के फूल, तरह तरह के कलर, तरह तरह के फल, हर एक रंग में है. सबको रंगों का ही हिसाब मिला है, सबको रंगों का ही हिसाब मिला है. चाहे फल फूल ले लो, फ्रूट ले लो, सब्जियां ले लो, कपड़े ले लो, तो सारे को कलर का ही हिसाब मिला.
1: कलर्स कलर्स है,
2: सारे कलर्स कलर्स का खिताब मिला है ना. देखो ना, सेब लाल भी है, सेब हरा भी है, लेमन येलो भी है,
1: और आप, आपको मतलब ये कलर्स देख के भी ना एक, मतलब एक अच्छी फील आती है, आपका मूड भी अच्छा होता है. हाँ, एग्जैक्टली.
2: इसको इसको अगर हम लोग है ना, अगर हम अकेले में अगर हम इसको ना, इस सारे कलर रख के अगर कुछ ड्राइंग कुछ कुछ ऐसा बनाए या कुछ रखे ना, हर एक कलर एक ब्रश लेके अगर अगर स्पॉट स्पॉट भी मारते चला जाए ना, तो एक क्या निखर के ना, एक क्या नई चीज आपको ना दिखाई देती है सामने. तो एक रंगों का बहुत आपके
1: ना वो आपकी गुफ्तगू से मुझे गाना याद आ गया, वो मैं चलाऊंगी.
2: जी हाँ, वैसा तो मेरा मरून है, मरून में पहनता भी हूँ, टी शर्ट वगैरह और. अच्छा, एक
1: मरून वो ये कतर वाला,
2: कतर वाला मरून जो इनका फ्लैग का है ना, ये थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसकी टी शर्ट है, इसकी सदरी है. अभी मैं भी वेकेशन गया था लास्ट टू ईयर पहले ना, तो मैंने ना सीधे सिंपल है ना, कुर्ता पैजामा है ना, व्हाइट वाला, पूरा फुल चूड़ीदार सब पैजामा और वेल कॉलर का कुर्ता ना, उसमें मैंने मरून है ना छतरी डाली थी।
1: अच्छा।
2: और हाँ मेरे हाथ में घड़ी थी और एक बाप रे आप देखना चाहिए था मेरी, मैं मेरे जो सब रिश्तेदार जितने भी सब देखे ना कितनी मेरी सेल्फी निकली गई।
1: कैसा
2: बाद में देखे ना अपना हर एक शादियों और इसमें ना तो सदरी एक है ना यंग लोगों के ना यंग जनरेशन में हर एक लोग है ना फुल शर्ट और जीन्स से भी है ना सदरी ऊपर मार देते हैं हर एक सदरी का फैशन मतलब है ना सदरी सदरी आज कल तो सदरी सदरी दिख रही है शादियों में इधर उधर आ तो बड़ा मतलब एक बंदूक की है ना एक नया तोहफा कुदरत की तरफ से और एक एक्सपेडिशन से रंगों की एक अपनी एक वो अपनी आप एक है ना एक पहचान छोड़ता
1: है। चलें गुड चलें भाई जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए और थैंक यू। अच्छा कल आप विनर भी बन गए थे कल अब देखते हैं आगे लेकिन लोग कम आए शहजादा सलीम देखें कम आए लोग
2: मैंने और उनको सबको आना चाहिए मैं वोट करूंगा ना बाकी दो कॉलर जिसने ये किए थे ना परफॉर्म किए थे बड़ा जबरदस्त था एक्सीलेंट था उन्होंने भी अच्छी मतलब ये की
1: जो रो रहे थे भाई वो भी बड़े मजे का था।
2: स्पेशली थे ना जावेद साहब का मुझे देखना है जावेद साहब के अंदर क्या है वो जरा निखर के सामने आए
1: जावेद साहब मेरा ख्याल है उस वक्त में रेडियो नहीं सुन रहे होते
2: आएंगे ना खुल के तो मजा आएगा।
1: सही सही चलें दी गुड जबरदस्त चलें बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू जी अल्लाह हाफिज। रे जी तो हमारे साथ कॉलर्स आ रहे हैं एक भाई ने कहा कॉल हाँ मैं करती हूँ थोड़ी देर में लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ न्यूज़ वगैरह शामिल कर लें ना कल भी मेरी कुछ दो तीन खबरें मैं लेके चली गई थी साथ में तो आज ज़रा शामिल कर लेते हैं। कतर में एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर सामने आई है वो ये है कि कतर साइंटिफिक क्लब QSC ने 9 साइंटिफिक एग्जीबिशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च के विनर्स को ऑनर किया और ये एग्जीबिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन की कॉपरेशन से ऑर्गेनाइज की गई थी और इस एग्जीबिशन का मकसद स्टूडेंट्स में साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करना था ताकि बच्चों में रिसर्च का शौक पैदा हो और वो फ्यूचर में कतर की डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट कर सकें। इस एग्जीबिशन में

टोटल 61 प्रोजेक्ट्स और सिक्स जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो फाइनल राउंड तक पहुंची। ये प्रोजेक्ट्स तकरीबन 290 सबमिशंस में से सिलेक्ट किए गए थे, यानी बहुत पहले, मतलब पहले बहुत सारी एंट्रीज रिसीव हुई, फिर उन पर मल्टीपल स्टेजेस में एवोल्यूशन और जजिंग हुई, और उसके बाद टेस्ट प्रोजेक्ट को फाइनल राउंड के लिए चूज़ किया गया। तो ये चीज़ दिखाती है कि कॉम्पिटिशन का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था और स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत से अपने आइडियाज़ और रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किए थे। तो इस एग्जीबिशन का एक और जो खास पहलू था वो ये था कि इसमें मुख्तलिफ एजुकेशनल लेवल्स के स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, सिर्फ सेकेंडरी लेवल ही नहीं बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को शामिल किया गया और इनकी जो सलाहियतें हैं उनको दिखाने का मौका दिया गया। तो ये था भाई सीन, मतलब इसमें मुख्तलिफ, अच्छा इसमें अलग अलग थीम के हिसाब से हो रहा था। पहला दिन जो है वो रिसर्चर कॉम्पिटिशन के तौर पर रखा गया था जिसमें जो प्रैप स्कूल्स हैं उन्होंने शामिल हुए, उन्होंने रिसर्च स्टडीज़ वगैरह पेश की। फिर उसके बाद दूसरा दिन जो था वो सेकेंडरी स्कूल के लिए था और यहाँ पर रिसर्च और इनोवेशंस दोनों कैटेगरीज थी जिसमें जो है इन्होंने, इन स्टूडेंट्स ने AI, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट जैसे मॉडर्न टॉपिक्स पे काम किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हुई और काफ़ी ज़बरदस्त एक यहाँ पर ये एक एग्जीबिशन रही है। तो कमाल भाई, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं कहाँ, मैं म्यूज़िकल ब्रेक लूँ या फिर पहले एक कॉल करते हैं, चलें कॉल करते हैं जिन्होंने कॉल का कहा है।

0: जी, जब तक कॉल मिल रही है तब तक मैसेजेस भी आपके शामिल कर लें. आज अच्छी बात यह है कि आज फोन चल रहा है तो आज आपके मैसेजेस शामिल हो सकते हैं. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, न्यू डे न्यू होप और तहज्जुद अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद द बेस्ट लिसनर. वन डे वी विल बी सिटिंग हियर टू इंशाल्लाह. तो ये मैसेज है, नाम ये नहीं लिखते हैं. इसके साथ ही जी हमारे पास है मैसेज तौफीक का और ये कहते हैं माविश खान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रॉम अलवकरा. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. और अस्सलाम वालेकुम, ग्लैड टू हियर यू आफ्टर 5 months. अच्छा, वेकेशन पे गया था इसलिए FM 107 से कनेक्ट नहीं हो पाया. होप यू आर डूइंग ग्रेट. अल्हम्दुलिल्लाह अमल खान, बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तो आपका नाम देखा है बीच में भी, मुझे लग रहा है. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, हम आपके साथ हैं. ओके, फुली इंजॉय योर प्रोग्राम शहजादा सलीम, थैंक्स अ लॉट. सैफ्रॉन कलर सैलेड मेरा भी रूटीन है हर दिन का और अल्हम्दुलिल्लाह. और वैसे कलर तो हर कलर को पसंद करते हैं, बस मुस्करों की मोहब्बतों वाला पता नहीं क्या, ये कुछ आगे लिखा हुआ है. सैफ्रॉन कलर इनको पसंद है मेरा ख्याल है. चले जी, इसके साथ ही कॉल का जिन्होंने कहा था उनकी कॉल आ गई है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या बादल लेकर आ गए हैं साथ में, कौन है? सॉरी,
1: हाजी वकास अवान.
0: हाजी वकास अवान, अच्छा जी, हाजी वकास अवान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
1: बस अल्लाह का शुक्र है.
0: जबरदस्त, ग्रेट. तो आपकी आवाज काफी क्या ब्लूटूथ लगाया हुआ है, कुछ ऐसा है क्या?
1: नहीं, ब्लूटूथ नहीं लगाया है, फोन मोबाइल निकाल लिया उधर से.
0: कहाँ से?
1: तो उधर पड़ा था ना इसलिए.
0: अच्छा अच्छा, सही. तो क्या कहना चाहेंगे भाई, कौन सा रंग पसंद है आपको आज? कौन सा रंग अपने मूड के नाम करेंगे आप?
1: बेसिकली मुझे ब्लू पसंद है.
0: ब्लू पसंद है, अच्छा. तो आज भी ब्लू ही पसंद करेंगे, मूड जो है ब्लू ब्लू है आपका.
1: ब्लू ब्लू
0: ब्लू ब्लू. ओके, ठीक है. और क्या कहना चाहेंगे भाई, पहली दफा बात हो रही है आपसे?
1: नहीं, आगे मतलब बात हुई है आपसे बहुत टाइम पहले. आई थिंक आपको पता है, मैं वाला साहब होते हुए थे, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे शो खत्म कर दिए.
0: अच्छा अच्छा, सही सही. तो ऐसा है, ठीक है. तो 2 साल पहले मेरी आपसे बात हुई थी, राइट?
1: ना, 2 साल पहले बात हुई थी.
0: अच्छा अच्छा, सही सही. चले जी, और क्या कहना चाहेंगे भाई?
1: बस कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. कभी सुनना तो मैंने छोड़ दिया, असल में आपको पता है वो सारी एक्टिविटी इंसान की जिंदगी से चली जाती है. तो अभी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पहले तो चलो आपको पता है, बंदा वाला साहब हो तो फैमिली होती है तो बंदा मैनेज कर लेता है. अभी सारी एक्टिविटी अपने सर के ऊपर है, इसलिए.
0: यहाँ पे अकेले है, ये पहले वाले साहब होते थे आपके यहाँ पे?
1: नहीं, वाला साहब तो बेसिकली पाकिस्तान में थे, यहाँ पे तो मैं जॉब करता हूँ.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही. इंशाल्लाह भाई, मतलब ये जिंदगी का एक निज़ाम है, साइकिल है, इसी तरीके से होना है. आज हम हैं, कल हम भी चले जाएंगे. तो ये सब अपनी अपना जो टाइम है ना वो पूरा करते हैं यहाँ पे. और उसमें यही है कि जिसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो अदा करनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा सर पे सवार भी नहीं करनी चाहिए, उसका नुकसान होता है.
1: बिल्कुल सिस्टर, ऐसी बात है, लेकिन आपको बोलता है रिस्पॉन्सिबल. मैं अभी इसके बाद अकेला ही हूँ, भाई है वो तो घर की, आपको बोलता है थोड़ा काम देखते हैं वो. हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटी है, आपको बोलता है कंडीशन है बंदे की. दुआ करें अल्लाह साहब के लिए आसानियाँ करें
0: इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला.
1: बहुत अच्छा है, स्पेशली मैं आपका प्रोग्राम, वैसे तो बहुत टाइम से मैंने रेडियो सुनना छोड़ दिया है, लेकिन आपका प्रोग्राम मॉर्निंग में मैं ज्यादा सुनता हूँ.
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आदि वकास. और मैं आपसे यही कहूँगी कि जिम्मेदारियाँ वगैरह निभाएं सारी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सवार करें, थोड़ा खुश रहा करें. इंशाल्लाह आपको इससे एक अलग एनर्जी मिलेगी. और इंशाल्लाह ताला सारी जो चीज़ें ना, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मैंने अपनी ज़िंदगी से भी देखा है कि जो जितने भी मामलात होते हैं ना, जो आपको बहुत बड़े लग रहे होते हैं, बहुत ही मुश्किल लग रहे होते हैं, वो सारे जाने होते हैं एक एक करके. जब उनका वक्त आता है ना, वो अल्लाह ताला खुद ही करवा देता है. हम लोग बिला ज़रूरत कुछ चीज़ों की टेंशन लेते हैं, वो हमें नहीं लेना चाहिए. तवक्कुल रखें, खुश रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मांगते रहे, सब कुछ ठीक होगा. ठीक है,
1: इंशाल्लाह सिस्टर.
0: चलें, ख्याल रखिएगा अपना. बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और इंशाल्लाह फिर बात होती है. थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा। रोहित जी तो हमारे साथ थे हाजी वक्कास, और इसी के साथ हम पढ़ते हैं अभी सलीम रंग रंग रंग इतने कर रहे थे कि मुझे ये वाला ट्रैक याद आ गया था, तो इन्जॉय करते हैं ये वाला सॉन्ग। और आपने बताना मुझे ये है कि आज अपने मूड को कोई रंग देना चाहें तो कौन सा रंग होगा।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स

0: वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: बेरंग नहीं हो सकते, क्या बात है। अच्छा जी, मेरे साथ हैं कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: आरिफ अंसारी।
0: आरिफ अंसारी, क्या बात है, कैसे हैं भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है?
1: हाथ में एक पराठा लिया हूँ, वही खा रहा।
0: पराठा लेके खा रहे हैं।
1: नाश्ता
0: करके नहीं आती ना सुबह, तो थोड़ा सा काम था तो फिर नाश्ता और लेट हो गया, और उसकी वजह से फिर मैंने कर तो लिया लेकिन पूरे दिन मेरे सर में दर्द रहा है।
1: अभी दो दिन से थोड़ा मौसम चेंज हुआ
0: है, तबियत खराब हो गया। तो बहुत लेट नहीं करना चाहिए, अच्छा किया नाश्ता कर लिया आपने। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो गई। और ये बताया आरिफ कि अगर आज आपके मूड को दिया जाए कोई रंग तो कौन सा होगा?
1: रंग के मामले में तो पहले तो ब्लैक बहुत ज्यादा बेहतर था, पर अभी बीबी ने बोला कि आप ऐसे अच्छे दिखते हो पर मरून कलर में ज्यादा अच्छे दिखते हो।
0: अच्छा, मरून पहनते हैं आप। सही। और आज आज कौन सा रंग अच्छा लग रहा है? आज ऐसा हो, कोई ऐसा रंग है जो आपको आज बहुत अच्छा लग रहा हो?
1: रंग तो सब अच्छे हैं, वो तो अल्लाह का दिया हुआ एक नया तोहफा है, और रंग ना हो तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी।
0: बिल्कुल ऐसा ही है,
1: सब अच्छे। पर एक आपने जैसे बोला कि एक कोई अच्छा ना हो तो मैं
0: ग्रीन। वाओ जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा। जबरदस्त भाई, बहुत
1: आला। कपड़े के हिसाब से नहीं, कपड़े में ग्रीन में थोड़ा ऐसे ओवरऑल ग्रीन
0: ग्रीन कलर अच्छा लगता है। गुड, जबरदस्त। चले तो आरिफ अंसारी, ये आपकी चॉइस, और आप कीजिए अपना नाश्ता आराम से, ठीक है? और अपना बहुत ख्याल रखें, पानी वगैरह पीते रहें, थोड़ा फ्रूट्स और थोड़ी और चीज़ों का, दही का इस्तेमाल रखें, क्योंकि मौसम आजकल वाकई ऐसा चल रहा है कि रोज़ ही तकरीबन ना मेरी भी डल डल सी मतलब तबीयत हो जाती है शाम तक, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है? अच्छा, जबकि मैं देख रही थी अभी पिछले दिनों, मैंने बताया भी था कि वेदर अपडेट के मुताबिक लोगों को कोल्ड होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है, नजला खांसी ये सब कुछ चल रहा है।
1: अभी हम लोग का काम भी ऐसा है ना, गाड़ी में ऐसी है और फ्रीजर में सामान निकालना पड़ता है पीछे गाड़ी के, तो उधर ज्यादा ठंडा हो जाता है और बाहर निकलो तो धूप हो जाती है, गरम गरम ये ज्यादा मुश्किल कर देता है।
0: हाँ, ये बात भी है, सही बात है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, फॉरन से ठंडा फॉरन से गर्म, तो उससे भी काफी जो है ना मसला हो जाता है।
1: 5 मिनट गाड़ी में रुके, 5 मिनट बाहर रुकेंगे तो हमारा काम भी नहीं हो
0: पाएगा। सही बात है, सही है। चले कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखें अच्छे से, ठीक है? और इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आपसे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो आरिफ अंसारी थे और बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल ये चल रहा है, और ये ठंडा गर्म जो खासतौर पे हो रहा होता है ना, इधर ठंडा उधर गर्म, इसीलिए लोग कहते हैं कि पानी वगैरह पीना है आपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी पिए, अगर जैसे मतलब एसी चल रहा है ना तो वहीं पे बाहर पे जो बोतल रखी हुई है वो भी ठंडी हो जाती है अच्छी खासी, तो फ्रिज का वो ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला पानी पीने से थोड़ा सा इज्तनाब ही कीजिए, और थोड़ी सी कोशिश करें अपने तौर पर। लेकिन सही कह रहे हैं आरिफ भी, कि जाहिर सी बात है जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं और उधर अंदर बहुत ठंडा है, फिर किसी को कुछ देने के लिए जाना है, तो उसमें तो ये होगा, मतलब क्या कर सकते हैं, इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उस वक्त जो है ना कोशिश करें कि बचें इस चीज़ से, बहुत ठंडे और गर्म में एकदम से ना वो आना जाना। अक्सर कहा जाता है कि आप जैसे अगर आप शावर लेकर आएँ तो एकदम से एसी ऑन करके ना बैठें, क्योंकि उसकी वजह से भी आपके सर में भी दर्द होगा, एकदम से होता है ना कि मसला बनता है, तो इसीलिए आप थोड़ा मतलब जो ना इन चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करें कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी ना लगे, और ठंडा पानी एकदम से कटक कटक किचन से काम करके भी खवातीन आती हमारे यहाँ, पता है ये मतलब हंसी रही थी मैं पहले, लेकिन एक सीरियस बात है कि हमारे एक नेबर में हुआ करते थे बचपन में, वो मतलब उनके घर पे कुछ वो कुछ था, कुछ हलीम वलीम बन रहा था, मतलब कोई ऐसा मौका था जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को, पूरे मोहल्ले वालों को और सब लोगों को इनवाइट किया हुआ था, तो वो बेचारी बना रही थी और गर्मी का थोड़ा मौसम था, तो वो बना बना के जैसे ही बाहर आई है तो उन्होंने कहा कि मुझे वो ठंडा पानी लेकर आ जाओ फ्रिज से निकाल के, किसी बच्चे को आवाज़ दी, उन्होंने एक दो जली जली से ग्लास पिए और उसी वक्त उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और उसका रीज़न यही था कि एकदम से आप बहुत गर्मी से जब बिल्कुल ही डिहाइड्रेट और बिल्कुल काम करते हुए भी पानी पी

पीते रहें, ये ना हो कि आप मतलब टालते रहें फिर आप जाके एकदम से जब पियेंगे पानी तो वो टेम्परेचर जो आपका बॉडी का एकदम से शिफ्ट होता है ना, तो वो एक शॉक होता है बॉडी के लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि टेम्परेचर एकदम से शिफ्ट ना हो, बहुत गिरा हुआ हो और एकदम से बहुत मतलब जो है ना बढ़ जाए, जो भी समझ रहे हैं ना आप, मतलब गर्मी लग रही हो आपको फिर उसके बाद फ़ौरन से आप जो है ना एकदम से ठंडा पानी पी लें तो टेम्परेचर बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से फिर मसला आएगा। तो खैर जी, ख्याल रखिए अपना और इसके साथ ही इंजॉय करते हैं हम एक और अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें.
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Are you ready? Friday 9 p.m. लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश और मैं आ गई हूँ आपके साथ फिर से दोबारा म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए नंबर है 4434377 और साथ ही 6666210 पे आप हमें कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप मैसेज। अच्छा, मैसेज शामिल करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने अपने बाबा के लिए रिकॉर्ड किया, अभी सरप्राइज दूंगी। अच्छा, मुझे तो पक्का लग रहा है खादिम हुसैन की ही बेटी है। चले जी, गुड, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। पढ़ा तो मैंने बाद में, लेकिन आपके मैसेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सलाम माही मैम, हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग, वेरी नाइस योर शो, नाइस टॉपिक मैम, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, सुरजीत फ्रॉम मसाईद। ओके, ब्लू अच्छा लगता है। ओके, और आज का मूड भी ब्लू ब्लू है आपका। चले जी, गुड, जबरदस्त। और इसके साथ है हमारे साथ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी कौन बात कर रहे हैं?
2: सलाहुद्दीन।
1: जी सलाहुद्दीन साहब, क्या हाल चाल है भाई? जबरदस्त, गुड। अच्छी सुबह हो गई, नाश्ता वाश्ता हो गया?
2: नहीं, फिलहाल नाश्ता तो नहीं
1: हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ आपका? सही है, सही है, गुड। जी तो क्या कहना चाहेंगे आज आप?
2: आज आपका जो टॉपिक है कलर के मुतालिक, कलर पसंद तो सफेद है लेकिन हजम नहीं।
1: मतलब कलर पसंद तो सफेद है लेकिन
2: हजम नहीं है।
1: क्यों?
2: जैसे पहनते जल्दी तुरंत गंदा हो जाता है,
1: संभाल नहीं पाते। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
2: तो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा
1: है। अच्छा यानी कुछ ना कुछ गिरा लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है।
2: कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कितना ही बचा लो ना, कुछ ना कुछ हो ही
1: जाता है। अच्छा, मुझे पता है क्या लगा था, मुझे लगा पसंद तो सफेद है लेकिन जब पहनता हूँ नजर लग जाती है। ये भी होता है,
2: नजर ही लग गई,
1: नजर ही लग गई, मैला हो गया,
2: मैला हो जाता।
1: सही सही, ठीक है। वैसे ये वजह है, मुझे भी अच्छा लगता है वाइट, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि बाकी बहुत जल्दी मैला हो जाता है। नाश्ता कौन करेगा मुझे बताएं आप, 4 बजे कैसे हो सकता है नाश्ता? तो नहीं करती।
2: सुबह करना चाहिए।
1: हाँ करना तो चाहिए, लेकिन 4 बजे नहीं कर सकती मैं। वैसे तो खैर मैं पहले जैसे करती थी शो, मॉर्निंग शो, तो लाजमी नाश्ता करके आती थी, बल्कि मैं लाजमी बताती थी भाई मैं लाजमी नाश्ता करती हूँ, लेकिन अभी ये वाला सीन हो गया कि 4 बजे कम अज कम मैं नाश्ता नहीं कर सकती, ये तो सहरी हो जाएगी।
2: 7-8 बजे ठीक है।
1: हाँ 7-8 बजे ठीक है, लेकिन इतना अर्ली नहीं, ये बहुत जल्दी हो जाता है।
2: बना कल साग आती है ना, दिल बोलते आलू मस्त घी डाल के रोटी हल्की तल के,
1: हाय हाय क्या बात है, साग टाइप बनाया आपने। हाँ, मेथी और वाह वाह क्या बात,
2: आलू
1: मेथी आलू, वाह वाह जबरदस्त,
2: बहुत आला। सोया बोलते हैं, सोया बोलते हैं, मेथी नहीं, सोया।
1: हाँ हाँ, वो जो वैसा वाला होता है ना, बहुत सारा जैसा था ना, समझ रही हूँ मैं, कुछ वैसा होता है ना, मतलब हाँ उसके बहुत सारे छोटे छोटे से पत्ते निकले हुए होते हैं, राइट? हाँ सही, हाँ हाँ सोया होता है वो, सोया होता है, तो वो आपने बनाया जबरदस्त। मैंने भी मंगवाया था वो, अच्छा इतना ज्यादा कॉमन नहीं था हमारे घर पे बनना, तो वो मैंने यहीं पे देखा था, तो वो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कैसे बनता होगा, फिर मंगवाया था, और मैंने भी, मुझे याद पड़ा कि आलू के साथ ही बनाया था उसको, शायद आलू के साथ ही कॉम्बिनेशन होता होगा
2: इसका। लेकिन घी डालेंगे तो और मजा आता है,
1: घी डालेंगे, हाँ जबरदस्त, ग्रेट, क्या बात है, तो ये आपने बनाया। सही सही। अच्छा, सब्जी वगैरह खाते रहते हैं, मतलब रूटीन में रहती है सब्जी? बच्चों का तो खास तौर पे हमारे तो मतलब ये हो जाता है ना कि बच्चों का मसला होता है सारा, बच्चे सब्जियां पसंद नहीं करते।
2: सब्जी खाना चाहिए, वैसे
1: खाना चाहिए, मुझे तो बहुत ही पसंद है, लेकिन वो अपने लिए अलग से कौन बनाए, ये वाली सुस्ती आ जाती है।
2: गोश्त बनाना मीट वगैरह बनाना आसान है,
1: हाँ
2: सब्जी बनाना बहुत
1: मुश्किल है। हाँ
2: अलग अलग
1: सही बात है, ज्यादा मुश्किल है।

0: सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। सब्जी जो है वो आपको लगाने में मतलब काटने में ही काफी मेहनत लग जाती है,
1: तो हर एक चीज का
0: करनी पड़ती थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चले नहीं, लेकिन जबरदस्त इंजॉय किया आपने, और इसी तरह से जो सब्जियां आती जा रही हैं कोशिश करें कि उनको डाइट में रखें जो जो लोग रख सकते हैं। चले नहीं, गुड सलाउद्दीन साहब, बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और हमसे इतनी अच्छी चीजें शेयर की आपने, थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज जी। तो उसके साथ ही जिंगल की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं। नहीं, जिंगल की तरफ जाना है, अभी गाना नहीं चलाना है, तो जिंगल सुनते हैं, वापस आते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक। राइट, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 8:00 हो गए हैं 2 मिनट और आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे माविश खान। राइट, तो हम खबरों की तरफ भी आएंगे, आपके कॉल्स की तरफ भी आएंगे, आपके मैसेजेस की तरफ भी आएंगे और एक न्यूज़ जो कि आपसे शेयर करनी है वो ये कि अभी हाल ही में कतर मीडिया कॉरपोरेशन यानी हमारा जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ के CEO शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज बिन जासिम अल थानी साहब की मुलाकात हुई कतर में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद आमिर साहब से। और इस मुलाकात में दोनों ने मतलब दोनों की तरफ से मीडिया कॉरपोरेशन को मजबूत और वसी करने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के दूसरे अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। तो ये थी न्यूज़ और इसके साथ ही एक और भी मेरे पास है जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी खबर है, तो वो भी हम थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करेंगे। से पहले आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और मेरे पास है किसका, माय फेवरेट कलर वाइट, अहमद हेयर। ओके अहमद, वाइट कलर पसंद है अहमद को, साफ रह जाता है आपका या फिर आपके साथ सलाउद्दीन वाला मसला तो नहीं होता। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, माविश खान बहन ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब। माविश खान बहन, सुबह सुबह बेटी ने अपना मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया है, आपका बहुत शुक्रिया मेरा बेटी का मैसेज शामिल करने के लिए। हाँ मैं समझ गई थी, ज़ोहरा नसीम, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ग्रेट, तो आप ही की बेटी है, राइट, बहुत आला। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग मावशी, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग। मोहम्मद यूसुफ खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यूसुफ, आप बताएं आप कैसे हैं, कैसी सुबह हुई, अच्छा सब कुछ हो गया। इसके साथ ही जी मैसेज है रमेश यादव कौड़ी, कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे, लवली डे आपको भी, क्या हाल है रमेश यादव, सब ठीक ठाक। और हमारे साथ हैं अली, और अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मावशी, कैसे हैं आप, और आज कल बात करें तो सब कलर्स अच्छे हैं, मुझे भी सब कलर अच्छे लगते हैं लेकिन ब्लैक मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें कोई भी रंग डाल दो वो रंग नहीं बदलता। जैसे लोग अपने रंग बदल लेते हैं ना, तो कम से कम ये तो सेम रहता है। ओए होए होए होए अली हमजा बात कर रहे हैं, ये कतर में हैं और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। ओए होए क्या बात करती, मतलब आपने तो फलसफे भगाड़ दिए यहाँ पर इस बात में। और इसके साथ ही बाजी कुछ अपडेट आया नहीं, कसम से नहीं आया, मुझसे रोज़ाना आप पूछ रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। अच्छा आप उस नंबर पे कॉल करके देखें फिर दोबारा से ना, जहाँ से आपसे एक रब्ता हुआ था तो उधर ही कॉल करना पड़ेगा, मिले

का जरूर कंफर्म मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन बस थोड़ा आपको उधर कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, जज़ाकअल्लाह। मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, चलें गुड, ज़बरदस्त भाई। और इसके साथ ही साथ हैं कौन, थैंक यू, ये अली हमसा कह रहे हैं थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया अली हमज़ा, थैंक यू। और आपसे तो मुझे वो नूरी बैंड के अली हमज़ा याद आ गए इस वक्त। चलें जी, अभी क्या करना है, अभी करना ये है कि हाँ, मैं खुद ये सोच रही थी, अच्छा मुझे ना वो जो कलर्स के हवाले से मैं बात करी थी कि एक पोस्ट पर काफ़ी अर्से से देख रही हूँ, अक्सर लोग दिखा रहे हैं कि पहले और आज की दुनिया में आप देखें तो रंग जो है ना चेंज हो गए हैं, मतलब चाहे वो हमारे घर पे इस्तेमाल होने वाला, बेचारा वो खैर अब तो लैंडलाइन फ़ोन ही नहीं रहा, लेकिन वो भी बड़े फंकी फंकी से बड़े मज़े के आते थे, तो वो अब आप देखें बिल्कुल प्लेन एक ही कलर्स के होते हैं, ब्लैक मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा आपको इसी तरह के होते हैं। इसके अलावा घर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें या फिर जो घर का एक जो डिज़ाइन बनाया जाता था कि किस तरह से घर बनेगा, मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाजाज वगैरह के जो डिज़ाइन हुआ करते थे, तो उसमें पहले ही इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखा जाता था ना कि ऐसा हो, लोग अट्रैक्ट हों, लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, लोग रंगों से अट्रैक्ट होंगे, लोग वहाँ पे आएंगे एक ना, मतलब एक आप पुरानी जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह उठा के देख लें, जो वेंटेज फ़ोटोज़ वगैरह हैं, मेरा ख्याल है आप उनको 60s, 70s, 80s, 90s तक भी कह सकते हैं, तो उसमें आपको वो वाली एक चीज़ नज़र आएगी जहाँ पे ना लोग सारे खुश खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि कलर थेरेपी भी होती है, मतलब अक्सर लोगों को, जिन लोगों को ये डिप्रेशन हो जाता है या फिर और बेख्वाबी के, मतलब नींद नींद आने के जो मसाइल होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनको बाकायदा कलर थेरेपी बताई जाती है कि आप ये वाला कलर का बल्ब लगा लें घर पे और ये कर लें रात को सोते वक्त, या फिर इतनी देर तक इस रंग के साथ बैठे रहें, इवन मतलब वो तक होता है वो पानी जो है ना, मतलब उसके ऊपर शीट्स चढ़ा दी जाती हैं मुख्तलिफ रंगों की और उनको धूप में रखते हैं और फिर उसके बाद उसका पानी पीते हैं, तो वो भी कलर थेरेपी होती है एक बाकायदा, पीने वाली भी, रंगों में रहने वाली भी और कपड़े पहनने वाली भी, तो ये कलर्स बेसिकली पूरी साइंस है इसके पीछे। तो हम जब मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब एक खैर मेरा अपना भी ये सीन कि मैं भी बड़े ही सिलेक्टिव चॉइस रही है मेरी चीज़ों में, कपड़ों वगैरह के मामले में अगर मैं अपनी बात करूँ, हमेशा कोई एक दौर रहा है जिसमें मैंने एक ही जैसे कपड़े पहने, मतलब ये एक रहा है, और हाँ वैसे भी पहने, मतलब एक अगर मैं बिल्कुल टीनेज की बात करूँ तो रेड भी पहना है, येलो मुझे पसंद है, अभी भी पसंद है, और येलो मुझे ख़ास तौर पर अगर मैं पेंट वगैरह के हिसाब से सोचूँ ना, तो मुझे हमेशा येलो कलर बहुत एडमायर करता है कि आपके घर में कुछ पेंटिंग लगी हुई हो तो वो येलो हो। अभी जो मेरी वो वाला प्रोमो बना था पिछले साल, जो डियर फैमिली जब शुरू हुआ था, मेरा ख्याल उसी का बना था ना, हाँ प्रोमो बना था, तो उसमें कितना अच्छा येलो सा एकदम से सूरज निकल रहा है, और फिर येलो कलर का वो जो अंडा तल, मतलब येलो अंडा नहीं, मतलब जो एक एग योग होती है वो येलो कलर की होती है, लेकिन वो कितनी अच्छी वीडियो आई थी ना, मतलब अंडा तलते हुए, तो ये एक मतलब येलो कलर में ना एक लाइफ है। अब ये देखो, अभी पिछले दिनों ये हुआ था कि यहाँ पे एक तो वैसे ही पूरी दुनिया में कुछ जो चल रहा था वो मामला इनिशियली, तो उन दिनों आप याद करो कि मुसलसल जो है ना वो वाला वेदर चल रहा था, बादलों वाला, मुसलसल बादल बादल बादल छाए हुए थे, ग्रे ग्रे लाइफ थी, फिर एक दिन सूरज निकला तो मुझे उस दिन फील हुआ था कि अब सब सेट होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सेट हो गया था। तो ये एक है सूरज जो है ना वो, ये येलो कलर आपको एक होप देता है, एक खुशी देता है, ये एक फैक्ट है। तो ये रंग जो है, कहने का मकसद ये है कि वो मुख्तलिफ रंग जो कि हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने चाहिए, मतलब चाहे वो कपड़ों के हवाले से हो, चाहे वो आपके घर में मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हो, वो जो बोहेमिया कलर थीम नहीं होती, मुझे भी बड़ी अच्छी लगने लगी है, मैं भी मतलब जो ना सोच रही हूँ कि उस तरह का कुछ घर को भी डिकोर किया जाए, तो उसमें होता क्या है, येलो है, रेड है, सब चीज़ों को मिला जुला के, मतलब रग्स, कुशंस, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं जो कि आप अपने घर पे रखो, तो बड़ा अच्छा एक फील देगा आपको, एक हैप्पी फील देगा बेसिकली, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी वार्डरोब को ही बहुत कलरफुल बना लो, आप अपने इर्द गिर्द में थोड़ी सी जो चीज़ें ना, कुछ कुछ छोटी छोटी सी जो अच्छी खूबसूरत भी लगें और अच्छा आपको एक फील दें, तो वो आप कर सकते हो। तो ये रंगों का इस्तेमाल लेकिन करना चाहिए, हर तरह के रंग आपकी जो है ना ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शामिल होने चाहिए, क्योंकि रंग आपको वाकई खुशी देते हैं। अच्छा, मैंने ये पूछा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और लोगों से भी जानते हैं किस रंग का वो इंतखाब करेंगे, फिर मैं आखिर में बताऊंगी भी कि मुख्तलिफ लोगों ने जिन रंगों का इंतखाब किया है उसके क्या मायने होते हैं, क्या मतलब उनकी ये पसंद है तो उससे निकलता है क्या मफहूम, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे कॉल
کال کیجئے, کال کر کے شامل ہوں. اور آج میں سوچ رہی ہوں گیم کے لیے کہ گیم ہم آج ایسے کھیلتے ہیں کہ آج

0: मैं आपको किसी एक्टर का नाम दूंगी और उसका कोई मशहूर डायलॉग, ठीक है, वो आपने देना है। कोशिश मैं करूंगी कि मैं आपको वही एक्टर दूं जो कि फेमस है, सही है, तो वो हम तय कर लेंगे पहले से और फिर मैं आपको दूंगी। पहले से अपना माइंड बना लीजिए कि आपने किसी भी एक्टर का, मतलब जो मशहूर मशहूर डायलॉग्स हैं वो आपने जो है ना बस आगे बनाने, मैं नाम बताऊंगी आपको और आपने उसका मशहूर वाला जो डायलॉग है वो आपने खुद आके बताना है। ये नहीं कि मैं आपको डायलॉग लगा के दूँ और आप नाम गेस करें, उल्टा करेंगे हम आपको नाम बताएंगे और आपने डायलॉग बोलना है और डायलॉग आपने वैसे ही बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है, जैसे उस एक्टर ने बोली थी। तो ये एक थोड़ा सा ज़रा मसाला हो जाएगा इसके अंदर, ज़रा मतलब जो ना तड़का लग जाएगा। खैर जी, इसके साथ ही हम करने वाले हैं क्या, आप या तो कॉल करें या फिर मैं म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलती हूँ। मैं इंतज़ार करती हूँ आपकी कॉल का, जल्दी से देखते हैं 4434377 पे अगर आपकी आ जाती है कॉल तो हम लेते हैं कॉल, वरना हम चलते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं फिर उसके बाद हम चलते हैं, जब तक मैं कुछ मैसेजेस आपके शामिल कर लेती हूँ, देखती हूँ कि कौन है भाई मेरा मैसेज प्लीज़, और मेरा मैसेज बोलने वाले कौन है। कहते हैं कि आई एम वेटिंग, और ये अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ मोहम्मद ईसा, मुझे नीला रंग यानी ब्लू कलर बहुत पसंद है, ये आसमान और समंदर का रंग है। अच्छा, आज की अगर मैं बात करूँ ना मोहम्मद ईसा, तो मैं भी ब्लू को ही चूज़ करूँगी क्योंकि इस वक्त मुझे लग रही है बहुत सारी गर्मी और मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो इसलिए उसे देख कर सुकून महसूस होता है। और वैसे तो मुझे बहुत सारे रंग अच्छे लगते हैं क्योंकि हर रंग की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन अगर एक रंग चुनना हो तो मैं नीला रंग चुनूंगा। रंगों की बात चलिए तो फिर एक शेर भी सुन लीजिए, हर रंग में कुदरत ने एक हुसन छुपा रखा है, हर रंग में कुदरत ने एक हुसन छुपा रखा है, दुनिया को मोहब्बत ने रंगों से सजा रखा है, हर रंग की अपनी एक अलग कहानी है, कुदरत की यही तो सबसे खूबसूरत निशानी है। ओए होए होए, क्या बात है मोहम्मद ईसा। वैसे पता नहीं, मैंने पहले भी कहा था ईसा मेरे भांजे का नाम है, तो मुझे जब भी आप मैसेज करते हैं मुझे अपना भांजा याद आ रहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत?
0: खैरियत बिल्कुल, आप बताएं आप खैरियत, कहाँ थे आज आप सुबह से, बड़ी लेट आपने मैसेज किया।
1: मैं तो आज डे ऑफ मेरा किया था, मेडिकल में जाना था।
0: अच्छा, काम पे जाना है, डे ऑफ है,
1: डे ऑफ है, शाम में मेडिकल में जाना है।
0: हाँ, सही सही सही, ठीक है, तो अभी सुबह का वक्त फारिग है इसलिए आज आप आराम से उठे हैं।
1: हाँ, बहुत दिनों के बाद इत्मीनान से उठे हैं।
0: गुड गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है
1: जी।
0: तो क्या कहना चाहेंगे नूर मोहम्मद मंसूर, आज कौन सा रंग मुंतखब करेंगे, किस रंग का मूड है आज, तो नींद भी पूरी हो गई है आपकी।
1: किस चीज पे, मतलब
0: मतलब
1: पे
0: आज आज आपका जैसा मूड है ना इस वक्त, तो उसको आप कौन सा रंग देना चाहेंगे, खुशी का है, कैसा है, किस तरह का रंग देंगे।
1: बस इसमें तो ये नजरिया आने की खुशी, नजरे जाने की, कि हम पहले थे कुछ अभी भी है हम, तो बस अब क्या कहे, जो हाल में अल्लाह तला रखे, बस रंग की जो बात है ना, मैं तो बस ग्रीन कलर को पसंदीदा करता हूँ, मैं ग्रीन कलर देना चाहूंगा क्योंकि हरियाली में हो तो बस गर्मी का बहुत तापमान बढ़ जाता है, हरियाली में तो गर्मी को थोड़ा कम से किया हुआ है।
0: सही, तो ग्रीन कलर देना चाहेंगे आज अपने मूड को आप, और वैसे भी
1: जी ऐसे भी ग्रीन टी में ज्यादा पीता हूँ।
0: ग्रीन टी आप ज्यादा पीते हैं, सही है, तो ग्रीन ही देंगे। और ग्रीन सब्जियां भी ज्यादा खाते हैं?
1: हाँ, मुझे डॉक्टर ने ये बोला है कि रेड कलर बिल्कुल नहीं खाने का भी, तुम दो तीन महीना
0: अच्छा
1: ग्रीन खाओ।
0: अच्छा,
1: तो मैंने तो दो, दो एक दिन में तो मैं 1 किलो खीरा तो खा जाता हूँ।
0: ओके, 1 किलो खीरा, सही सही। अच्छा वैसे पता है क्या, मतलब जहाँ पे खीरा अच्छा होता है ज्यादती भी बुरी हो सकती है ना, बहुत ही ठंडे हो जाए। मेरे साथ क्या हुआ था कि वो एक चीज़ है, क्या कहते हैं, गोंद कतीरा, वो मैंने इस्तेमाल कर लिया था, उसके बाद फिर हुआ था मेरे साथ काफी ठीक ठाक किस्म का मसला हुआ था।
1: ऐसा नहीं है,
0: एक किलो लिमिट है, 1 किलो लिमिट है,
1: दो दिन चारता है, 1 केजी तीन तीन तीन तीन खाता हूँ एक दिन में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक है, आपको चल रहा है तो फिर सही है।
1: खाने का बहुत अच्छा लगता है, पर मैं पहले नहीं खाता था, जब से मेरा मेडिकल रिपोर्ट है जब से खाना शुरू किया।
0: अच्छा अच्छा, सही है,
1: खाली रेड खाता था।
0: हाँ, रेड मतलब रेड मीट,
1: मिर्च मच्छी ज्यादा खाता था।
0: मिर्च ज्यादा खाते थे, ठीक हो गया, सही सही। तो अब सैलेड ज्यादा

0: खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा वैसे आपको मतलब और फर्क फील हो रहा है, मतलब दुबले हो रहे हैं कुछ, वेट कम हुआ आपका उसके बाद, और रंग साफ हुआ क्या आपके उसके बाद?
1: नहीं, वेट तो सही में कम तो हो गया, पर रंग थोड़ा काला हो गया।
0: अच्छा उल्टा हुआ है। वैसे कहते हैं ना मतलब हेल्दी खाना खाओ तो रंग आपका जरा साफ हो जाता है।
1: नहीं नहीं ऐसा है, मैं अपने ओरिजिनल कलर पे आ गया हूँ। पहले नाइट में काम करता था तो सीरम लवली का जरूरत नहीं पड़ता था।
0: सही है सही है, चलें खैर अच्छी बात है। हेल्दी खाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन ये कि आपका जो ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले मतलब हेल्थ आपकी ना आपकी आँखों से ज़्यादा पता चलती है, तो आँखों का ये जो वाइट हिस्सा होता है ना उसको मॉनिटर करते रहा करें, वो अगर सही है तो उससे आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी तरीके से पता चल जाती है।
1: अल्लाह का तो यही बहुत बड़ा मेहरबान है कि मेरा 30 ईयर्स हो गया अभी तक मैं ग्लास नहीं लगाया कोई भी।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, कितने साल की उम्र? 30 साल की उम्र?
1: 38।
0: अच्छा अच्छा सही है, लेकिन अभी चश्मा नहीं लगाया आपको?
1: एक बात है, मेरे अम्मी के अलावा अभी तक कोई नहीं लगाया, वो भी मेरा अम्मी बहुत बुढ़ापा में लगा, अभी तक मतलब 4-5 साल से लगा रहा।
0: भाई हमें तो 2 साल से लगा है, मतलब हमारा तो बुढ़ापा पैदा होते ही शुरू हो गया था।
1: चलो मैं देखता हूँ कैसा कैसा ग्लास लगाते, फिर आया ही नहीं फिर मेरे को।
0: अच्छा नहीं, मैं तो पहले तो खैर लेंसेस लगाती थी, लेकिन अब तो मैंने कहा यार जब लगाते हैं तो लगाते हैं, अब वो बच्चे तो रहे नहीं है कि कोई हमारा मजाक बनाएगा तो हमें बुरा लग जाएगा, तो अब तो मैं चश्मा इजीली लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लेंसेस में भी थोड़ी सी उलझन होने लगी है।
1: अभी तो ग्लास फैशन हो गया, अभी कोई नहीं सकता।
0: हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये भी है, ये भी है, अब तो लोग लगाते हैं भाई।
1: हाँ पहले आदमी डाउट करता था,
0: ये तो है, अब तो हो गया फैशन हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें ये तो अच्छी बात है, ठीक है। चलें जी नूर मोहम्मद मंसूर साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, ख्याल रखिए अपना, ठीक है?
1: ठीक है, दुआ में याद रखिए।
0: बिल्कुल जी, आप भी दुआ में याद रखें, आपको भी हम दुआ में याद रखेंगे, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो नूर मोहम्मद मंसूर हमारे साथ थे और इन्होंने चूज़ किया जो कलर, वो भी आपने सुन लिया, और कुछ मैसेजेस भी हैं उनकी तरफ, मैं जाती हूँ, आप भी बता सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम वापस आते हैं, एंजॉय करते हैं ये म्यूज़िकल ट्रैक।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स, आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
4: जी लिसनर्स, वेलकम बैक। 8:00 हो गए हैं, 25 मिनट में एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ और मेरे पास मैसेजेस भी हैं, आपकी कॉल्स का भी वेट है। आप कॉल कीजिए 4434377 पे और शामिल हो जाइए। मैंने आपसे आज सवाल किया है कि आप अपने मूड को कौन सा रंग देना चाहेंगे, तो ज़रूर इसका जवाब दीजिए। अच्छा, मैंने कल जो आपसे मतलब मैं जो कह रही थी कि अच्छी सी एक न्यूज़ है वो शेयर करनी है, वो बेसिकली कल लेकर आई थी लेकिन वो अब तक मेरे पास है, वो कल नहीं शामिल हो सकी थी तो आज शामिल कर देते हैं। खबर ये है कि फ्रेंच एंड जैपनीज रिसर्चर्स के दरमियान एक हुई है कोलैबोरेशन और क्लिनिकल ट्रायल, और इसमें इन्होंने एडवांस ल्यूकेमिया का इलाज एक तारीखी कामयाबी हासिल की है इस इलाज में। ठीक है, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नई टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी के जरिए एडवांस ल्यूकेमिया के मरीजों में तकरीबन 88% फुल नॉन टॉक्सिक रिमिशन रेट देखी गई है। तो ये जो है रिव्यू ये पब्लिश हुआ और ऑनकोलॉजी की फील्ड में इसे एक मेजर लीप फॉरवर्ड करार दिया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ने एग्रेसिव कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में काफ़ी कामयाबी हासिल की है, वो भी बिना उन सीवियर और जो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे ना, जो कीमोथेरेपी की वजह से हुआ करते थे, तो वो बिल्कुल उससे अपोजिट है, मतलब यहाँ पे कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जा रहे। और ये थेरेपी काम कैसे करती है, तो बेसिकली इसमें होता ये है कि ये ब्लड स्ट्रीम में एक तरह का प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है। री इंजीनियर्ड सिंथेटिक एंटीबॉडी है वो यूज़ किया जाता है जिसमें इस तरह से ये काम करती है। और इसको बड़ा ही कुछ साइंटिफिक इसका प्रोसीजर है जो कि बताया गया, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस ट्रायल के बाद ये पता चल रहा है कि ल्यूकेमिया मतलब कैंसर अगर किसी को है तो वो हो सकता है इन फ्यूचर ये वाली थेरेपी के थ्रू बिल्कुल ही मतलब जो है ना उसके असरात को ख़त्म किया जा सके। और उसमें भी जो क्यूमियोथेरेपी होती थी उसमें जितने साइड इफ़ेक्ट होते थे, लोगों को और ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था, तो वो सब कुछ नहीं होगा। तो ये काफ़ी मतलब ज़बरदस्त खबर है और कह रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है इसे साइंटिफिक फील्ड में, क्योंकि थेरेपी बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है। पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट मैनेज करने के लिए लंबी और महंगी जो एक हॉस्पिटल स्टे है उसकी ज़रूरत नहीं है। हेल्थ केयर कॉस्ट भी काफ़ी कम हो सकती है और ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा टारगेटेड और पेशेंट फ्रेंडली लग रही है। तो ये अभी इसके ऊपर मज़ीद काम किया जाएगा और फिर हो सकता है कि ये बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवा दी जाए। तो ज़बरदस्त, ग्रेट, और ये सब कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है वैसे बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, चेंजेस भी आ सकते हैं हमें, मतलब जो है ना उसकी कॉस्ट भी कम पड़ सकती है, लेकिन क्या कहा जा सकता है। खैर जी, तो ये थी मेरे पास आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज़। और हमें जब भी इस तरह की कोई ख़बर वगैरह पता चले तो हमें मतलब जो है ना दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे ऐसा हो। और दूसरी चीज़ ये कि और भी लोगों को, बच्चों को इन फील्ड्स में आना चाहिए। जैसे हम लोग कल वल बात कर रहे थे ना, किसी से बात हो रही थी कि अभी भी रुझान वो है इंजीनियर्स डॉक्टर्स का, तो बहुत हद तक ना ज़रूरत जो है ना रिसर्चर्स की है। रिसर्चर्स जो चीज़ें लेकर आते हैं फिर वो बाद में मेडिकल फील्ड वगैरह में ना डॉक्टर्स उनको अपना रहे होते हैं दवाइयों की सूरत में सब कुछ, लेकिन रिसर्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वही पहले रिसर्च करते हैं किसी भी बीमारी के लिए कोई दवा है या कोई और चीज़ है। तो रिसर्च की फील्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बच्चों को इस वक्त जाना चाहिए, फील्ड को अपनाना चाहिए। बहुत अच्छी फील्ड भी होती है और फिर आप अपनी मतलब दुनिया के लिए कुछ मुनफरद कर सकते हैं, कुछ अलग करके जा सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो मैसेजेस की तरफ आती हूँ मैं आपके, देखते हैं कि किसका मैसेज है मेरे पास। और ये है यूर वेलकम, और ये कौन है, ये मैसेज मैंने पढ़ा तो था, हाँ ये अली हमजा का मैसेज है। ओके, अली हमजा के अलावा कुछ रिप्लाई नहीं आता वहाँ से, अच्छा ऐसा सीन है। और इसके साथ ही एक भाई भी टाइप कर रहे हैं, उन्होंने पहले मैसेजेस लिखे और डिलीट कर दिए, उन्होंने कहा पढ़ ही नहीं गए तो डिलीट कर दो भाई। अच्छा, टू डेज कलर वाइट

माई सेल्फ येलो इनकी किसी के लिए खान कहते हैं ओके विशिंग यू ऑल अ ब्राइट एंड चीयरफुल डे अहेड थैंक यू खान थैंक्स अ लॉट और इसके साथ ही सईद खादिम हुसैन ने कहा है कि आप अच्छा चले ठीक है मैं देखती हूँ मैं बिल्कुल देखती हूँ और इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम मैडम दिस इज़ अली रज़ा फ्रॉम कराची सॉरी मैं आपको मैसेज करना भूल गया था आपने कहा था नंबर सेव करना है मैं अभी आपका नंबर सेव कर लेती हूँ और बताएं तबीयत कैसी है आपकी और अगर हो सके तो कॉल कीजिए हमें और कॉल करके बात कीजिए कैसी तबीयत है सब ठीक ठाक है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होगा और इसके साथ ही भाई कॉल कीजिए हमें कॉल करके शामिल हो जाएं गेम भी हम खेलते हैं गेम में बता चुकी हूँ आप लोग कॉल कीजिए और शामिल हों वरना फिर हम ऐसा करते हैं कि म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलेंगे मैं आपका वेट कर रही हूँ 4433477 पे कॉल कीजिए शामिल हो जाएं मैसेजेस भी कर सकते हैं 6622107 पे तो देखते हैं आ जाती है कॉल तो कॉल लेते हैं वरना फिर आपको एक और अच्छा सा गाना सुनवाएंगे अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम सलाम कौन है हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद जी अब्दुल समद यानी के नदीम है ना नदीम नजाकत ओके और इसके साथ अस्सलाम वालेकुम आपको सलाम अजहर सरफराज फ्रॉम हैदराबाद ओके जी ग्रेट अजहर सरफराज क्या हाल चाल हैं आपके ठीक ठाक हैं नदीम नजाकत ये उसमें समझ गई थी और इसके साथ ही जी एक और मैसेज क्वेश्चन मार्क के साथ है क्या मैंने तो मैसेज पढ़ दिया आपका तो पूरा पढ़ा था आपका शेर भी पढ़ा था तो फिर किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है नदीम नजाकत साहब चलें जी तो ये है जी अभी तक का सिलसिला मैं कॉल का वेट कर रही हूँ जल्दी से कॉल कीजिए शामिल हो जाइए देखते हैं कि कॉल आती है तो फिर हम आपके साथ गेम खेलेंगे गेम मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको किसी एक्टर का नाम दूंगी और उस पे जो मशहूर डायलॉग है वो आपने बोलना है बल्कि परफॉर्म करना है ठीक है तो कॉल का हम कर रहे हैं वेट कॉल आ जाए तो जल्दी से ले लेते हैं अदरवाइज चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ मेरा ख्याल है इस वक्त कुछ लोग बिजी हैं पहले म्यूजिक सुनते हैं वापस आते हैं

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
4: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार।

0: रिची राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM. मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से, और मैं कॉल का वेट कर रही हूँ. मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज कहते हैं, मैम जी मेरा कलर है ब्लू, स्काई ब्लू एंड वाइट. ओके ग्रेट, ज़बरदस्त. और डायलॉग बोलना था आज, शहजादा सलीम साहब और राज भाई आएंगे. बिल्कुल जी, कोई तो आए और जल्दी से डायलॉग बोले. और इसके साथ ही वन सॉन्ग रिक्वेस्ट जो आपका फेवरेट हो. अच्छा, मेरा फेवरेट हो, ये आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया. अगर मेरा फेवरेट होगा तो कौन सा होगा भाई, मुझे तो एकदम से गाने याद भी नहीं आ रहे होते. अभी सिलसिला ये है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ, अगर कुछ दिमाग काम करिएगा तो ज़रूर. ठीक है. और नदीम नज़ाकत कहते हैं, थैंक्स मैम. थैंक यू आपका भी नदीम नज़ाकत. आप गेम में पार्टिसिपेट कीजिए, कोई तो कीजिए. क्या हो गया, इतना मुश्किल गेम है, डायलॉग बोलना इतना मुश्किल होता है, सब लोग गायब हो गए बिल्कुल ही. चलिए जी, अभी हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब तक कोई कॉल करता है हम अपने उस सेगमेंट पर आ जाते हैं जो बेचारा सबसे ज़्यादा इग्नोर रहता है, लेट्स फिक्स इट. और आज इसमें हमने बात करनी है कॉन्फिडेंस की, जिसकी आपको इस वक्त बहुत ज़रूरत है. क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप ज़रूर कॉल करेंगे, और कॉल करके फिर हमें डायलॉग सुनाएंगे, परफॉर्म करके दिखाएंगे. अगर तो कॉन्फिडेंस है तो कॉल करेंगे. मैं ज़रा मतलब वो चेतावनी दे रही हूँ, ठीक है. कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बैठे बैठाए मिल जाता है हर बंदे को ना. मतलब आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, हर कोई बंदा बच्चा मतलब जो है ये ज़िंदगी की भर की एक रियाजत होती है, हर इंसान हासिल करता है. मतलब आपको चाहे वो मतलब कोई अमीर घर में पैदा हुआ हो, गरीब घर में पैदा हुआ हो, ये किसी की मिराज नहीं होती. हर बंदे को अपने हिस्से का ना कॉन्फिडेंस खुद हासिल करना पड़ता है. इस पर मैं मज़ीद बात करती हूँ, लेकिन कॉल आ गई है उनको, मतलब लग गई दिल के ऊपर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, नदीम नज़ाकत.
1: नहीं देख लिया आपने जी, मुझे पहचाना नहीं.
0: अल्लाह, कौन है फिर? अच्छा, खलील भाई.
1: जी जी.
0: कैसे हैं भाई? अभी मैं समझी, उन्होंने शायद मैंने उनको बोला तो उनको आ गया होगा ख्याल, उन्होंने कर ली होगी कॉल.

0: क्या हाल है खलील भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। मैंने कहा बहुत दिन हो गए।
0: हाँ, बहुत दिन हो गए, काफी दिनों से गायब थे।
1: हाँ जी, हमें सुन रहा होता हूँ, प्रोग्राम तो सुन रहा होता हूँ, पर मैं थोड़ा सा बिजी था तो इस वजह से नहीं पार्टिसिपेट कर सका।
0: अच्छा अच्छा,
1: और आप सुनाएं, कैसी तबीयत है?
0: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: अच्छा खलील भाई, बताएं, फिल्में देखते हैं?
1: कभी कभी कोई मूवी हो तो देख ली, किसी की तारीफ वो देख ली।
0: सही, कोई आपकी ऐसी कोई मूवी आपने देखी हो जिसमें कोई डायलॉग हो ऐसा जो दिमाग में रह गया हो, अच्छा लगता हो?
1: एक्चुअली मैं अपनी लाइफ का ना एक किस्सा शेयर करूं। मैं हम एक जगह कराची पे, मैंने बताया मैं उधर गैस कंपनी में था, तो एक हमारा दोस्त है, उसका कलर काला है, काला यानी ब्लैक कलर है उसका, लिटरली वैसा हूँ, यानी होते है ना वो कुछ, यानी उसका कलर थोड़ा ब्लैक है। तो वन बाय वन जीएम ना प्रोग्रेस सिलसिले में सबको बुला रहा था अपने ऑफिस में, ठीक है। तो जब मैं आया जहाँ बैठे हुए थे सारे लोग इंजीनियर्स वगैरह, तो वो मुझसे कहने लगा, खलील भाई क्या हुआ, क्या पूछ रहे थे सर, क्या कह रहे थे? तो मैंने बड़े यानी तरीके से बोला, मैंने कहा तेरा क्या बनेगा कालिया।
0: और इसी के साथ इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। ये अपना किस्सा सुना रहे थे, खलील भाई क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, वो दोस्त तो नहीं आ गए कहीं? राइट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं भाई 4434377 पे। आपने आज डायलॉग बताना है, अच्छा सा परफॉर्म करना है, कॉल कीजिए, कॉल करके शामिल होइए। क्या हो गया है कि क्यों कॉल नहीं कर रहे आप लोग, कॉल ज़रूर कीजिए। और हम आ जाते हैं अपने कॉन्फिडेंस की जो जर्नी चल रही थी हमारी उसकी तरफ दोबारा से। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऐसी चीज़ है जो गरीब अमीर वाली बात नहीं होती, मतलब किसी को नहीं मिलता बैठे बैठाए। हर बच्चे को बचपन से अपना अपना कॉन्फिडेंस खुद ही हासिल करना पड़ता है, खुद ही वो दुनिया को फेस करता है। दुनिया को फेस करते करते मतलब कहीं गिरता है, कहीं पड़ता है, कहीं पर उसको जो है ना मतलब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, कुछ इस किस्म की हिमाकतें हो जाती हैं जिसके बाद वो ये फैसला करता है कि नहीं भाई, मुझे तो किसी ना किसी तरीके से कॉन्फिडेंस होना है। और इसके लिए आपको हमेशा ये करना पड़ता है कि आपको जिस चीज़ से आप घबराते हो वही वाली जो चीज़ है ना वो करना पड़ती है। मतलब अगर किसी को खौफ हो लोगों के सामने बोलने का, तो वो फिर उसके लिए सबसे बड़ा जो एक इम्तिहान है वो यही है कि उसको बोलना तो है, मतलब ये चीज़ दूर करनी है, इसी में कॉन्फिडेंस लेकर आना है। तो वो जो चीज़ है ना उसको प्रैक्टिस करना होगा आपको बार बार बार बार। मतलब उसको आप अगर मतलब किसी के सामने बोलने से घबरा जाते हैं, कुछ होता है, तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की, और फिर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा हो जाएगा, आपको अपने ऊपर एतमाद आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता, मैं मतलब लोगों से बात कर सकता हूँ। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अच्छा खाना बना सकते हैं, कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो गाड़ी चला सकते हैं। मेरे साथ इसी तरह से था, मतलब मैं अपने तौर पर मैंने दिमाग बनाया हुआ था कि एक रोड क्रॉस करने से वो गाड़ियाँ इतनी जन्नाटे भर के निकल जाती हैं ना आपके सामने से, अक्सर ऐसा होता है, ख्याल ही नहीं कर रहे होते। तो मुझे लगता था मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकती तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगी। लेकिन आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अपने आप को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो फिर आपके अंदर आ जाता है ग्रेजुअली, स्लोली। लेकिन आप वो चीज़ जो भी है ना, दुनिया की कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो आप करना चाहें और ना कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरत डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस की है। अगर आप पूरा एतमाद होंगे तभी मुझे कॉल करेंगे और तभी कॉल करके आज डायलॉग सुनाएंगे, और अगर नहीं डायलॉग सुनाएंगे तो उसका पक्का मतलब मैं तो यही लूँगी कि आज किसी में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो मुझे जो है ना कोई गब्बर सिंह का या किसी का मतलब डायलॉग यहाँ पे बोल के परफॉर्म कर सकता होता। तो मैं इससे यही मतलब ले रही हूँ। आप अगर प्रूव करना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगी और कॉल करके शामिल होना पड़ेगा। खैर जी, इसके साथ ही आ गई कॉल एक है, और ये जो है मैं समझ गई हूँ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ। पूरे कतर में एक ही बनता है जिसके अंदर एतमाद है।
2: हाँ नहीं, मैं असल में क्या हूँ, मेरा बैलेंस एकदम लास्ट मोमेंट पे ना, इसलिए मैंने मैसेज डाला।
0: आई हाय हाय हाय, अच्छा अच्छा, आपने मैसेज किया था, मैंने देखा नहीं, मैं अपनी तकरीर में लगी हुई हूँ ना, मैं लोगों को जरा मतलब वो दिला रही थी जज्बा, लेकिन चले खैर। मैं आप एक काम करती हूँ, आप कॉल ड्रॉप करें, मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ड्रॉप चले रही, तो इनको हम कॉल कर लेते हैं। शहजादा सलीम हिम्मत कर चुके हैं डायलॉग सुनाने की, अगर आपके अंदर भी ये हिम्मत है तो आप भी ज़रूर आइए और हमें ज़रूर जो है कोई ना कोई अच्छा सा डायलॉग बोल के सुनाइए। देखते हैं शहजादा सलीम क्या बोलते हैं। ओ कॉल बकायदा ऐसे जा रही है उठा ली उन्होंने कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी
2: वालेकुम सलाम
0: जी शहजादा सलीम. तो आप आ गए.
2: हाँ डायलेक्ट आप गब्बर सिंह के बात कर रहे हैं तो डायलेक्ट तो शोले की एक से एक है.
0: हाँ भाई मतलब जब भी डायलॉग्स की बात आती है ना सबसे पहले शोले जहन में आती है.
2: हाँ शोले शोले शोले जहन में. अरे ओ कालिया तेरा क्या होगा, सरकार ने कितना इनाम रखा है, मालिक पूरे 50,000 पूरे 50,000 और एक और दूसरा
0: वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो वाला हाथों वाला नहीं है.
2: कौन सा
0: हाथों वाला?
2: आओ आओ ठाकुर आओ. क्या हाल है? नहीं नहीं गलत हो गया गलत हो गया. ठाकुर ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे. नहीं नहीं नहीं ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे. नहीं सरकार मैंने आपका नमक खाया है. अच्छा तो आप है ना गोली खा ली.
0: तो अच्छा जो सबसे फेमस है वो आपने नहीं सुनाया लेकिन चले हम किसी और डायलॉग के ऊपर आते हैं. अब शाहरुख खान का कोई मशहूर डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो वो जरा वैसे ही शाहरुख खान वाले स्टाइल में परफॉर्म करके दिखाएं.
2: डर हाँ डर का ही होता है कि कि कि कि किरण किरण किरण देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. देखो किरण मुझसे नफरत नहीं करना. लास्ट में जो फाइटिंग का शॉट है ना नफरत नहीं मुझसे नफरत नहीं करना. देखो मैंने वो अपने ऑडियंस लेकर आते हैं ना शाहरुख खान. देखो मैंने यहाँ सारा कुछ इंतजाम कर लिया. यहाँ अपना जो शादी हो जाएगी यहाँ अपने मैरिज हो जाएगी. तो और दूसरे इनका बाजीगर के बॉस थे उनके अच्छे थे काफी पहले की है ना. और अपना राजू बन गया जेंटलमैन. राजू बन गया जेंटलमैन है ना. वो यहाँ उनके डायलेक्ट मेरे को वो सब जहन से निकल गए एकदम लास्ट उस पे. और दिलवाले दुल्हनिया दिलवाले दुल्हनिया अपना काजल का क्या नाम था उसमें दिलवाले दुल्हनिया में.
0: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें शाहरुख खान का क्या नाम था राज ही होगा.
2: हाँ शाहरुख खान का तो राज नाम था.
0: हाँ अच्छा सिमरन सिमरन भाई.
2: हाँ सिमरन सिमरन हाँ जी जी जी सिमरन नाम था. सिमरन सिमरन सिमरन कौन सा उसका डायलेक्ट था कहाँ पे. हाँ
0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
2: वो तो ट्रेन का लास्ट था. ये इसमें जो है ना जो छत पे जो गरबा चौक का जो बर्फ तोड़ते हैं ना तो सिमरन सिमरन सिमरन सिमरन देखो देखो. तो मैं थोड़ा लेट हो गया आने में मैं थोड़ा लेट हो गया आने में. तो फिर राज मुझे अब से कुछ अभी कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि जो दूसरी बहन रही थी ना सिमरन की सिमरन देखो राज मुझे कुछ नहीं खाया है. तो फिर बाद में दोनों हैं तो सिमरन तो फिर एक लुकमा उनको एक लुकमा अपना. तो वो जो डायलेक्ट थे ना बड़े अच्छे डायलेक्ट थे.
0: अच्छे डायलॉग थे बिल्कुल
2: जबरदस्त डायलेक्ट थे उसमें. और फरीदा जीपाल जो उनकी माँ थी उनके भी अच्छे थे. सिमरन मैं तुमसे जाते नहीं होने देगी जो मुझ पे गुजरी है तुम पे नहीं गुजरेगी चल मेरे साथ. तो लेके गए अमरीश पुरी लास्ट में जब एंडिंग करते जा सिमरन जा अपनी जिंदगी जा.
0: आपने आपने सारे के सारे डायलॉग जो ना एक साथ सुना दिया. आपने कहा आपको भी अंदाजा हो गया कोई और कॉलर नहीं आ रहा मैं ही सुना देता हूँ.
2: मुझे
0: सही
2: तो सब लोग इंशाल्लाह मतलब सब अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे एक मतलब प्रिपेयर करके ना. तो इसमें पूरे संडे बिटवीन थर्सडे का है ना एक एक दिन है ना आप डिवाइड कर ले. आज डायलेक्ट का है आज सॉन्ग का है आज डांस का बतंगड़ है आज वीकेंड के स्पेशल. हाँ तो सब लोग अपना प्रिपेयर करके ना तैयार होके फिर आएंगे.
0: चलें ठीक है चलें मतलब जो है ना करते हैं एक कॉलर और आगे शहजादा सलीम उनको भी दे देते हैं मौका उन्होंने इतना हौसला कर लिया है. ठीक है चलिए जी थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू. अच्छा इरादा तो मेरा ये था कि मैं एक एक्टर का नाम दूंगी और फिर उसके हिसाब से करेंगे लेकिन कॉल नहीं आ रही. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात.
0: जी कौन बात कर रहे
3: हैं? जी नसरुद्दीन है.
0: जी नसरुद्दीन अपना रेडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज.
3: ओके
0: जी तो नसरुद्दीन अभी हमारा गेम सेगमेंट चल रहा है और उसमें कॉल्स खैर आई नहीं हमारे पास, लेकिन ये कि आप हिस्सा लेना चाहेंगे फिर भी कुछ डायलॉग वगैरह कोई सुनाना चाहेंगे?
3: जी जी मैं हिस्सा लेना चाहूंगा।
0: अच्छा मैं आपको एक्टर का नाम दूं या अपना पसंदीदा कोई खुद ही डायलॉग बोल के परफॉर्म करेंगे?
3: जी मैं शाहरुख खान का डायलॉग बोलूंगा।
0: अच्छा चले शाहरुख खान का डायलॉग बोले।
3: मेरे दोस्तों समझते थे मैं कभी लौट कर आऊंगा, एक गुमनामी का समंदर था चाहती उसी में डूब जाऊंगा, मेरी माँ की जो भी कहानी सारी दुनिया के दुश्मन फिर पलट के आ गया है को मैं मुड़ा हूँ।
0: वेरी नाइस।
3: उसी का नाम सुनाने की कोशिश किया हुआ
0: जबरदस्त। और मैं कोई नाम दूं आपको उसका डायलॉग सुनाएंगे?
3: जी जी बताएं।
0: अच्छा तो शाहरुख खान के बाद अक्षय कुमार।
3: अक्षय कुमार का डायलॉग
0: है ये चले छोड़े छोड़े। अमिताभ बच्चन।
3: अमिताभ बच्चन का
0: वो इजी हो जाएगा।
3: अमिताभ बच्चन शहंशाह का डायलॉग है ना। अभी फिलहाल याद ही नहीं
0: है। रिश्ते में तो
3: अजय देवगन का बोल सकता हूँ। हाँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लिखते हैं लेकिन नाम है शहंशाह।
0: हाँ सही है। अजय देवगन का बोल सकते हैं?
3: जी जी अजय देवगन का बोल सकता हूँ। चलेगा एक डायलॉग था बहुत फेमस डायलॉग। हाँ आग जो लगी है दिल में जमाने में लगा दू जिस दिन तेरी डोली उठे जमाने को जला।
0: आए हाय हाय क्या बात है क्या बात है जबरदस्त। चले जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया नसरुद्दीन आपका। अब हमारे जाने का टाइम हो गया है ठीक है। चले जी थैंक यू जी बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी अल्लाह हाफिज बाय बाय। राइट जी तो सिलसिला ये है कि गेम को जम नहीं रहा है। आप लोग उस तरह से कॉल ही नहीं कर रहे। कॉल करेंगे तो फिर मजा आएगा। अभी सारे कॉलर्स एक साथ आ जाते हैं ना एक के बाद एक और मैं नाम देती हूँ उसी वक्त अगर आप डायलॉग बोलते तो फिर मजा आता उसमें हम इंजॉय करते लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा। फिर जी क्या है मेरे पास मेरे कुछ मैसेजेस शहजादा सलीम साहब मोहम्मद ने इंजॉय किया सारे ही डायलॉग सुना के चले गए। उन्होंने कहा मैं सभी कुछ सुना देती हूँ आज भी विनर है कल भी विनर थे परसों भी विनर थे। चले जी गुड। मोहम्मद यूसुफ खान ने अप्रिशिएट किया है बहुत ज़्यादा। और माय फेवरेट कलर इज़ बेबी पिंक एंड लेवेंडर। ओके नदीम नज़ाकत कहते हैं इसके साथ ही ओके इसके साथ ही जी मेरे पास है सलाम मैम यू ड्रॉप माई कॉल। नहीं भाई नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कब की थी आपने कॉल? मैं तो कॉल का वेट कर रही हूँ। चलिए जी इसके साथ ही हो गया मेरे जाने का वक्त। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है अब कल और हम गेम खेलेंगे तो गेम में ज़रा आइएगा ना मतलब आप आएंगे तो फिर मज़ा आएगा ऐसे तो नहीं मज़ा आएगा। चले आखिर में उन्होंने कहा था अपना फेवरेट गाना मैं सोच रही थी कौन सा लगाऊँ। वैसे मुझे फेवरेट जो है ना मेरे ज़्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो क्योंकि मैंने ज़्यादा पाकिस्तानी म्यूज़िक सुना है तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा अभी वो किसी को इतना मज़े का लगेगा कि नहीं लगेगा तो इसलिए मैं आपके लिए दूसरा ही सॉन्ग चला रही हूं और वो है ये वाला। ये भी मुझे अच्छा लगता है। इंजॉय कीजिएगा ट्रैक और मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल वीकेंड है ना। हाँ फाइनली कल वीकेंड है तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल कुछ अच्छा सा करेंगे मज़ेदार कोई गेम भी खेलेंगे और भी बहुत कुछ होगा। तो सुनते रहें फिर मनु 7 दिल से तेज़ की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

0: याद रखनी चाहिए वो ये है कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतरी गोल्फर सालेह अल काबी के बारे में। यार दोस्तों, सालेह अल काबी कतर के सबसे नुमाया गोल्फर्स में से एक हैं और उन्होंने मुल्क में गोल्फ के फरोख में अहम किरदार अदा किया है। दोहा में परवरिश पाने वाले सालेह ने कम उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया और जल्द ही कतर नेशनल गोल्फ टीम का हिस्सा बन गए। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और लगन ने उन्हें कतर के बेहतरीन एमेचर गोल्फर्स की सफ में लाखला किया। सालेह अल काबी ने कई मरतबा कतर मास्टर्स में कतर की नुमाइंदगी की, जहां उन्हें दुनिया के मशहूर गोल्फर्स के साथ मुकाबला करने का मौका मिला। एंड ही गेन्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम प्लेइंग इन दिस कतर मास्टर्स, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिस रीजन। उनकी लंबी ड्राइविंग और कोर्स पर पुरसुकून मिजाज को उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से शुमार किया जाता है। 2025 में सालेह ने कतर ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने फाइनल राउंड में शानदार परफॉर्मेंस देकर टाइटल अपने नाम किया और इस फतह के जरिए कतर मास्टर्स के लिए भी क्वालिफाई किया। ये कामयाबी कतर गोल्फ के लिए फख्र का लम्हा थी और उनकी सालों की मेहनत का सबूत भी। दोस्तों आज सालेह अल काबी कतर के नौजवान गोल्फर्स के लिए एक मिसाल है। उनका सफ़र ये दिखाता है कि लगन और मेहनत के जरिए कतर के खिलाड़ी भी बैन अक्वामी सतह पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद तरीके से अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। बहुत से अफराद बहुत जल्दी में वजन कम करने के लिए सख्त डाइट्स या गैर महफूज तरीके अपनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सेहतमंद और पायदार वजन में कमी आहिस्ता आहिस्ता और बैलेंस जो या मतवाजन आदत के जरिए हासिल होती है। वजन में इजाफे की सबसे जो बड़ी वजूहात हैं उनमें गैर मतवाजन गजा और इसी तरह जिस्मानी सरगर्मी यानी एक्सरसाइज की कमी, ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल, नाकाफी नींद और जहनी दबाव शामिल हैं। अच्छी खबर ये है कि चंद आसान तब्दीलियों लाकर आप अपने आप को सेहतमंद वजन की तरफ ले जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला कदम वो है बैलेंस डाइट, और वजन कम करने के लिए भूखा रहना ज़रूरी नहीं है। अपनी गिज़ा में फल, सब्जियां, दालें, अनाज और जो कम चिकनाई वाली प्रोटीन है वो शामिल कीजिए। तली हुई अशिया, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज़्यादा चीनी वाली गिज़ाओं का इस्तेमाल कम कीजिए। छोटी प्लेट इस्तेमाल करने से भी खाने की मिकदार को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा

0: कदम वो है पानी ज्यादा पीना। कई मर्तबा हमें प्यास लगती है लेकिन हम समझते ये हैं कि हमें भूख लग रही है। दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीने से जिस्म हाइड्रेट रहता है और गैर जरूरी खाने की ख्वाहिश कम होती है। और एक अहम जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो एक्सरसाइज जो है वो कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की आप तेज़ कदमों से आप एक्सरसाइज या वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए या फिर हल्की वर्जिश जो है वो भी वजन जो है कम करने में मदद देती है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल कीजिए और इस तरह अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रहिए। चौथा जो कदम है वो है अच्छी नींद, यानी क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर नींद की कमी हो तो फिर जिस्म के हार्मोन्स से मुतासिर होते हैं जिससे हमारी भूख ज़्यादा हो जाती है। और बालिग जो अफराद हैं उन्हें रोज़ाना 7 से 9 घंटे की मायारी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। सेहतमंद वजन कम करने का मतलब है कि हर हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता वजन में कमी हो। फौरी नतीज के वादा करने वाली जो डाइट्स हैं अक्सर नुकसानदेह साबित होती हैं। तो नाश्ता हर किसी ना छोड़िए, खाना आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबाकर खाइए, स्क्रीन के सामने खाने से गुरेज कीजिए। मीठे मशरूबात की बजाय पानी या बगैर चीनी वाले जो मशरूबात हैं या चाय है उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने वजन और आदत का बाकायदगी से आप जायजा लीजिए। लिसनर्स, याद रखिए कि वजन कम करना सिर्फ ज़ाहरी शक्ल का मसला नहीं है बल्कि मजमूई सेहत को बेहतर बनाने का एक अहम जरिया है। छोटी लेकिन मुस्तकिल तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी कामयाबी का राज हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक आप सेहतमंद रहिए, एक्टिव रहिए और अपना ख्याल रखिए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन FM 107। मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ। शो का नाम है मेरी पहचान, और आज मेरी पहचान में आज की बातों को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आपसे ये सवाल पूछना जरूरी है। चाहे आप इस वक्त गाड़ी चला रही हो, किचन में काम कर रही हो, या ऑफिस डेस्क पर बैठकर एक हेडफोन्स के जरिए हमारा शो सुन रही हो, बस एक लंबी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बस कुछ देर के लिए बंद करें और महसूस कीजिए कि इतने दिनों से जो आप काम करते आ रहे हैं, क्या वो लाइफ में ईजी लग रहा है, या फिर यू आर फीलिंग कि उफ काफी बोझ जैसा फील हो रहा है। अब धीरे से आंख खोलिए, फोन उठाइए, देखिए उन अनरेड मैसेजेस को, देखिए उन इनविटेशंस को, उन गैदरिंग्स के लिए जहां आपका जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और उन रिक्वेस्ट को देखिए जो लोगों ने फेवर्स के नाम पर आपसे मांगी है, जिन्हें देखकर आपका दिल बैठ जाता है, यानी आपकी स्टमक एकदम से ना सिकुड़ जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर वक्त हमसे हमारा एक हिस्सा मांगती रहती है। सही कह रही हूँ ना? कभी हमारा वक्त, कभी हमारा तवज्जो, और कभी हमारी खामोशी। पिछले हफ्ते हमने उस इनविजिबल ज्यूरी की बात की थी, और वो था लोग क्या कहेंगे। ये वाला जो सिंड्रोम है जो हमारी पर्सनालिटी को दबा देता है, हम हमेशा इस डर में जीते आए हैं कि अगर हमने किसी की बात नहीं मानी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ओपिनियन बनाएंगे। लेकिन जनाब, आज हम उस हथियार, उस वेपन की बात करेंगे जो आपको उस ज्यूरी से बचाएगा। ये एक बहुत ही टाइनी, दो अक्षरों का, दो अल्फाबेट्स का शब्द है जो सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जब इसे कहने की बारी आती है तो ये हमारे गले में एक भारी भारीपन जैसा महसूस कराता है। यस, एंड वो शब्द है नो, नहीं। हमने बचपन से सीखा है कि हाँ कहना अच्छी बात है, यस कहने वाले लोग सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यस की कीमत क्या है? Why is it that कि we can say yes to everyone, but जब हमें नो कहना होता है अपने ओन पीस के लिए, अपने ओन रेस्ट के लिए, अपने सपनों के लिए, तो फिर क्यों हम कह नहीं पाते? आज मेरी पहचान पर हमारा पर्पस, हमारा मकसद है अपना वक्त वापस मांगने का, रिक्लेमिंग आवर टाइम। हम आज ये सीखेंगे कि नो कहना किसी दूसरे की इंसल्ट नहीं है, बल्कि ये खुद के लिए एक बहुत बड़ा यस है, एक अपने लिए बहुत बड़ा स्टैंड है।

जब आप किसी ऐसी चीज को नहीं कहते हो जो आपको अंदर से थका रही होती है ना, तो असल में आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हाँ कह रहे होते हो, आप अपने सुकून को हाँ कह रहे होते हो। हमने खुद को ना इतना अवेलेबल बना दिया है कि लोग हमारी नो को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको लगता है अरे ये हमें कैसे ना कह सकते हैं, है कि नहीं।

लेकिन जनाब मेरी ब्यूटीफुल लेडीज, हमारी पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए कितना झुक सकते हैं या कितना अवेलेबल हो सकते हैं, बल्कि इस बात से होनी चाहिए कि हम अपने प्रिंसिपल्स पर कितने मजबूती से खड़े हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ खुलकर बात करें और ये जो हमारा शो है, मेरी पहचान का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर आप मुझे बताएं कि वो ऐसी कौन सी आखिरी चीज थी जिसे आपने यस कहा जबकि आपका दिल अंदर से नहीं नहीं नहीं कह रहा था। हाँ, आप शेयर कर सकती हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। यस, कि वो ऑफिस में एक एक्स्ट्रा शिफ्ट थी जो आपने सिर्फ इसीलिए की क्योंकि आप ना नहीं कह पाए जबकि आपको घर जाकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना था, या क्या वो कोई फैमिली डिनर था जब आप थकान से चूर थी लेकिन आपने सोचा कि नहीं गई तो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, या शायद कोई ऐसा उधार या लोन जो किसी ने आपसे मांगा और आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी फिर भी आपने हाँ कर दिया। शेयर कीजिए अपने ये जो थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ 6622107 पर अपने नाम के साथ, और हम यहाँ एक दूसरे की कहानियों से सीखेंगे कि कैसे ना कहना इम्पोर्टेंट है और कैसे ना कहना हमें चाहिए। याद रखिए, हर वो यस जो आप गिल्ट में आकर कहते हैं वो आपकी पहचान को ना कम करता है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ना कहना भी सीखें, ठीक है? तो आगे इस पर थोड़ी डिटेल डिस्कशन होगा। आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम 107. मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और शो का नाम है मेरी पहचान. और अब हम बात करेंगे आज की सोच के बारे में. हाँ, मैं आपसे एक बहुत ही कड़वा सच शेयर करने जा रही हूँ. हम सबके अंदर एक मशीन चलती रहती है. नहीं, मैं किसी रोबोटिक मशीन की बात नहीं कर रही. मैं बात कर रही हूँ उस पीपल प्लीजिंग मशीन की जो हम बचपन से अपने अंदर फिट कर लेते हैं. सोचिए जरा, हमें कैसे बड़ा किया जाता है. हमें अच्छी बेटी बनाने की तालीम दी जाती है, वो बेटी जो कभी सवाल नहीं करती. हमें समझदार बीवी बनने को कहा जाता है, वो जो हर बात पर सर झुका लेती है और कहती हाँ हाँ ठीक है. और हेल्पफुल बहू, ओ हो, वो जो थककर चूर हो जाए पर ना ना कहे, हाय हाय हाय. हमारी तहजीब में, हमारे कल्चर में ना कहने को बदतमीजी, या यूं कहें सेल्फिशनेस, या यूं कहें एरोगेंस, ये समझा जाता है. हमें लगता है कि अगर हमने किसी की बात टाल दी तो हम बुरे इंसान बन गए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अच्छे इंसान बनने की दौड़ में हम कहाँ खो गए हैं? हम एक पीपल प्लीजिंग मशीन बन गए हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के फ्यूल पर चलती है. हमें लगता है कि जब दूसरे हमें अच्छा कहेंगे तभी हम अच्छे हैं. बिल्कुल नहीं. जरा एक तस्वीर सोचिए, इमेजिन कीजिए, आप पूरे दिन काम करके थकी हुई हैं, आपका सर दर्द से फटा जा रहा है और तभी किसी दूर के रिश्तेदार का फोन आया है कि उनके घर डिनर पर जाना है. अब आपका मन कह रहा है नहीं भाई, नहीं हो पाएगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आपकी जुबान से निकल जाता है जी बिल्कुल हम पहुंच जाएंगे. जब आप उस थके हुए और वो कहते हैं ना बिल्कुल रेस्टलेसनेस में अपने मन को मार कर जब वहां पहुंचती हैं, तो क्या आप सच में वहां मौजूद होती हैं? क्या आप वहां खुशी बांट रही होती हैं? नहीं ना, आप वहां एक फेक वर्जन लेकर जाती हैं अपना. हाँ, वहीं बैठी रहती हैं, पोलाइटली बात कर रही होती हैं और नजर से नजर मिला रही होती हैं, सर में दर्द हो रहा होता है, आप गोली खाकर बैठी होती हैं. तो फिर ये क्या है, क्यों अपना साथ आप नहीं दे पाती? वैसे जब भी मैं बात करती हूँ मेरी पहचान में, तो हमेशा इंग्लिश वो फिल्म है ना, वो मेरे जहन में रहती ही रहती है, जहाँ पर श्रीदेवी जी के डायलॉग्स बड़े कमाल के होते हैं. और वो कहती है कि जब खुद को पसंद नहीं करते ना, तो अपने से जुड़ी हर चीज बुरी लगती है. जब खुद से प्यार करते हो तो पुरानी जिंदगी भी नई और खूबसूरत लगने लगती है ना. हम ना इसीलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे. लेकिन सच तो ये है कि अगर आप खुद को पसंद नहीं करोगे तो पूरी दुनिया की पसंद आपके लिए बेमानी सी हो जाएगी. सस्टेनेबिलिटी सिर्फ हमारे जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट के लिए नहीं होती, सस्टेनेबिलिटी हमारी अपनी एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है. आप कब तक खुद को जलाकर दूसरों के घर में रोशनी करेंगे? एक दिन आपकी अपनी जो आग है, यूं कहें अपनी बत्ती जो है, वो भी बुझ जाएगी, तब क्या करेंगे? बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अमिता, अगर हमने बाउंड्री सेट कर दी तो लोग हमें घमंडी कहेंगे, हम अकेले रह जाएंगे. वेल, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रोकने के लिए एक दीवार बना रहे हैं. नो. बाउंड्री तो एक गेट की तरह होती है, एक ऐसा गेट जिसके गार्डियन आप होते हैं. आप तय करते हैं कि आपके इस सेक्रेट स्पेस में, आपकी मेंटल शांति में कौन आएगा और कौन नहीं. जस्ट याद रखिए कि अगर आपकी हर हाँ सिर्फ गिल्ट से निकल रही है, तो ये एक ऐसा डेट है या कर्ज है जो आपको अपनी मेंटल हेल्थ से चुकाना पड़ेगा. और मेंटल हेल्थ का कर्ज इतना महंगा होता है भाई, मैं आपको बता रही हूँ, उसे चुकाते चुकाते जिंदगी गुजर जाती है. और हम जो सेल्फ केयर की बात करते हैं ना, वो कभी भी हम नहीं कर पाते, और सेल्फ प्रिजर्वेशन तो फिर भूल ही जाइए. वेल, अभी हमारे पास एक मैसेज आया है और मैंने आपसे पूछा था ना कि कौन सी वो चीज है जिसके लिए आपको ना कहना था लेकिन आपने हाँ कह दिया. तो यहाँ पर आफरीन मुझे लिखती है कि अमिता, आपकी बातें सुनकर तो एकदम मेरा दिल भर आया और बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैंने ना कहना शुरू कर दिया तो मेरे बरसों पुराने रिश्ते टूट जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी. ओफो आफरीन.

मेरी बात बहुत गौर से सुनिए और आप सब भी सुनिए। आफरीन जैसा महसूस करती है जो रिश्ता एक ना सुनने की हिम्मत नहीं रखता, जो रिश्ता आपकी थकान की कदर नहीं कर सकता, वो रिश्ता शायद पहले से ही बहुत कमजोर है। आप समझ रही है, बाउंड्रीज रिश्तों को तोड़ती नहीं है आफरीन, बल्कि उन्हें गहरा और क्लियर बनाती है। जो आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं वो आपकी ना के पीछे मतलब बिल्कुल वो फील समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ना कहा है तो मतलब हमें इंसल्ट कर रही है, बल्कि वो ये समझ पाएंगे कि शायद कोई वजह होगी कि जिसकी वजह से आफरीन ने ना कहा। हम बाकी लिसनर्स के मैसेजेस भी लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक बहुत ही सुकून भरे सॉन्ग का जो कि आपके सामने आ रहा है। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो हमारी जिंदगी बदल सकता है एंड दैट इज नहीं या फिर

नो no. क्या आपने कभी गौर किया है, अक्सर हमें बिना किसी वजह के सर दर्द रहता है, हाँ, या फिर हमारे कंधों पर गर्दन में हमेशा एक तनाव, एक स्टिफनेस महसूस होती रहती है। हम रात को 8 घंटे सोते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं, मतलब स्पेशली जो लोग लंबा सो पाते हैं और सुबह उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई काम करके आए हैं। मतलब वो थकान, वो दर्द, वो महसूस ही होता रहता है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने दिल से पूछा है कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है? दिस इज बर्न आउट। यस, आपका जो शरीर है वो आपसे प्रोटेस्ट कर रहा है। ये आपके जिस्म की पुकार है उन बाउंड्रीज के लिए जो आपने कभी सेट ही नहीं की। जब हम अपने मन को ना कहने से रोकते हैं ना, तो हमारा शरीर उस बोझ को उठाने से इनकार कर देता है। कतर में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत वाइब्रेंट और खूबसूरत होती है, और एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर हमें मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि हर जगह हाजिर होना हमारी जिम्मेदारी है। हमें डर लगता है कि अगर हम नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे देखो कितना ज्यादा घमंड है, या ये तो हमेशा ना ही कहते हैं, या तो अपनी ही चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस कीमत पर हम हाँ कहेंगे जब हम एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे होते हैं? अपने सुकून की कीमत पर, अपनी नींद की कीमत पर? हम सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं, जबकि हमारा दिमाग घर के कामों में या अपनी थकान में उलझा होता है। हम वहां फिजिकली होते हैं पर मेंटली एब्सेंट होते हैं। तो ब्यूटीफुल लेडीज, ये एक तरह का धोखा है। ये उन लोगों के साथ भी धोखा है जिनसे आप मिलने गए हैं, और सबसे बड़ा धोखा आपके अपने साथ है। हाँ जी, मुझे फिल्म डियर जिंदगी का वो सीन बड़ा खूबसूरत लगता है, जब शाहरुख खान आलिया को बैठा कर समझा रहे होते हैं कि हम हमेशा मुश्किल रास्ता क्यों चुनते हैं, जरूरी है क्या? कभी कभी आसान रास्ता चुन लेना चाहिए, इट्स जस्ट ओके। हमने दिमाग में ये बैठा लिया है कि अच्छा इंसान वही है जो सबके लिए हर वक्त अवेलेबल हो। हमने ना कहने के रास्ते को मुश्किल बना दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सबको खुश रखना है। लेकिन ब्यूटीफुल लेडीज, सबको खुश रखना हमारा मकसद, हमारा गोल नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए एक हेल्दी जिंदगी जीना। कभी कभी घर पर रहकर आराम करना या किसी इनवाइट को प्यार से मना कर देना, वही आसान और सही रास्ता होता है। इट्स ओके टू चूज योर सेल्फ। इसका एक और बहुत कड़वा पहलू है, एक एस्पेक्ट है, जब हम बाहर वालों को या दूर के रिश्तेदारों को ना नहीं कह पाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, हम वो सारी थकान और जो चिड़चिड़ापन है वो भी लेकर उनके घर चले जाते हैं, और हम बाहर तो जी बिल्कुल कह देते हैं, लेकिन घर आकर वही गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। वो निकलता ही है, आप माने या ना माने। हम अपने पार्टनर्स के साथ कोल्ड बिहेवियर नहीं कर पाते हैं, हमको लगता है क्या हो रहा है। तो आपने सोचा क्यों होता है ये? क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, हमने अपना सारा पेशेंस बाहर वालों को प्लीज करने में खर्च कर दिया होता है। ना खुशी एक ऐसा जहर है जो हम खुद भी पी रहे होते हैं और उम्मीद कर रहे होते हैं कि उसका असर दूसरे पर ना हो, पर ये तो इम्पॉसिबल है कि दूसरे पर उसका असर होता ही है। जब आप किसी डर की वजह से हाँ कहते हैं ना, तो आपके अंदर उस इंसान के लिए नफरत पैदा हो जाती है। क्या आप ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो जहर पर टिके हो? नहीं ना। बाउंड्री वो दीवार नहीं है जो लोगों को दूर करती है, बाउंड्री वो ब्रिज है जो रिश्तों को सेहतमंद और मजबूत बनाता है। जब आप साफ तौर पर अपनी लिमिट बता देते हो ना, तो लोग आपकी कद्र करते हैं, और नहीं करते उस वक्त तो धीरे धीरे करना सीख जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप खाली प्याले से किसी को कुछ नहीं पिला सकते। सोचिए अगर आपका अपना कप खाली है और आपकी अपनी मेंटल हेल्थ डाउन है, तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या देंगे? सिर्फ थकान और गुस्सा? पहले अपना प्याला भरिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, और वो प्याला भरने का रास्ता सिर्फ एक ही है, ना कहना, नहीं कहना। यस, ये कहने की हिम्मत अपने अंदर लाइए, क्योंकि जब आप गलत चीजों को नो कहेंगे, तभी आप सही चीजों को यस कह पाएंगे। हाँ जी, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद हमारी बातों को हम कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 101।

वेलकम बैक. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं शो मेरी पहचान. हम पहुंच गए हैं आज के सफर के उस मोड़ पर जहां हमें आईने में खुद को देखना है. यस, क्या आपने कभी सोचा है कि उस हर हाँ के पीछे जो आपने डर या गिल्ट में कही है उसमें कौन सी औरत छुपी हुई है? मैं उसे कहती हूँ छुपी हुई मैं. वो असली आप जो शायद इस दिखावे और लोगों को खुश करने के बोझ के नीचे कहीं दब गई है. हमने इतने मास्क पहने हुए हैं ना कि हम भूल गए हैं कि हमारा असली चेहरा कैसा दिखता है. वो छुपी हुई मैं कौन है? वो शायद वो ब्यूटीफुल लेडी है जो सैटरडे की रात किसी शानदार पार्टी में जाने की बजाय अपने घर के सुकून में बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ना चाहती है. वो शायद वो प्रोफेशनल है जो 5 बजे अपना लैपटॉप बंद करके कॉर्निश पर जाकर ढलते सूरज को देखना चाहती है, ना कि किसी और का काम अपने सर लेकर रात तक ऑफिस में बैठना चाहती है. वो शायद वो माँ है जो एक दिन थक कर कहना चाहती है आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी, आज मुझे किचन से छुट्टी चाहिए, मुझे

सिर्फ थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए। ये रियलिटी है, लेकिन हम इस हकीकत को छुपा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपनी जरूरत बताई तो हम बुरे बन जाएंगे। याद रखिए, जब आप उन चीजों को ना कहना शुरू करते हैं जो आपकी एनर्जी निचोड़ लेती है, आपको ड्रेन कर देती है, तभी आप उस औरत से दोबारा मिलते हैं जिसके पास खुशी के लिए एनर्जी बची होती थी। हाँ, कब तक आप दूसरों की स्क्रिप्ट पर चलोगे? हाँ, स्टॉप बीइंग अ कैरेक्टर भाई, आप अपनी मूवी की हीरोइन हो। हाँ, आप दूसरों की फिल्म में सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए हो, लेकिन आप भूल गए हो कि आप खुद अपनी फिल्म की हीरोइन हो, अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर हो और अपनी ही फिल्म की डायरेक्टर हो। आप तय कीजिए कि आपकी जिंदगी की कहानी कैसी लिखी जानी चाहिए। आप तय कीजिए कि आपका वक्त और आपकी मोहब्बत किस पर खर्च होनी चाहिए। जब आप नो कहते हैं तो आप एक्चुअली अपनी सेल्फ वर्थ को यस कह देते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को दोबारा तराश रहे होते हैं और वो छुपी हुई मैं जो दब गई थी उसे बाहर आने की इजाजत मिल जाती है। उसे सांस लेने दीजिए। देखिए, जब वो खुश होगी ना तो आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अब चलिए कुछ टिप्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, और वो टिप्स क्या है जो आपकी लाइफ का गेम चेंज कर देंगी? नो इज अ फुल सेंटेंस। हाँ, हमें आदत है कि जब हम मना करते हैं ना तब हम 10 मिनट का लंबा बहाना एक्सक्यूज दे देते हैं कि भाई नो हम नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, एंड देन ला ला ला ला ला ऐसे करके हम लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं। सिर्फ इतना काफी है नो कहना, नहीं कहना, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी, यार याद करने के लिए शुक्रिया, बस आपको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। फिर 24 आवर बफर, अगर कोई आपसे कोई फेवर मांगे या कहे या कहीं बुलाए तो तुरंत हाँ मत कीजिए। कहिए मुझे अपना कैलेंडर चेक करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कल बताती हूँ। इससे आपको प्रेशर भी नहीं होगा और सोचने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा। एंड देन प्रायोरिटी चेक। यस, आपकी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसे सिर्फ उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपकी नो की कद्र करते हैं। आया समझ? अब एक मैसेज आया है हमें जुनैरा का। वो कहती है कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मना करती है या ना कहती है तो अक्सर लोग उन्हें लुक्स देते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हारा तो हमेशा का ही ये है। जस्ट इमेजिन, अगर ऐसी सिचुएशंस हमें सुनने को मिल रही है तो वो फ्रेंडशिप, वो सर्कल हमारे किस काम का? हमें मैसेज आया है सबा का। वो कह रही है कि अमिता, ना तो कहना जैसे मेरी डिक्शनरी से डिलीट ही हो गया है, क्योंकि चाहे वो मेरा घर हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे सोशल गैदरिंग हो, अगर मैंने ना कह दी तो ऐसा हो जाता है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि तुमको तो बड़ी ना की पड़ी है, तुम्हें बाकी लोगों की नहीं पड़ी। देखिए, मैं इन मैसेजेस के जरिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने अगर अपने आप की कद्र नहीं की तो दुनिया जो है ना वो तो तमाशे के लिए ही है, वो फिर आपकी कद्र कभी नहीं कर पाएगी। और अगर आपने आज अपने आप को लोगों को प्लीज करने में पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया तो आगे आपको ही पछतावा होगा। आई होप ये बात आप जरूर समझेंगी। तो लेडीज, इस हफ्ते का चैलेंज क्या है? मेरा चैलेंज आपके लिए ये है कि एक चीज को ना कहिए, कोई भी एक चीज को ना कहिए, ठीक है? चाहे वो कोई अनवांटेड कॉल हो या कोई एक्स्ट्रा काम हो या कोई ऐसी गैदरिंग हो जहां आपका दिल नहीं लग रहा, माफी मत मांगिए, बिल्कुल आराम से अपनी बात कहिए। देखिए, दुनिया खत्म नहीं होगी लेकिन आपका सुकून जरूर शुरू हो जाएगा। आइडेंटिफाई कीजिए उन एनर्जी ड्रेनर्स को जो आपको थका देते हैं और वहां बाउंड्री सेट कीजिए। एक मीनिंगफुल यस कई गिल्ट वाले यस से बेटर होता है, ठीक है? तो जाने से पहले अगले हफ्ते के बारे में भी मैं बता जाती हूँ कि अभी हमने बात करी कि ना कैसे कहना है, नहीं कैसे कहना है, अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बचाना है। अब अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि कंपैरिजन ट्रैप, ओफ, ये सोशल मीडिया के इस फिल्टर्स वाली दुनिया में जब हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी असलियत भूल जाते हैं ना और दुखी होने लगते हैं, तब इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं कहूंगी हमारी सारी सारी ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आप हमारा शो मेरी पहचान पसंद कर रही हैं और आपको हमारे टॉपिक्स भी पसंद आ रहे हैं तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए। 666-22-107 पर अपने मैसेजेस कीजिए और बताइए कि आप चाहती हैं कि इस तरह का टॉपिक भी हमारे शो पर आना चाहिए। तो आपके फीडबैक्स, आपके ओपिनियंस सर आंखों पर, और आप हमारे

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: मेत्राज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेत्राज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: भाई क्या आप जानते हैं कि स्पाइसी फूड भी समर में फायदेमंद होता है? ये बॉडी के स्वेट को जो है वो ज्यादा बढ़ाता है या बॉडी को स्वेट कराता है, जो कूलिंग प्रोसेस को एक्टिव करती है। इससे टेम्परेचर नेचुरली जो है वो रेगुलेट हो जाता है, और इसीलिए यही वजह है कि कुछ ममालिक में हम देखते हैं, जो गर्म ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं, यहाँ पर स्पाइसी फूड जो है वो कॉमन ही रहता है भाई पूरे टाइम और पूरे साल। इस वीडियो की घड़ी में 11:02।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: हाँ जी, वेलकम, अहलन व सहलन, खुश आमदीद एंड स्वागतम। बिल्कुल भाई, सन एंड साउंड पे इस वक्त सरवर मिर्जा आपके साथ हाजिर खिदमत है, जहां पर सन तो अपने पूरे रोब में है और साउंड जो है आपकी गूंजने वाली है पूरे दो घंटे के लिए। मेरा और आपका साथ रहने वाला है 11 बजे से सही 1 बजे तक, जहां होंगी बातें और खूब सारी अपडेट और भी बहुत कुछ। वैसे आज खासम खास दिन, और मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि काफ़ी लोग रोज़े से भी होंगे इंशाल्लाह ताला, और जो इस वक्त इस रोज़े से हैं और जो नहीं भी हैं, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करने वाले हैं और अल्लाह ताला सबको कामयाबी देने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो भाई यहाँ पर अब बातचीत होगी पूरे ही प्रोग्राम में। आपने क्या करना, आपने मेरे साथ ज्वाइन कर लेना है, और बहुत आसान से दो तरीके हैं। वो ये कि पहला तो आप मैसेज के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एंड द नंबर इज 666-2210-7666-22107 पे आप मैसेज भेज सकते हैं, अपने वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, हाल अहवाल बता सकते हैं। भाई कुछ खासम खास नया नया दिन है, तो वो भी नया दिन से मेरा मतलब कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और वहीं कॉल करके अगर आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और मुझसे कनेक्ट होना है, मेरा हाल अहवाल पूछना है, अपना हाल अहवाल बताना है, तो नंबर है 4434377-443-4377। तो चलिए भाई, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कह रहा है मौसम।
0: वेदर का हाल 107 दिनाल,
2: और बहुत ही बेहतरीन हो रखा है साहब मौसम। कल तो खूब मजे आए, सभी ने ह्यूमिडिटी का जो है पूरा पूरा मजा लिया होगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। फिलहाल की बात करूं तो साहब 39 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है, दोहा की बात कर रहा हूं मैं, लिखित बात कर रहा हूं, यहां पे 39 है, बट यस फील्स लाइक इज नाउ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे पहुंच गया है कि किस तरीके से हम महसूस को मौसम को महसूस कर रहे हैं, और कुछ पता नहीं है हमारा कि हम मौसम को भी महसूस हो सकते हैं। तो साहब ह्यूमिडिटी इस वक्त 36% पर है, हवाओं की बात करें तो 10 किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। आइए अब जानते हैं कि QMD ने क्या कहा है इस हवाले से। तो जनाब, कतर के मुख्तलिफ इलाकों में ह्यूमिडिटी, बिल्कुल नमी जो है वो बढ़ती हुई है, और इसके साथ साथ धुंध और हल्की धुंध के इम्कान जो है अब बढ़ गए हैं। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि साहब अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है, इसमें इजाफा होगा, और इसके सबब आज की अगर हम बात करें, बुध की सुबह के लिए भी खासतौर पर बताया गया था, फजर के वक्त के कुछ इलाकों में हल्की धुंध और मिस्ट और घनी धुंध या फॉग का इम्कान भी रहा। रोजाना जो मौसम की अपडेट होती है उसके मुताबिक अंदरूनी इलाके में शुरुआत के टाइम में तो धुंध और फॉग की वजह से कुछ मकामात पर जो हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी है उसमें कमी रही, और दिन के वक्त अब अगर बात करें तो मौसम गर्म से इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है, जबकि कुछ औकात में गर्द आलूद या धुंधला या हेजी जिसको हम कहते हैं वो भी रहने के इम्कान है। तो भाई अगर ऐसा कुछ मसला पेश आता है, खैर दोपहर में तो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही सुबह या शाम या देर रात में आपको इस कंडीशन से सामना हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। वहीं अगर समंदरी या भारी इलाकों की बात करें तो इसमें भी विजिबिलिटी कम रहने के तवक्का है, और वहाँ मिस्ट और फॉग

0: की सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता धुंधला मौसम भी तब्दील हो सकता है। केएमडी के मुताबिक रात देर तक मौसम में जो ह्यूमिडिटी है वो रहने वाली है, और जबकि कुछ मकामात पर दोबारा मिस्ट और फॉग जो है उसमें ये चीज तब्दील हो सकती है। टेम्परेचर्स हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ, तो मैंने सोचा वो शेयर कर लूँ जिसमें मुझे बड़ा मैं मुतमईन भी हुआ देखते हुए दूसरे शहरों के टेम्परेचर। तो साहब यहाँ पे अगर हम बात करें बूसबरा की, तो यहाँ पे रहा 44 डिग्री, कल की बात हो रही है ये, और आज की अगर बात करें तो आज भी 44 डिग्री का ही बताया जा रहा है। दुखान और अलखोर में 41 डिग्री सेल्सियस के इम्कान है, अलरोएस में 40 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, वहीं दोहा में, अभी दोहा वाले अगर मेरे साथ जुड़े हुए तो वो सुनिए, तो साहब टेम्परेचर 29 से 39 तक रहने के इम्कान है, जो इस वक्त 39 हो रहा है और ये सबसे कम है, ये दोहा में इस वक्त टेम्परेचर जो है सबसे कम है दूसरे शहर जो मैंने बताए उनको मद्देनजर रखते हुए। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह ताला बाकी जगहों पे भी जो हमारे भाई हैं और सब लोग रह रहे हैं, अल्लाह ताला सबके साथ खैर का मामला करे। तो ख्वातीन हज़रात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज रात और कल सुबह के औकात में जो ह्यूमिडिटी है कुछ इलाकों में बढ़ने का बताया है, और अब ये आगे भी बढ़ेगी ही, और वहीं उसी को मद्देनजर रखते हुए धुंध और हल्की धुंध बनने की जो बात है वो बताई गई है। मोटरिस्ट को मशवरा दिया गया है कि सुबह के औकात में स्पेशली गाड़ी एहतियात से चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी मुतासर होती है जब ये सारी चीज़ें होती हैं, और दिन के वक्त में मौसम गर्म से इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है। तो भाई पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, और जितनी भी चीज़ें हमें मालूम हैं गर्मी से बचने की उनका ज़रा सा ख्याल रखिए। तो साहब ये था कुछ मौसम का पूरा हाल कल का और अभी तक का, और मैंने कोशिश तो करी कि बता दूं ताकि मुतमईन भी हो जाएं और तैयार भी रहें आप सबके सब। फिलहाल आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। शुरुआत करते हैं बेहतरीन ट्रैक के साथ, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना आ रहा है। काफी दिनों से आपने गाना सुना भी नहीं होगा, मगर आज सुनेंगे क्योंकि ओहो बहुत दिनों बाद सुना भाई, तो बड़ा ही फिल्टर्ड सॉन्ग है। क्या हाल है दोहा, कैसे हैं सब, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको पता ही है 3343-443-77-666-22107 पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और बताइए कि कैसे हैं आप लोग। फिलहाल आपके लिए पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिसेस खिलाड़ी चाहिए,
1: गाड़ी चाहिए,
0: आईवा
1: जीवन के सफर में सवारी चाहिए।
0: एंजॉय कीजिए ट्रैक इस वक्त।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।

हाँ जी सलाम है, कुणाल गंजवाला और वसुंधरा दास की आवाज में गाना सलाम है। धूम मूवी की याद दिला दी भाई।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: इंटरनेशनल डे टुडे।
2: और वो क्या है साहब, वो खासम खास दिन है आज का, अब साइकिलिंग डे। देखिए, अब साइकिलिंग और रीसाइकिलिंग डे में फर्क है और इन दोनों चीजों में भी फर्क है। अब साइकिलिंग डे जो है हर साल 24 जून को मनाया जाता है और इस दिन का मकसद लोगों को ये पैगाम देना है कि पुरानी इस्तेमाल शुदा या बेकार समझी जाने वाली चीजें जो हैं उनको फेंकने के बजाय उन्हें नई और बेहतर शक्ल देकर दोबारा इस्तेमाल किया जाए। अब साइकिलिंग से ना सिर्फ कचरे में कमी आती है बल्कि जो माहौलियाती तहफ्फुज है उसमें भी ज़्यादा कहना चाहिए बेहतरी होती है। अब साइकिलिंग का मतलब जो है वो ये है कि किसी पुरानी चीज़ को तब्दील करके उसकी कीमत और इस्तेमाल को बढ़ाना। मिसाल के तौर पर पुराने कपड़े है ना, उनसे शॉपिंग बैग बना लेना, शीशे की बोतलों को कुछ लैंप वगैरह में तब्दील कर देना, हम देखते हैं यूजुअली डेकोरेशन के तौर पर बनाई जाती हैं। पुराने फर्नीचर को नए डिज़ाइन के साथ दोबारा इस्तेमाल कर लेना, भाई ये सारी चीज़ें हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी तब्दीलियां भी माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हर एक फर्द को अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब साइकिलिंग की आदत अपना लिया जाए या दे दी जाए या कह दी जाए कि भैया अपना लो, तो सामान की मकदार जो है वो कम हो सकती है और वैसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब ये ही है अब साइकिलिंग का मसला। तो मैंने सोचा इसी के ऊपर छोटी मोटी बात कर ली जाए। आज वैसे भी गर्मी भी ज़्यादा है, लोग रोज़े से भी होंगे, तो आपने कभी कोई चीज़ ऐसी है जो रिसाइकिल करी है अपनी ज़िंदगी में, या आपके पास ऐसा कोई घर में है जो ज़रूर इसके ऊपर काम करता है। देखिए, हर घर में कोई ना कोई होता ज़रूर है और वो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको तब्दील कर लेता है। या ख़ुद भी आपको कभी शौक़ रहा है, कुछ ऐसा शौक़ रहा है कारपेंट्री वगैरह का है ना, या कागज़ से कुछ चीज़ें बना देने का, या घर की चीज़ें जो हैं उनको तब्दील कर देने का, तो कोई ना कोई तो घर में एक ना एक ऐसा होता है। तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, हमारे साथ अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं हमें 4434377 पे। और वहीं आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 666221107 पर। आइए, यहाँ पर कोई हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
2: हम हैं आपके साथ
3: है तो
2: शहजादा भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से।
2: कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
3: अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, गर्मी तो बढ़ गई है। और
2: कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई है? अच्छा अभी आप कहाँ पे हैं ये बताइए।
3: अभी मैं अबू नखला में हूँ।
2: अच्छा, दोहा में सबसे कम टेम्परेचर है आपको बताऊं मैं दूसरी जगहों के मुकाबले में।
3: अच्छा
2: जी, और पूरे 3-4 degrees का फर्क है भाई, ऑन पेपर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी जगहों में तो भयंकर हो रखा है दोहा के मुकाबले में देखा जाए। वैसे हाँ, फील्स लाइक जो है दोहा में इस वक्त 45 degrees है, फील्स लाइक की बात कर रहा हूँ मैं, तो दूसरी जगह शायद और भी ज्यादा बढ़ा हुआ हो, मुझे नहीं अंदाजा है, बट ह्यूमिडिटी जो है वह बढ़ गई है। तो भाई शहजादा सलीम साहब, पानी वगैरह पीते रहिए, अपने साथ बॉटल वगैरह लेके निकलिए जब आप बाहर के काम पे होते हैं।
3: जी, गाड़ी में रहती है पानी की बोतल
2: रहती है गाड़ी में, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। शहजादा भाई, आज अब साइकिलिंग डे है, रीसाइकिलिंग डे है, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं पुरानी चीजों को नई चीजों में तब्दील कर देना, या पुराना जो भी घर में फर्नीचर वगैरह है, बोतल वगैरह है, बर्तन वगैरह है, कपड़े वगैरह है, उनको नए अंदाज में इस्तेमाल करके पहन लेना। ऐसी कोई कला है या ऐसा कुछ कभी किया है आपने? आपके घर वर में ऐसा कोई मौजूद है शख्स जो ऐसा काम करता हो?
3: जी, ऐसा तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेला।
2: अकेले आप ही हैं? कारपेंटरी का शौक है आपको? कभी करी है कारपेंटरी? करी है कभी?
3: मेरी जो हॉबी, मेरा जो प्रोफेशन, जो गेम था ना, क्रिकेट था ना, जब मेरे पास बैट नहीं था ना, तो मैं फिर वो लकड़ी को ना ऐसे ऊपर से ना टी बना देता था, टी बनाकर, हाँ उसी से मतलब है ना गुजारा हो जाता था।
2: वाह।

0: क्या क्या क्रिएशन है भाई।
1: हाँ, और स्टैम्प वगैरह के भी ना ऐसी लकड़ियां थे ना, इधर उधर से साइड से नीचे से खुरच खुरच के एक ना कुल्फी टाइप बना देते थे, ऐसे वो स्टैम्प हो जाए और विकेट बन जाए बाकायदा।
0: वाह वाह वाह शहजादा साहब, क्या कहने आपके, कोई चीज आपने छोड़ी नहीं जिसको इस्तेमाल कर लिया जाए। वैसे तो हम तो जब हम भी ऐसा नहीं है, सभी खेले होंगे ईंटों के स्टंप बना के बहुत बार खेला गया शुरू में, तो वो भी ये किया थे। बहरहाल तो कारपेंटरी वगैरह का भी काफी लोगों को शौक होता है, मैंने देखा घर के अंदर, या बिजली के तार वगैरह जो है उनसे भी बहुत कुछ बना देते हैं भाई। बॉटलों से तो, प्लास्टिक की चीजों से तो खैर बहुत कुछ बन ही जाता है बहरहाल। जी वाह,
1: एक मिनट।
0: तो साहब आप भी अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसा कोई आपके पास मौजूद है तो आप बता सकते हैं कभी आपने ऐसा कुछ किया है। कारपेंटरी पे मेरा ज्यादा जोर है, अगर कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा। शहजादा भाई बिजी है गालबन, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात और बात होती है उनसे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और यहाँ कोई और भी हमारे साथ जुड़ गया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कौन है हमारे साथ?
2: भाई आमिर बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी, पहली बार मैंने कॉल किया और इंशाल्लाह लग गई मेरी कॉल
0: माशाल्लाह। क्या नाम बताया भाई ने? अहमद
2: आबिद।
0: आबिद भाई क्या बात है भाई, आबिद भाई खैरियत से हैं?
2: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा अभी तक का दिन आबिद भाई?
2: अभी अच्छा गुजरा, बस मैं कतर के अंदर आया हूँ, मुझे 4-5 महीने हुए।
0: अच्छा अभी आए हैं? नए नए ताजे ताजे एकदम।
2: आपसे आपसे बात करके बहुत खुशी, बहुत मजा आया।
0: अरे भाई मुझे भी बड़ी खुशी हुई आबिद भाई, और बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से ताल्लुक है आपका?
2: इंडिया से है भाई।
0: इंडिया में कहाँ से?
2: इंडिया में मुजफ्फरनगर यूपी 12।
0: कहाँ पे? यूपी
2: यूपी
0: 12 मुजफ्फरनगर यूपी 12। क्या बात है भाई आबिद भाई, एलन वसैलन। और मैं आपको बता दूं कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह, सबसे सेफेस्ट जगह, और सबसे प्यार और मोहब्बत करने वाली जगह में आपका जो है इस वक्त आपकी आमद हो गई है, और साथम साथ इस जगह में भी सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे इस वक्त आप FM 107 पे हमारे साथ जुड़ गए और इसकी फैमिली का हिस्सा बन गए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, और जो ख्वाब जो कहना चाहिए ख्यालात आप लेकर आए, अल्लाह ताला साथ खैरियत के उनको पूरा भी करे, यही दुआएं हमारी। और एक वादा भी लेना है कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहना है आपको।
2: इंशाल्लाह जुड़े रहूंगा सर, मैं आपको मैंने 2 दिन से फोन मिला रहा था सर, आज लगा 2 दिन, आज बहुत मुझे बहुत खुशी, जिस काम के लिए मैं इंडिया से आया हूँ अल्लाह मेरा वो काम मुकम्मल करवा दे, अल्लाह घर से रखे।
0: जरूर
2: 4 महीने बहुत अच्छा है, काम भी ठीक है।
0: जरूर अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको कामयाबी दे, आपके रिस्क में बरकत करे, यही हमारी दुआएं। हमारे साथ जुड़े भी रहिए, जब आप इंटरनेट पे जाएंगे FM 107 लिखेंगे FM 107 तो फिर आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और गाड़ी के अलावा भी आप मोबाइल से भी हमें सुन सकते हैं, ठीक है? ये काम आज ही करिएगा। ओके आबिद भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे आबिद भाई हमारे साथ, और नई नई हुई है इनकी आमद, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई नया आता है, ऐसा लगता है कोई मेहमान आ गया है, और भैया हमारी जिम्मेदारी है उनको सारी चीजें बताने की, कहने सुनने की। या कोई और हमारे साथ जुड़ गया, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि
0: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि नसीम भाई आ गए, ऐसे ही है।
3: नहीं बोलूंगा,
0: बोलूंगा। क्या हाल है नसीम भाई, और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
0: रब्बिल आलमीन। नसीम भाई आज खासम खास दिन, ये बातचीत हो रही है कि कोई पुरानी चीज को कभी तब्दील करके दोबारा से यूज करने की कोशिश करिए, रिसाइकिल जिसको कहते हैं या अपसाइकिल जिसको कहते हैं, वैसे तो अपसाइकिल डे है आज, या घर में कोई ऐसा है, या खुद आपको कुछ शौक रहा है ऐसा कोई कारपेंट्री का, या घर में किसी तरीके से और दूसरी चीजें बना देने का?
3: कुछ करता है
0: यार, कारपेंटर्स जो है ना वो अपने आप में भाई बहुत ही बड़ी कला है भाई।

0: यकीन जानिए
1: तो नहीं,
0: नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो आपने उसमें कुछ ना कुछ किया, तो फिर आपने कुछ तो किया, कहने का मतलब ये है कि आपने बोर्ड से कुछ किया, कोई भी काम किया तो आप कुछ तो किया कारपेंटरी में आपने, मगर जो खास तौर पे होते हैं बड़ी ही कला है भाई, एकदम कहते हैं ना कि तराश देना किसी भी चीज को, बड़ी खूबसूरत कला है ये भी, एक
1: अलग ही लेवल
0: है, क्या बात है भाई। तो ऐसा कभी कुछ बनाया है, कुछ करा है, कभी कुछ हुआ है लाइफ में?
1: बस यही है, बहुत शोर, कभी जाली वाली खिड़की में लगा रहा हूँ तो जाली काट के लगा दिया, हाँ। पेंट नहीं है तो पेंट कर दिया।
0: वाह वाह वाह वाह, मैं यही आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा था कि भाई पेंट तो अपनी जिंदगी में जरूर कभी ना कभी किसी ने किया ही है, और पुरानी चीज को नया करने की कोशिश करी है, और वो खाली पेंटर बाबू ही नहीं, हमारे हम सबके अंदर एक पेंटर छुपा है भाई। मैंने खूब पेंट और कलाई की है, ऐसी बात नहीं है, तो ये तो हम लोग करते ही करते हैं, क्या बात है यार, क्या बात है। और कुछ शेयर करना चाहते हैं नसीम भाई, कुछ शायरी है आज के लिए क्या?
1: तो नहीं, लेकिन
0: अच्छा था, अरे बिल्कुल, हाँ इरशाद इरशाद। वाह, ए गम अब तुमसे मुझे तकलीफ नहीं,
1: क्योंकि मैं तुझे अब रहमत समझने लगा,
0: क्योंकि मैं तुझे अब रहमत समझने लगा हूँ। ओए होए होए होए होए होए, इसमें बड़े अच्छे अच्छे शेर हैं, एक आध मुझे भी याद आ गया तो वो भी समाज फरमा लिए कि गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में थकन न पाई तो बेचारे थक गए। क्या कहते हैं नसीम भाई? चलिए साहब, नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ख्याल रखिए और पानी वगैरह पीते रहिए अगर आप बाहर हैं, इस वक्त गर्मी ज्यादा ही है भाई, है ना? ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साहब, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में थकन न पाई तो बेचारे थक गए, गए हाय हाय हाय हाय, उनको ही गमों को ही बेचारा कर दिया, इससे ज्यादा बताइए और क्या रिसाइकलिंग होगी।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक
2: हूँ, नवाब रामपुर।
0: क्या बात है, ये भी हमारी फैमिली का नया नया हिस्सा है नजाकत भाई, नदीम भाई, क्या बात है, आपका तो नाम ही इतना प्यारा और फिर आपने नजाकत और लगा लिया उसमें,
2: तो
0: क्या बात है यार, क्या बात है, और आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप बताइए कि कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
2: अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं।
0: अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए भाई अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला करे सभी के साथ और चैन और सुकून में रखे। क्या मशगूलियत रही आज आपकी सुबह से अभी तक?
2: मैं मशगूलियत यही रही कि हम आपके पास में थे, वहाँ पर कोई बिताया टेलीविजन के पास।
0: अच्छा,
2: उसके बाद फिर वहाँ से निकले तो अभी कतर यूनिवर्सिटी में है। अच्छा। लेकिन अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 39 है।
0: 13, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोहा के आसपास और आप रैयान की तरफ हैं गालबन इस वक्त, सही?
2: नहीं नहीं रैयान नहीं,
0: कतर यूनिवर्सिटी में। ओके ओके ओके माय बैड, ओके ओके ओके ओके, चलिए अल्लाह ताला भाई खैर आफियत का मामला करे। तो नदीम नजाकत साहब, कभी कुछ ऐसा किया है घर में पुरानी चीज को नया, पेंट वगैरह कारपेंटरी वगैरह या बिजली वगैरह से है?
2: अरे अपने कौन से दिल के तार छेड़,
0: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या क्या क्या शौक रखते हैं?
2: मुझे सरो भाई, मैं माशाल्लाह हमारा घर काफी बड़ा था, बहुत खुला हुआ था, तो मुझे खरगोश पालना, कबूतर पालना, इन मुर्गियां पालना, इस चीज का बहुत शौक था। तो अक्सर मैं कभी कबूतरों की धावली बना देता था, कई काबक बना लेता था, या कभी मुर्गियों की, और कभी कभी ऐसा होता था कि ज्यादा हमारे यहाँ उस टाइम का माहौल आप समझ सकते हैं कैसी थी,
0: सही सही सही, सही।
2: तो मम्मी कहती थी कि भैया कुछ पट्टे वट्टे ले आओ और ऐसा करेंगे कि किचन बना लेते हैं, चौके वगैरह खड़ा करके और फिर पटले लगा लेंगे बल्ली।
0: समझा यार, क्या बात है यार, और जब घर वालों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो इसमें और भी ज्यादा मजा आता है, और फिर घर वाले जो शाबाशी देते हैं,
2: आप यकीन मानिए कि सुबह भाई
0: जी,
2: ये अब भी मैं जाता हूँ।
0: नदीम भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको, या आप जरूर कॉल बैक कर लीजिएगा क्योंकि अजान का वक्त

0: बदलती है एक अच्छी नियत से और हर अच्छी नियत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूर हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो एफएम 107 पर।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ एफएम 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 एफएम 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
5: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
6: हाँ जी, वेलकम बैक, हेलन व सहलन, खुशांदीद स्वागतम, और बिल्कुल सन एंड साउंड पे इस वक्त साउंड आपकी, और यहाँ पर कोई और हमारे साथ जुड़ गया है, आइए उनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं उनका हाल। हेलो, सलाम अलैकुम।
7: वालेकुम सलाम, हम वही हैं रामपुर के नवाब।
6: नदीम नजाकत साहब हमारे साथ, क्या बात है नदीम भाई। तो नदीम भाई, क्या क्या बना दिया और क्या क्या घर में जो है?
7: बहुत कुछ
6: बना दिया। क्या कहना चाहते हो? और आज जैसे कि मैंने बताया कि आज अब साइकिलिंग डे है या रीसाइकिलिंग डे के हवाले से आप क्या शेयर करना चाहते हैं और क्या क्या घर में? भाई देखिए, बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो कारपेंटरी में, पेंटिंग में है ना, और कुछ ना कुछ कहना चाहिए आर्ट्स में उनका दिमाग इतना चलता है, बाहर बैठ के मोहल्ले का बगीचा ही सही कर देते हैं, नाली वगैरह टूट गई है उसी को सही कर देते हैं। यार मैं इसमें एक बात बताऊं, मेरे खालू मरहूम अल्लाह ताला उनकी फरत फरमाए, मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूं, क्योंकि ये खिदमत खल्क की चीज है भाई, सिर्फ अपने अपने घर के लिए ही नहीं, उनकी कॉलोनी थी, ओके, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स में रहते थे वो, बीच वो, और वो गोल कॉलोनी थी, मतलब बीच में मैदान था उसमें पूरे बच्चों को खेलने के लिए। यकीन जाने भाई, उन्होंने उसके अंदर क्या क्या नहीं बना दिया सिस्टम, घास से लेके, ग्राउंड से लेके, तालाब से लेके, और बदखें और बेलें और फूल और जने क्या क्या, सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी, मतलब जब तक वो वहां रहे तकरीबन 30-35 साल उन्होंने उसके अंदर अपने लगा दिए, पूरे दिन नमाजों के अलावा उनका यही काम था, और उसमें पूरा मोहल्ला क्या बार बार से लोग आज तक आके और उसमें कहते हैं उसका फायदा उठाते हैं।
7: तो क्या खूबसूरत बात। देखिए, घर के कामों में कोई भी गैर जिम्मेदाराना

0: नहीं ये देना चाहिए, क्योंकि मैंने माशाल्लाह घर बनवाया, तो आप यकीन मानिए कि मैं भी उनके राज मजदूरों के साथ लगा रहता
1: वाह,
0: था।
1: वाह,
0: तो
1: वाह, वाह, वाह। क्योंकि उसमें जो सुकून मिलेगा भाई इंशाल्लाह सोने में, कि अपने हाथों से ईंटें लगाई हुई। ओए ओए ओए ओए ओए,
0: इसमें मेरी बीवी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बच्चे भी माशाल्लाह मेरे साथ लगे रहते थे। और दूसरे मैं तो उस पे कलई वगैरह नहीं हुई थी, तो व्हाइट सीमेंट किया, तो वो भी यानी कि मैंने व्हाइट सीमेंट किया। और अभी मैं तो इधर था सऊदी में, तो घर में कुछ काम वाम हो रहा था, तो मेरी इसमें मेरी वाइफ का बहुत यानी कि रहा कि उन्होंने सारा काम खुद कराया और साथ में लगी रही। अभी बच्चे अगर साफ कर देते हैं, ब्रश नहीं खड़ी हो जाती, मैंने क्या करूँ, बोली कि वो पेंट लकीरें कर दी थी उन्होंने, वो सही कर रही।
1: क्या बात है भाई, अल्लाह ताला खुश रखे, क्या बात है। और यही ऐसी चीजें हैं ना जो मिलके, जब आप अब आजकल के लोगों को और आजकल की जनरेशन को क्या ही पता है ये सारी चीजें भाई, क्या ही पता है। हमारी अम्मा तो पूरे घर के गमले जो हैं वो कलई करवाया करती थी मुझसे, पूरे घर के गमले, और इतना नागवार गुजरता था वो पूरे, एक तो खुद भी लाल हो जाते थे, अगर था अम्मा तुम्हारे लाल है हमें वैसे लाल क्यों करवा रही हो।
0: नहीं, मुझे तो वैसे पेड़ों का भी बहुत शौक है। अच्छा। मैं अपने घर का काम मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं जब जाता हूँ तो पेंडिंग में रखा रहता है कि आएंगे तो
1: ये नदीम आएंगे तो उसके अंदर
0: बाथरूम का काम, और क्या कहते हैं कहीं से पानी मुझे टपकता हुआ पानी भाई, बहुत
1: हाँ, प्लम्बिंग में बहुत अच्छे होते हैं यार कुछ लोग, मतलब ऐसा प्रोफेशन नहीं कह रहा मैं वैसे भी, और मैं बता दूं मैं भी प्लम्बिंग में बहुत अच्छा हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। पानी वानी शावर वगैरह सिस्टम ये वो सब खुद आपका भाई खुद ही हैंडल कर लेता पूरा, ऐसी बात नहीं है।
0: बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि अब आप बताइए, मैंने डकिंग का काम तो यही चलता है, आपने देखा होगा।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप यकीन मानिए लिंटर कम से कम 5 इंची का लिंटर तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है।
1: अरे भाई तोड़ के बहुत बहुत बिल्कुल, क्या बात है यार, क्या बात है। नजाकत खाली नाम में ही लगा हुआ है, वैसे हैं पूरे मुकेम्बो नदीम मुकेम्बो। क्या बात है भाई नदीम भाई,
0: बहुत शुक्रिया। करूंगा मैं
1: जी,
0: एक शेर है बहुत
1: इरशाद
0: जो है पूछते के कहते हैं कि सुबह होती है और शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम
1: होती है। बिल्कुल सही भाई, और वो जितना अपनों के साथ और घर के कामों में लग जाए उतनी ही ज्यादा अच्छी तमाम होगी, मेरा तो ये मानना है। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो साहब ये थे नदीम नजाकत साहब, बिल्कुल नजाकत नहीं है इनके अंदर, और माशाल्लाह खुद पूरे मुकेम्बो हैं, सारे काम खुद हैंडल कर रहे हैं घर के। तो भाई आप भी बता सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या घर का काम कर रहा है, जैसे कि मैं प्लम्बिंग में बेहतरीन सेट है आपका भाई, सारी चीजें राइट कर देता है, और उसके बाद पेंटिंग जितनी जाओ भाई से करवा लो। कारपेंटरी का शौक है, कभी कर नहीं पाए, मगर देखना और समझना बड़ा अच्छा लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, हजरत कैसे हैं, ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ? हमजा
2: सर, मैं तो कहता हूँ आप एक ना शो के अंदर ही ना एक क्या कहते हैं उसको, जिस तरह आप बोलते ना कि अब इस प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, आप ये सेगमेंट भी रख लें। हाँ सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट भी रख लें, पहचान कौन।
1: ओ हमजा खुखर साहब,
2: आप तो वैसे सूट करेगा ये। आपको हर कोई आके चले कोई कोई नाम बताता है, वैसे आके देखते भाई बैठाने में कौन है।
1: यार कई बार मिस भी हो जाता है और अच्छा नहीं लगता, हर किसी को तवक्का होती है कि भाई मैं नाम पहचान लूं, मगर ऐसी बात नहीं है, जरा सा सुनने के बाद मैं पहचान ही जाता हूँ। बहरहाल हमजा क्या हाल चाल है और कैसा रहा अभी तक का दिन, कैसा गुजरा?
2: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा एहसान है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला
2: इतना शुक्र अदा करे, इतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, अल्लाह ताला हम सबको ज़ुमान में रखे। तो हमजा क्या क्या हो जाता है घर में, क्या क्या आपको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या आप खुद क्या करना पसंद करते हैं?
2: आप एक बात बताओ, आप पहले एक बात बताओ।
1: हाँ पूछो।
2: आप ये टॉपिक कहाँ से ढूंढ के लाते हो
1: यार? बस ऐसी यार, ये तो अपने रोजमर्रा वाली जो चीजें है बस वही जहन में आ जाती है हमजा भाई। और
2: मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है भाई बैठ के ना स्पेशली 1 आवर 2 आवर अपना बचपन याद करते हैं। यार
1: देखो बचपना तो हर किसी के अंदर होना चाहिए, बचपना तो सबके अंदर रहना ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ भाई, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। पूरी जिंदगी आप जितने बुजुर्ग हो जाए, जितने बड़े हो जाए, बचपना अपने अंदर जरूर जरूर रखिए। तो हमदा क्या क्या ऐसी

0: चीजें जो घर पे करके आए हो या घर पे इंतजार हो रहा है जब हम तो आएंगे उससे करवाएंगे?
1: भाई हम लड़के तो वैसे ही, आपको पता है कि अर्पण मॉल है,
0: ऑलराउंडर
1: ये खराब है ये भी कर लिया. वो आपने जैसे तो स्टार्ट किया ना किस्सा, तो मुझे वो घर की एक बात याद है कि हम लोग ना अक्सर ना क्या करते हैं, टीवी के रिमोट वगैरह जो थे ना इस तरह की चीजें होंगी, घड़ी खराब हो गई तो उनको ना खोल के बैठ जाना के मैकेनिज्म पूरा करना अपना के, हाँ भाई हाँ, ये यार जोड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा.
0: अपना अपना शौक होता है. मेरा फूफीजाद भाई है, उसका नाम भी अदनान है, उसको भाई ये बिजली के काम का ना इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल की चीजों का बड़ा शौक है उसको भाई, इलेक्ट्रिशियन वो अपने आप में.
1: मजे की बात भाई, मजे की बात, उस वक्त पता तो होता नहीं था तो वो यकीनन चीज खराब ही होनी होती और उसके बाद घर वालों से होती थी ना. अच्छा,
0: मगर इसके अंदर एक बात और बता, वो जब तक हम उसकी कारस्तानी कर रहे होते थे, चीज उतारना अपने सामने रखना उसको खोलना, जब तक घर वालों को बड़ी उम्मीद होती है और कुछ कहते नहीं है, जब वो बंद करने का उसका उसका जब बंद करने का टाइम आता है और दोबारा सही मतलब हुई या नहीं हुई, वहां पे फिर सलाह आती थी. हमें तो पता ही था, हम तो कह ही रहे थे कि नहीं कर सकता भैया, और अगर सही कर दो तो फिर कोई ज्यादा उसमें मतलब ठीक है ओके हम भी कर लेते, तुमने कर दिया तो क्या बड़ी बात है. तो ये वाला रिएक्शन होता है, काफी बार ऐसा हुआ है यार घर में. तो कभी कोई ऐसी चीज अंदर जो याद पड़ती है,
1: घर के बड़े बच्चे स्पेशल जेड़े भाई, जो घर के बड़े बच्चे होते हैं जिनकी हाइट अच्छी होती है तो वो स्पेशल काम आते हैं भाई,
0: बल्ब बदलने के
1: वीकेंड के ऊपर,
0: बल्ब बदलने के, जाले साफ करने के और पंखे साफ करने के,
1: स्पेशली पंखे साफ करने के भाई.
0: हाँ ये तो होता है यार, यूजुअली ये तो होता है जिसकी हाइट अच्छी है कि भैया बल्ब फ्यूज हो गया बदल दो, या पंखे साफ कर दो, या मकड़ी के जाले भी, अब तो पता नहीं होते है नहीं होते हमने यहाँ, ये सारी चीजें लंबी हाइट वालों के लिए होती ही होती है.
1: अब तो भाई वो हो गए, वो क्या नाम है, ऐसे झाड़ू ऐसे आ गए कि वो भाई डंडा
0: लगा हुआ बिल्कुल,
1: किसी को कहने का कुछ नहीं
0: है यार. ये भी क्या,
1: आपकी बातों से एक बचपन का किस्सा और भी याद आया. हम लोग लड़के इकट्ठे सारे हुए हुए थे तो हमें ट्यूबलाइट्स मिली, ट्यूबलाइट्स चलती थी पहले, अब तो मैंने बहुत कम देखी है. तो ना वो कांच वाली ट्यूबलाइट्स थी, हमें मिली तकरीबन
0: असली वो थी कांच वाली. ओके ओके, क्योंकि ट्यूबलाइट अभी भी आती है, ट्यूबलाइट तो अभी भी आती है एलईडी वाली, मगर वो जो चोक और स्टार्टर वाली होती है पुरानी, वो है असली.
1: हाँ हाँ हाँ वो वाली वो वाली भाई,
0: चोक और स्टार्टर वाली यार.
1: अच्छा वो हमें ना 12 से 15 मिली भाई. अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका करना क्या,
0: करना
1: है
0: क्या,
1: हम लोग सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, सारे इकट्ठे बैठे दोस्त यार, मशवरा किया जी हम लोग लेकर आएंगे वहां से सब्जी, जिसको वो जो पतंग उड़ाने के लिए यूज नहीं है मांझा,
0: कांच मिलाते हैं. ओ हो हो हो, तो खुद माजा बना दिया
1: भाई. हमने हमने वो क्रिएशन पूरी की भाई.
0: ओ माई गॉड,
1: 3 दिन का प्रोसेस पूरा किया हमने.
0: बिल्कुल आई नो यार,
1: हमने स्पेशली जगह सिलेक्ट की.
0: ओए ओए, कमाल कर दिया यार.
1: मजे की बात, हम लोग 4 लड़के थे, 4 से 5 लड़के थे और हम 4-5 ने मजा किया उससे.
0: वाह,
1: और सबका दिल राजी हुआ भाई.
0: यार ये आप लोगों को बता दूं जो इस वक्त सुन रहे हैं, पता नहीं हमारी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मगर हमदा ने मांझा बना दिया भाई. पतंग जिससे उड़ाते हैं ना, जो सद्दी से आगे लगाते हैं, जिससे पेच काटते हैं, वो वाली बात हो रही है. और इसका प्रोसेस अगर आप देखेंगे जाकर वीडियो चैनल्स वगैरह पे जो स्टेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आप जब ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे जाकर आप देखेंगे तो आप समझेंगे ये कितना कारीगरी का काम करिया है हमदा भाई. जबरदस्त यार
1: भाई. और सबसे मजे की बात, उसको कलर देने के लिए हमने पता क्या किया था?
0: हाँ,
1: फूड कलर यूज किया भाई.
0: बहुत बड़ा काम कर दिया यार. हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक बड़ा संगे मील इख्तियार किया, कीर्तिमान स्थापित कर दिया आपने यार. क्या बात है यार हमदा, आज का वाटर कूलर हमदा के नाम.
1: थैंक यू.
0: चलिए भाई हमदा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए यार, पानी शानी पीते रहिए, गर्मी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है ना, बाहर का काम रहता है तो बहुत ज्यादा ख्याल की जरूरत है मेरे भाई.
1: और सच ह्यूमिडिटी से एक बात आपको और बताना याद आ रहा
0: है,
1: वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हर इंसान का देखने का ना अपना नजरिया होता है. मैं रात ड्यूटी कर रहा था भाई, तकरीबन 10 बजे का टाइम था.
0: ओके,
1: और मैं लुसेल की तरफ गया तो वहां जो धुंध पड़ी

0: भी थी ना ह्यूमिडिटी की वजह से, तो गाड़ी के अंदर बैठ कर एक बार फील ऐसी आ रही थी, इसका सर्दियों वाला मौसम चल रहा हो,
1: फॉग फॉग,
0: गाड़ी का दरवाजा खोला है ना भाई यकीन करे सब चीजें अपनी जगह पर आ गई।
1: वो जब तक एसी चल रहा होता है दरवाजा बंद है, तो जब तक तक कोहरा चल रहा है, ठंड है, जैसे ही खिड़की या दरवाजा खुला उसके बाद जो फ्यूज उड़ते हैं भाई वो फिर पूरे तरीके से उड़ते हैं क्या बात है यार।
0: आपको बताना चाह रहा था कि बस रात हमने दो फीलिंग्स एक साथ ली और वो भी पल भर में।
1: बात है, क्या बात है, पल भर में दो मौसम का मजा ले लिया हमजा भाई ने, क्या कहने यार। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु। तो साहब ये थे हमजा खोखर साहब, और जिन्होंने क्या जबरदस्त यार, मतलब मांजा बना दिया अपने आदमी ने यार, मांजा। ओए होए होए होए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु। कौन है हमारे साथ,
2: पहचान कौन
1: अरे रमेश बाबू, जितना भी छुपोगे सोफे के पीछे पकड़ ही लूंगा, ऐसी बात नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। रमेश भाई, कैसा रहा आज का दिन और कैसा रहा अभी तक का दिन?
2: बहुत बढ़िया सर, 10 बजे भागा है रूम से।
1: क्या बात है, गर्मी का मजा लेते हुए, गर्मी से बचते हुए
2: उसी से तो बचने के लिए भाग के आए,
1: बचने के लिए भाग के आए। यार आज खासम खास बात हो रही है, और मुझे आपसे बड़ी तवक्का है, बड़ी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ तो आपने इसके हवाले से किया होगा। आज अब साइकिलिंग डे है तो उसी के हवाले से बात चल रही है। तो हमारा मुद्दा ये आ गया है कि भाई किस किस ने घर में क्या क्या चीजें अंजाम दी हैं, पेंटिंग हो, कारपेंट्री हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, है। अब जैसे मेरे साथ था, मैंने बताया कि मैं पेंटिंग में और प्लम्बिंग में बड़ी महारत रखता था भाई, और इसमें काफी काम करता था। थोड़े बहुत अपने गार्डनिंग के भी काम कर लिए करते थे, खाद वाद निकालना और गमलों में खाद बदलना, फिर गमलों पे कलाई करना, ये पूरी चीजें हम करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा कुछ याद है या ऐसी कोई चीज शेयर करना चाहते हैं रमेश भाई?
2: याद है, पहले जो समय झोपड़ी टाइप में होता था घर, साफ पक्का घर था, कच्चा घर था सबका,
1: कच्चा घर बिल्कुल।
2: तो बड़ी करीब 3-3 मीटर की दीवारें होती थी, 3 मीटर कह रहा हूँ, 3 फीट की, 3 फीट की मोटी मोटी दीवारें होती थी। उसको हमारी छोटी छोटे चाचा की सिस्टर थी, उसके साथ उसको पोताई करना, तो सीढ़ी पकड़ना, सीढ़ी
1: चूने की पोताई के, और नील डाल के, थोड़ा सा नील डाल काम सारे करे मैंने, छोड़ा कुछ नहीं है खुद भी भूल जाता हूँ क्या क्या किया हुआ है।
2: ये सब होता था। उसके बाद फिर और मड़ई वगैरह जो होती थी, अपने मड़ई बंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बंडी बंडी बंडी
2: जी, उसको अपने हाथ से ही उसको चाचा के साथ बैठ के उसको बनवाना, और काफी लंबी चौड़ी बनती थी
1: जी जी,
2: तो
1: जी,
2: फिर गांव वाले सब मिल करके आके उसको उठाते।
1: अच्छा, एक और चीज याद आई यार, आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये जो चारपाई को जो कहने बांधना जो होता था ना, या क्या कहते उसका एक लफ्ज था, मैं वो भी भूल गया, बांधना या क्या वो, मतलब उसको याद
2: है, बिनाई बोलते हैं, चारपाई बिनाई।
1: और वो कुर्सियां होती थी जिसमें एक अलग तरीके की नायलॉन की पट्टी लगती थी, कुछ नायलॉन का मिक्स होता था वो प्लास्टिक वगैरह का, याद है आपको, वो कुर्सियां आती थी, ओए होए होए, वो कस कस के दादा के साथ।
2: ये तो मैं अभी भी बना लेता हूँ, पहले भी बनाता था, मैं अभी भी लेता हूं।
1: अरे बना तो आप बहुत अच्छा लेते हैं रमेश भाई, ऐसी बात नहीं है, बनाते तो आप बहुत है, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, बनाते तो आप बहुत अच्छा है ये मालूम है हमें
2: पट्टा नहीं होता है सर, ये बाद बाद बाद वाली खसिया जो होती है आपके घर में भी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल यार, वही मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चारपाई चारपाई
2: चारपाई जी,
1: उसको भाई बुनना कोई आसान है, वो फांसे उसकी हाथ में लगती हुई और हाथ कटता हुआ, छाले पड़ते हुए, क्योंकि इतना मालूम नहीं होता ना कि कैसे करना क्या करना, दादा के साथ बैठ के कसा करते थे, हमें याद है बहुत अच्छी तरह। क्या क्या क्या बात याद आ गई,
2: मालूम है इसका, ये खेत में होता था ये,
1: हाँ बिल्कुल
2: होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही सही सही सही सही सही यार, ये चीजें तो जहन से निकल ही गई हैं जैसे यार,
2: ये जब हो जाता था तो इसको इकट्ठा करके ना, तो तालाब गांव में होते ही हैं
1: जी,
2: तो इसको उसके अंदर नीचे रख के पानी में पूरे अंदर दबा के उसके ऊपर से मिट्टी डाला जाता था
1: एग्जैक्टली, ताकि वो कस जाए, ताकि वो कस जाए जी,
2: कस जाए और फिर वो करीब हफ्ता भर 10-15 दिन उसको छोड़ दिया जाता था, तो वो सड़ जाता था बिल्कुल। तो फिर उसको उसी में धो करके निकाला जाता था बाहर, तो उसमें से उस रस से उसको सूत निकलता था।
1: क्या बात है, क्या बात है, देखिए भाई क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या यादें जो है वो ताजा हो रही है भाई, वाह।
2: तो उसको निकाल करके फिर उसको बनाया जाता था रस्सी, उसका ले करके लोग बड़े बुजुर्ग चाचा वाचा दादा वादा जो थे तो उसको कंधे में इसे दाब लेते थे और एक
1: रोल बना के
2: होता था,
1: रोल बना के उसका और कंधे पे टंगी भी होती थी।
2: हाँ, वो घूम घूम के अपना बनाते थे लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नई जनरेशन तो समझ भी नहीं रही होगी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। मैं हूँ, देखिए हर जनरेशन से होता हुआ आया हूँ आपके साथ, ऐसी बात नहीं है, सब मालूम है। क्या बात है भाई रमेश बाबू, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कहते हैं, अब शुरुआत कर ली जाए तीन के दम की भी?
2: हाँ सर, चलिए जो अभी है पहले नंबर पे तो शुरू हो जाए।
1: चलिए आज आप हाथ भी 2-3 दिन बाद लगे हैं मेरे।
2: नहीं कल नहीं बात हुई बस।
1: चलिए साहब अच्छी बात है, कई मशगूल थे आप।
2: हाँ सर, कुछ हो गया था लफड़ा ये गाड़ी के बारे में।
1: अरे अल्लाह ताला आसानी करे भाई, उम्मीद है
2: तो
1: कि
2: हो गया, सलट गया मामला,
1: समट गया। चलिए ये अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कतन में हर चीज सुलझ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए साहब, रमेश भाई ट्रेन पटरी पर चलती है या पानी में?
2: ट्रेन पटरी पर चलती है।
1: ओके, आलू एक तरीके की सब्जी है या जानवर है?
2: नहीं सब्जी है सर।
1: आलू सब्जी है, पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपका जवाब रख लेता हूं मैं। एक तालाब में एक अजीब कमल जो है वो उसका फूल खिल रहा है, ठीक है, जो हर रोज पहले से दुगना होता जा रहा है। क्लियर है, बहुत हल्के हल्के समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। यानी जैसे कि अगर आज 1 इंच है तो कल 2 इंच हो जाएगा और परसों 4 इंच, दुगना बढ़ रहा है डेली जो कमल का फूल है तालाब के अंदर। इसी तरह हर रोज पहले से वो दुगना डबल होता जा रहा है, ठीक है। हिसाब लगाया गया कि अगर ये फूल इसी तरह बढ़ता रहा तो वो पूरे 30 दिन में तालाब के ऊपर पूरे तालाब को ढक लेगा। तो बताइए वो फूल आधे तालाब को कितने अरसे में ढकेगा?
2: 15 दिन में।
1: बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया आपने, गलत। एक्चुअली जवाब यही जहन में आता है बट
2: दिन में जब पूरा।
1: रमेश बाबू फसाया, दोबारा फसाया।
2: कमल का फूल है।
1: कमल का फूल भैया, एक तालाब में एक अजीब तरीके का फूल है साहब जो खिल रहा है और पहले से वो दुगना होता चला जा रहा है। मतलब जैसे 1 इंच था तो 2 इंच हर रोज बढ़ रहा है वो, और डबल हो रहा है हर रोज, ठीक है। तो हिसाब लगाया गया कि अगर ये फूल इसी तरह बढ़ता रहा तो वो 30 दिन में पूरे तालाब को ढक लेगा। तो बताइए वो फूल आधे तालाब को कितने अरसे में ढकेगा? क्या बात है भाई रमेश भाई, और बड़ी ही प्यारी बातें और बड़ी यार यादें ताजा करवा दी आपने मेरे साथ मिलके, आज मजा आ गया भाई, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह जवाब ढूंढते रहिएगा, और अगर जवाब मिल जाता है तो मुझे भी बता दीजिए,
2: कोई ना कोई जवाब देगा,
1: मैं भी ढूंढ रहा हूँ।
2: लेकिन इसको पूछते रहिए, अब जो भी फोन करे उससे पूछिए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच रमेश भाई, हैव अ नाइस डे अहेड। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो साहब ये थे रमेश भाई हमारे साथ, और यहाँ पर जारी है आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम, और उसके अंदर भी आपका मन पसंदीदा गेम तीन का दम, जिसके अंदर आज जो मुश्किल सवाल वो ये फंस गया है जो मैंने आपको बताया अभी कि एक तालाब के अंदर एक पूल बड़ा हो रहा है और दिन ब दिन दुगना होता जा रहा है। हिसाब लगाया गया कि अगर ये पूल इस तरह बढ़ता रहा तो ये 30 दिन में पूरे तालाब को ढक लेगा। तो बताइए वो फूल आधे तालाब को कितने से में ढकेगा, आधे ताल आपको बताना है। नंबर है 666-22-107 पे आप मैसेज कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-7-7। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
1: FM 107 Time check।
2: लीजिए अब बज गए 12, बल्कि 12 बजे सही 12 मिनट।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ।

0: हाँ जी वेलकम बैक हेलन व सहलन खुश आमदीद स्वागतम एंड बिल्कुल सनन साउंड पे आपके साथ जहां बात हो रही है आज रिसाइकलिंग के हवाले से अपसाइकलिंग के हवाले से और वो भी आपका जो भी कहना चाहिए आपकी जो खासियत है और जो घर में आपको बनाया गया आपसे चीजों को बनवाया गया वो सारी चीजें हमने अभी तक के प्रोग्राम में शेयर करी। बहुत पुरानी पुरानी यादें भी ताजा हुई और काफी लोगों ने बहुत कुछ बताया भी किसने क्या क्या अंजाम दिया है। कुछ ने तो भाई जैसे कि हमदा हमारे साथ थे उन्होंने तो मजा ही बना दिया पतंग का यार क्या बात है क्या कहने हमदा तीन चार दिन करके वहीं बॉटलों कुछ लोगों ने काम लिया कुछ ने कलई से भी काम लिया कुछ लोगों ने जैसे कि रमेश बाबू बता रहे थे कि वो बांधना जिसको कहते हैं चारपाई वगैरह और फिर कलई करना और फिर पुताई करना भाई नील डाल के चूने में आए तो इन तरीके की बातें होती नहीं और अब तीन का दम भी जारी और सारी है। आप भी अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे और मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 666-22-107। तो आइए भाई अब आप लोगों के मैसेजेस का टाइम ओके शुरुआत करते हैं यहां से। यादव जी ने यहाँ पर मैसेज भी भेजा सरोवर जी कैसे हैं गुड मॉर्निंग और यहाँ पर चाय भेजी है मुझे उन्होंने कॉफी नुमा कुछ। यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गुड मॉर्निंग कैसे हैं होप वेल सरोवर भाई सन एंड साउंड में सबका इस्तकबाल करते हैं वेनसडे मॉर्निंग सबको विश करते हैं। तो आफ्टरनून में आए हम मैसेज इन्होंने सुबह ही भेजा था हमें सरोवर भाई मुझे अभी तो कुछ याद नहीं है हाँ बचपन में वेस्ट चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे उस जमाने में ज्यादा सोर्सेस भी तो नहीं थे। अभी मेरी बच्ची बनाती रहती है वेस्ट वाटर बॉटल प्लास्टिक प्लेट्स ग्लासेस और आइसक्रीम स्टिकर एक्सेप्ट आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं उनसे भी आजकल तो बच्चे प्रोजेक्ट बड़े अच्छे बना लेते हैं जो इनको मिले होते हैं और वो बड़ी कारगर चीज़ है बड़ी खूबसूरत चीज़ें उससे बन भी जाती हैं और स्कूल में भी एक्टिविटीज़ में बना के ले जाती हैं इनकी जो बेटी हैं माशाल्लाह यूसुफ भाई की। तो यहाँ पर कुछ शायरी भी यूसुफ भाई ने शेयर करी है चलिए लगे हाथों उसको भी शेयर कर देता हूँ। कहते हैं चेहरों की धूप आंखों की गहराई ले गई आईना सारे शहर की बिनाई ले गया अच्छा ले गया ऊपर भी था भाई काफी मैंने गलत कर दिया फिर तो पढ़ते हैं। कहते हैं चेहरों की धूप आंखों की गहराई ले गया आईना सारे शहर की बिनाई ले गया डूबे हुए जहाज पे क्या तबसरा करें यह हादसा तो सोच की गहराई ले गया हालांकि बेजुबान था लेकिन अजीब था हालांकि बेजुबान था लेकिन अजीब था जो शख्स मुंह से छीन के गोयई ले गया गोयई लिया ओए ओए ओए ओए ओए यानी जबान ले गया बातचीत ले गया क्या कहने यार यूसुफ भाई कहां कहां से ला रहे हैं निकाल कर ये शायरी ओके यहां पर हमारे साथ कौन है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम स्टिल माजरत कहते हैं स्टिल नॉट ट्रांसफर मनी ओए होए अपने पैसों के इंतजार में और मलिक भाई हमारे साथ मलिक भाई शायद आप इनाम के हवाले से बातचीत कर रहे हैं मुझसे और इंशाल्लाह ताला इनाम आपको भी मिल जाएगा जरूर पहुंच जाएगा आप तक लोगों के इनाम मिल रहे हैं निकल रहे हैं डेली बेसिस पे और इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। यार नसीम भाई
1: ने सही जवाब दिया क्या बात है
0: बिल्कुल सही नसीम साहब जो सवाल मैंने पूछा था उसका आपने सही जवाब दे दिया है और यहाँ पर मिस कॉल भी खेल रहे हैं कुछ लोग मुझसे क्या बात है भाई जसविंदर शाह जी का यहाँ पर मैसेज आया

और हमें सुनने के साथ जुड़े हुए हैं और कहते हैं एक आवाज जो घर घर है वो है सर्वर। आहा, वही तो है सर्वर। हाय हाय, शायरी कुछ है ये, मैं मिला नहीं पा रहा हूँ। एक आवाज जो घर घर है जी, यही तो सर्वर है। ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए, शाहजी क्या बात है, मजा आ गया यार ये शेर पढ़ के। यहाँ पर हमारे साथ थे मकसूद भाई, तो कह रहे थे मकसूद भाई कह रहे हैं, इन्होंने वॉइस नोट भेजा है, मैंने सुना, कहते हैं कि भाई सर्वर भाई सारे काम आप ही कर लेंगे तो हम लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़िए। यार क्या करें, बस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में तो सभी को ऐसा होना चाहिए, मतलब मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, और मेरी तो बराबर कोशिश है मैं और भी बहुत कुछ सीख सकूं। तो भाई अपना तो ऐसे ही है, बस एक कारपेंटरी जो है ना उसमें मुझे महारत हासिल नहीं हो पाई, बाकी तो मैंने बहुत शौक खाए, बहुत करंट खाए, ऐसी बात नहीं है। इलकल का काम करते हुए पोताई के हवाले से, कलई के हवाले से तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें तो बहुत महारत हासिल है, और प्लम्बिंग में भी अच्छा खासा आपका भाई काम अंजाम दे देता है, ऐसी बात नहीं है। खाना पीने में तो आपका भाई सुपर हिट है, और बताओ यार क्या क्या करवाना है। आप भी ये कर सकते हैं हमारे साथ और प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं, और अगर गेम खेलना चाहते हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। तीन कदम जारी और सारी है, बढ़ते हैं। कहते हैं हाय दिस इज असद, द फ्लावर विल कवर हाफ ऑफ इट इन दिस मच टाइम। असद बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, और सही जवाब दिया असद ने भी, क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम सुरभ भाई, द आंसर इज योर क्वेश्चन दैट इतना। नहीं यार ये तो गलत निकल आया, इमरान खान साहब हैं। इमरान भाई थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सोचिए, आपको मिल जाएगा जवाब, करीब हैं आप। आपको बताऊं कि आप करीब हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू, सरवर भाई ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब। तालिब हैं, तालाब का जवाब इतने दिन, ये जिन साहब ने जवाब दिया और मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, समझ तो गए मैं किनका मैसेज पढ़ रहा हूँ। आप मुझे कॉल के उसके बाद मैं आपको सही जवाब बताऊंगा कि क्या है। तो भाई ये कुछ वॉइस नोट्स और भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी शामिल करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक,

कुछ कुछ गानों की शुरुआत ही ऐसी है कि लाजवाब, और फिर रेखा भारद्वाज की आवाज हो और साथ निभा रहे हो जावेद अली।

दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोका है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाइसाइकिल के बराबर हैं, जैसे हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइक्लिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: क्या बात है यार जावेद भाई की भी। बड़ी मुख्तलिफ आवाज है इस आदमी की। जितने भी गाने गाए अपने आप में बहुत ही खूबसूरत। और ये इतना प्यारा और खूबसूरत गाना एंजॉय किया एफएम 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
0: और साउंड है आप लोगों की। जहां पर बात आज हुई साहब खूब कि भाई कौन कौन सी ऐसी कला थी आप लोगों की जो आप घर पर रहकर इस्तेमाल करते हैं या आपसे इस्तेमाल करी जाती है या बताया जाता है कि भाई ये काम करो, तो वो काम करने में हम पीछे नहीं रहते और अल्हम्दुलिल्लाह घर को वो काम करके देते भी हैं और कहीं उससे कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है यूजुअली मेल खिलाड़ी जो हैं जितने भी जेंट हैं वही ज़्यादातर इसके अंदर शामिल रहते हैं, क्योंकि हर बात है जितनी भी लेडीज़ हैं लड़कियाँ हैं फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर काम जो घर के अंदर है उसमें ज़्यादा उस उम्र के अंदर सीखने की कोशिश करती हैं और अम्मा का हाथ बटाने की कोशिश करती हैं। बहरहाल हर किसी को हर कुछ आना चाहिए, हर कुछ सीखना चाहिए और माशाल्लाह हर कोई अब सीख भी रहा है और हमारी फीमेल्स भी जो हैं हमारी लेडीज़ जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी कुछ सीख रही हैं समझ भी रही हैं। और इसी के साथ साथ हम लोगों को भी समझाने में बड़ा हाथ है सभी का। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
2: जी मेरा नाम सरोवर भाई है।
0: क्या कहने, उधर भी सर्वर इधर भी सर्वर, ऐसा नहीं हो सकता। नाम सही बताइए यार। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद बता दें अपना नाम ताकि लोग जो है खुश हो जाएं सुन के आपका इतना प्यारा नाम।
2: अच्छा ठीक है
0: वरना मैं बता दूंगा।
2: मेरे को पता है आपको मेरे को भी जाए तो मेरा नाम भी याद है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरोवर भाई।
0: दो पूछिए।
2: वो दिन नहीं नहीं एक पूछता हूँ, पहले एक जवाब दे दो बाद में तो मुश्किल नहीं है। आप मेरे को सिर्फ ये बताए वो दिन कब आएगा जब हम लोग आप कॉल करते हैं आप ये नहीं पूछते कि कौन है हमारे साथ कौन है भाई।
0: ये देखिए ये एक कायदा है, ये एक तरीका है जो अदा करना पड़ता है आपकी इज्जत को मद्दे नजर रखते हुए भाई, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है नहीं है।
2: अच्छा चलो ठीक है ये भी सही।
0: भाई मैं हमारे साथ बड़ी बड़ी शख्सियत मुदस्सर साहब जैसे लोग जुड़ रहे हैं तो इतना तो कहना बनता है यार शान में।
2: अरे भाई बड़ा तो आप है, जब भी हम कॉल करते हैं तो सीधा बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर भाई, ये बड़ी बात होती है।
0: अरे सर आपके शनाए शायाने शान कुछ लफ्ज जो हैं वो कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुदस्सर साहब खैरियत से हैं? कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
2: अल्लाह का करम है शुक्र सर भाई। चलो शायद ये आपकी शो का और के प्रोग्राम का ये है, कोई बात नहीं हम बस ठीक है ये भी चलता है।
0: अच्छा ये बताइए कि ऐसा कोई काम जिसमें घर वालों को भी नाज हुआ हो और आपको भी अपने आप में, मतलब काम से मतलब ये हमारी प्रोफेशनल जिंदगी के अलावा
2: जी।
0: कुछ किया है कभी? कभी कोई कारपेंटरी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, मैं पक्का पेंटर तो नहीं हूँ लेकिन घर के जो छोटे वगैरह काम होते हैं पेंटिंग का रंग का और जो आपको पता है चूनी का काम हम लोग खुद करते हैं गांव में, घर के जो हमारे
0: बिल्कुल हम सभी खुद करते हैं काम। सही
2: आप शायद जानते होंगे क्योंकि अभी देहाती लोग जो चूना होता है हम लोग चूना बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं।
0: नहीं नहीं हम भी चूना ही बोलते हैं, हम बहुत अच्छा चूना लगाते हैं भाई यूपी वाले, ऐसी बात थोड़ी है।
2: वो तो आपने अभी भी लगा दिया ना, वो तो पता है मैं रही की बात।
0: मुदस्सर भाई चूने चूने के अंदर मैं यही अर्ज कर रहा था इससे पहले भी, नील डाल के, नील हम नील कहते हैं उसको।
2: एग्जैक्टली हम लोग नील भी बोलते हैं उसमें ग्रीन और पिंक।

0: देखो साथ ने कैसा काम किया, तुम्हें मुझे बहुत खुश हुई।
1: इससे बड़ा तमगा नहीं मिल सकता। अब्बा ये कहते हैं कि उस्ताद ने कैसा काम किया। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है।
0: और खुशी की बात यह कि तकरीबन 5-6 साल हो गए इस काम के, अभी तक वो बिल्कुल सलामत है
1: माशाल्लाह। नहीं भाई, अपना हाथ का काम होता है। ऐसा था, आप शायद आपने देर में ज्वाइन किया। मैं यही अर्ज कर रहा था पहले भी कि मैं जो हूँ प्लम्बिंग वगैरह और पेंटिंग के काम जितने भी हैं बहुत जबरदस्त अंजाम दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम खाना पकाना और झाड़ू पोछा, ये काम भी मैं कर लेता हूँ, बहुत अच्छे ऐसी बात नहीं है। बर्तन भी अच्छे धो लेता हूँ मैं।
0: बाकी जो हमारे सरों में, आपको मैं एक बात बताऊं, बाकी जो हमारे घर का काम होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे वो पैर हो वगैरह, सैनिटरी का काम हो, और जो भी इलेक्ट्रिक का काम हो, जो भी घर का जो काम होता है, जो मतलब उसके को पक्का उस्ताद कारीगर वगैरह वो लेके आना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम है वो माशाल्लाह, वो मेरा वाले साहब अल्लाह सलामत रखे, वो अब पहले दिन से आज तक वो कर रहे हैं पूरा काम सर, इलेक्ट्रिशियन का, लाइट का, पंखे का और वगैरह, ये पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब जो पहले दिन से कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ, 3 दिन पहले मैंने कॉल किया था घर को, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माँ से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि साहब के दर, वो कह रहे हैं कि अभी वो बम्बे का काम कर रहा है, बम्बो बना रहा है। तो वो एक तकरीबन उसका उम्र होगा तकरीबन 60-65 के करीब होगा, और पहले दिन से आज तक
1: अल्लाह ताला ने क्या रखे। वाह,
0: अल्लाह सब के रहन को सलामत रखे। तो मुझे बहुत खुशी है भाई, देखो ये कितना बड़ा काम होता है ना, घर का जो काम होता है उसके लिए आपको बंदा लेके आना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ मेरा वाले साहब खुद।
1: क्या बात है माशाल्लाह, और ये जरूरी भी है क्योंकि जितना मशगूल रहते हैं, जितना बिजी रहते हैं, उतना ही सेहत के लिए उनकी अच्छा भी रहेगा
0: इंशाल्लाह। एक मिनट और दे, एक और बात है जो
1: जी जी जी,
0: मैंने पाई सी कर रहा था तो मैंने पूछा कि वाले साहब किधर है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो गाँव है उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनी लोग हैं, हमारे वाले साहब बहुत तबलीग का काम करते हैं, हम भी वो से जुड़े हैं, तो वो मस्जिद का जो हमारा का मस्जिद है उसके लिए पानी जो बंदोबस्त था वो करना था, तो एक पाइप लगाना था, वो एक ऐसा पाइप था जो टंकी से सीधा हमारे घर को भी पानी जाती थी और मस्जिद को भी, तो वो एक लाइन जो था वो मेरे वाले साहब ने खुद लगाया, अब मेरे जो टंकी से सीधा पानी हमारे घर को भी आती है और सीधा मस्जिद को भी जाती है। तो जो मेरा भाई था सरो भाई, जो मेरा भाई है वो मेरे वाले साहब को बोल रहा है कि बाबा ये काम नहीं होता है, ये नाकाम है, नहीं होता है, तो इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम खूब है।
1: क्या बात है यार, क्या बात है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और ये तो सवाब का भी काम है जाहिर है, और माशाल्लाह से
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाह जब कहते हैं ना, चाह है वहाँ राह है, और कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, बस यही है। कुछ की अपनी मशगूलियत होती है, कुछ की कुछ मजबूरियां होती है, मशगूलियत और मजबूरियत दोनों ही चीजें हो जाती है, तो चीजें नहीं हो पाती। चलिए साहब, अब आ जाते हैं 3 का दम पे, क्या कहते हैं मदसर भाई?
0: ठीक है सरो भाई, लेकिन आपको जो 3-2 कदम तो हम ठीक लेते हैं, वो जो 3 होता है ना वो कदम हमसे नहीं लिया जाता।
1: अरे हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। जमीन पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं?
0: जमीन पर चलने वाली,
1: ये तो पहले ही कंफ्यूज कर दिया। हाँ क्या कहते हैं?
0: मैं समझा नहीं, इंसान या गाड़ी, जमीन पर चलने वाली गाड़ी को गाड़ी कहते हैं।
1: हाँ गाड़ी कह, बिल्कुल सही जवाब है यार, इसमें टेंशन कहता था, सही है।
0: ओके।
1: एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं?
0: एक हाथ में 5।
1: पक्की बात है? मैं 6 गिना सकता हूँ आपको, आप मेरे सामने होते तो ये जादू करके दिखाता। वो तो जो मतलब फिजिकली जिनके पास होती हैं, मेरे पास एक ट्रिक ऐसी है जो एक हाथ में 6 उंगलियां गिना देती है। बहरहाल चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जिसके जवाब आज लोग नहीं दे पा रहे हैं, 2 ही लोगों ने सही जवाब दिया है। एक तालाब में एक अजीब कमल खिल रहा है, ठीक है, फूल खिल रहा है, कमल का फूल, लोटस का फूल, जो हर रोज पहले से दुगना होता जा रहा है, यानी अगर आज 1 इंच है तो कल 2 इंच, परसों 4 इंच, इस तरह हर रोज पहले से दुगना यानी डबल होता जा रहा है।
0: सर भाई I'm sorry to say, आपको मैंने रोका, ये साल का जवाब मुझे नहीं आता है, अगर इसके बदले दूसरा पूछे तो बता रहा हूँ।
1: यार ये तो बहुत आसान है यार।
0: आसान था लेकिन कल वाला भी आसान था ना, वो अपने,
1: अच्छा कोई याद है
0: अदनान का? जी अदनान का मुझे याद है, अदनान को मैंने कॉल किया फिर।
1: हाँ हाँ हाँ।

0: वो तो निकल गया। तो यार वो भी तो आपने हिसाब सही लगा लिया था।
1: मैंने मैंने कह रहा सर भाई, मैंने आपको पूछा कि शायद 15 फ्लोर से शायद वो 19 फ्लोर से शायद लिफ्ट नहीं होगा, तो आपने बोला कि नहीं लिफ्ट भी है।
0: चलिए अब दूसरा आप कहेंगे ये भी मुश्किल है। दादी ने स्वेटर उस वक्त बनाना शुरू किया जब घड़ी में 1 बज रहा था। 6 बजे वो आधा स्वेटर मुकम्मल कर चुकी थी। जब वो पूरा स्वेटर मुकम्मल करेंगी तो क्या टाइम हो रहा होगा? दादी ने स्वेटर उस वक्त बनाना शुरू किया जब घड़ी में 1 बज रहा था, ठीक है?
1: ओके ओके।
0: 6 बजे वो आधा स्वेटर मुकम्मल कर चुकी थी, आधा 6 बजे। तो जब वो पूरा स्वेटर मुकम्मल करेंगी तो क्या टाइम हो रहा होगा?
1: 1 बजे
0: तो बनाना शुरू किया है,
1: ठीक है सर। 1 बजे वो बनाना शुरू किया,
0: हाँ।
1: 6 बजे तक कितने हो गए?
0: बताइए कितने हो गए? मेरे पास तो जवाब है भाई। 1 बजे दादी ने, हाँ 1 बजे दादी ने,
1: ओके दादी ने 1 बजे से स्वेटर बनाना शुरू कर दिया। 6 बजे तक उसने आधा बनाया, आधा रह गया।
0: हाँ आधा रह गया, आधा बना लिया। 6 बजे तक आधा स्वेटर मुकम्मल कर चुकी थी।
1: ओके
0: जब वो पूरा स्वेटर मुकम्मल करेंगी तो क्या टाइम हो रहा होगा?
1: सर भाई भाई 1 बजे रहते हैं ना, मेरे ख्याल में 5 घंटे के बाद वो दूसरा मुकम्मल करेगा, तो 10 घंटे में पूरा हो गया।
0: क्या टाइम हो रहा होगा? क्या टाइम बताइए ना।
1: रात के एक बजे
0: दादी सोएंगी कब? बेचारी बीमार पड़ जाएंगी खुदा ना खास्ता। बुजुर्ग हैं भाई आप, रात के 1 बजे तक स्वेटर बनवा रहे, ये क्या बात हुई?
1: क्या काम है रात को, क्या काम है रात को स्वेटर बनाते, दिन के क्यों नहीं
0: बनाते? ऑलराइट देन, चलिए जवाब मिल जाए तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है?
1: चलो ठीक है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, तो आप भी अब बता सकते हैं, 2 सवाल छोड़ दिए आज मैंने आप लोगों के लिए। अब मुझे लगता है इसका जवाब कल तक पब्लिक देती रहेगी इंशाल्लाह ताला। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले एक यहाँ पर और चैंपियन है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम,
2: हाँ जी सर भाई,
0: कैसे हैं? अरे माशाल्लाह क्या बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमजा की हुई वापसी
2: भाई, आया तो मैं 3 का दम खेलने के लिए।
0: अच्छा क्या बात है,
2: आज जोरों शोर से आया हूँ भाई।
0: अब बात है तो जवाब लेके आए क्या?
2: आते हो या ना आते हो नहीं, चाहे जवाब आते हो या ना आते हो, कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आया हूँ भाई।
0: ये बात देखो, यही तो चीज है यार, इसमें डरने वाली क्या है बात, जब हमजा है हमारे साथ तो भाई बहुत आसान होते हैं, ऐसे कोई मुश्किल होते ही नहीं है मेरे सवाल तो बिल्कुल, बस थोड़ा सा यह है कि इधर उधर से फेरे हुए होते हैं, ये बात अलग है। चलिए भारत रेडी है?
2: एक दो छोटी छोटी बातें हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा।
0: हाँ हाँ करी करी, पहले बातें शेयर करी फिर 3 का दम खेलेंगे। 30 का दम 30 सवाल पूछ लेता अभी मैं आपसे।
2: बात एक ये थी कि हमारी जो लेडीज है अल्लाह पाक खुश रखे उनको, माए बहने जो हमारी हैं,
0: जी जी,
2: अक्सर जना उनका क्राइटेरिया ये होता है कि किसी के भी घर में जाओ या अपना घर भी हो तो किचन और जो वॉशरूम है उससे जजमेंट होती है कि घर वाले कैसे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: वो अगर साफ है तो उनकी जजमेंट है कि हाँ भाई ये सफाई सुथरा ही पसंद है, ये लोग अच्छे है, ये बाकी इस तरह है, तो ये चीजें उन चीजों से होते हैं। भाई ने किचन का जिक्र किया था कि उन्होंने बनाया खुद, तो उससे मेरे एक दिन में आया, मैंने चले आपसे शेयर करते हैं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही
2: बात है। दूसरी बात भाई, बचपन का एक किस्सा जो मेरे ख्याल से हर किसी ने आजमाया होगा। वैसे नॉर्मली बेबलेट चलते हैं, एक टाइम आया था कि बेबलेट बहुत चला था, याद हो आपको तो?
0: नहीं मैं इनको बता, बेबलेट थोड़ा बताना भी तो पड़ेगा खुलासा करके, वो जो चक्री गोल गोल घूमती है, ऐसे बता दूं क्या? चक्री गोल गोल जो घूमती है, अरे वो हमारे लट्टू के आसपास है, समझिए वो चीज, लट्टू समझते हैं हमजा आप, है ना?
2: हाँ जी हाँ जी, तो भाई बहुत खेला भाई।
0: हाँ तो वो लट्टू के आसपास ही हुआ बेबलेट, जहां तक मैं समझता हूँ, सही कह रहा हूँ ना?
2: बिल्कुल भाई, लट्टों के पीछे भाई जितना रोया हूँ ना मैं।
0: अच्छा
2: जी, याद है अच्छे से। और गेम के अंदर एक बार लट्टू हमारा इस तरह मैं हार गया, और जो है वो हमारी शर्त लगी थी कि लट्टू तोड़ना है।
0: ओ अच्छा, क्यों क्योंकि मेरा नहीं तो किसी का नहीं।

0: ਇਫਲੀ ਹੈ
1: ਤੋੜ ਦੀ ਆ
0: तो क्या बता रहे थे बेबलेट के हवाले से हम लोग।
1: बेबलेट का ना वो अल्टरनेरी बेग बता रहा था कि हम लोग पता क्या करते थे, वो पुरानी चलती थी कांच की बोतलें उसकी पेप्सी की या डीओ वगैरह की,
0: हाँ,
1: की
0: कंचे वाली आती
1: थी। अभी भी बहुत कम देखी है लेकिन देखी है मैंने।
0: हाँ, ओके ओके।
1: तो उसका जो कैप होता है ना, ढक्कन जिसको कहते हैं।
0: अच्छा ओके, आप वाकई बता रहे हैं। ओके,
1: उसको सीधा करके भाई उसको सुराख करके,
0: हाँ,
1: स्पेशली उसके अंदर से मांजा गुजार के
0: Okay.
1: और वो जो खुवाने का मजा आता था ना भाई, चेक होता था कि जना पेपर काट सकता है कि नहीं, और उसको चलाते हुए उसकी आवाज,
0: और दोनों हाथों की उंगलियों में कुछ इस तरीके से उसको बनाया जाता था कि वो बिल्कुल दराती का काम करता था भाई। सही कह रहा हूँ, ओ गोल गोल उसका घूमना और उसका काटना। ओए, ओए, ओए, क्या यार, क्या बात दी यार, चला दी यार, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने। चलिए अब आ जाते हैं दस के दम की तरफ।
1: बहुत मिलता भाई,
0: अल्लाह ताला खुश रखे। ओके, अंडा गोल होता है या चौकोर
1: भाई? ओवल शेप होता है ना गोल।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। पंखा गर्मी में चलाते हैं या सर्दियों में?
1: भाई वैसे तो गर्मियों में चलाया जाता है, लेकिन आदत से मजबूर लोग जितना मैं हूँ कि हमें बगैर पंखे की नींद आती, तो हमें सर्दियों में भी चलाना पड़ता है।
0: सेम एयर,
1: कंबल डबल
0: लोड, सेम एयर, गिव मी फाइव। और सही जवाब है ये भी। आगे बढ़ते हैं, शुरू से ही बताने की कोशिश करी, अपना पते नहीं। चलिए तो अभी आपने सुना मैंने जो बताया सवाल, उसका जवाब है क्या या दूसरा पूछूं?
1: कौन सा वाला? नहीं, सवाल दोबारा कर लीजिए। और लिली वाला सवाल तो आपका हाफ में रह गया भाई, पहले बोल दिया भाई मैंने हाथ खड़े, मैं नहीं देता जवाब।
0: तो दादी जो है इस वक्त स्वेटर बुन रही हैं। दादी ने स्वेटर उस वक्त बनाना शुरू किया जब घड़ी में 1 बज रहा था। 6 बजे वो आधा स्वेटर मुकम्मल कर चुकी थी। जब वो पूरा स्वेटर मुकम्मल कर लेंगी तो क्या टाइम हो रहा होगा?
1: भाई मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो दोबारा 6 बज रहे होंगे।
0: अच्छा कैसे?
1: क्योंकि हाफ स्वेटर उन्होंने एक दिन में जना मुकम्मल किया, 1 बजे शुरू किया, 6 बजे खत्म हो गया, और फिर उन्होंने हाफ रख दिया और हाफ नेक्स्ट डे दोबारा शुरू किया, तो दोबारा वही टाइम हो गया।
0: नहीं तो दूसरा दिन आया क्यों? दोपहर के 1 बजे शुरू किया था।
1: बूढ़ी अम्मा है तो मेहरबानी करें ना, थोड़ा सा ख्याल करें, एक ही दिन में मुकम्मल करवाएंगे।
0: अरे दादी बहुत तेज, दादियां बहुत फास्ट होती है माशाल्लाह, इस मामले में ऐसी बात नहीं है। दोपहर के 1 बज रहे थे यार,
1: तो है बट एज डिफरेंस भी है ना भाई।
0: तो ऐसे लगाइए ना, दोपहर के 1 बज रहे थे मैंने बताया जब शुरू किया उन्होंने।
1: अगर वैसे अगर आप एक दिन का टाइम पूछते हैं तो 5 और 5 10 घंटे के अंदर, यानी कि 11 बजे तक खत्म हो गया होगा भाई।
0: फिर बताइए कितने बजे तक?
1: 11 बजे तक।
0: फिर सोचिए यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुमने सही जवाब दे दिया यार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये हुई ना बात, ये हुई बात यार। आज तो वाकई भाई क्या खाया था तुम्हारा, तुम्हारा या लंच में कुछ खा चुके हो
1: भाई? बगैर नाश्ते के घूम रहा हूँ भाई।
0: जब ही ज्यादा दिमाग काम चल रहा है,
1: ज्यादा चल रहा है।
0: भैया हमदा ने सही जवाब बता दिया है, और उस वक्त घड़ी में 11 बज रहे होंगे जो कि सही जवाब है। क्या बात है यार, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया हमदा भाई यार, वाह वाह वाह वाह।
1: क्या बात, लीली वाला सवाल पूरा बता देना, लेकिन जवाब अगर आता हो तो दूंगा
0: भाई। जब तक नहीं मिलेगा जवाब, जब तक सवाल चलता रहेगा। कल थर्सडे है, कल भी इससे मजे लेने इंशाल्लाह ताला। तो वो क्या है मसला, के तालाब का मामला है एक्चुअली। एक तालाब में एक लोटस समझते हो ना, कमल का फूल, उर्दू में क्या कहते हैं, कमल ही कहते हैं यार मेरे ख्याल में।
1: भाई आई लव द फ्लावर्स, मैं
0: अच्छा बस तो कर दिया, फिर तो समझ गए, फिर तो समझ गए। तो एक तालाब में कमल खिल रहा है जो हर रोज पहले से दुगना हो जाता है, यानी अगर आज 1 इंच है तो कल 2 इंच और परसों 4 इंच, इसी तरह हर रोज पहले से डबल हो रहा है या दुगना हो रहा है। हिसाब लगाया गया कि अगर ये फूल इसी तरह बढ़ता रहा तो वो 30 दिन में पूरे तालाब को ढक लेगा। तो बताइए वो फूल आधे तालाब को कितने अरसे में

0: लगेगा?
1: 15 डेज।
0: यार थोड़ा सोचना पड़ेगा हमजा भाई। और जबकि सही जवाब आए, दो लोगों ने सही जवाब दिया है इसका।
1: वो तो चले बात ठीक है, बट आपके कहने के मुताबिक 30 डेज में ओपुल तालाब को ढक लेगा।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, यही तो कैच है।
1: 15 डे वो भाई आधे तालाब को ढक लेगा ना भाई।
0: थोड़ा सोचना पड़ेगा, इंशाल्लाह इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आपने दादी का स्वेटर सही वक्त पे मुकम्मल करवा दिया, बेचारी सो जाएंगी आराम से यार। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू सो मच। रखिए आप भी भाई, ओके ओके देन। तो साहब चलते चलते चलिए आपको कुछ अपडेट भी दे दी जाए,
2: कतर ट्रांसपोर्ट एंड लोकल ट्रैफिक अपडेट।
0: बिल्कुल साहब, और इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ कॉर्निश रोड की बात करूँ तो ट्रैफिक रवाना है, मतलब रवाना नहीं है। और इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो साहब क्लियर है सी रिंग रोड पे, और जो अपना होटल वाला जो सिग्नल है उस पे थोड़ी सी इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कुछ भीड़। सलवा रोड और इंडस्ट्रियल एरिया के करीब गाड़ियों की तादाद नॉर्मल ही दिख रही है, ऐसा कोई ट्रैफिक वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा। अलवाब की बात करें तो मॉल के इर्द गिर्द ठीक है। लोसेल एक्सप्रेस वे बिल्कुल क्लियर है, शुमाल रोड भी क्लियर है। तो भाई ये कुछ ट्रैफिक का इस वक्त हाल अहवाल है, जगहों के हिसाब से मैंने कोशिश करी आपको बता दूं। फिर भी अगर आपको कोई अपडेट मिलती है तो आप लोग हमेशा हमें बता सकते हैं, कोई से भी प्रोग्राम में बता सकते हैं। फिलहाल अशगाल के मेंटेनेंस और रोड वर्क्स की जो भी सरगर्मियां हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और सभी रोड यूजर्स के लिए ये है भाई कि बेइंतहा एहतियात से काम कीजिए, ड्राइव बहुत ही ज़्यादा ख्याल से कीजिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिस्ट्रैक्ट होने वाली, आपको दूसरी चीज़ों में जहन लगाने वाली चीज़ों में ड्राइविंग के वक्त ज़रा सा परहेज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साहब, अब वक्त हुआ कि मैं भी आज के लिए आपसे इजाजत ले लूं इसी नोट पे कि कल इंशाल्लाह बखैर आफियत बेइज्जत आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल छोड़े जा रहा हूं आपको इस हसीन गाने के साथ, उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में। मिर्जा को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से पूरा देसी भाई।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूट
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स के बारे में। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, थोड़ा देखते हैं कि एथलेटिक्स में किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं और ये रिकॉर्ड होल्डर है कौन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरमान दुप्लांटिस पोल वॉल्ट चैंपियन। पोल वॉल्ट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पहले मैं जब छोटा था स्कूल के टाइम में सर्गे बुबका वो पोल वॉल्ट के मास्टर थे। सर्गे बुबका पोल वॉल्ट मतलब एक पोल लेके एक लंबी लाठी समझ लीजिए, उसको आप पकड़ के दौड़ते हुए भागते हुए आते हैं और एक बैरियर के सामने आप उसको मतलब छलांग मारते हैं और उस बैरियर को क्रॉस करते हैं। That is pole vault। देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल लग जाता है इन लोगों को बैठ के टीवी के सामने कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ईजी है, सब कोई कर लेंगे, लेकिन नो, इट्स नॉट दैट ईजी। सो अरमान दुप्लांटिस मुझे लगता है कि सर्गे बुबका से भी कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड, कुछ ज़्यादा ही यू नो आई वुड से मारूफ, बिल्कुल हाँ। और पोल वॉल्ट की तारीख में अगर सबसे अजीम खिलाड़ियों में अगर मैं बोलूं कि अगर दुप्लांटिस का नाम मैं यहाँ पे शामिल करूं तो मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। 10 नवंबर 1999 को अमेरिका के लुसियाना शहर में पैदा हुए और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद सिर्फ 1 साल में वो प्रोफेशनल बने। लेकिन दुप्लांटिस ने अमरीका के बजाय स्वीडन को रिप्रजेंट करने का फैसला किया, अपनी अम्मी के हेरिटेज को अपनाया और स्वीडिश जुबान सीखी और पूरी यूरोप में उनको शोहरत मिली। दुप्लांटिस के कई रिकॉर्ड्स हैं, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वो अपना रिकॉर्ड बनाता है खुद तोड़ता है, अपना रिकॉर्ड बनाता है खुद तोड़ता है, ये उनका एक सिलसिला था और हाल ही में उस सिलसिले को तोड़ा गया। लेकिन जो मुसलसल रिकॉर्ड बना रहा है तोड़ रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है तोड़ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ना, कोई नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना ही बना रहा है अपना तोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो बात है इस खिलाड़ी में, इस प्लेयर में। और इस साल दुप्लांटिस ने 6.28 मीटर की जंप के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 2020 से लेकर अब तक 12 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। Can you beat this? Can you imagine? आप तस्वीर कर सकते हैं क्या? तो है ना इंटरेस्टिंग, दुप्लांटिस खुद अपने आप से कम्पीट करते हैं। कहते हैं कि जो बड़े लेवल के जो एथलीट्स होते हैं उनका यह हमेशा फिलोसॉफी रहा है कि वो अपने आप से कम्पीट करें तो बेटर फील करते, आई मीन बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और कुछ हद तक यहाँ पे ये बात सही भी है। गोल्फर्स के लिए कहा जाता है कि गोल्फर्स दे प्ले विद देमसेल्व्स, गोल्फर का कोई ओपोनेंट नहीं होता, वो अपने आप से खेलता है। तो स्वीडन के लिए कम्पीट करते हुए दुप्लांटिस 2 दफ़ा ओलंपिक चैंपियन 2020-2024, 2 दफ़ा वर्ल्ड आउटडोर चैंपियन 2022-2023 और 3 मरतबा 2022-2024 और 2025 में वर्ल्ड इंडोर चैंपियन रह चुके हैं। उनके नाम 3 यूरोपियन टाइटल्स और 4 डायमंड लीग टाइटल्स हैं और उनका डोमिनेशन इस बात का सबूत है कि वो 30 से ज़्यादा 6.10 मीटर से ऊंची जंप लगा चुके हैं। एक एथलीट खानदान में पले बड़े डुप्लांटिस, जिसको मोंडो भी कहा जाता है, डुप्लांटिस के वालिद ग्रेग खुद एक फॉर्मर पोल वॉल्टर रहे, जबकि उनकी वालदा हेलेना एक्स हेप्टाथलीट थी। अच्छा, बचपन से ही उन्हें अपने वालदैन ने ट्रेनिंग दी, और यही होता है कि जब आपके घर में ही आपके अगर पेरेंट्स अगर आपके एथलीट्स हों तो वो एक आपके लिए एक बोनस है, एक एडवांटेज है, बिकॉज यू गेट दैट फॉर्मल ट्रेनिंग, यू नो, बड़े ही कम एज में आपको वो ट्रेनिंग हासिल हो जाती है। सिर्फ 3 साल की उम्र में डुप्लांटिस ने वॉल्टिंग शुरू कर दी थी, और सिर्फ 7 साल की उम्र में उनके नाम एज ग्रुप वर्ल्ड बेस्ट रिकॉर्ड्स आ गए थे। अच्छा, उनके भाई बहन आंद्रियास, अंतोइन और जुआना भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। अंतोइन ने बेसबॉल में नाम कमाया, जबकि जुहाना ने पोल वॉल्टिंग में महारत रखती हैं, और उनकी पर्सनालिटी, कैरिश्मा और लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस ने उन्हें ग्लोबल एथलेटिक्स का एक सुपरस्टार, एक हीरो बना दिया है। तो सवाल यह है कि डुप्लांटिस और कितना ऊंचा उड़ सकता है? दुनिया की नजरें उन पर हैं दोस्तों, और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि डुप्लांटिस को हराना थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी लगता है मुझे। कभी कभार लगता है कि कुछ एथलीट्स दे आर बॉर्न टू डोमिनेट, दे आर बॉर्न टू, यू नो, दे आर बॉर्न टू डोमिनेट, नॉट ओनली जस्ट डोमिनेट बल्कि वो बताना चाहते हैं कि ये जो एथलेटिक्स या ये जो फुटबॉल, ये जो क्रिकेट है, ये जो अपना जो गेम है वो मेरा है, दैट इज़ माई टेरिटोरी, और यहाँ पर कोई भी ओपोनेंट मैं रखना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और हाल ही में जैसे मैंने शुरू में बताया कि डुप्लांटिस पहली मरतबा किसी पोल वॉल्ट इवेंट में और मोंडो डुप्लांटिस को हार का सामना करना पड़ा पिछले हफ्ते स्टॉकहोम में मुनाकिदा वांडा डायमंड लीग, जो कि स्टॉकहोम डुप्लांटिस के ही शहर हैं, और डुप्लांटिस के शहर में मोंडो डुप्लांटिस को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कुर्तिश मार्शाल ने मोंडो को हराया, और मोंडो डुप्लांटिस का ये फर्स्ट डिफीट इन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इन द पोल वॉल्ट। अच्छा, डुप्लांटिस के बारे में आपसे ये बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड दे चुका हूँ कि मल्टीपल वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 6.28 मीटर अपने ही घर पर स्टॉकहोम में पिछले साल किया था, और उसी मार्क को थोड़ा बढ़ाकर 6.31 मीटर तक पहुंचाया था। लेकिन इस वक्त, इस टाइम, पिछले हफ्ते जिस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, जिस चैंपियनशिप में उनको हार का सामना करना पड़ा, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 5.80 मीटर, और मार्शल जो ऑस्ट्रेलिया के मार्शल है उन्होंने इस टाइटल को जीता 5.09 मीटर। तो देखिए, अब मुझे लगने लगा कि थोड़ा सा अगर देखो तो थोड़ा डाउनफॉल लग रहा है डुप्लांटिस का। कभी कभार हो जाता है कि एक ज़माने पहले टाइगर वुड्स बोर हो गए थे और

0: यू नो टाइगर वुड्स खेलते खेलते अपने आप ही खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो बोर हो गए थे। हो सकता है कि डुप्लांटिस के साथ कुछ ऐसा भी हो रहा हो, ही इज़ गेटिंग बोर्ड बिकॉज कोई ओपोनेंट, कोई चैलेंजर्स उनको नज़र ही नहीं आ रहा हो। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये मार्शल ने अगर उसको हराया है तो हो सकता है कि देर इज़ अ चेंज इन पैटर्न, देर इज़ अ चेंज इन सिनेरियो। हो सकता है आने वाले टाइम में भी डुप्लांटिस को कोई और भी हरा दे। लेकिन बात वही है कि एथलेटिक्स की दुनिया में कुछ एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस से खेल की तारीख बदल देते हैं, और पोल वॉल्ट के इवेंट में स्वीडन के सुपरस्टार अरमान मोंडो डुप्लांटिस भी उन्हीं अजीम एथलीट्स में से एक हैं। और अहमियत यह है कि उनकी जो टैलेंट है, आई वुड से कि वो इम्पोर्टेंस देते हैं उनके टैलेंट को, और कंसिस्टेंसी की बदौलत पोल वॉल्ट को नए मकाम तक पहुंचाया और कई मरतबा अपनी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। आज भी डुप्लांटिस ये सोचते हैं कि उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो टूटे, कोई तोड़ दे, लेकिन वो खुद ही तोड़ते हैं खुद ही तोड़ते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि डुप्लांटिस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो अक्सर कॉम्पिटिशन जीतने के बाद बार को और ज्यादा ऊंचा कर देते हैं ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोशिश कर सकें, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने कई मरतबा अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नए माइलस्टोन्स कायम किए। ये बहुत कम एथलीट्स के साथ होता है कि वो दूसरों के रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि अपने ही रिकॉर्ड्स को चैलेंज करते हैं। इट इज समथिंग इनबॉर्न, उसे खुशी मिलती है। दूसरे को रिकॉर्ड तोड़ना एक टारगेट रखते हैं कि मैं पहले का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, या रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, या मेसी का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। कोई ऐसे खिलाड़ी है या फुटबॉलर है जो कि कहता है कि मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊं और अपने आप को अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दूं, तो वो बहुत एक्सेप्शन है। लेकिन डुप्लांटिस इज एन एक्सेप्शनल फिगर, एन एक्सेप्शनल एथलीट इन मॉडर्न एथलेटिक्स। पोल वॉल्ट एथलेटिक्स का एक बहुत मुश्किल इवेंट माना जाता है, और एथलीट को एक लंबी पोल के जरिए हवा में बुलंद उछाल लगानी होती है और बार के ऊपर से गुजरना होता है। और इस इवेंट में स्पीड, ताकत, बैलेंस और टेक्निक सब की जरूरत होती है। डुप्लांटिस ने इन तमाम सलाहियतों को एक बेहतरीन अंदाज में मिलाकर इस इवेंट पर हुक्मरानी कायम की। उनकी जंप्स देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो ग्रेविटी के कवानीन को चैलेंज कर रहे हों, और इसी वजह से दुनिया भर के एथलेटिक्स फैंस उनकी परफॉर्मेंसेस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर कंपटीशन में लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या मोंडो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएंगे जैसे पिछले हफ्ते हुआ था। लेकिन थोड़ा मायूस होना पड़ा उनके फैंस को, उनके जितने भी यू नो फॉलोअर्स हैं उनको थोड़ा सा मायूसी से गुजरना पड़ा। ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी डुप्लांटिस ने गोल्ड मेडल्स जीतकर अपनी बढ़तरी साबित की। उन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाए बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स में प्रेशर के नीचे भी शानदार परफॉर्मेंसेस दी। ये किसी भी चैंपियन की सबसे बड़ी पहचान होती है, यू नो हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन, हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट एथलीट, डुप्लांटिस इज वन ऑफ देम। मोंडो डुप्लांटिस का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इंसानी सलाहियत की मिसाल है। उन्होंने दिखाया है कि मेहनत, डेडिकेशन और खुद पर यकीन के जरिए नामुमकिन नजर आने वाले हदफ भी हासिल किए जा सकते हैं। एथलेटिक्स की तारीख में उनका नाम पोल वॉल्ट के अजीम तरीन एथलीट्स में शुमार किया जाएगा। आज भी जब डुप्लांटिस रनअवे पर दौड़ते हैं और पोल के जरिए हवा में बुलंद होते हैं तो दुनिया भर के फैंस सांस रोककर देखते हैं। हर नई जंप के साथ ये उम्मीद होती है कि शायद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। इसीलिए मोंडो डुप्लांटिस को मॉडर्न एथलेटिक्स का एक सच्चा सुपरस्टार और पोल वॉल्ट का बेताज बादशाह कहा जाता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन, और आज हम बात कर रहे हैं या कर चुके हैं आवर फर्स्ट सेगमेंट ऑन मोंडो डुप्लांटिस, द बेताज बादशाह ऑफ पोल वॉल्ट, और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। अभी हम

0: बात करेंगे और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ मुख्तलिफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में. तो लेट्स पिक ऑन फुटबॉल. यह दोस्तों फुटबॉल की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है. रोनाल्डो अभी बिजी है वर्ल्ड कप में और पोर्चुगल के लिए खेल रहे हैं. सिक्स वर्ल्ड कप एंड दिस विल बी ऑब्वियसली हिज लास्ट वर्ल्ड कप. 41 ईयर ओल्ड. लेकिन रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं. एज पर मत जाइएगा. उन्होंने पोर्चुगल की नुमाइंदगी करते हुए 130 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स करके दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया. ये कारनामा इसलिए भी खास है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ मुसलसल गोल्स करना बहुत मुश्किल होता है. रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप, यूरोपियन चैंपियनशिप और क्वालिफायर्स में भी गोल्स की बरसात की. उनका ये रिकॉर्ड फुटबॉल की तारीख के सबसे यादगार और काबिल-ए-तारीफ रिकॉर्ड्स में शामिल है. Now let's move on to cricket. और क्रिकेट की तारीख का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड मुतैया मुरलीधरन के नाम है. श्रीलंका के इस लेजेंडरी स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट्स हासिल की हैं, जो आज तक किसी भी बॉलर के लिए सबसे ज्यादा है. मुरलीधरन ने अपनी जादुई स्पिन बॉलिंग से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला और लगभग दो दिहाइयों तक क्रिकेट पर डोमिनेट किया. उन्होंने अपना 800 विकेट अपने आखिरी टेस्ट मैच में हासिल किया था. क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना फ्यूचर में किसी भी बॉलर के लिए इंतहाई मुश्किल होगा. टेनिस में मार्टिना नवरातिलोवा के बारे में आज हम बात करेंगे. टेनिस की दुनिया का एक शानदार नाम और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मार्टिना नवरातिलोवा. मार्टिना ने अपने करियर में 167 सिंगल्स टाइटल्स जीते और जो कि टेनिस की तारीख में सबसे ज्यादा हैं. उनकी कंसिस्टेंसी, फिटनेस और विनिंग मेंटालिटी ने उन्हें कई सालों तक दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रखा. ये बात है मिड 70s और अर्ली 80s की बात है. क्रिस एवर्ट लॉयड वर्सेस मार्टिना नवरातिलोवा. वीमेन सिंगल्स कहीं पर भी देखने को मिल जाए आपको तो ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होते थे. तो मार्टिना नवरातिलोवा एक लेजेंड है, वीमेंस टेनिस के लिए एक आइडल है और उन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के अलावा छोटे और बड़े इवेंट्स में भी गैर मामूली कामयाबी हासिल की. आज भी कोई टेनिस प्लेयर उनके 167 सिंगल टाइटल्स के रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंच सका और इसीलिए मार्टिना नवरातिलोवा का यह रिकॉर्ड टेनिस की तारीख के सबसे अजीम रिकॉर्ड्स में से एक माना जाता है. पिछले दफा हमने स्विमिंग में मार्क स्पिट्स के बारे में बात किया था. 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन 1 सिंगल ओलंपिक गेम्स. आज मैं बात करूंगा माइकल फेल्प्स के बारे में. लेजेंड. स्विमिंग की तारीख का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है. अमेरिकन स्विमर हैं और वो जब स्विम करते थे तो लोगों को लगता था कि ही वाज डोमिनेटिंग, जस्ट लाइक व्हाट डुप्लांटिस डिड, डोमिनेटिंग द स्विमिंग पूल. माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक गेम्स में मजमूई तौर पर 23 गोल्ड मेडल्स जीतकर दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया. 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स मार्क स्पिट्स ने उस जमाने में लिया था 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स में. लेकिन उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स की बात जब बात करो, मॉडर्न मींस दैट वाज आल्सो मॉडर्न, मतलब मोर यू नो फंडामेंटल्स चेंज हुए थे स्विमिंग में और वहीं पर माइकल फेल्प्स ने 23 गोल्ड मेडल्स जीतकर सबको चौंका दिया. यह रिकॉर्ड सिर्फ स्विमिंग की नहीं बल्कि तमाम ओलंपिक स्पोर्ट्स में किसी भी एथलीट के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड है. तो ये याद रखिएगा माइकल फेल्प्स. तब आप कहेंगे कि माइकल फेल्प्स यस स्विमर, 23 गोल्ड मेडल्स. कोई भी एथलीट ने ओलंपिक गेम्स में इतने ज्यादा गोल्ड मेडल्स नहीं जीता है और ये रिकॉर्ड सिर्फ स्विमिंग नहीं बल्कि तमाम ओलंपिक स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स का एक रिकॉर्ड है. फेल्प्स ने 2004 से 2016 तक ओलंपिक पूल्स पर हुक्मरानी की और फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और मेडली इवेंट्स में गैर मामूली कामयाबी हासिल की. दुनिया भर के स्विमर्स उनके इस कारनामे को एक मिसाल मानते हैं और आज भी उनका 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड कायम है, अनब्रोकन. मूविंग ऑन टू बास्केटबॉल. और बास्केटबॉल की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड लेब्रन जेम्स के नाम है. लेब्रन जेम्स NBA की तारीख में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए जब उन्होंने करीम अब्दुल जब्बार का कई दिहाइयों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने अपने करियर में 40,000 से ज्यादा पॉइंट स्कोर करके बास्केटबॉल की दुनिया में नया बाब खोला, यानी दरवाजा खोल दिया. और ये कारनामा इसलिए भी खास है क्योंकि NBA में इतनी देर तक मुसलसल हाई लेवल पर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है. लेब्रॉन जेम्स का ये स्कोरिंग रिकॉर्ड बास्केटबॉल की तारीख के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में शुमार होता है। अब बात करते हैं और चलते हैं रेसिंग ट्रैक पर, जहां आज अब बात होगी ल्यू हैमिल्टन के बारे में। जी हां दोस्तों, मोटर स्पोर्ट्स की तारीख का एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड ल्यू हैमिल्टन के नाम है। ल्यू हैमिल्टन ने फॉर्मूला वन में 105 ग्रां प्री रेसेस जीतकर सबसे ज्यादा रेस विंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपनी गैर मामूली स्पीड, कंसिस्टेंसी और रेस क्राफ्ट की बदौलत माइकल शूमाकर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैमिल्टन ने मर्सिडीज को कई यादगार सीजन में रिप्रेजेंट किया और फॉर्मूला वन की तारीख के कामयाब तरीन ड्राइवर्स में शामिल हो गए। दुनिया भर के मोटर स्पोर्ट्स फैंस उनके इस कारनामे को बहुत अहमियत देते हैं। उनका 105 विक्ट्रीज का रिकॉर्ड फॉर्मूला वन की तारीख का एक अजीम माइलस्टोन माना जाता है। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है कैमल रेसिंग। कतर में बैठे हुए हैं और कैमल रेसिंग के बारे में ना बात हो तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो दोस्तों, कैमल स्पोर्ट्स की दुनिया का एक दिलचस्प वर्ल्ड रिकॉर्ड कतर के मशहूर कैमल रेसिंग फेस्टिवल से मुतालिक है। 2024 में कतर के आशाहानिया रेस ट्रैक पर एक ही इवेंट में 15,000 से ज्यादा रेसिंग कैमल्स की शिरकत ने कैमल रेसिंग की दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया। कैमल रेसिंग अरब कल्चर का अहम हिस्सा है दोस्तों, और गल्फ ममालिक में इस खेल को बहुत शौक से देखा जाता है, फॉलो किया जाता है। इस रिकॉर्ड ने कैमल स्पोर्ट्स की मकबूलियत को दुनिया भर में उजागर किया। आज अशानिया को कैमल रेसिंग का मरकज माना जाता है, जहां हर साल हजारों ऊंटे और उनके मालिकान मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। कैमल रेसिंग के बाद एथलेटिक्स का एक रिकॉर्ड है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और एथलेटिक्स की तारीख का एक लाजवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक एथलीट जर्मिला क्राटोचिवोलिलुपा के नाम है। उन्होंने 1983 में 800 मीटर रेस सिर्फ 1:53.28 में मुकम्मल की थी। हैरत की बात यह है कि 40 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद कोई भी एथलीट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। दुनिया के बेहतरीन रनर्स ने कई दफा कोशिश की, लेकिन जर्मिला का ये रिकॉर्ड अब भी कायम है। एथलेटिक्स की दुनिया में इसे सबसे मुश्किल और मजबूत रिकॉर्ड्स में शुमार किया जाता है, और ये आज भी फैंस और एक्सपर्ट्स को मुतासिर करता है। Now moving on to Qatar angle, and when we talk about Khalifa International Stadium, यहाँ दोस्तों खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम एक मशहूर स्टेडियम एंड यही है स्पोर्ट्स सिटी में, एंड नज़दीक है, आप देख सकते हैं। जब भी आप उस तरफ मॉल के तरफ जाते हैं तो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम आपके दाएं तरफ या बाएं तरफ खड़ा हुआ दिखता है कि यार दिस इज़ अ मेजर मैसिव स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहने, एक स्पोर्टिंग आइकन कहने, एक वेन्यू जिसे हर कोई यू नो रिलेट कर सकता है विद कतरी स्पोर्ट्स, विद कतर्स लीगेसी। यहाँ दोस्तों खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने कई ऐसे इवेंट्स होस्ट किए हैं, और ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि एथलेटिक्स, वर्ल्ड कप के कई मैचेस हुए, 2022 वर्ल्ड कप के कई मैचेस हुए, उसके साथ साथ आई वुड से कि अंडर 17 वर्ल्ड कप जो फीफा का वर्ल्ड कप था उसका फाइनल भी पिछले साल यहाँ पे हुआ था। और इस तरह से देखा जाए तो एक लेगेसी, एक हिस्टोरिक वेन्यू है फॉर कतर। रेस्ट ऑफ द वेन्यूज जो है वो थोड़ा बहुत यू नो बाद में बनाया गया था, और आज अगर एक कैलकुलेशन करें, एक एनालाइज करें द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेडियम, तो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम ज़रूर उसमें शामिल होता है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने एथलेटिक्स की तारीख में एक यादगार वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा, जब 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के दौरान दलीला मोहम्मद ने विमेंस 400 मीटर हर्डल्स में 52:16 का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और दोहा के इस मशहूर स्टेडियम में हुई इस रेस ने दुनिया भर के एथलेटिक्स फैंस को हैरान कर दिया। दलीला ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड बेहतर बनाया और साबित किया कि वो अपने दौर की बेहतरीन हर्डलर हैं। ये हर्डल्स की बात हो रही है दोस्तों, 400 मीटर हर्डल्स देखने में बहुत अच्छा लगता है, वन ऑफ माई फेवरेट इवेंट्स, जहाँ पे यू नो व्हेन द एथलीट्स जब दौड़ के आते हैं तो उनके सामने ये हर्डल्स होते हैं, और उसमें जब स्ट्रेच करते हैं, जंप लगाते हैं, देखने लायक होता है। एंड इट्स अमेजिंग फिटनेस, कंसिस्टेंसी, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में बनने वाला ये रिकॉर्ड जस्ट नॉट रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड कतर की स्पोर्टिंग तारीख का भी अहम हिस्सा है और आज तक याद किया जाता है। तो दोस्तों दलीला मोहम्मद है कौन, थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम बता दें तो हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा सा सही बैठता है। दलीला मोहम्मद के बारे में आप लोगों को जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है। और दलीला मोहम्मद एक्चुअली अगर देखा जाए तो अमेरिका के हैं, अमेरिका के हैं, और दलीला मोहम्मद अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड लेजेंड हैं। वो जो 400 मीटर हर्डल जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 400 मीटर हर्डल्स में उन्होंने यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में। 2016 रियो ओलंपिक चैंपियन, 2020 टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, एंड सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड फास्टेस्ट वुमेन ऑफ ऑल टाइम इन द इवेंट और पर्सनल बेस्ट 51.58 सेकेंड। तो दलीला मोहम्मद एक टैलेंटेड, एक आउट से 36 ईयर ओल्ड है और आज भी वो यंगस्टर्स को चैलेंज करते हैं कि आइए मुझे चैलेंज कीजिए एंड देन आई विल शो यू हु एम आई। तो जैसे मैंने बताया गोल्ड इन द 400 मीटर हर्डल्स 2020 टोक्यो ओलंपिक्स और उसमें सिल्वर और एक साथ एक 4x400 मीटर रिले में गोल्ड इन द टोक्यो ओलंपिक्स। और वर्ल्ड फाइनल्स तो कई हैं, 2013 का मॉस्को वर्ल्ड फाइनल्स में 400 मीटर हर्डल्स में सिल्वर हैं, 2017 में लंदन में 400 मीटर हर्डल्स में दो सिल्वर, 2019 जैसे मैंने अभी जिक्र किया 4x400 मीटर रिले में गोल्ड, और 2022 यूजीन में उनाकेदा वर्ल्ड एथलेटिक्स में 400 मीटर हर्डल्स में एक ब्रॉन्ज है। तो इसी तरह देखा जाए कि दलीला मोहम्मद जो है ना सिर्फ हर्डल्स बल्कि स्प्रिंट्स में भी हाई जंप में भी उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही स्ट्रांग हैं जितने कि उनके अपने पेट इवेंट जो है वो हर्डल्स में। तो दोस्तों आज हमने जो रिकॉर्ड्स के बारे में हमने जिक्र किया, हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को बच्चों को ये थोड़ा सा ये मुतासिर करें, थोड़ा सा एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं एनलाइटमेंट, क्योंकि रिकॉर्ड से ही छोटे बच्चे जो हैं थोड़ा सा वो होते हैं मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं कि वाई नॉट वी ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे हम भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर लें, चाहे स्कूल रिकॉर्ड से शुरू कर लें, स्कूल गेम से शुरू कर लीजिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बाद में, बट यू नो दोस गिव्स देम मोटिवेशन, दोस गिव्स देम यू नो काइंड ऑफ स्पार्क इन देयर लाइफ, इन देयर यू नो इन देयर माइंड। वो पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं और स्पोर्ट्स में अगर आपने कहीं मेडल लेके आते हैं तो दैट गिव्स देम अ सर्टेन बूस्ट टू देयर कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड स्पोर्ट्स को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स हर तरह के स्पोर्ट्स को अपनाइए, हर तरह के स्पोर्ट्स में आप अपने बच्चों को धकेल दीजिए, मैंने पुश कर दीजिए, मेक देम प्ले बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, फुटबॉल, इवन चेस, घर बैठ के अगर हैं तो इंडोर चेस में भी आप उन लोगों को बिजी कर दीजिए। देखिए स्पोर्ट्स ओपन्स द माइंड, स्पोर्ट्स से आपका दिमाग खुलता है, स्पोर्ट्स से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, स्पोर्ट्स लेजेंड्स को पढ़िए एंड यू वुड नो कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह डुप्लांटिस ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड है। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद अमीन, अगले किश्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़ यानी वक्त हो चला है।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: तो हाँ भाई मेरी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। FM 107 पर मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम हमारे इस खासम खास शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रहा है आज का दिन, इस वक्त क्या कर रहे हो? हाँ वैसे जो भी कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ पूरा एक घंटा जुड़ने वाले हैं तो थोड़ा सा चिल मोड और थोड़ा सा शार्प मोड दोनों ही ऑन रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर चिल मोड होगा कि भाई देखो म्यूज़िक वगैरह बड़ा कमाल का होगा जो कि मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, ताकि जब हर एक सवाल आपसे पूछा जाए एक एस्केप सिचुएशन से बचने के लिए, तब आपको पूरी एनर्जी के साथ काम करना है। एंड आई एम वेरी सर्टेन कि ये जो म्यूज़िक है ना, ये आपको एनर्जी भी देगा, पार भी देगा और सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ा देगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वेल आज आप क्या बनने वाले, आज आप एस्केप रूम में एक आर्टिस्ट बनने वाले। हाँ जी, एक आर्टिस्ट के मास्टरपीस के अंदर हो सकता है कैद हो जाए या फिर खुद ही आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसमें लोग कैद हो जाए। सो यस, कीप थिंकिंग, क्योंकि आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की होने वाली है। कुछ ही देर में आज एस्केप रूम की सिचुएशन आपके सामने आएगी जहाँ से आप या तो लोगों को एस्केप कराएंगे या खुद एस्केप होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। अब ये क्या है, ये मिस्ट्री थोड़ी देर में आपके सामने हिस्ट्री बन के आएगी। और अभी के लिए क्या करना है, 666-22-107 इज आर नंबर, इसे याद कर लीजिए। इसके जरिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, ठीक है? और अभी क्या कर रहे हो वैसे, अगर करक वगैरह पीना है, नींबू पानी पीना है, जो भी, मतलब जस्ट रिफ्रेश योरसेल्फ, थोड़ा लूजन अप हो जाओ क्योंकि

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स फोर रन।
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और

0: पर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की,
2: स्पोर्ट्स की। आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देखें।
3: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और इस वक्त हम कहाँ हैं? एस्केप रूम के अंदर। और आज की सिचुएशन क्या होगी, चलिए इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो आपने अक्सर जो एग्जिबिशंस होती हैं तस्वीरों की, वो ज़रूर देखी होगी, बहुत सराहा होगा, इन्जॉय किया होगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि तस्वीरों को देखते देखते अगर हम खुद एक तस्वीर का हिस्सा बन जाए तो कैसा हो? आज का एपिसोड द आर्टिस्ट मास्टरपीस इसी बारे में है। तो तस्वीर कीजिए कि रात का वक्त है, ठीक है, चारों तरफ सन्नाटा है और आप एक शानदार धुंधली रोशनी वाली एक आर्ट गैलरी में अकेले घूम रहे हैं, क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं और आर्ट के लवर हैं। तो आपने कहा कि चलो भाई आज आर्ट गैलरी में चला जाए। तो ये सीन की शुरुआत है। आपके सामने एक बहुत बड़ी ऑयल पेंटिंग है जिसका नाम है द डोर टू नोवेयर। उस पेंटिंग से आ रही है वो फ्रेश पेंट की खुशबू जो कि आपके जहन में उतरते जा रही है। आपका मन किया कि बस एक बार इस पेंटिंग को छू कर देखें और आपने अपने आप को रोका भी नहीं। पर जैसे ही आपने अपनी उंगली कैनवस पर रखी, आपका हाथ उसमें किसी लिक्विड की तरह धंसने लगा। चीखने का मौका तक नहीं मिला और आप सीधा उस पेंटिंग के अंदर खींच के चले गए। उफ, ये सोचा था कभी कि एक आर्ट गैलरी में जहां आप आर्टिस्ट की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने जाएंगे, अब वही एक पेंटिंग के अंदर आप फंस जाएंगे। अब आप किसी कारपेट पर नहीं है बल्कि एक गाढ़े गीले ब्लू रंग के पेंट के एक पहाड़ पर खड़े हैं। आसमान सोने और जामुनी रंग के ब्रश स्ट्रोक से भरा हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या। आप इस मास्टरपीस में कैद हो चुके हैं और अगर आपको यहां से बाहर निकलना है तो इस पिगमेंट और रंगों की परतों को, लेयर्स को पार करना होगा। रेडी हैं आप? चलें। मंजर बदलते जा रहा है। ये नीले रंग की पहाड़ियां अब लहरों की तरह हिल रही हैं। तभी आपको जमीन में कड़ी हुई एक पुरानी लकड़ी की चीज दिखाई दी और उस पर आपका क्लू नंबर 1 ये रहा। मेरा जिस्म लकड़ी का है और सर बालों से बना हुआ है। मैं वो जादुई डंडा हूं जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है, पर आर्टिस्ट के हाथ के बिना मैं कुछ भी नहीं।

वेरी सर्टेन कि हम सब ने ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया है. और आज जो भी मैं पहेली आपसे पूछूंगी, जो भी क्लोज हमको इस एस्केप रूम की सिचुएशन के लिए मिलेंगे, वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो आई रिपीट अगेन, मेरा जिस्म लकड़ी का है और सर बालों से बना है. मैं वो जादुई डंडा हूँ जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है, पर आर्टिस्ट के हाथ के बिना मैं कुछ भी नहीं. मैं रंगों को पीता हूँ और खूबसूरती बिखेरता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ. कम ऑन, थिंक अबाउट इट गाइज. जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 666-22-107 पर, 666-22-107. अभी आप एक आर्टिस्ट के मास्टरपीस का हिस्सा हैं, रंगों की दुनिया का हिस्सा हैं. और अब क्लू नंबर वन आपको सॉल्व करना ही होगा ताकि आप इस लेवल वन को पार करें और अगले पड़ाव तक पहुंच पाए. और इसमें मदद करेंगे बेहतरीन गाने. चले एंजॉय करें वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक माशू का. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। भाई एस्केप रूम की आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये होने वाला है। हम एक आर्ट गैलरी में गए, हमें वहाँ का एग्जिबिशन बड़ा अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे, एंड सडनली हमारे सामने एक बहुत बड़ी सी ऑयल पेंटिंग आई। सारे जो उसके रंग थे बिल्कुल फ्रेश थे, और वो जो रंगों की खुशबू थी वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और हम अट्रैक्टेड हो भी गए। तो हमने क्या किया, जाकर उस ब्यूटिफुल सी पेंटिंग को टच कर लिया, और जैसे ही हमने उसे छुआ हम सीधा उस पेंटिंग के अंदर चले गए। वहाँ पर ब्लू पेंट के गाढ़े रंग के पहाड़ पर खड़े हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले कैसे, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और धीरे धीरे मंजर बदलने लगा, ये नीले रंग की जो पहाड़ियाँ थीं वो लहरों की तरह हिलने लगी। हमें लगा ओह हो अब हम क्या करेंगे, तभी हमारे सामने क्लू नंबर वन आया। मेरा जिस्म लकड़ी का है और सर बालों से बना है, मैं वो जादुई डंडा हूँ जिसने इस दुनिया को जन्म दिया, पर आर्टिस्ट के हाथ के बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं रंगों को पीता हूँ और खूबसूरती बिखेरता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। एग्जैक्टली, ये बताना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा हमें खुद नहीं पता। तो सही जवाब है पेंट ब्रश, और जिन्होंने भी सही जवाब दिया उनके लिए जोरदार तालियां। तो आप सब अपनी पीठ को थपथपा लीजिए, वेल डन वेल डन वेल डन। और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया उनके नाम आइए आपको गिनाते हैं। सबसे पहले जवाब दिया है अनम रूहान ने, सरफराज ने, और कौन है ये जनाब, तुफेल हमारे साथ हैं, बहुत ही शानदार। देखिए अपने नाम जरूर लिखा करें जब भी आप मैसेज करें। फातिमा यूसुफ हमारे साथ हैं, फारूक हमारे साथ हैं, और कौन है हमारे साथ, बूसुदेस है हमारे साथ, अब्दुल्ला भी है हमारे साथ, हमजा हमारे साथ है, वेरी गुड वेरी गुड।

गुड, रमेश हमारे साथ है और इन सब ने सबसे पहले सही जवाब दिए. वेल, जिनके नाम मैंने नहीं लिए उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि आपने भी सही जवाब दिए. लिस्ट काफी लंबी है. तो यहाँ पर हमने पहला पड़ाव पार कर लिया, और जब ये पहला पड़ाव हमने पार किया तो हमारे सामने क्या हुआ, जैसे ही हमने ब्रश जवाब दिया, पेंट ब्रश सही जवाब दिया, तो हम एकदम से एक ऐसे सफ़ेद मैदान में आकर खड़े हो गए, और हमें ऐसी फीलिंग आई कि हमारे पैरों के नीचे का जो एहसास है, मतलब पैरों के नीचे जो है ना, वो ज़मीन नहीं है, मतलब सफ़ेद मैदान है लेकिन एक खुरदुरे कपड़े जैसी फीलिंग आ रही है. ओके, एंड देयर कम्स योर क्लू नंबर टू. मैं आर्ट की खाल हूँ, ठीक है, मैं आर्ट की खाल हूँ. मुझे लकड़ी पर कसकर बांधा जाता है ताकि मैं पेंटर के ख्वाबों को संभाल सकूं. पहली लकीर खींचने तक मैं बिल्कुल सफेद और खाली रहता हूं. मैं क्या हूं? सोचिए, हर आर्टिस्ट को इस बेस की जरूरत होती है. क्या जवाब हो सकता है आपका? 666-22-107, 666-22-107 पर आप जल्दी से मुझे सही जवाब दें अपने नाम के साथ, एंड लेट्स सी कि आप ये दूसरे फेज को पार कर पाते हैं कि नहीं. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर. सो वंस अगेन आई विल रिपीट, मैं आर्ट की खाल हूँ, मुझे लकड़ी पर कसकर बांधा जाता है ताकि मैं पेंटर के ख्वाबों को संभाल सकूँ. पहली लकीर खींचने तक मैं बिल्कुल सफ़ेद और खाली रहता हूँ. मैं क्या हूँ? कम ऑन, गेस द आंसर. एंड तब तक के लिए थोड़ा म्यूजिक तो बनता है भाई. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देश से.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: यह जनाब एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02। मेक अ विश कि आज की सिचुएशन से आप एस्केप कर पाए।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। तो आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। हम एक आर्ट गैलरी में गए थे और एक आर्टिस्ट के मास्टरपीस के अंदर कैद हो गए हैं। ठीक है, हमारे पैरों के नीचे एक गाढ़ा नीले रंग का पहाड़ था, फिर वो पहाड़ एकदम नदी की तरह धीरे धीरे हिलने लगा। हमें डर लगने लगा कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, बट कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हर मोड़ पे क्लूज मिलेंगे, उन्हें सॉल्व कीजिए और इस आर्टिस्ट के मास्टरपीस से बाहर निकलिए, है ना, क्योंकि वो हमारी असली दुनिया नहीं है। तो पहला क्लू आप सबने सॉल्व किया एंड दैट वाज पेंटिंग ब्रश, बिल्कुल सही जवाब था। दूसरा क्लू आपके सामने था कि मैं आर्ट की खाल हूँ, मुझे लकड़ी पर कस कर बांधा जाता है ताकि मैं पेंटर के ख्वाबों को संभाल सकूँ। पहली लकीर खींचने तक मैं बिल्कुल सफ़ेद और खाली हूँ, क्या हूँ मैं? और मैंने कहा था भाई हर एक आर्टिस्ट को इस बेस की ना ज़रूरत होती है, इसके बिना कोई भी पेंटिंग नहीं हो सकती। हाँ, तो जवाब क्या क्या आए हैं हमें, चलिए ज़रा नज़रें दौड़ाते हैं उस पर। तो कुछ ने कहा है क्राफ्ट पेपर, कुछ ने कहा है पेंटिंग पेपर, कुछ ने कहा है वाइट ड्राइंग शीट, ओके, कुछ ने कहा है कैनवस, कुछ ने कहा है पेंट वाइट बोर्ड, कुछ ने कहा है पेंटिंग बोर्ड। देखिए, जिन्होंने भी कैनवस लिखा है, पेंटिंग बोर्ड लिखा है, पेंट वाइट बोर्ड लिखा है, बिल्कुल सही जवाब है बॉस, बिल्कुल सही जवाब है। तो आप सबने क्लू नंबर 2 सॉल्व कर लिया। वाओ, अब सिर्फ आखिरी पड़ाव बचा है, आखिरी पड़ाव। लेकिन क्लू नंबर 2 जिन्होंने सही जवाब दिए और जल्दी जल्दी जवाब दिया, आइए जरा उनके नाम हम दोहरा देते हैं, जल्दी से गिन लेते हैं कौन कौन है हमारे साथ। देखिए, हर कोई कोशिश करता है सही जवाब देने की, लेकिन ज़रूरी है कि आप जल्दी जल्दी जल्दी हमें जवाब दें। तो मोहम्मद राइद, अनमैन रुहान, जुनैद, और कौन है जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की है। देखिए, नाम लिख नहीं पाते, मुझे आपकी प्रोफाइल्स चेक करनी होती हैं, तो प्लीज़ आंसर्स के साथ नाम भी लिखा करें। तुफैल ने भी सही जवाब दिया, फातिमा यूसुफ ने भी सही जवाब दिया है। तो ये हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से आप सभी के लिए। ऑल राइट, क्लू नंबर 2 आप सब ने सॉल्व कर लिया है। अब ये एक सुकून का पल है कि सिर्फ आखिरी मोमेंट बचा है, आखिरी पड़ाव बचा है। कैनवस जैसे ही हमने कहा तो एकदम से पूरी जो दुनिया है, मतलब उस मास्टरपीस के अंदर की, उस पेंटिंग के अंदर की, एक कलरफुल मोंटाज की तरह घूमने लगी। अब आपको लग रहा है उफ, इस घुमावदार रंगों से कहीं चक्कर ना आ जाए। दूर एक छोटा सा लकड़ी का रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, वही फ्रेम के पीछे निकलने का रास्ता है, पर वहां तक हम पहुंचे कैसे, क्योंकि वो हमारी नजरों से थोड़ा सा दूर है। अब वहां तक पहुंचने के लिए हमें आखिरी पहेली सुलझानी होगी, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे तो बड़ी आसान है। क्लू नंबर 3 आपके लिए ये है, मैं कोई रंग नहीं हूं, पर मैं ही तय करता हूं कि आपको तस्वीर में गहराई दिखेगी या नहीं। मैं बताता हूं कि कौन सी चीज आपके बिल्कुल करीब है और कौन सी पहाड़ों जितनी दूर। मेरे बिना हर आर्ट सिर्फ एक प्लेन लकीर लगती है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू हूं। इंग्लिश में पी से मेरा नाम शुरू होता है और हिंदी उर्दू में ना से भी आप कह सकते हैं। बताएं मैं क्या हूं? कम ऑन, सोचें कि एक आर्टिस्ट जब कोई भी आर्ट को बनाने की कोशिश करता है, किसी भी चीज़ की पेंटिंग शुरू करने से पहले जो वो करता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा भी गौर फरमाएंगे ना तो आप तुरंत ही इसका जवाब दे पाएंगे। आई रिपीट अगेन, मैं कोई रंग नहीं हूँ, पर मैं ही तय करता हूँ कि आपको तस्वीर में गहराई दिखेगी या नहीं। मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ आपके बिल्कुल करीब है और कौन सी पहाड़ों जितनी दूर। मेरे बिना हर आर्ट सिर्फ एक सपाट लकीर लगती है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू हूँ। इंग्लिश में पी से शुरू होता हूँ और हिंदी उर्दू में ना से। बताएं मैं क्या हूँ? कम ऑन गाइस, थिंक। आई एम वेरी सर्टन कि आखिरी पड़ाव आप सॉल्व कर सकते हैं और इस पहेली को भी सुलझा सकते हैं। सो 666-22107 इज आवर नंबर, 666-22107। अपने नाम के साथ हमें सही जवाब दे दीजिए। और भाई हार्डी संधू आ गए, उन्होंने कहा चलो बहुत ट्रिकी सी पहेली हो गई, थोड़ा माइंड रिलैक्स करता हूँ, कहीं ना जाए। बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: तो यस, हमारे देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है। वेल, मुझे लगता है कि आज आप जो मेरे साथ एस्केप रूम की सिचुएशन में फंसे हैं ना, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए, कुछ ज्यादा ही फंस गए, क्योंकि आप मेरे क्लूज के जवाब इतनी आसानी से दे नहीं पा रहे। आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच गए। देखिए, हम एक आर्टिस्ट के मास्टरपीस के अंदर कैद हुए। दो क्लूज हमारे सामने आए। पहले का जवाब हमने दिया पेंट ब्रश, दूसरे का जवाब हमने दे ही दिया, दैट वॉज कैनवस। अब तीसरा क्लू, देखिए आपको थोड़ा ध्यान से सुन के समझना होगा। अभी तक हमको जवाब मिल रहे हैं पेंट पैलेट। ज्यादा लोगों ने पेंट पर फोकस किया है। पेंट करने से पहले किस चीज की जरूरत होती है एक आर्टिस्ट को, या कभी आपने जब कोई ड्राइंग बनाई होगी, कोई पेंटिंग की होगी, तो आपने क्या सोच के किया होगा। कम ऑन, लेट्स फोकस ऑन क्लू नंबर 3। मैं कोई रंग नहीं हूं, पहले ही मेंशनड है, इट्स नॉट अ कलर, तो पेंट तो हो ही नहीं सकता। मैं कोई रंग नहीं हूं, पर मैं ही तय करता हूं कि आपको तस्वीर में गहराई दिखेगी या नहीं। मैं बताता हूं कि कौन सी चीज आपके बिल्कुल करीब है और कौन सी पहाड़ों जितनी दूर। मेरे बिना हर आर्ट सिर्फ एक फ्लैट लकीर लगती है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू हूं। कम ऑन, फोकस ऑन दैट। इंग्लिश में पी से मेरा नाम शुरू होता है और हिंदी उर्दू में ज्यादातर मुझे लोग ना से कहते हैं। एक हिंट दूं आपको मैं, इसका मतलब है कि आपके देखने का ढंग या तरीका। अब ये जो शब्द है ये नजर से शुरू होता है। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग नजर से शुरू हुए शब्द को पहचानते हैं और कितने लोग अंग्रेजी के शब्द को पहचानते हैं। तो आप जल्दी से मुझे सही जवाब दें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। एंड लेट्स सी कि आप ये जो तीसरा पड़ाव है इस आर्टिस्ट की मास्टरपीस का, ये सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। मैं कोई रंग नहीं हूं, पर मैं ही तय करता हूं कि आपकी जो तस्वीर है उसमें गहराई दिखेगी या नहीं। मैं बताता हूं कि कौन सी चीज आपके बिल्कुल करीब और कौन सी पहाड़ों जितनी दूर है। मेरे बिना हर आर्ट सिर्फ एक फ्लैट लकीर लगती है। बताएं मैं क्या हूं। थिंक थिंक थिंक, क्योंकि वक्त भागे जा रहा है और इस भागते हुए वक्त को और भी खूबसूरत बना रहे हैं हम कमाल का म्यूजिक प्ले करके। सो एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम में आज आप एक आर्टिस्ट के मास्टरपीस के अंदर कैद हो चुके हैं। मतलब आपने सोचा नहीं था कि एक आर्ट गैलरी को आप एंजॉय करने जाएंगे, उस ब्यूटीफुल गैलरी के आर्ट्स को देखेंगे, बट समहाउ एक ऑयल पेंट की पेंटिंग ने आपको अपने अंदर खींच कर कैद कर लिया। परेशान तो आप बहुत हुए, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और जैसे जैसे आपको क्लूज मिलते गए वैसे वैसे आपने उसका सही जवाब देना शुरू किया। पहले क्लू का सही जवाब था पेंट ब्रश, दूसरे क्लू का सही जवाब था कैनवस और तीसरे क्लू में मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी अटक रही है। देखिए आज निकलना बहुत ज़रूरी है इस आर्टिस्ट के मास्टरपीस से, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वीकेंड कैसे एंजॉय करेंगे। चले क्लू नंबर थ्री एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी। मैं कोई रंग नहीं हूं, पर मैं ही तय करता हूं कि आपको तस्वीर में गहराई दिखेगी या नहीं। मैं बताता हूं कि कौन सी चीज आपके बिल्कुल करीब है और कौन सी पहाड़ों जितनी दूर। मेरे बिना हर आर्ट सिर्फ एक फ्लैट लकीर लगती है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू हूं। इंग्लिश में पी से मेरा नाम शुरू होता है, हिंदी उर्दू में ना से शुरू होता है, और मैंने आपको हिंट दी थी कि इसका मतलब है आपका, आपके देखने का ढंग या तरीका नज़र से शुरू होता है। मतलब इससे ज़्यादा इजी हिंट मैं आपको नहीं दे सकती थी। और हमें अलग अलग तरह के जवाब आए। किसी ने हमें लिखा है आइज़, ठीक है, किसी ने लिखा है मिरर, कुछ लोगों ने लिखा है तस्वीर, कुछ ने लिखा है फोटो, किसी ने फिर से लिखा है कैनवस, कुछ ने लिखा है नज़र। देखिए आप लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच गए, पर सही जवाब है उसका नज़रिया यानि पर्सपेक्टिव। और जिन्होंने ये सही जवाब दिया है, भाई अपनी पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आज आप इस आर्टिस्ट के मास्टरपीस से बाहर निकल पाएंगे। और जिन्होंने सही जवाब दिया, भाई आज उनके नाम बहुत ज़्यादा ही कम हैं, क्योंकि हमारे लिसनर्स अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत मुश्किल से इस नतीजे तक पहुंचे। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम है मिस्टर खान, अवी, अनम रुहान एंड मोहम्मद। और इन सब में से हर एक पहेली का जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया वो कौन है, आइए जरा उनका भी नाम आज बता ही देते हैं। वो है अनम रुहान की जोड़ी, तो वो है आज के लकी विनर। भाई कंग्रेचुलेशंस, मुबारका मुबारका मुबारका। हमारे एस्केप रूम में 3 हफ्तों के बाद अनम रुहान फिर से ये प्रूफ करते हुए कि उन्होंने एस्केप रूम के इस गेम पर अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए हैं। सोनम रुहान कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। और हमारे सारे लिसनर्स जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे उनका भी तहे दिल से

शुक्रिया। और आपने एस्केप रूम में अपना एस्केप आर्टिस्ट बनने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं, आज तो आप फंस गए, आज तो बहुत मुश्किल है बाहर निकलना, लेकिन जो लोग निकल गए कैसा लग रहा है। तो जिन्होंने भी आज आर्टिस्ट के मास्टरपीस के बाहर कदम रख लिया है, उफ, सुकून की सांस ले रहे हैं। और जो लोग आज फंस गए हैं, कोई बात नहीं, अब आप इस आर्ट गैलरी का लुत्फ उठाइए और कल एक नया चैलेंज एस्केप रूम में आपको मिलेगा, जहां पर आप किसी ठंडी जगह पर जाने वाले हैं। अब गैस कीजिएगा कि वो जगह कौन सी है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको मुझे देना होगा इजाजत, क्योंकि कल दोपहर 1:30 बजे आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी एस्केप रूम के एक नए नवेले चैलेंज के साथ। तब तक क्या करना है, हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, अपने आरजे मीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और जाते जाते भाई, अब तो ये कहना बनता ही है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो अपने रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ाओ जी, तभी तो मजा आएगा सही म्यूजिक का। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और एनर्जेटिक और हेल्दी लाइफस्टाइल एपिसोड। तो भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंपल और अच्छी सी हैबिट के बारे में जो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त मुफ्त का तो हम किसी का बुखार ना छोड़ें, तो ये तो हैबिट है भाई अच्छी वाली, लेकिन उसके फायदे हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए बहुत पावरफुल है। मुफ्त तो है लेकिन पावरफुल है, पॉजिटिव चीज है भाई। देखिए हम बात करेंगे आज वॉकिंग कल्चर प्रमोट करने की। साथियों जरा सोचिए, आपको पास वाली ग्रोसरी स्टोर जाना है जो कि मुश्किल से कितना 5 से 10 मिनट वॉक पर होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, नहीं भाई मैं जो ना गाड़ी में चला जाता हूँ, गर्मी है एसी चला लूंगा। आपने गाड़ी स्टार्ट की, एसी ऑन किया, शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव होती है तो आपने कहा ये जा वो जा मैं ड्राइव करके चला जाऊंगा, या फिर बिल्डिंग के अंदर ही लिफ्ट यूज कर लेते हैं अक्सर औकात। सिर्फ एक या दो फ्लोर के लिए ही हम कहते हैं भाई एक या दो फ्लोर, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हूँ तो भाई फर्स्ट फ्लोर मैं सोचूंगी अरे नहीं भाई कौन ही नीचे जाए। अरे भाई ये तो सोचो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का कितना ही फासला है, बजाय इसके कि आप एलिवेटर यूज करो आप स्टेयर्स भी यूज कर सकते हो। अक्सर लोग नहीं करते, आपको लगता है कि ये चीज नॉर्मल है, लेकिन जब ये एक डेली रूटीन बन जाती है ना तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और फ्यूल कंजम्पशन अननेसेसरीली बढ़ जाता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। देखिए वॉकिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी है। जब हम शॉर्ट डिस्टेंसेस वॉक करते हैं ना तो हम फ्यूल यूजेज जीरो कर देते हैं, इमिशंस एलिमिनेट कर देते हैं और अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। यानी एक ही हैबिट से दो बेनिफिट्स, एक के साथ एक मुफ्त। वैसे तो बड़ी प्रमोशंस आप जो है ना वो अवेल कर लेते हो, ये वाली नहीं करोगे, एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है, फ्यूल भी बच रहा है और एक अच्छी हैबिट भी मिल रही है, हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों बचते हैं इससे। देखिए इको स्विच सिचुएशन में क्या है, आइडिया बड़ा सिंपल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग को प्रेफरेंस दें, मतलब जब भी पॉसिबल हो गाड़ी के बजाय अपने पैरों को यूज करें ना, अच्छी बात है, इस्तेमाल करने के लिए हैं दो पैर। W11 पकड़ो, यानी कि अपने दो पैर पकड़ो नहीं मतलब चलते हुए आप 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लें। अब बात करते हैं कि वॉकिंग कल्चर प्रमोट करने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा होता है हेल्थ इंप्रूवमेंट। वॉकिंग से हार्ट की जो हेल्थ है ना वो बेटर होती है, स्टेमिना इंप्रूव होता है आपका और ओवरऑल फिटनेस आपकी मेंटेन रहती है। दूसरा फायदा ये होता है कि फ्यूल इमिशंस जो होती हैं वो रिड्यूस होती हैं। कम ड्राइविंग का मतलब है कम पेट्रोल यूज और कम कार्बन इमिशंस। तीसरा फायदा स्ट्रेस रिडक्शन है, वॉकिंग स्पेशली आउटडोर एनवायरनमेंट में मेंटल रिलैक्सेशन देती है। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को सुनकर तो जरूर मानोगे कि कॉस्ट सेविंग होती है। कम फ्यूल यूज का डायरेक्ट मतलब है कम मंथली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। अब एक रिलेटेबल बात यह है कि जरा सोचिए आप ऑफिस या मॉल जा रहे हैं और पार्किंग दूर मिलती है, अक्सर हम इरिटेट हो जाते हैं ना इस बात से कि भाई पार्किंग इतनी दूर है भाई मैं क्या करूं यार, लेकिन अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी समझे ना तो वो एक्स्ट्रा वॉकिंग स्टेप्स आपकी डेली एक्टिविटी की एक हेल्दी पार्ट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। देखें दोहा जैसी सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, फुटपाथ्स और वॉकवेज का सिस्टम भी काफी डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ वॉकिंग कल्चर अडॉप्ट करना कंपैरेटिवली इजी और सेफ है, स्पेशली पार्क्स मॉल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में बहुत इजी है। अच्छा अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूँ ना इसके बारे में तो मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट डिस्टेंस रूल फॉलो करें। अगर आप यूं कह लें कि 5 से 15 मिनट या 10 से 15 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं ना, आपका कोई ऐसा फासला है जो 10 से 15 मिनट का, तो वॉक करने की कोशिश करें, कंफर्टेबल फुटवेयर यूज करें। वॉकिंग को इजी और एंजॉयबल बनाने के लिए प्रॉपर शूज इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स अडॉप्ट करें, गर्मी के वक्त के बजाय कूलर टाइमिंग्स चूज करें ना वॉकिंग के लिए, अपने ऊपर बर्डन ना बनाए ना उसे। फैमिली वॉक्स प्लान करें, इवनिंग वॉक को फैमिली एक्टिविटी बनाकर हैबिट डेवलप करें। अच्छा पांचवी चीज है स्टेप वॉकिंग यूज करें, मोबाइल या स्मार्ट वॉच से डेली स्टेप्स मॉनिटर करें ताकि मोटिवेशन रहे आपको। देखिए अगर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेगुलर वॉकिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिड्यूस करने में बहुत बड़ी हेल्प देती है और अर्बन प्लानर्स भी अब सिटीज को वॉकेबल सिटीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों कम हो। तो भाई अक्सर हम ये सोचते हैं कि वॉकिंग में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम डेली रूटीन को ऑब्जर्व करें तो शॉर्ट वॉक्स एक्चुअली मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी बूस्ट भी देती हैं। अच्छा, अगर बिहेवियर चेंज देखा जाए ना, तो जब आप वॉकिंग कल्चर को अडॉप्ट करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा एक्टिव और इको कॉन्शियस बना रहे होते हैं। आप सिर्फ कम्यूटर नहीं रहते बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं अपनी हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए। तो भाई इको स्विच सिंपल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग को अपनी पहली चॉइस बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि आज कम से कम एक शॉर्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई करें जहां आप गाड़ी या ट्रांसपोर्ट के बजाय वॉक कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी वॉकिंग हैबिट फॉलो करते हैं तो किसी और को भी इसी हेल्दी हैबिट या इसी हेल्दी कल्चर के लिए इंस्पायर करें। साथियों, याद रखें कि हर स्टेप सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं होता बल्कि हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों को इम्प्रूव करता है। जब हम वॉकिंग कल्चर प्रमोट करते हैं ना, तो हम सिर्फ चल नहीं रहे होते बल्कि एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे। तो भाई इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: RJ Mavish Khan. हमारा आज का टॉपिक है गुस्से को कंट्रोल करना. गुस्सा एक फितरी जज्बा है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है. गुस्से में इंसान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है जिसके लिए बाद में उसे पछताना पड़ता है. इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार करें और अपने आप को कंट्रोल करें. थोड़ा रुक जाएं और गहरी सांस लेना भी मददगार होता है. गुस्सा कंट्रोल करना कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी ताकत की निशानी है. जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वो असल में अपने नफ्स को जीत लेता है. आज का अमल ये है कि जब भी गुस्सा आए फौरन रिएक्ट ना करें बल्कि थोड़ा रुक कर सोचें और फिर जवाब दें. ये था आज का मैसेज. आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूं आरजे मावश. फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One step to 2030.
3: आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन. जी हाँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए अट्रैक्टिव हो. कतर का विजन 2030 का एम है कि कंट्री अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ग्लोबल मार्केट में बनाए. इसके लिए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी है, जैसे इजी रेगुलेशंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो और साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. जब इन्वेस्टर्स को स्टेबल और रिलायबल सिस्टम मिलता है तो वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होता है. न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है. इससे लोकल बिजनेसेस भी लर्न करते हैं और इम्प्रूव करते हैं. जी हाँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का एक और एस्पेक्ट ब्रांडिंग भी है. जब कंट्री की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे सेफ एनवायरनमेंट, मॉडर्न फैसिलिटीज और साथ ही स्किल्ड वर्कफोर्स, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन जाती है. इसीलिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हम कह सकते हैं कि ग्रोथ का गेटवे है. कतर का नेशनल विजन 2030 पहले से ये मान चुका है कि ऑयल और गैस हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे. इसीलिए विजन का स्ट्रॉन्ग फोकस पोस्ट ऑयल फ्यूचर पर है. जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और ये डाइवर्सिफिकेशन एजुकेशन, रिसर्च, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पर हैवी इन्वेस्टमेंट से हो रहा है. मिसाल के तौर पे आपको पता ही है कि यहाँ कतर में एजुकेशन सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऑयल के अलावा इनकम रिसोर्सेस क्रिएट करता है. जब कंट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करती है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, तो इकोनॉमी फास्ट और सस्टेनेबली ग्रो करती है. विजन 2030 इसी ग्लोबल एक्सेलेंस को अचीव करने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग विजन है, जिसको आज हमने हाईलाइट किया. कल आऊंगी तो किसी और टॉपिक पे बात करूंगी. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: One step to 2030.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: FM 107
6: दिल से देसी.

उसकी किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ख्वातीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। तो आइए सामीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अरब मुस्लिम ग्रेट फिजिशियन और फिलोसोफर की, जिन्होंने कहा कि मेडिसिन इज द साइंस बाय विच वी लर्न द वेरियस स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ व्हेन नॉट इन हेल्थ द मीन बाय विच हेल्थ इज लाइकली टू बी लॉस्ट एंड व्हेन लॉस्ट इज लाइकली टू बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ। यानी इल्मे तिब वो इल्म है जिसके जरिए हम इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ हालात सीखते हैं। सेहत में जब सेहत नहीं होती तो वजहें जिनके जरिए सेहत खो सकती है, और जब सेहत खो जाए तो वो तरीके जिनसे सेहत दोबारा हासिल की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के साइंटिस्ट वर्ल्ड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इब्न सीना की, या जिनको वेस्ट में एविसीना भी कहा जाता है। दोस्तों, बेशक इब्न सीना इस्लाम के एक अजीम तबीब हैं और तारीख के एक अजीम मुफक्कर और तिब्बी स्कॉलर भी हैं। इब्न सीना 980 में बुखारा के करीब सेंट्रल एशिया यानी उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए और 1037 में ईरान में वफात पाई। वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब मुसलमान दुनिया भर में तब्दीली और गमो गुस्सा में मुब्तला थे। उन्होंने अपनी तिब की तालीम तकरीबन 13 साल की उम्र में शुरू की। वो एक अजीम तबीब बन गए और उनकी तिब्बी महारत ने उन्हें

0: बुखारा के सुल्तान के पास पहुंचाया, जिसे उन्होंने एक संजीदा इन्फेक्शन का इलाज करके ठीक किया। इनाम के तौर पर उन्होंने सिर्फ ये दरियाफ्त किया कि उन्हें सुल्तान की लाइब्रेरी और उसके नायाब मैनुस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो अपनी तहकीकात का अमल जारी रख सकें। वो कई छोटी छोटी सल्तनतों के साथ जुड़े रहे, लेकिन बार बार अपना ठिकाना बदलते रहे। एक मुस्तहकम और अच्छी तनख्वाह वाली पोजीशन की तलाश में मुख्तलिफ दौर में उन्होंने सियासी इदारी, दरबार के तबीब, सिपाही और कभी कभी नश्त और कायद भी काम किया। अपनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद उन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी, जिनमें से एक अल कानून फी अल तिब यानी द कैनन ऑफ मेडिसिन थी, जो 12th सदी में लैटिन में तर्जुमा हुई और यूरोपियन तिब्बी मदारिस में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन गई। ये किताब मुस्लिम दुनिया में भी 20वीं सदी तक मुशावरा की जाती रही। विलियम ऑसलर ने द कैनन ऑफ मेडिसिन को अब तक लिखी गई सबसे मशहूर तिब्बी किताब कहा, और ये नोट किया कि ये किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा वक्त तक तिब्बी बाइबल रही। दोस्तों, वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्केच से हमें ये बताते हैं कि इब्न सीना बचपन में ही ज्यादा जहानत रखते थे। 10 साल की उम्र तक उन्होंने कुरान याद कर लिया था। 16 साल की उम्र तक उन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक और मेटाफिजिक्स में माहिर होकर इलाज और तिब की तालीम लेना शुरू कर दी थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना मशहूर कानून यानी कैनन लिखा, जो कई सदियों तक यूरोप और एशिया के मेडिकल स्कूल्स में एक अहम दलील समझा गया। उन्होंने कई पर्शियन हुक्मरानों के साथ तिब और मुशीर के तौर पर खिदमात की और उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह सफर किए। हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते थे, लेकिन वो एक गहरी सोच वाले और सीरियस शख्स थे, जो अपना ज्यादा वक्त लिखाई में गुजारते थे।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: आइए एक नजर डालते हैं द कैनन पर। इब्न सीना को मगरिब में एविसीना के नाम से जाना जाता है। उनकी किताब द कैनन ने अपने वक्त के तमाम तिब्बी इल्म का एक वाजी और मुनज्जम खुलासा दिया, जो पुराने और मुस्लिम मनबाज से लिया गया था। ये असल में अरबिक में लिखी गई थी और बाद में कई जबानों में तर्जुमा की गई, जैसे कि फारसी, लैटिन, चाइनीज, हेब्रू, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश। इल्म को इकट्ठा करने के अलावा इस किताब में लेखक के अपने असली कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। द कैनन ऑफ मेडिसिन ने यूरोप और इस्लामिक दुनिया में तिब के उसूल तय किए। ये इब्न सीना का सबसे मशहूर लिखा हुआ काम है। द बुक ऑफ हीलिंग के साथ इस किताब का ज्यादा हिस्सा यूनानी यानी ग्रीक मेडिसिन का बुनियादी हिस्सा बना, जो आज भी इंडिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में तालीम दी जाती है।

लिए बयान किए गए थे। उन्हें आज भी UCLA और येल यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में तिब की तारीख के हिस्से के तौर पर पढ़ाया जाता है। दोस्तों, एविसिना की अहम असली कंट्रीब्यूशन में ट्यूबरक्लोसिस के कंटीजियस होने का तसव्वुर, बीमारियों का अपनी और जमीन के जरिए फैलना और साइकोलॉजी और सेहत के दरमियान ताल्लुक शामिल है। इसके अलावा इस किताब में फार्माकोलॉजिकल तरीकों का वाज़े बयान किया गया और 760 दवाओं का जिक्र किया गया जो अपने वक्त की सबसे मौतबर मैट्रिया मेडिका थी। उन्होंने कार्डियक ड्रग्स पर भी एक किताब लिखी, अल अदबियात अल कल्बिया, जो अंग्रेजी में एविसिनाज ट्रैक्ट ऑन कार्डियक ड्रग्स एंड एसेज ऑन अरबिक कार्डियोथेरेपी के नाम से तर्जुमा हुई। वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेनिंजाइटिस का वाज़े बयान किया और एनाटॉमी, गायनेकोलॉजी और बच्चों की सेहत पर अहम कंट्रीब्यूशंस दिए। आइए अब एविसिना को एक साइकेट्रिस्ट के रुख से देखते हैं। तो दोस्तों, एविसिना अपने मरीजों का इलाज करने के लिए अक्सर नफसियाती तरीकों का इस्तेमाल करते थे। एक कहानी है जब पर्शिया का एक माल नरिश्ड शहजादा जो कि मेलनकोलिया, गम और उदासी से मुतासिर था, खाना खाने से इनकार करता था और उसे ये ख्याल था कि वो एक गाय है। ये शहजादा गाय की तरह आवाज निकालते हुए खाना खाया करता था और ये कहता था कि मुझे मार दो ताकि मेरे गोश्त का अच्छा स्टू बनाया जा सके, और वो कुछ भी नहीं खाता था। इब्न सीना को इस मामले का पता चला और उन्होंने मरीज को एक पैगाम भेजा जिसमें कहा कि खुश हो जाओ क्योंकि कसाई तुम्हें ज़बह करने आ रहा है, और मरीज खुशी से झूम उठा। जब इब्न सीना ने शहजादे के पास जाकर चाकू उठाया तो उसने कहा, गाय कहाँ है ताकि मैं उसे मार दूं। मरीज ने फिर गाय की तरह आवाज निकाल करके अपनी जगह दिखाई। कसाई के हुक्म पर मरीज को जमीन पर डाल दिया गया था जैसे कि उसे ज़बह किया जाने वाला हो। जब इब्न सीना ने मरीज के पास जाकर उसे ज़बह करने का नाटक किया तो उसने कहा, गाय बहुत पतली है और ज़बह के लिए तैयार नहीं है, इसे अच्छी तरह से खिलाना होगा और जब ये सेहतमंद और मोटी हो जाएगी तब मैं इसे मार दूंगा। मरीज को फिर खाना दिया गया जो उसने शौक से खाया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, अपने ख्याल से छुटकारा पाया और पूरी तरह से ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये था उनका एक रूप जो साइकेट्रिस्ट के तौर पर देखा गया और किस तरह से उन्होंने चालाकी से इस मरीज को शिफा पहुंचाई। जाहिर है हर शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है। आइए अब बात करते हैं एविसिना की कि उनका क्या मानना था पल्स के बारे में। तो उन्होंने कहा, एवरी बीट ऑफ द पल्स कंप्राइजेस टू मूवमेंट्स एंड टू पॉजेस, दस एक्सपेंशन पॉज कॉन्ट्रैक्शन पॉज। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एविसिना के पल्स के वाज़े बयानात मौजूद हैं। धमन की तहकीकात जो कि सबसे पुरानी और आसान तरीन और मालूमात से भरपूर तजुर्बा है, हर तरह के क्लिनिकल जायजे में एक अहम तरीका है। यह आम तौर पर पुरानी मिस्री तिब, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, गैरिको इस्लामिक और आयुर्वेदा मेडिसिन में एक अहम तशखीसी तरीका समझा जाता था। तिब के इतिहास में धमन का जायजा लेना कार्डियक डिसफंक्शन का जायजा लेने का एक अहम अनासिर था और धमन की हसीसत को वो पैगाम देने वाला जो कभी ना फेल हो कहा गया था। आज भी धमन का खुद भी मॉडर्न तिब में एक अहम तशखीसी निशान है। धमन को महसूस करना और उसकी तफसीर करना काफी
महारत तलब है। धमल लेना ग्रेको इस्लामिक मेडिसिन और मिडिल एजेस में एक महारती बेडसाइड टेक्निक माना जाता था।

0: FM 107. Time check.
1: हमारा दोस्त यकीन मानो कि आज क्या हुआ मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है, हमारे स्टूडियो के साथ कुछ हुआ है और मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं सही जगह पे हूँ या नहीं हूँ। FM 107 ही सुन रहे हो ना आप लोग। हबीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 4:02, भाई बहुत अनोखा हो गया, कुछ बताता हूँ आपको।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: देखो स्टूडियो आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, मतलब मैं आया बैठा ठीक है, तो एक मुझे बाहर से इन्फॉर्मेशन मिली, मैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर अंदर आया, मुझे लगा नॉर्मली होगा ठीक है, मैं कुर्सी पे बैठा, फिर उसके बाद पता ये चला भाई कि आज वो मोबाइल जो वेंटिलेटर पे रहता था उसकी जॉब चली गई भाई। ये देखो किसी ने, अरे साइलेंट तक नहीं है भाई साहब, अभी नया मोबाइल आ गया यार हमारे ऑफिस में, क्या बात है मेरा भाई, ये तो कुछ अनोखा, अभी अभी आया पता, एकदम अभी अभी, ये तो यार मतलब कुछ अनोखा हो गया। मैं रोज आके यही कह रहा था कि यार मोबाइल जो है एकदम वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है, इसकी जान नहीं है, सूखा हुआ पड़ा हुआ है, किसी दिन भी ये सांसें जो है वो तोड़ सकता है, लेकिन भाई नया मोबाइल 72% पे पूरा एकदम जी रहा है, पुराना वाला मतलब एकदम पुराना वाला खुश शौक में कह रहे ये क्या कि चार्जर लगा नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं है फिर भी सांस ले पा रहा हूं, वरना कल तक तो ये ऐसे सांस लेता था अरे भाई नया फोन आ गया एकदम चमकदार, 3 कैमरों वाला, नहीं ये वो नहीं है जो आप सोच रहे, ये दूसरा वाला है जो मैं, मुझे पता है, लेकिन नए मोबाइल की बहुत बहुत मुबारकबाद FM 107 को। लेकिन इस खुशी से मैं बस उभरा ही था तो पता चला कि स्टूडियो में और भी चेंजेस है बाबू। देखो क्या है कि मैं आया, मेरे को लगा कुछ नया है, तो कुछ देर बाद जब, क्योंकि ये वाली कुर्सी जिसपे मैं बैठा हूं ये कुर्सी भी नहीं आई है यार, क्या बात कर रहे हो भाई, और एक कुर्सी नहीं, 1, 2, 3, 4 कुर्सी नहीं है भाई, और ये कुर्सी इतनी ज्यादा, चेयर कह लेता हूँ क्योंकि यार कुर्सी कहो तो इज्जत थोड़ी लकड़ी वाली हो जाती है, लेकिन चेयर कहो ना तो ऐसा हाई क्वालिटी रहती है, ये चेयर भाई ऐसी है कि जैसे बैठो वैसे शेप ले ले रही, मतलब दाएं जाओ तो दाएं बाएं जाओ तो बाएं, क्या बात है, और तो और भाई ऊपर और नीचे भी हो रही है ये, अरे नहीं यार कहीं ऐसा तो नहीं मैं दूसरे FM 107 कहीं और स्टूडियो में तो नहीं चला गया भाई, सब कुछ हंकी डोरी सा, सब कुछ नया नया सा लग रही है मेरे को। बता दो सच बताओ कि आपके आपके रेडियो सेट पे FM 107 लिख के आ रहा है कि नहीं, और मैं फजील हूँ, मैं सपने में तो नहीं हूँ, सब कुछ नया है, मैं मतलब मैं एक बार देख लेता हूँ यार, मतलब माइक वाइक, हाँ जी ये यार माइक तो वही वाला है, कुर्सी नहीं है, मोबाइल नया है, एक और चीज़ है मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर, वो भी नया है।

0: वाह भाई वाह, चार्जर नया आ गया। चलो भैया, पुराना वाला जो मोबाइल था उसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं, अब नया चार्जर है दूसरे वाले मोबाइल के लिए। हाँ, हेडफोन पुराना वाला, हेडफोन पुराना वाला है। जब मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया था मालिक, तो एक हेडफोन और ले ही लेते हैं। नहीं मालिक, जब इतना हो ही गया है तो क्यों नहीं एक ले ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे। 4:05 हमारे स्टूडियो हेडी में आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो। और कॉल कर रहे हैं लोग किस लिए, मतलब बधाई देने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं खो थोड़ी लेकर आया हूँ या फिर मेरा थोड़ी, लेकिन फिर भी बनता तो है कॉन्ग्रेचुलेशन।
1: बनता है, आप यूज तो करेंगे ना, आपका इसलिए बनता है भाई।
0: हाँ मेरा भाई,
1: फीलिंग्स आपकी, मैं आपकी फीलिंग्स डिस्क्राइब नहीं कर सकता।
0: हाँ,
1: बट जो नई चीज इस्तेमाल करने का मजा है ना भाई।
0: हाँ, वो अलग है,
1: कांट एक्सप्लेन इट भाई, कांट एक्सप्लेन इट भाई।
0: क्या बात है मेरा
1: भाई,
0: और
1: मैं सकता भाई,
0: ये वाली जो चेयर है ना, मैं कुर्सी कहना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लकड़ी का, लकड़ी की कुर्सी तो मैं लकड़ी की मानता हूँ, चेयर मैं अच्छी वाली मानता हूँ। तो ये जो चेयर है भाई, मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे तो हो ही रही है, हालांकि पिछली वाली भी होती थी, बट ये थोड़ी अलग लेवल से हो रही है। ऊपर से इसका जो हैंडरेस्ट है वो आगे पीछे और दाएं बाएं भी हो रहा भाई। ओ माय गॉड,
1: अभी ये सोचे आपका बॉस है और आपको बोला भाई मजा आ रहा है।
0: और अगर ऐसा हो जाता कि बॉस जब इतना खर्चा हो गया, ये मसाज कहाँ से ऑन होता है इस चेयर का। सही है।
1: और कैसे आप, ठीक है?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, इतनी बातें हो गई, नाम तो पूछे ही नहीं मैंने।
1: मेरा नाम हमजा फजील भाई, और मैं उस वक्त ज्वाइन हुआ हूँ आप लोगों के साथ जब आप यहाँ से छुट्टियों पर थे।
0: अच्छा।
1: और मुझे उस दिन शौक लगा जब आप वापस आए, और मैं देखा, मैं यार कबीर भाई नहीं बोल रही, या कबीर भाई चेंज करके बोल रहे।
0: अच्छा, तो आप अभी हाल ही में,
1: मैंने आपको मैसेज भी किया।
0: आप हाल ही में जुड़े हैं?
1: तो बिल्कुल।
0: ओके, ओके।
1: फिर मैंने कॉल भी कट कर दी, मैसेज भी अपना डिलीट कर दिया।
0: अरे
1: मैंने, यार कुछ चेंज लग रहा है। और जिस वक्त आई प्रिंस भाई की कॉल,
0: आपको भी ये लग रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे रेडियो स्टेशन से कनेक्ट हो गया
1: भाई। वो तो मैं क्लेरिफिकेशन के लिए स्क्रीन लगी हुई है। हाँ। उसमें मैं चेक करता रहता हूँ। अभी आपने बोला ना FM 107 पे ही हूँ।
0: हाँ।
1: मैं देख रहा हूँ बाकी इधर ही है, क्या इधर ही है।
0: हाँ, सही है, सही है कि सही एड्रेस पे पहुंचे।
1: तो खुश रहे, अल्लाह पाक खुश रखे।
0: बहुत शुक्रिया भाई,
1: आप लोगों की एंजॉयमेंट भी अच्छी लगती है, और एक सब बार फिर से दो चीजों के लिए कंग्रेचुलेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया। अफसोस रहा पुराने वाली चीज का जाने का भाई।
0: हाँ नहीं, बेचारी वो काफी दिन से वेंटिलेटर पे था, उसके छुट्टी की जरूरत थी भी भाई, इसको लॉन्ग टर्म छुट्टी दे दिया है, परमानेंट उसकी जॉब चली गई बेचारे के, लेकिन फिर भी यार इसने बहुत साथ निभाया मुझे, 5 साल से तो इसने चूं भी नहीं करी है। हाँ, पिछले कुछ दिनों में बेचारा वेंटिलेटर पे रहा है,
1: अब तो हक बनता था,
0: हक बनता। हाँ बिल्कुल। चले हमजा भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते जाते बता दीजिए गाने कौन से सुनेंगे, क्योंकि आज की जो थीम है वो जल्दी से आपके जरिए मैं लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, आज की जो थीम है वो इवनिंग सॉन्ग्स की थीम है, ऐसे गाने जो शाम को थोड़ा सा यू नो और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं, हाई बीट के वर्जन वाले जो सॉन्ग है वो आप आज सुन सकते हैं FM 107 पे, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पे। सो आप हमजा भाई कौन सा गाना सुनेंगे जो शाम को थोड़ा सा सुनने में मज़ा आए?
1: यार वैसे तो मैं एक क्लासिक म्यूजिक ज्यादा पसंद करता हूँ।
0: अच्छा,
1: ठीक है, बट आई एम अ पंजाबी भाई,
0: अरे
1: तो एक पंजाबी सॉन्ग है, मे बी शायद आप लोगों को सूट करे या ना करे, या आपके स्टूडियो में हो या ना हो, बट अगर वो चला सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने पसंद का चला लिएगा कोई भी।
0: नहीं नहीं, आपकी मर्जी का प्ले होगा। नाम आप बता सकते हैं गाने का?
1: वाजर पत्र का है, शाम दी लाली।
0: शाम दी लाली,
1: हाँ जी, मैं बाजर पत्थर उसका जो है वो गायक है, जो कहते हैं कलाकार।
0: अच्छा, मैं सर्च कर रहा हूँ लेकिन इस नाम से तो नहीं है मैं। अच्छा, आपको थोड़े ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है? तो और क्योंकि आपको पंजाबी पसंद है तो पंजाबी ही सॉन्ग के इवनिंग सॉन्ग जो भी हैं उसके मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ आपको, आप उनमें से चुन ले, क्योंकि ये जो गाना आपने बताया वो तो नहीं है, ठीक है? एक है करण औजला और एवी सरा का वाइट ब्राउन ब्लैक, एक है तौबा तौबा बाई करण औजला, ये भी थोड़ा पंजाबी वर्जन है, डांस में है एक नाजा नाजा नाजा में तरत दूर, और एक है कोका, एंड देन आई गेस इलीगल वेपन भी है, तो इनमें से आप कौन सा चुनना चाहेंगे?

0: भाई ये तो सारे वो वाले हो गए बस शाम के टाइम भाग रहे हैं भाई ऐसे वो समझ लो के हाई बीट मचाने वाले ये तो
1: हाँ हाई बीट के वर्जन है।
0: तो सबसे पहला वाला जो आपने बताया करण औजला का वो
1: व्हाइट ब्राउन ब्लैक
0: लेट
1: मी चेक ये वाला हमारे पास होना तो चाहिए हाँ है चले ठीक है मैं आपके लिए ये गाना प्ले कर देता हूँ ठीक है हमसे भाई
0: ठीक है बहुत शुक्रिया खुश हैं
1: थैंक यू मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ओके तो ये थे हमजा भाई हमसे कनेक्ट हुए थे और कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है और देखो क्या है कि भांभूड़ अब जिनको नहीं पता भांभूड़ क्या ऐसा लग रहा है ये कोई अजीब सी आवाज है जो गेट पे नहीं कोई ऐसे करता है भांभूड़ थोड़ा और मतलब भावनात्मक अलविदा कहने के लिए हमारे हमारे मोबाइल को हमारे पुराने मोबाइल को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22-107 है जल्दी से लोगों के मैसेज लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे गाने की तरफ सबसे पहले सलाम आया वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई नाम है इनका हाँ हिशाम साहब हिशाम भाई इनका नाम है और इसी के साथ एक और ये मैसेज है काकी भी न्यू आएंगी अब वो तो अल्लाह जाने कॉन्ग्रेचुलेशन काकी भी न्यू आएंगी सलाम भी लिखा वालेकुम अस्सलाम खादिम साहब नहीं कुर्दी लेनी पड़ी नहीं वजन किस आरजे का बड़ा है जिसकी वजह से नई कुर्सी लेनी पड़ी सादिक साहब क्यों मजे ले रहा हो मेरा भाई वैसे वजन मैं तो मेरा तो सही है मेरा बढ़ा है कुछ दिनों में लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि कुर्सी चेंज करनी पड़े ठीक है तो ओवरऑल ओके ओके टाइप है मेरा तो बाकी मजे ले रहा हूँ सुबह सुबह हैं मेरे लिए तो सुबह ही है आगे ये मैसेज है एमएल खान बूहे बारिया हदीका कियानी का सुनना है इनको गाना ओके और ये नाम फजल भाई बहुत बहुत मुबारक हो पार्टी कब दोगे अरे एमएल साहब ये कौन सी बात हुई मोबाइल मुझे थोड़ी मिला है स्टूडियो को मिला है पार्टी तो मुझे खुद स्टूडियो चाहिए मैं इसी को बेच के ले लूँ क्या मतलब दूसरा वाला मोबाइल बेच के ले लूँ पार्टी क्या कुछ नहीं तो 500 रियाल का तो बिक ही जाएगा ना क्योंकि इसमें कुछ हम लोगों ने छेड़खानी नहीं करी है ये जिंदा रहता है बस इसको जिंदा करना पड़ता है वरना इसकी अगर जैसे ही आप चार्जिंग हटाएंगे तो ऐसे आवाज़ें आती है इसकी तो आप बता सकते हैं मैं बाकी बुहेवारिया मैं कोशिश करता हूं अगर ये गाना मुझे मिल जाएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं प्ले किए करे जाएंगे उसके बाद यूसुफ भाई का मैसेज है यूसुफ भाई आपका नाम यहां पर मोहम्मद खान लिखकर आ रहा है चल घर चले मेरे हमदम मलंग मूवी का फ्रैग यूसुफ भाई ने कहा है ओके मैं इसे पिन कर लेता हूँ एंड आफ्टर सम टाइम आई प्ले आई हैव सेंड यू अ वॉइस बिफोर अ टाइम सेंड मी बैक हैं भाईजान माजरत अब ये नया मोबाइल आ गया है कुछ भी आपने भेजा होगा तो वो चला गया होगा दोबारा आप भेज दें आपका नाम यहाँ पर लिखा नहीं है बट प्रोफाइल पे FK लिखा हुआ है पुराना मोबाइल मुझे बेच दो सेकंड हैंड डीलर मोहम्मद साहब क्या बात कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन नए मोबाइल आ गए तो अब इसकी जो सांस है वो चलती रहेगी और देखो इतनी देर से बात कर रहा हूँ भाई ये 70 पुराना वाला इतनी देर में 70 से दम तोड़ के 20 पर आ जाता था ओ रोमियो गाना सुनना है और ओ रोमियो का गाना सुनना है पुराना मोबाइल मुझे भेजो ओके ठीक है मैं आपका गाना भी प्ले करूंगा लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद सबसे पहले गाना जो है उन भाई का प्ले होगा हमजा भाई का खदिका क्यानी बोहे बारियां सॉन्ग प्ले कर दो ठीक है जब आपने कही दिया है तो खादिम साहब दो लोगों का गाना एक साथ प्ले हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम अस्सलाम खैरियत हैदराबादी मियां भाई सॉन्ग प्ले कर दो भाई नाम बताएं ऐसा कौन सा गाना जो आप सुनना चाहते हैं एक तो वो वाला है कि मियां मियां मियां भाई वो वाला सुनना है आपको थोड़ा वो वाला मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा ऐसा गाना जो कॉम्प्लीमेंट करे ऐसा गाना जो कॉम्प्लीमेंट करे हमारी शाम को ठीक है तो फिलहाल एवी सरा और करण औजला का ये गाना सुनिए हमजा हमजा भाई की रिक्वेस्ट पे FM 107 आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बॉस अगर आवाज जारी है तो चेयर का खर्चा हो गया है मोबाइल का खर्चा हो गया है इतना खर्चा हो गया तो मालिक एक हेडफोन अगर आ ही जाता तो

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: और जल्दी जल्दी बाकी लोगों की रिक्वेस्ट प्ले कर देते क्योंकि खुशी खुशी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। नहीं, 4:16 पे अब तीन गाने बैक टू बैक आपके लिए आ रहे। सबसे पहले और रोमियो, एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था तो मोहम्मद उनका नाम है, उनकी रिक्वेस्ट पे आशिकों की कलोनी में ये गाना सुनेंगे अपन मधुबंती बागची और जावेद अली की आवाज में। उसके बाद जो घर है, सॉरी जो घर नहीं, जो गाना है वो है चल घर चले और ये है रिक्वेस्ट यूसुफ साहब की। उसके बाद एमल भाई ने कहा था कि हदी का खियानी का गाना अगर हो जाए तो बूह बारिया आए हाय, यार क्या आप लोग ही पसंद है लाजवाब। शाम को ये गाना सुनना मजा आ जाएगा और ये गाने असल में शाम को कॉम्प्लीमेंट करते, इवनिंग को कॉम्प्लीमेंट करते, तो ऐसे गाने आज की थीम उन नए लोगों के लिए जो अभी ट्यून इन कर रहे हैं। उनको बता दें आज के हमारे एफएम 107 की जो थीम है वो है शाम के गाने, इवनिंग सॉन्ग्स, जो शाम को और भी रंगीन बना दे, जो कॉम्प्लीमेंट दे। अब वो हो सकता है कि आपके अपने मर्जी के गाने शाम को जो कॉम्प्लीमेंट करे वो अलग हों, थोड़े से स्लो भी हो सकते हैं, जैसे कि ये गाना बूहे बारियां, और एक गाना है अरिजीत सिंह का चल घर चले, ये गाना भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक और गाना है जो थोड़ा हाई बीट वर्जन में है, वो है आशिकों की कलोनी में, है ना, ये भी लाजवाब गाना है। उसके अलावा एक और भाई थे सैयद हुसैन यानी कि खादिम भाई ने भी रिक्वेस्ट किया था और ये गाना है कौन सा, बूहे बारिया है ना, हाँ इन्होंने भी कहा था बूहे बारिया, तो ये गाना भी प्ले करेंगे अपन। उसके अलावा एक और भाई थे, किधर गए मेरे भाई, नाम मिल तो नहीं रहा है, इन्होंने कहा था ना मियाँ भाई वाला, हाँ ये रहे, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत भाई, आप ही एक ऐसा शो है हम लोग हक से रिक्वेस्ट करके एक सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, ये प्ले कर दो हैदराबादी मियाँ भाई, नाम नहीं लिखा है, शेख अभी लिखा है। तो शेख साहब की रिक्वेस्ट पे ये गाना, यानी कि टोटल चार गाने बैक टू बैक आप लोगों के लिए आ रहे हैं एफएम 107 पे, एंजॉय करें और फिर जब वापस आएंगे तो आप लोगों के मैसेजेस और बाकी के सॉन्ग प्ले करेंगे। नंबर नोट कर लीजिए, नया मोबाइल है ना उस पर आएगा, अभी आपका नाम लिख कर आएगा, नया मोबाइल थोड़ा स्मार्ट है भाई साहब, अभी 69% पे, मतलब अभी 3% गया भाई 72 से, मतलब इतनी देर में ये वाला तो कहता 15 पे जान जाती इसकी पुराने वाली की, लेकिन नहीं नहीं, नहीं तुमको कुछ नहीं कह रहा बाबू, तुम सो जाओ, हाँ तुम स्विच ऑफ हो जाओ, तुम स्विच गुस्सा आ रहा है दूसरा वाला, ठीक है। तो आप नंबर सेव कर लीजिए 6662217, ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, आप अपने मर्जी के गाने रिक्वेस्ट करें, जो शाम का गाना है वो प्ले करवा सकते हैं, इवनिंग सॉन्ग्स आज का थीम है जो शाम को कॉम्प्लीमेंट करे। एफएम 107 पे एक छोटा सा ब्रेक नहीं कहेंगे यार, चार छोटे से गाने दिल से देसी, कहिए

हाय हाय रोहान अरशद की आवाज में ये हैदराबादी मियां भाई आपने सुना FM 107 पे हबीबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं भूला नहीं हूँ, बूहे बारी अभी अभी प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी लोगों की रिक्वेस्ट भी जल्दी से बता देते हैं ताकि साथ में ही अपन प्ले कर दें। सो ये मैसेज अगर हम देखें किस किस भाई का है, ये है अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू फोन एंड फर्नीचर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद खरीदा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे मिला है, मेरे को नहीं मिला है भाई। आप लोग तो ऐसे लेकिन ठीक है, मतलब कांग्रेचुलेशन लेने में क्या है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता भाई साहब। मतलब ये वाली कुर्सी का अलग, चेयर सॉरी कुर्सी नहीं कहूँगा मैं, चेयर कहूँगा। इस चेयर का माहौल एकदम अलग है, आप टच करो ऐसा प्रीमियम फील आता है। और ये कुर्सी वो है कि जिधर बैठो अगर दाएं हो जाओ तो दाएं मुझ शेप ले ले रही भाई, पीठ की हमारे बैक की शेप ले ले रहा, हम दाएं हो जाएंगे तो उस हिसाब से दाएं हो जा रही है। मतलब आप नहीं समझे, वो नहीं कि जो गोल गोल अपने एक्सेस पे घूम जाती है, नहीं वो वाला नहीं भाई, ऐसा बैठे रहो हल्का सा दाएं हो तो वो शेप ले लेती है। अब उसका एक और रीज़न हो सकता है कि क्वालिटी जो है प्लास्टिक जो पीछे है वो बहुत हल्का है, या फिर वो शायद पता नहीं आप लोग बैठे कि नहीं पलंग में बैठे होंगे, पलंग में, तो पलंग में जब आप बैठे होते हो तो दूसरी तरफ अगर कोई बैठता है तो आप वाली तरफ थोड़ी उठ जाती है नहीं। तो ये जो पीछे क्वालिटी है ना, ये है तो प्लास्टिक बढ़िया वाली, हल्का सा घूमो तो वो पीछे इधर वाला उड़ जाता है, वो पीछे दाएं वाले को सपोर्ट कर देता है पीठ को, और बाएं हो जाओ तो वो फिर इधर वाले को सपोर्ट कर देता है। तो बड़ा मस्त है भाई, हाई क्वालिटी। बाकी आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, वो एक्सेप्टेड है भाई। अबू सिदरा ने ये सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, माय रिक्वेस्ट इज सॉन्ग कभी शाम ढले तो मेरे घर में आ जाना, ओए होए मेरे दिल में आ जाना सॉरी। महालक्ष्मी अय्यर और निदा फाजली का ये लिरिक्स है, मूवी है सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ, आई ट्राई टू फाइंड के अगर मुझे मिल जाए डेटाबेस में तो बिल्कुल। उसके अलावा एक और ये मैसेज है, और ये मैसेज है सूफियान का, ओए क्या गाना है, मीका सिंह का मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। और ये वाला तो है भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे शाम को और रंगीन बना देगा, शाम सवेरे हुड़ मौजा ही मौजा। चलो तो पहले दो सॉन्ग तो अपने पास आ गए हैं और तीसरा सॉन्ग है मौजा ही मौजा, मैं प्ले करूँगा थोड़ा सा रुक के, ठीक है। फिर ये मैसेज है किसका, सलाम लिखा है, नाम नहीं लिखा है, वालेकुम असलम भाई, पलंग के नीचे घुस के उछाला है कभी किसी को? मैंने कोशिश करी थी, फिर बाद में पता चला जो हल्के लोग होते हैं वो अब्बा को अगर कोशिश करे उछालने की तो नहीं हो पाता, और फिर अगर अब्बा गुस्से में हो तो अब्बा मारते भी हैं। फिर छोटे लोगों को करा है, जब मेरी हाइट इतनी थी कि मैं, या वज़न इतना था कि मैं अपने से कम वज़न वाले को उछाल पाऊँ तो किया है मैंने। बैठे बैठे वो ऊपर हो जाता था, सिंहासन मिल जाता था यार उसको। बाकी हिशान साहब ने कहा है कुन फाया कुन, यार बहुत पुराना गाना है और ये शाम को करता तो है कॉम्प्लीमेंट लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा धीमा है, जिस दिन वो वाला सीन होगा तो हम बिल्कुल प्ले करेंगे। पूरा चलने दो भाई, हाँ तो पूरा ही चला मेरा भाई, मियाँ मियाँ भाई कितना और चाहिए आपको। एच आर के लिखा हुआ है, मिस कॉल दिया भाई ने, पूरी बात नहीं करी है। सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, कॉल टू मी, आई हैव क्रेडिट प्लीज, आई हैव नो क्रेडिट, मैं कॉल करता हूँ भाई, पाकिस्तान से है मेरा भाई, मैं कोशिश करता हूँ आपको कॉल करने की, जब अभी गेम खेलेंगे तो मैं कोशिश पूरा करूँगा। पहले मेरा वाला तारे खादिम साहब थोड़ा रुक के, फिर यह है फैसल है आई गेस, हाँ मुबारकबाद तो बनती है बिल्कुल, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फैसल है। और बिल्लो रानी, इनने ये नहीं कहा कि बिल्लो रानी गाना प्ले कर दो, डायरेक्ट लिख दिया बिल्लो रानी। अब भजील भाई समझो, तो देखो बिल्लो रानी का तो मैं अभी वादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाकी लोगों की रिक्वेस्ट है। सो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो बूहे बारिया की है और खादिम भाई की रिक्वेस्ट थी है, साथ में हदीका की यानी बूहे बारिया ये सुनना है एमल खान को। भाई बातों को घुमाना छोड़ दो, पार्टी कब दोगे? ये कोई बात नहीं हुई, कंपनी ने अपना मोबाइल यहाँ पर लाकर रखा है, मैं थोड़ी अपना नया मोबाइल लेकर रखा है, कैसी बात है यार एमल भाई। एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद और मौजा ही मौजा किसने कहा, सुफियान भाई ने ना। चलो ये तीन गाने आप लोगों के लिए आ रहे हैं FM 107 पे, लेकिन सबसे पहले ये गाना जो कि है हदीका कियानी की आवाज़ में एमल और खादिम साहब के लिए। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107, 666-22-107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: मेगा सिंह, आपने तो समा बांध दिया यार।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: दोस्त, ऐसे गाने की रिक्वेस्ट हो तो दिन शाम कभी भी प्ले कर दो, तो वो वक्त जो है वो बन जाता है यार। ऐसे ही ये गाने जो है बड़े ही अपने दिल के करीब है, मजा आता है सुनने के बाद, ऐसा लगता है कि अच्छी जगह पे है। और वैसे भी आजकल का माहौल ऐसा है कि अगर आप कार के अंदर से बाहर का माहौल देखो तो ऐसा लगता है कि वाह सर्दी का माहौल चल रहा नहीं वो तो जब एक बार शीशा खोलो तो पता चलता है कि अरे ये सर्दी नहीं, ये तो घमोरिया वाली गर्मी है, पाउडर भी कुछ नहीं कर पाएगी, ठंडा तेल सर पे लगा लो, बस सर ठंडा होगा, दिमाग गरम, दिल गरम, सब कुछ गरम हो जाएगा भाई साहब। जितनी जल्दी चीज़ें आजकल सड़ रही हैं और कभी नहीं सड़ती हैं भाई। एक इतनी उमस, एसी भी काम नहीं कर रहा भाई, एसी को अगर 20 पे लगा दो, एसी कहता है बेटा 20 पे तो लगाया है लेकिन काम मैं 26 का करूंगा, 16 कर लो, हम 16 करते तो वो 20 का काम करता, 16 से नीचे मेरा वाला आ नहीं रहा भाई, क्या करो बताओ। तो घर में मैंने दूसरा एक तरीका वो निकाला है, वो ये कि पंखा भी चलाऊं, तो पंखा चलाने के साथ वो एसी जो काम करता है तो फिर ऐसा लगता है कि जीवन तो है घर में, और ऐसा लगता है कि बाहर तो कोहरा है, क्या मौसम होगा, मज़ा आ जाएगा, तो ये फील है बस, बाकी तो सब धोखा ही धोखा है। बाकी लोगों के मैसेज पर बढ़ते हैं जल्दी। सलाम फजील भाई, कैन यू प्ले जान से गुजरते हैं, आय हाय क्या गाना यार, तुम लोग की जो चाह है, आप लोगों के जो गानों की रिक्वेस्ट है वो इतनी लाजवाब है कि मैं बता नहीं सकता। बस मसला ये है कि अभी फ़िलहाल वक्त जो है 4:45 हो गया है, अब मैं आप लोगों के गाने प्ले नहीं कर सकता क्योंकि अब गेम का वक्त है। इंशाल्लाह सूरज साहब कल पक्का प्ले करेंगे, और कल थोड़ा अपना जो तपिश है उसको कम रखिए, ज़रूर मैं प्ले करूँगा। सूरज भाई की ये रिक्वेस्ट है, जान से गुजरते हैं, कल इंशाल्लाह अगर आप

0: लेकिन फिर वो थीम होना चाहिए. कल आई गेस किसका थीम है, कल किसी एक्ट्रेस का थीम आई गेस. कल की कल बात करेंगे. अमल खान साहब क्या कहते हैं, भाई अनाउंसमेंट आपने किया है, पार्टी तो बनती है. मैं कौन है आप, आपका नंबर कहाँ से, आप नंबर कहाँ से मिला हमारा ये. वैसे भी हम वो हैं जो सिर्फ एक शौरमा में भी पिघल जाते हैं. आप शौरमे की बात, हम तो चाय में पिघल जाते हैं, लेकिन मसला ये कि पिलाने वाला भी तो होना चाहिए. नहीं भाई, मैं देखो हर बात पे पार्टी तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दोराय नहीं है. बहाने होने चाहिए पार्टी के, तो बहाने होने चाहिए. कभी भी मौका लगे आप पार्टी कर लो. किसी दिन मुलाकात होगी अहमद साहब, इतने चाय शौरमा करा देंगे, अगली बार आप कहोगे बस भाई यार इतना क्या. फजील दिल दिया गल्ला दबंग मूवी का सॉन्ग प्ले कर दो. सलाम वालेकुम अस्सलाम, ख्वाजा इनका नाम है. और माजरत के साथ भाई अब तो नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि अब वक्त जो है वो गेम खेलने का, गेम खेलेंगे आप लोगों के साथ. फिर ये मैसेज रिकॉर्डिंग भेज रहा कोई, शोएब साहब का मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, लॉट्स ऑफ लव भाई अमल खान. बिल्कुल भाई, अब इतना कह दिया है तो अब तो बनता है, मतलब पार्टी तो बनती है, अब शौरमा तो यार बनना ही है फिर तो. अच्छा वो कौन सा वाला शौरमा खाओगे, वो कौन सा है? एक तो आता है चिकन का, एक होता है बीफ वाला, बड़े बड़े बड़ेगा एकदम बढ़िया, और एक होता है जूसी टाइप्स वेज. वेज शौरमा अगर कह रहे हो तो यकीन मानो मैं सच में सोसाइटी में ये कहते हुए मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा. वेज शौरमा वाले तो मैं उनसे 10 मीटर की दूरी रखता हूँ. आप कह सकते कि भाई 1 मीटर की दूरी भी हो सकती है, नहीं मुझे वेज की महक भी नहीं पसंद. कहीं कहीं वेज की महक आ गई तो इसलिए 9 मीटर एक्स्ट्रा. फिलहाल 4:47 हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों वक्त है पहचान कौन का, जहां पर मैं आपके लिए गाना जो है वो बीच से प्ले करूंगा. अगर आप खेलना चाहते हैं ऑन कॉल तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाय फजील लिखकर भेजिए 6662107 पे, जहां पर मैं आपको कॉल करूंगा. आपको पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है यार, हमारे पास नया मोबाइल अलग आ गया अब तो. उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो नंबर है 4434377, जहां पर बीच से गाने की एक लिरिक्स मैं प्ले करूंगा और आपको गेस करना है गाने का नाम क्या है. गाने का नाम आपको गेस करना है. चलो तो सबसे पहला गाना आपको गेस करना है, वो रहा ये.
1: नींद में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती.
0: बताओ ये गाना कौन सा. मैंने बहुत छोटा सा इसका एक वर्स जो है वो प्ले करा है, ताकि लोगों के लिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा टफ रहे, इतना ज्यादा भी ना टफ रहे कि समझ ना आए, लेकिन हल्का फुल्का तो होना ही चाहिए. ये गाने का नाम बताओ. और सच बात तो ये है कि इसके दो अलग वर्जन है, एक बहुत पुराना वाला जो 90s का है, वो भी बहुत आला है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हिट हुआ था कि बाद में इसके 2-3 अलग वर्जन बने. 2-3 में से एक वर्जन ये हार्दिक और विकी का गाया हुआ है. गाने का नाम आपको बताना है, व्हाट्सएप नंबर 6662107. मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और लंबा वर्स अगर मैं प्ले कर दूँ, बस मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि उसमें फिर वो असल लफ्ज आ जाए.

0: कुछ नहीं बड़ा भाई, 3 सेकंड का म्यूजिक ही बड़ा इसमें। बताइए गाने का नाम क्या है, आपको बताना है, रिपीट प्लीज। मोहम्मद खान यानी कि यूसुफ भाई ने लिखा है। ओके, तो हमने प्ले कर दिया दोबारा से और आपको बताना है गाने का नाम। क्या ये इतना टफ है? अरे नहीं यार, मतलब ये तो नहीं हो सकता। एक आखिरी बार प्ले कर रहा हूँ क्योंकि असल में लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। टाइपिंग तो लिख के आ रहा है 2-4 लोगों का, लेकिन वो बार बार सोच ही रहे होंगे। चलो एक और बार प्ले करता हूँ।
1: नींद में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है।
0: बगैर चीटिंग के आई होप एक जवाब मिल गया है। हेशाम इनका नाम है और हेशाम भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस गाने को अजय ने गाया ऐसा इनका कहना है, लेकिन इस गाने को हार्दिक और विक्की ने गाया है। फिर यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और एक और मैसेज है, राहिल इनका नाम है, राहिल भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो तो कम से कम कुछ तो जवाब आ गया। और ये असल में जो गाना है वो है

याद है, ये बिल्कुल सही पहचाना आप तीनों लोगों ने FM 107 पे। आप लोगों को मेरी तरफ से दूसरा गाना दूसरा गाना ये आपको गेस करना है। और आज के जो गाने बहुत ही आसान है, मतलब आज तो 90% लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। बस पहला वाला मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था, और जो दूसरा गाना है वो रहा ये। अब बताओ, अगर ये वाला बता दिया आपने तो आपको मुझे बता देना पड़ेगा। ये तो बहुत ही आसान है। खैर यार, ये तो इस पर तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद ही वो मेन लाइन है जिसके वजह से ये गाना बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुआ था। और इस गाने का असल जो नाम है वही है जो इस गाने यानी कि इस लफ्ज के बाद आता है। सो मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान है। कैसर साहब ने देखो बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, फिर उसके बाद यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, हिशाम ने सही जवाब दे दिया है, राहील ने सही जवाब दिया है, ये वाला देखो आसान था, महफूज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और हिशाम भाई के बाद ये कौन है, अब्दुल अलीम इनका नाम है, बिल्कुल सही बताया कि हलीम नहीं भूख लग रही है क्या फजील, हलीम इनका नाम आलिम था शायद, आलिम ही था ना, अब्दुल अलीम, ओके सॉरी। फिर उसके बाद यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, एंड द आंसर इज दिस। क्या बात है, हनी सिंह की आवाज में ये गाना था, और दोनों आप लोगों ने, कई लोगों ने सही पहचान लिया है गाना उर्वशी। And now about the third one. ये तीसरा अगर आपने पहचान लिया तो मजा आ जाएगा। फिर उम्मीद है कि कल आपके दो गाने FM 107 पे प्ले हों, आपके रिक्वेस्ट वाले दो गाने प्ले हों। ये रहा आज का तीसरा गाना। What?

0: बस बस बस ब्रेक लगाओ बताओ भाई।
1: हाँ उर्वशी वाले में तो बहुत जल्दी आ गया था सबका जवाब। क्या हुआ? चलो आधो रा धीरे धीरे। हिशाम साहब ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, फिर उसके बाद प्रिंस ने सही जवाब बताया है, कैसर साहब ने सही बताया, बहुत ही उम्दा मुमताज। मुमताज को पहला वाला उर्वशी वाला नहीं आया था, एक लड़की भीगी भागी वाली नहीं आया था, लेकिन ये वाला आया तो पता है, मुमताज ने बिल्कुल सही जवाब बताया। फिर है नहीं मालूम मेरे को। मेरे को लग ही रहा था शेख साहब आपको नहीं पता होगा। फिर उसके बाद रमेश ने बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है रमेश भाई ने भी बिल्कुल सही है। आई एम ड्राइविंग नो स्माइल्स वेटिंग फॉर सिग्नल, क्या बात है। राहिल साहब बिल्कुल सही जवाब है, अब आप ड्राइव करिए लेकिन 80 के नीचे नीचे, 120 वाले पे 120 ही ना अपना, बाकी तो आप अपने मर्जी से चला ही सकते हैं। सॉन्ग आंख उठे पूछे हे हाउ आर यू यूसुफ, आंख उठे के पूछे हाँ हाँ उसी के बाद ही तो लाइन है, ये तो आपने लिरिक्स बोल दी है, असल में ये गाना है यूसुफ भाई ये।

बादशाह और तुलसी कुमार की आवाज में, और ये गाना असल में एक रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना इस रिक्वेस्ट को प्ले भी कर दिया जाए। तो बैक टू बैक दो सॉन्ग आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ। एक फैसल भाई ने कहा है बिल्लो रानी कहूँ, तो यही वाला है ना बिल्लो रानी, क्योंकि हमारे पास फरक शब्बीर का एक गाना है पाकिस्तानी पॉप 2023 का और नाइट बर्ड्स 2006 का है रंजन, बट बिल्लो रानी कौन सा बिल्लो रानी, बिल्लो रानी लिखा है बस। मैं एक रैंडम प्ले कर लूँ जरा, ये वाला कौन सा गाना है मेरे को देखना पड़ेगा यार, ये वाला गाना वही है जो ढूंढ रहा हूं मैं या फिर कौन सा है। नहीं नहीं या बोल दिया बस, यही मेरा मूड खराब हो गया, या से ही आपने सारा खेल खत्म कर दिया भाई साहब। एक और ये गाना है, ये है बिल्लो रानी फलक शब्बीर की आवाज में, आई गेस इसी गाने के बारे में बात करें। हाँ ये वाला, चलो ठीक है अपन इसे भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है फैसल भाई, यही वाला गाना आप सुनना चाह रहे हैं या फिर वो है बिल्लो रानी कहो तो भी जान दे। वैसे तो लग रहा है फैसल भाई कहीं निकल लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी एक और गाना है जो अपन प्ले करने वाले, वो है शहर की लड़की, और ये रिक्वेस्ट किया है शेखुल्ला साहब ने। ओके शेखुल्ला साहब ने, यार अब्दुल्ला सुना है मैंने और भी सुना है, शेख उल्ला नाम पहली बार सुन रहा हूं मैं। मूवी गोयल, ये कौन लिख रहा है, शुएब भाई। ओके तो ये गाना है अपन प्ले कर रहे हैं शहर की लड़की, ठीक है, और फैसल भाई का तो आया नहीं है, तो हम बाकी सॉन्ग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और ये गाना किसने एक रिक्वेस्ट किया था, दिल दियां गल्ला, ठीक है, तो आपके कहने पर ख्वाजा साहब, आपके कहने पर दिल दिया गल्ला प्ले करेंगे अपन FM 107 पे, दिल दिया गल्ला। लेकिन यार टाइम नहीं है, कल पे कर दूं क्या, देखना पड़ेगा कितने वक्त का, कितना लंबा गाना है दिल दिया गल्ला। ये भी यार क्या गाना था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद, आय हाय दिल दिया गल्ला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, आतिफ असलम का गाया हुआ है, टाइगर जिंदा है मूवी का ट्रैक, 4 मिनट का दिखा रहा है, टाइगर जिंदा है दिल दिया गल्ला ना, ये तो है नहीं, नहीं गलत है। जो हमारे डेटाबेस में मतलब सही करने वाले, या यू नो डेटाबेस पे करेक्ट फिल करने वाले, फॉर्म फिल करने वाले हैं, वो गलत लिख गए। लेकिन ये 4 मिनट का थोड़ा लंबा गाना है, माजरत के साथ मेरा भाई, क्योंकि अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में ऑलरेडी 57 हो चुका है, यानी कि 4:57। अभी फिलहाल बादशाह और तुलसी कुमार की आवाज़ में गाना सुनिए शहर की लड़की, क्योंकि आज का थीम भी है, और थीम था आज का शाम के गाने जो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करे शाम को, है ना। FM 107 पे इस गाने को एंजॉय करें और मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे। कल तो वीकेंड है यार, सुनते रहे FM 107 दिल से दही से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: और इसी के साथ 5:01 पे मैदान में उतर रहे हैं एक और धुरंधर बल्लेबाज दोहा वाले कबीर। इनकी बुश सेट की जर्सी का नंबर 107 मैदान में बल्ला घुमाते हैं, पूरी तरह से तैयार, निगाहें पिच पर, सारे लोग चीयर करते हैं। क्या आज इनकी सेंचुरी पूरी होगी, देखेंगे बस कुछ ही देर में।

अस्सलाम वालेकुम, मैं जी दो हवाला कबीर, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। क्या हाल है? 5:02 मैं आ गया जी। क्या सब बढ़िया चल रहा भाई? आज मुझे सीधा सीधा एक बड़ा खतरनाक से शौक सा लगा, एक मैसेज आया मेरे पास, नए फोन की मुबारकबाद। भाई सबको पता है मेरे बारे में, मुझे छोड़ के, मुझे भी कुछ देर पहले एंट्री बने गए ये नया फोन। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, 3 बजे से इंतजार कर रहा हूँ भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। क्या एक और मैसेज है प्रिंस भाई का, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज कबीर भाई, कैप्शन जर्सी नंबर 107 जी भाई, वही जर्सी पहनिएगा मालुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम हिशाम भाई लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम, नया फोन मुबारक हो। शाहिद भाई वालेकुम अस्सलाम, फरद भाई वालेकुम अस्सलाम। तो इन तमाम लोगों के मैसेज आ गए। अच्छा आज ना मैं कतई मतलब म्यूजिक रोको भाई 2 मिनट यार, बात कर रहा आदमी। तो बड़ा नर्वस हूँ मैं आज की कहानी को लेके, क्योंकि मुझे ये मुश्किल हो रही है कि ये कहानी जो है ना, इसमें आपको बिल्कुल आखिर तक रुकना पड़ेगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना बंडल हो जाएगा मामला, तो पूरा बंडल ना हो जाए मामला, इसलिए आपको इस कहानी में बिल्कुल आखिर तक रहना पड़ेगा, तभी जाके ये कहानी आपके पल्ले पड़ेगी। और जब इसके आखिर में आप पहुँचेंगे, यू विल बी इन शॉक। आज की ऐसी कहानी है भाई, आप जो है ना गाड़ी अपनी साइड में लगा के सुनना, क्योंकि क्लाइमेक्स इस कहानी का ऐसा होगा ना कि आप अपने आप ब्रेक लगा दोगे, भाई रुक जाओ गाड़ी साइड में लगाओ, क्या बोल रहा है रेडियो भाई, ये तो कहानी ऐसी है। बट यू हैव टू लिसन टू इट बिल्कुल आखिर तक मेरे साथ, तभी आपको मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये मैसेज क्या है हमारे यूसुफ भाई ने, एक मैसेज है, ठीक है भाई लगा दी। क्या लगा दी भाई? एक मैसेज, भाई कौन सा फ़ोन ले लिया? नहीं भाई मैंने तमने तो बेरा प्रिंस भाई, मैंने कोई फ़ोन नहीं लिया, ये फ़ोन तो ऑफिस वाला फ़ोन जिस पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं उस वाले का। कबीर जानी को सलाम, वालेकुम सलाम मेरे भाई। मोहम्मद इशफाक भाई ने मैसेज किया है और कह रहे हैं ठीक है भाई लगा दी साइड में। नहीं कहानी तो भाई 5:30 बजे आएगी भाई। मुमताज़ भाई लिखते हैं सलाम वालेकुम भाई, और फजील भाई पहले ही क्लीन बोल्ड कर दिए, पहले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिए। किसको क्लीन बोल्ड कर दिए फजील भाई, मुमताज भाई कौन क्लीन बोल्ड हुआ? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम अजहर हुसैनी सैयद भाई, और अस्सलाम वालेकुम भाई फलक भाई माजिद भाई, वालेकुम अस्सलाम। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हुसैन भाई, ये क्या लिख रहे हैं? बहुत भाई को बहुत सारा प्यार, भाई को बहुत सारा प्यार टू। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, सेंड मी कहानी रिक्वेस्ट इन एडवांस। ओके तो ये मैसेज आया मेरे पास। अब मैं आपको बता दूं, आपको पता ये शो का रिचुअल बड़ा आसान है, 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद आपसे बात होगी वापस, क्योंकि अब ये इवनिंग के कॉल चलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बनेंगे। तो दुआओं में ज़रा भर पेट याद रखिएगा और अपने लिए भी जम के दुआ मांगिएगा। उसके बाद मिलते हैं, एक बहुत ज़रूरी सवाल और एक बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहानी।

0: क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई थी जिसमें आप इमोशनल हुए है ना, मुझे भी थोड़ा इमोशनल फील हुआ इन दिनों की कहानियों में। लेकिन अभी अब वक्त है वीकेंड की करवाने का, तो जैसे जैसे अब हॉरर स्टोरी के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कहानी का लेवल भी, मुझे भी तो गियर डालना पड़ेगा भाई। तो आज की कहानी मैंने गियर सीधा चौथा गियर डाल दिया है, तो कुछ देर में आएगी कहानी। अमजद भाई वालेकुम अस्सलाम, लुसेल से इन्होंने मैसेज किया है, और ये सैफ अली खान क्यों लिखा है यूसुफ भाई ने, मैं समझा नहीं कुछ भी, मैं नया नया आया हूँ, मैं 11 मिनट की बात मिलता हूँ, जब तक आपके मैसेज को ज़रा एनालाइज कर लेता हूँ। 666-22-107 स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. 17:17 بائی دا کلاک. اور بھائی صاحب میوزک اینڈ ذرا میسج موسیج پڑھ لے جائیں تو یوسف بھائی لکھتے ہیں کہ فضیل بھائی بھی بہت تعریف کرتے ہیں کون سا فون ہے یہ نیا جو آفس کا آیا. بھائی تم نے تو بہرا میں پروموٹ تو کرنا سکوں کسی بھی برانڈ کو تو بھائی میں بتا نہیں سکتا برانڈ تو بس یہ سمجھ لو بڑھیا فون ہے. میسج السلام علیکم کبیر بھائی شعیب بھائی. شعیب بھائی کیسے میرا بھائی؟ اور ایک سیکنڈ بھائی اس میں پیچھے کیسے کرتے ہیں آپ؟ ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اس فون کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو میرا ترین صاحب نے میسج کیا ہے عبد الامجد صاحب بہت بہت شکریہ. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ کو سننے کے لیے 2 گھنٹے ایکسٹرا ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. کیا کریں آپ کے شو سے عشق ہوا ہے. میرا بھائی کو دل بھیجو. بھائی آپ کے لیے محمد بھائی تھینک یو سو مچ یار دیٹ از سو سویٹ آف یو. بہت بہت شکریہ. نسیم صاحب بہت بہت شکریہ. سلطان احمد صاحب وعلیکم السلام. یہ ہو کیا رہا ہے آج؟ الگ ہی قسم کے. ممتاز بھائی کہہ رہے ہیں آپ کو ہی مجھے فضیل بھائی نے بولڈ کیا ہے. مجھے کیسے فضیل بھائی نے بولڈ کیا ہے؟ ممتاز بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام کبیر بھائی.
1: جی کیا حال ہے بیٹے؟ سب بڑھیا؟
2: ہاں سب بڑھیا الحمدللہ.
1: ہاں بھائی کیسے بھٹکے کال کر دیا آج؟
2: بس وہ میرے دماغ میں آ کے ہی سہن ہی نکل رہا. کل سے خواب میں آ بھی آ رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے.
1: میں خواب میں آ رہا ہوں بھائی. کیوں آ رہا ہوں میں خواب میں؟ یہ کیا بات ہوئی؟
2: پتہ نہیں جب سے میں نے پورچگل کو سپورٹ کرنا شروع کیا میرے دماغ میں بھی آنا شروع ہو گیا.
1: بھائی میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے پورچگل سے. کیوں سپورٹ میں تمہیں؟ میں کیوں آ رہا ہوں؟ رونالڈو کو آنا چاہیے تمہارے سپنے میں. میں کیا کر رہا ہوں تمہارے سپنے میں؟
2: پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا ہے. میرے دماغ
1: غلطی سے بھی مجھے سپنے میں فٹ بال کھیلتے مت سوچنا. دیٹ از امپوسیبل. تو یہ نہیں سوچنا ٹھیک ہے؟
2: نہیں
1: ہاں کیا
2: مسئلہ؟ میں بھی فٹ بال نہیں کھیلتا. مجھے بھی اتنا وہ یعنی مجھے بھی وہ ہوتا ہے نا آئی کانٹ پلے اٹ. دل چاہتا ہے بٹ آئی کانٹ پلے اٹ.
1: اچھا ٹھیک ہے تو پھر تم آرام سے کھیلو بھیا. تم جو مرضی کرو. آج کا سوال میں چاہتا تھا کہ تمہارے مطلب کو لیکن تمہارے ریڈیس سے بالکل دور ہے. یہ تمہارے بالکل مطلب کا سوال نہیں ہے آج کا. میں چاہتا تم سے پوچھ لیتا مگر کیا کروں ابھی. تمہاری ایک تو عمر کم ہے اور تم یہاں پہ رہو زیادہ تر تو کوئی مطلب نہیں تم سے پوچھنے کا. ابا ہیں سائڈ میں تمہارے؟
2: ابا تو نہیں وہ مارننگ میں آئیں گے بعد میں.
1: اچھا اچھا اگر ابا ہوتے تو ان سے ضرور پوچھتا. ہاں کیا یعنی وہ
2: آ کے شو کے جب شو ختم ہوتا ہے 7:45 اس وقت آ جاتے ہیں.
1: ارے رے رے بالکل ہی کلائمیکس میں ہی آتے ہیں وہ بھی. اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. ہمارا سلام کہنا ٹھیک ہے؟
2: چلیں
1: ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے محمد. تھینک یو سو مچ.
2: تھینک یو سو مچ.
1: اوکے بھائی اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ سوال جو ہے محمد کے مطلب کا تو نہیں ہے لیکن آپ کے مطلب کا ہے. مقصود بھائی وعلیکم السلام. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. تو میں سوال کر رہا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی چور بازار کی شکل دیکھی ہے. کبھی آپ میں سے لوگ چور بازار گئے ہیں مجھے بتائیے سب سے پہلے. کتنے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں چور بازار کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ احساس ہوا ہے کہ چور بازار بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ نے وہاں سے کوئی چیز خریدی ہے؟ بتائیے گا ضرور بیکاز آئی وانٹ ٹو نو کہ کتنے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. ایک کال آ رہی ہے پہلے کال اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: ارے بھائی پارٹی کیا حال ہے؟ بڑھیا
3: الحمدللہ
1: بڑھیا بھائی ایک دم بھلا چنگا چل رہا ہے میرے بھائی. آپ سنائیں کیا کیا سین ہے؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جب آئے گئے کبھی چور بازار گئے ہیں آپ؟
3: بھائی سوال تو میں نے آپ کا سن لیا.
1: ہاں
3: فرسٹ آف آل تو کانگریچولیشن فار دا نیو چیئر اینڈ
1: یہ چیئر تک کا بتا دیا کیا فضیل بھائی نے؟ یار
3: ایسے ایکسپلین کر رہے تھے فضیل بھائی ایسے ایکسپلین کر رہے تھے کہ میں میرا دل کیا ایک بار بھائی کو بولو بھائی زیادہ تعریف نہیں کرو. جو باس نے بولنا بیٹا بہت زیادہ ہو گئی لے واپس پرانی والی لے جائے.
1: ہاں یار میں نے چیئر کی طرف ہاں چیئر بھی نہیں ہے میں نے تو نوٹس بھی نہیں کیا. حد ہو گئی یار بڑا ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوں میں. فون کا تو مجھے احساس ہو گیا تھا. اچھا یہ سب کچھ پہلے باتیں ہو چکی ہیں
3: अरे फजील भाई की खुशी नहीं समा रही थी भाई।
1: अरे बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था भाई कि इतना कुछ हो चुका है, मैं पिक्चर के आखिर में आया हूँ। अच्छा एनीवे
3: इतनी चर्चा थी कि 15 मिनट खाली इसी में रहे हम लोग।
1: अरे भाई साहब,
3: और एंड तक भी भाई हर गाने के बाद भाई को यही याद आ रहा था, ये चेयर इस साइड से भी फील दे रही है, इस साइड से भी फील दे रही है,
1: क्या हो गया फजील भाई को? फजील भाई तो खुद वेस्ट पे में रहते हैं और कितनी फील चाहिए उन्हें अब तो कही ये क्या बात होगी। अच्छा चलो ठीक है, उनकी मैं मुझे एहसास हो रहा
3: है,
1: मैं समझ सकता हूँ, मैं जरूर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने सुना नहीं शो, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका चोर बाजार का क्या एक्सपीरियंस है मेरे भाई।
3: भाई आपको पता है अपने पाकिस्तान और इंडिया में तो ये चीजें बहुत आम है,
1: बहुत बढ़िया चीज है भाई। कभी गए हैं आप चोर बाजार में? क्या गए हैं आप चोर बाजार से?
3: यार गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स थे जो मिल नहीं रहे थे, मेरे पास 83 की मॉडल पड़ा हुआ है
1: अभी भी, है
3: हम लोगों के यूज में है अभी भी।
1: क्या यार,
3: हम लोगों के यूज में यही है।
1: बहुत बढ़िया,
3: और वो लोडिंग गाड़ी है।
1: अच्छा
3: तो सुजुकी कहते हैं हम लोग उसको, टेम्पर सुजुकी है, आप लोग उधर लोडर कहते हैं मेरे ख्याल। तो वो जो है उसका स्पेयर पार्ट था एक, वो नहीं मिला था, तो वो उसके लिए फिर स्पेशल गया था। हाँ। हमारे शेरशाह साइड पे भी एक वो लगती है स्पेशल गाड़ियों की।
1: अच्छा
3: कराची में।
1: हाँ।
3: तो उधर गया था, उधर से वो पार्ट पापा के साथ जाके स्पेशली ढूंढ के लेकर आए थे, तो वो वहां से मिल गया था हमें।
1: क्या बात है, मगर
3: वैसे इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा।
1: अच्छा।
3: क्योंकि लव ज्यादा ना स्टार्टिंग में चला भाई झूठ से, और ये चोरी के कार्य से इन चीजों से शुरू से नफरत रही है, तो इस वजह से जाना इतना दिल नहीं करता था
1: यार। आपने ये कह के जो है मुझे एहसास करा दिया, आपने ये कह के मुझे एहसास करा दिया, मेरे दिल में आ रहा है यार कबीर आप कितने बुरे आदमी हैं यार, मैं तो बचपन से जा रहा हूँ चोर बाजार।
3: नहीं अच्छा। असल में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती।
1: हाँ,
3: इनके लिए क्या हार्डली भी अवेलेबल नहीं होती।
1: हाँ हाँ
3: बिल्कुल, फिर उन जगह उन चीजों के लिए वो फिर मजबूरन जाना पड़ता।
1: ओके ठीक है चलो, आप तो आपका एक्सपीरियंस है मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। अब ये मैं जरा इस गम में जीलूं कि मैं क्यों गया आपके चक्कर में, तो आपने जो है मुझे ही वो कर दिया है सैड, थैंक यू सो मच।
3: अरे नहीं हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए
1: मेरी बात जस्टिफाइड है,
3: आप इस गम से बाहर निकल
1: आए। निकल आए,
3: मजबूरी में जाना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है।
1: थैंक यू,
3: ठीक है,
1: ये बहाना अच्छा है, मजबूरी में गया था मैं तो यार, बस छोटा था मैं, समझ नहीं थी। थैंक यू, ठीक है।
3: एक्साइटमेंट में छोटे तो एक्साइटमेंट में गए होंगे।
1: हाँ
3: यार उधर भी ये चीजें
1: नहीं, एक्साइटमेंट अभी भी है, अभी भी है, अभी भी
3: है। बाजार एक वाहिद ऐसी जगह है मेरी नजर में, तो पिछले दिनों में मेरे ख्याल से सरवर भाई से जना बात हो रही थी, आप शॉपिंग जना कैसे करते हो, तो उन्होंने यही बात यही बस चली थी कि हम लोग तो बोले थे भाई ऑनलाइन को तो प्रेफर नहीं करते, जाके लेने में जो मजा है ना
1: वो मजा है भाई, करेक्ट भाई, एकदम करेक्ट,
3: वो अपना ही मजा है
1: भाई। मैं ऑनलाइन से ना छोटी छोटी चीजें मंगाता हूँ अपने आपको सरप्राइज करने के लिए, जैसे वो पीठ खुजाने वाला हाथ मिलता है ना, वो मंगाया था मैंने ऑनलाइन भाई। ये सब मंगाता
3: हूँ, बहुत अच्छे सरप्राइज हो आप,
1: ये चीजें मंगाता हूँ
3: यार।
1: थैंक यू भाई, इट्स ऑल माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।
3: ओके भाई, इंतजार रहेगा आपके गाने का,
1: जरूर भाई जरूर,
3: और कल वाली गाने का भी ट्विस्ट सुना मैंने।
1: हाँ
3: मजा आया, और वो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट वाला सीन हो गया।
1: हाँ वो रॉबर्ट वाला ही सीन,
3: रॉबरी और रॉबर्ट वाला,
1: वो एक्चुअली में सेम ही सीन है, बस तोता नहीं है।
3: पता सबको था लेकिन, पता सबको चल रहा था लेकिन वो इस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे थे।
1: हाँ राइट राइट, नहीं आज आज
3: ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता
1: है। आज वाली जो कहानी है ना भाई, आज वाली कहानी है समथिंग वेरी डिफरेंट, तो आखिर तक रहना भाई अगर आप सुनोगे तो। ठीक है
3: भाई, मैंने
1: भी ब्रेक डाल लिया अपनी
3: आईडी पे,
1: डन बेटा, वालेकुम वालेकुम सलाम। और भाई के बाद एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: अरे वाह मुंबई लोग, एक आपके लिए मैसेज आया है नदीम भाई, इन्होंने क्या है, सलाम वालेकुम, ये सवाल पूछा है मुंबई वालों से, इमरान भाई कह रहे हैं। हाँ तो आप बताइए।
4: वो बचपन की यादें दिला दी यार आपने।
1: आप भी बचपन से जा रहे हैं क्या?
4: अरे मेरे डैडी तो उधर कटलरी का सामान लगाते थे जाके।
1: क्या बात कर रहे हो?
4: तो हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है पता है, वो चोर बाजार एरिया है, ठीक है पूरा।
1: अच्छा।
4: तो संडे संडे तो बहुत रश होती है, लेकिन वहाँ पे स्पेशली एक बाजार लगता है जुम्मा बाजार।
1: जुम्मा बाजार, हाँ,
4: अपना
1: ओके।
4: डोंगरी एरिया में ही।
1: हाँ,
4: हाँ। दो टाकी पे। हाँ। तो डैडी मेरे ग्लास, वो चाइनीज कटलरी पता है, रंग बिरंगी, वो उसका डैडी वो एक छोटा बकड़ा होता ना जैसे, वैसा लगता था मेरे डैडी लगाते थे, तो मैं तो बहुत ज्यादा था।
1: अरे यार।
4: और मेरा काम सिर्फ यही होता था कि मैं पूरा मार्केट घूम के ना एंटिक चीजें, वहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स,
1: भाई इलेक्ट्रॉनिक्स भर भर के। इनफैक्ट आपको याद होगा, ये पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, एक टाइम पे जब ये 2GB की पेन ड्राइव लॉन्च हुई थी वे बैक, तो वो 2GB की पेन ड्राइव इतनी सस्ती मिलती थी जोर बाजार में भाई,
4: बहुत सस्ती मिलती है। अरे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एंटिक फोन था, ठीक है, रिसीवर फोन, पुराने जमाने का, वो ऐसा रिंग करके घुमाने वाला डायल आता था ना गोल्डन कलर में, वो टाइम पे पैसे होते नहीं थे, छोटे थे,
1: हाँ।
4: तो 5 रुपया 10 रुपया होता था, अभी 20-30 रुपए की चीजें बहुत महंगी लगती थी वो टाइम पे, तो मेरे को इतना पसंद आया था, मैंने डैडी से, हमारे घर में ना टेलीफोन की लाइन थी ना कुछ थी, दिल करके वो लेके जाके घर में रख दिया था।
1: वैसे वैसे आपको याद है वो एक 12 स्पीकरों का चाइनीज फोन आता था, एक 12 स्पीकर वाला,
4: क्या वो मेरे को अभी भी याद है, वो छैया छैया
1: नहीं यार, वो अच्छा फोन था नदीम भाई, वो जो 12 स्पीकर वाला चाइनीज फोन था, बहुत बढ़िया था वो,
4: साउंड आता था,
1: क्या साउंड थी उसकी पीछे,
4: चाइना वाले ने वो टाइम पे तबाही मचा के रखी थी,
1: और पीछे पूरे स्पीकर होते थे लगातार, पीछे
4: स्पीकर्स होते थे, हाँ, बहुत ज्यादा स्पीकर थे।
1: क्या जमाना था यार वो, क्या जमाना था। तो चोर बाजार तो अभी भी लगते हैं, अभी हाल फिलहाल जाना हुआ,
4: मैं पता, मैं अभी भी जब जाता हूँ ना, तो मेरा ऐसा होता है कि मैं एक दिन जाऊँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पाता है कि एक दिन जाऊँ घूमने,
1: मैं तो भाई
4: क्या क्या नहीं लिया है, पुराने फोन, ये वो सब, गैम्बल भी किया है कि भाई चालू है कि नहीं, पता नहीं घर जाके दिखेगी, ले लो।
1: ये तो करना ही पड़ता ना, वहाँ कुछ चीजें आप टेस्ट नहीं करते, तो वो तो भाई ले जाओ, वैसे इतना सस्ता दे रहा हूँ, नहीं सही।
4: इतने बड़े बड़े जबरदस्त होम थिएटर ना, ये कहाँ से कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आते हैं, और ऐसे रेट्स में होते हैं कि अपने को ऐसा लगता है कि यार ये तो खराब ही होगा
1: भाई। ये चोर बाजार है असली, हिडन जेम, इनके बनने चाहिए वीडियो, ये है जी हिडन जेम असली।
4: आपको पता है कबीर भाई, एक टाइम था जब मैं, मेरे ख्याल से स्कूल वगैरह के टाइम, थोड़ा कॉलेज टाइम पे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ना रात में फजर के पहले 2-2.5 बजे मार्केट चालू होके पहले खत्म हो जाती है, जूता मार्केट
1: जूता मार्केट
4: ब्रांडेड ऐसा। जूते
1: हमारे जूते हमारे भी लगती है भाई, पालिका बाजार के बाद जूता मार्केट बढ़िया कर
4: ब्रांडेड जूते और मतलब 20-25-25 हजार के जूते, 2500 में 3000 में, और आप जाओगे तो पाँव रखने को जगह नहीं है फजर के पहले।
1: हाँ तो हमारे भी ऐसे भाई, ये ब्रांडेड जो लोग यहाँ पे लेते हैं 700-700-800-800 रियाल के, वो अभी 1500-2000 मिल रहे हैं बटला उसमें,
4: 1500-2000 में एक से एक जूते। अब वो कुछ भी है, कॉपी है, शॉपी है, जो भी है, लेकिन पता नहीं वो बोलते
1: भाई,
4: तो
1: नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, हाँ, कोई बता ही नहीं
4: बता सकता वो क्या है,
1: हाँ।
4: और लोग लेके जा रहे और पहन भी रहे हैं, साल साल भी चल रहे
1: यही तो कमाल है, यही तो कमाल है हमारी तरफ।
4: मैं एक बार गया था, मैंने भी रिबॉक के जूते लाए थे वो टाइम पे
1: मैं भी भाई, मैं हर साल यही करता हूँ और अच्छे से शॉपिंग करके आता हूँ उन चीजों की। तो ये नदीम भाई आपने जो याद दिलाया,
4: मेरे को तो चोर बाजार में एक ही चीज अच्छी लगती है कि वो जो पुराने टाइम के आईपॉड और वो सब
1: इलेक्ट्रॉनिक, अभी भी मिल जाते हैं ना, एंटीक सामान जो होता है
4: मिल जाते हैं,
1: एंटीक सामान जो मिलता है, हाँ राइट, ट्रू ट्रू ट्रू,
4: नया तो मिलता ही मिलता है, वो लोग एंटीक भी रखते हैं, मतलब हर टाइप की वैरायटी मिलेगी आपको।
1: हाँ नहीं, मेरा भी प्लान है, एक पुराना कैमरा मैंने देखा है, मैं वो चोर बाजार में मैं ले गया इस बारी, तो मेरा भी ये प्लान है,
4: जरूर फोटो भेजना कभी मैं गया तो, मैं भी देखूंगा मिलता है।
1: डन नदीम भाई, ठीक है नदीम भाई, बहुत शुक्रिया भाई,
4: ओके
1: भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मैं अभी कॉल उठाऊंगा अमन भाई, करता हूँ मैं, कुछ देर पर मैसेज पढ़ दूँ, एक मैसेज आया है फरद भाई का, लिखते हैं भाई चोर बाजार एक का एक अपना अलग ही मजा होता है, वहाँ डंबल लेकर आया था भाई, ऐसी चीज मिलती है ना भाई, क्या बताऊँ, ब्रांडेड शूज मिलते हैं अभी भी, है ना, अभी भी मिलते हैं। और यूसुफ भाई कह रहे हैं देखने से पता नहीं चल रहा है मोबाइल पर नाम, ये ब्रांड तो होगा ना, नहीं पता लगता। अच्छा ब्रांड का नाम पूछे, ब्रांड का नाम मैं मुझे पता नहीं यार यूसुफ भाई, इस पर उन्होंने चिटे लगा रखी हैं। एक और मैसेज, सलाम कबीर भाई, हम भी गए एक बार दिल्ली के रेड फोर्ट के पास, चोर बाजार लगता है सुबह 6 बजे बंद हो जाता है भाई, सुबह उठ के भाई गए।

0: थे, अरे भाई क्या बार्गेनिंग है उधर, 5,000 सीधा 300। ये तो है। एक मैसेज है, भाई नए फोन, क्या नए मोबाइल फोन से आज से नई कहानी भेज दीजिए। तो डेली नई कहानी तो भेज रहा हूँ मैं। कैस साहब, फराज भाई कह रहे हैं क्या टॉपिक है भाई, चोर बाजार का एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ मैं आपका। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: जी कमाल भाई, कमाल कर दो भाई, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, आपकी क्या हाल है भाई?
0: बस बढ़िया कमाल भाई।
1: बहुत तैयार
0: हैं?
1: बहुत तैयार ही नहीं, एयरफोन लगाए थे कुछ
0: आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। हैं?
1: बोलिए, निकाल देता हूँ एयरफोन।
0: हाँ निकालिए,
1: आवाज
0: अब आ रही है, बढ़िया आ रही है, अब बताओ
1: भाई, क्यों पुरानी याद को याद कर रहे हैं भाई?
0: भाई मैं तो मैं बताऊं
1: चोर बाजार
0: मैं एक्चुअली मैं आज एक वीडियो देख रहा था पुराना, और मेरा ही वीडियो था। सो हम लोग वो दिल्ली में ना सुबह सुबह चोर बाजार लगता है और बंद हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसका अलग मजा है। तो मैंने कहा चलो आज इसके बारे में जरा बात की जाए, बिकॉज ये एक्सपीरियंस आज के जमाने में लोगों को मिलता
1: तो
0: नहीं।
1: बम्बई में जो चोर बाजार लगती है वो जुम्मा के दिन सुबह लगती है और जुम्मा के बाद भी लगती है।
0: अच्छा, तो आप क्या फ्राइडे बाजार की तरह है ना?
1: हाँ, फ्राइडे बाजार की तरह
0: हाँ अच्छा ओके। नहीं हमारे यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम
1: भाई।
0: है।
1: रिबो अभी भाई बात कर रहे थे कि रिबोक का जूता मैंने लिया था भाई, कम से कम उसको 5 साल पहना था
0: हाँ
1: चोर बाजार से, और बहुत पहले की बात है,
0: हाँ
1: 96-97 की बात बता रहा हूँ। बहुत अच्छा चलता है, और कॉपी कोई बता नहीं सकता भाई कि कॉपी है कि ओरिजिनल है,
0: अरे अब तो
1: बट चलने में
0: अब तो पूरे बॉक्स वॉक्स भी मिलते हैं, अब तो पूरे बॉक्स वॉक्स मिलते हैं जूते के साथ। कोई कह ही नहीं सकता भाई, कोई कह ही नहीं सकता ये फर्स्ट कॉपी या कुछ है। हमारे भी
1: इससे पहले
0: सिस्टम।
1: भी गया था तो बेटे को बोला, बेटा चल जाके आते हैं, बेटा बोलता है अबू अभी थोड़ा काम है, ये है गए नहीं, जाने का बहुत दिल था।
0: तो जाओ यार इस बार, आप जाना
1: जब
0: चाहिए,
1: भी
0: आप
1: जाता हूँ तो जाता हूँ भाई,
0: जाना चाहिए,
1: जाता हूँ तो
0: जाना
1: जाता
0: चाहिए।
1: हूँ कभी कभार
0: एक और मैसेज
1: भाई,
0: आया
1: जाने
0: ये
1: के बाद
0: कह रहे
1: इतना
0: हैं,
1: टाइम।
0: एक मैसेज आया है फरद भाई कह रहे हैं पावर बैंक कमाल के मिलते हैं वहाँ, जो पावर बैंक खोल के देखे तो अंदर कुछ स्टोन टाइप का रखा होता है। आपके मुंबई में मिलते होंगे ना ये सब चीजें चोर बाजार में, अभी भी लगता है?
1: भाई हाँ, चोर बाजार अभी भी लगता है, लेकिन कैसा है मालूम है, खोल के देखने है कि वहां पे सब चीज मिलता है, आप चेक कर लो।
0: हाँ।
1: मेन कैसा है, चोर बाजार से लेने वाली वो नहीं है, चोर बाजार के भी कैसा बार्गेनिंग करने वाला जो है सिस्टम हर किसी को नहीं आता है।
0: भाई वो बार्गेनिंग वहां पे करने के लिए आपको कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो बढ़िया बहस कर सके। 5,000 से 300 पे ला सकते हैं हम रेट को, अगर आपके साथ कोई धुरंधर
1: हाँ
0: है तो। ये फैक्ट है
1: भाई, देखिए कैसा है, जो रोड का माल होता है ना वो बार्गेनिंग पे ही चलता है,
0: हाँ
1: आप
0: हाँ
1: बार्गेनिंग नहीं करोगे तो समझ लो कि आप नहीं खरीद पाओगे।
0: मैं अभी इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार जाना ही पड़ेगा, पिछली बार मिस हो गया था, इस बार आपका भाई एकदम बढ़िया शॉपिंग करके आएगा, बढ़िया वाली इस बार मिस हो
1: अच्छा है
0: जाएगा।
1: भाई, बैग खाली लेके जाने का, भर के लेके आने का।
0: या ये हुई बात, ये कमाल भाई, ये इंस्पायर कर दिया आपने। अभी आप कहानी भी सुनेंगे तो इंस्पायर मत हो जाइएगा, क्योंकि आज की कहानी कुछ है, बड़ी खास है।
1: नहीं भाई, अगले महीना जाने वाला हूँ मैं, इंस्पायर होऊंगा तो बैग नहीं लेके जाऊंगा।
0: नहीं नहीं नहीं ठीक है, तो मैं कहानी शुरू करने वाला हूँ, बस आप सुनिएगा जरूर, मुझे बताइएगा। ठीक है
1: ओके
0: ठीक है मेरा भाई, ओके
1: ठीक है, कभी भाई
0: अल्लाह
1: ओके।
0: हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। प्रिंस भाई भी कुछ लिख रहे हैं, प्रिंस भाई क्या लिखा है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों? अरे प्रिंस भाई यू शुड एक्सपीरियंस चोर बाजार एंड ऑल ब्रो, ये बहुत ग्राउंडेड चीज़ें हैं, इनका मज़ा ही कुछ और है। बस एक कॉल के बाद मैं सीधा कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये आपने नहीं एक्सपीरियंस किया? आई एम अ लिटिल शॉक्ड। फलक का मजा है, फलक अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम
2: कबीर भाई, कैसे हैं?
0: बात जी बढ़िया, वीर जी दसो क्या
2: अच्छा,
0: चल रहा?
2: मैं आपको
0: हाँ।
2: लगा रहा था, आपने मेरे को लगा दिया कॉल।
0: ऐसे ही है भाई, दिल दिल का कनेक्शन है मेरा भाई।
2: क्या बात है जी, क्या बात है, पहले तो आवाज सुन के दिन अच्छा हो जाता है।
0: बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच मेरा भाई।
2: और एक हाँ। स्टोरी आपने भेजी थी मुझे, वो लड़की वाली जो जंगल में सर्वाइव करके गई थी।
0: हाँ जी भाई,
2: मैं मिस कर गया था लेकिन मैंने सुनी बड़े ध्यान से, बहुत अच्छी लगी, इमोशनल थी बहुत ज्यादा ही।
0: थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू मेरा भाई।
2: आप धीरे धीरे तड़पा तड़पा के सुना रहे थे स्टोरी को, मालूम है जो
0: भाई।
2: बिस्किट खत्म हो गए और चीजें गिर गई, फ्रूट उसको कुचल के फ्रूट खिलाया आपने। हाँ। जान जान निकाल निकाल के ना जान को
0: भाई, एकदम एकदम डिटेल में गया था भाई, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, अगर इस प्रोफेशन में होता सर्जन होता मैं।
2: हमारी इधर जान निकल रही थी, आप खत्म क्यों नहीं करते, वो बच गई कि नहीं करते?
0: ये
2: आप पहले ये बताओ, वो बच गई थी फिर आप सुनाओ ऐसे।
0: तो मैं कल से ऐसे सुनाऊंगा, एक थराजा एक थिरानी दोनों मुर्गे, खत्म कहानी। बीच में कुछ
2: ये
0: नहीं,
2: आपकी एक कहानी थी। ये एक कहानी थी जिसमें जान कांप रही थी सुनते हुए, हाथ कांप रहे थे।
0: थैंक यू सो मच भाई, ये तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं आप
2: जी। और जिन जिन लोगों के बच्चे और बच्चियां हैं ना, वो तो कसम से हिल गए होंगे। मेरी भी दो बेटियां हैं,
0: अच्छा
2: मैं भी हिल गया था।

0: इसी बात के तो पैसे हैं भाई, बिना सब्सक्रिप्शन के आपको सिनेमा देखने को मिल रहा है क्या चीज़?
1: अरे बाप रे, मतलब लेकिन अच्छा हो गया वो बच्ची ने बचाया, अपने भाई बहन को बचाया.
0: एब्सोल्युटली यार, वो बहुत वो मेरी भी फेवरेट कहानी है. 40 दिन. यस
1: 40 दिन.
0: यस यस 40 दिन.
1: कैसे सरवाइव किया होगा उस जंगल में, बारिश हो रही थी.
0: चल के देखते ही, मैं चलिए एक बारी मैं बाहर वेट करूंगा आपका.
1: अभी आज सुनूंगा मैं, आज गाड़ी
0: आज सुनिए भाई. वैसे अमन भाई, आपको कोई चोर बाजार का एक्सपीरियंस नहीं है?
1: चोर बाजार का है, मुझे अमृतसर का ना.
0: अमृतसर गए? आ रहे, बहुत बढ़िया मेरा भाई. ये हुई बात, तो चोर बाजार से क्या लिया आज तक सामान?
1: चोर बाजार से जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना 2001 में, और वहां पे किसी ने मुझे बताया हमारे कॉलेज में कि ये तुमने यहाँ इतने का क्यों ले लिया कैमरा, कुछ कैमरा वो डिजिटल कैमरा 5 MP चलते थे. और डिजिटल कैमरा का दौर चलता था ना कुछ.
0: हाँ, बहुत भर भर के लेते थे भाई. हैंडी कैम का भी दौर था.
1: 1 MP 2 MP ऐसा चलते थे, मोबाइल चलते थे. वो कहते इधर से क्यों लेना है, उधर से तुमको आधे दामों में मिल जाएगा.
0: करेक्ट. मैं भाई ऐसे लोगों के हक में हूँ, यही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है. इन्हीं लोगों के साथ हूँ मैं. पर अमन भाई,
1: वो दोस्त
0: ये जो आज की कहानी है ये बिल्कुल लास्ट तक सुननी पड़ेगी आपको. इसमें भी लग
1: अच्छा,
0: सकता है कि थोड़ा थोड़ा
1: के ऊपर बेस्ड है ये.
0: ओके, किसके ऊपर बेस्ड है?
1: आपका जो आपका क्वेश्चन जो बेस्ड है इसके ऊपर है.
0: नहीं, मैं धोखा नहीं, ये तो धोखा कर रहे हैं आप मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं. ये मनगणन बातों पे विश्वास ना करें, ठीक है? अलग कहानी.
1: ठीक है,
0: चलो फिर मैं तैयारी करता हूँ. ओके
1: ओके, थैंक यू सो मच.
0: ओके भाई,
1: चोर बाजार वैसे दिल्ली में है ना कबीर भाई?
0: दिल्ली में है ना भाई, बहुत बढ़िया है एकदम. आओ कभी, घुमाते हैं आपको
1: दिल्ली में. मैं और मेरे भाई गए थे लाल किला में.
0: हाँ, लाल किले के पास ही. करेक्ट.
1: हाँ, लाल किला में वहाँ पे गए थे हम लोग दिल्ली में 2006-07 में.
0: हाँ ठीक है, तो आप अच्छे खासे.
1: मेरा भाई बोला ये कितने का है? वो बोला ये 500 का है. और वो बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो बोला मैं 400 दूंगा. चलो कहता ठीक है 400 दे दो. कहता भाई बोला नहीं, उसको किट से पकड़ के वापस लिया, कहता खरीदो अब इसको.
0: मैं आप वहाँ पे जाएंगे ना जिनको चोर बाजार का एक्सपीरियंस नहीं, वहाँ पे ऐसे ही होता है. वो अगर आपसे कह रहे हैं बस 500 आप बोले नहीं चाहिए, और अगर वो उसके बाद आपके पीछे पड़ा तो वो 70 रुपए में देके जाएगा आपको.
1: 50 में
0: भी देके जा सकता है. यस,
1: निकालने का उसको बस.
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
1: भाई. सही है,
0: ठीक है मेरा भाई,
1: हैव अ नाइस डे, स्टोरी सुनूंगा.
0: ठीक है, डन. थैंक यू सो मच मेरे भाई.
1: थैंक यू
0: मेरे भाई. फरद भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं भाई ये तो शान है स्टोरी सुनाने में, एक नंबर कबीर भाई. कबीर भाई जब घर पे किसी से बात करते होंगे तो घर वाला बोलता होगा अब ये स्टोरी सुनाने लगा है. फरद भाई मुझसे कहा जाता है बटन दबा दो भी कहानी शुरू कर देगा. एक मैसेज है, प्लीज मंडे स्टोरी, आई मिस्ड द एंडिंग. ओके, एक मैसेज है, पूरी नहीं सुन पाया था. ओके, भेज दूंगा सन भाई, न्यू प्रॉब्लम यू. और प्रिंस भाई कह रहे हैं हियर वी हैव फ्राइडे मार्केट इन नजमा इंसू. भाई वो बहुत अलग मार्केट है और हमारे वाली अलग ही है. फलक ने लिखा है, गुड टू लिसन टू यू लाइव अगेन, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक फलक, वेलकम बैक. ओके, तो देखो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ. एंड लेट मी जस्ट टेल यू, आज की स्टोरी में अगर आप बिल्कुल आखिरी तक नहीं गए हैं, आपको लगेगा कि ये कहानी को खामा खा धकेलना है, पर वो खामा खा नहीं है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं एक भी डिटेल इस कहानी की बाहर निकल पाया क्योंकि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. तो आज की कहानी मेरे साथ साथ सॉल्व भी कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपके ऊपर है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ. और मेरे साथ साथ इस कहानी के आखिर तक जाइएगा, बिकॉज इसकी एंडिंग इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक प्रोमो के बाद मिल रहा हूं, बस एक प्रोमो, जाना नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
0: ओके, सो ये कहानी जो मैं आप सुनाऊंगा आपको, ये भी बहुत यादगार हो सकती है इफ़ यू लिसन टू इट रियली रियली केयरफुली. मैं आज आपकी पूरी अटेंशन चाहता हूँ बिकॉज बहुत कुछ कहना है मुझे इस कहानी में. सो रेडी हैं आप? मैं भी ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ. सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं. कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हो ना ही कभी देगा. लेकिन आज की जो कहानी है, इट इज़

थे रात के अराउंड एंड दिस वॉज द ईयर 1988. इस वक्त एक 33 साल की औरत जिसका नाम था शेरिल पेट्री, शेरिल जो थी वो जहां पे काम करती है वहां से उसने रैक खोला और वहां से कैंडी बार, चॉकलेट कैंडी बार उठाई और जहां पे वो काम करती थी ये जगह थी पीजेज मार्केट. पीजेज मार्केट बेसिकली एक छोटा कन्वीनियंस स्टोर था और ये था पोर्ट ऑर्चर्ड वॉशिंगटन में. शेरिल जो थी वो यहां पे काम करती थी कैशियर के तौर पे. तो उसने कैंडी बार उठाई, चॉकलेट की कैंडी बार, और सामने काउंटर के दूसरी तरफ एक कॉलेज स्टूडेंट खड़ी थी, उसकी तरफ वो चॉकलेट बार बढ़ा दी. ये कॉलेज स्टूडेंट जो काउंटर के उस तरफ थी ये टेम्पररीली इसी एरिया में रहती थी, मतलब इसकी कन्वीनियंस स्टोर के बिल्कुल पास में रहती थी. फिर जब आना जाना शुरू हुआ तो बात शुरू हुई दोनों की, और जब बात शुरू हुई तो सिलसिला बढ़ता चला गया और ऑलमोस्ट दोनों की बात इतनी हो गई कि फोन पे तो बात हो ही रही है एंड काफी अच्छी दोस्ती हो गई. घंटों घंटों बात हो रही है, सारे के सारे राज इस स्टूडेंट जो है वो शेरिल को बता रही है, मेरे साथ ये हुआ, कॉलेज ऐसा है वैसा है, सब बताती थी वो. और ये जो जादू था शेरिल का, ये सिर्फ स्टूडेंट में नहीं था, ये हर जगह था शेरिल के आसपास. शेरिल की पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो बहुत बहुत अच्छी और सादी इंसान थी एंड काफी ज्यादा सिंपैथेटिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी लिसनर, जैसे लोग आज नहीं मिलते. वो कभी किसी को जज नहीं करती थी, हर किसी की बात बहुत ध्यान से सुनती थी और कभी किसी के बारे में कोई गॉसिपिंग नहीं, नेवर. और उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ही प्यारा सा ह्यूमर था. वो लोग होते हैं ना बड़े मासूम से, अपनी बात पे मुस्कुरा देते हैं, हल्का सा हंस देते हैं, उस किस्म की. तो जो भी शेरिल के अराउंड होता था उसे हमेशा उसकी पर्सनैलिटी से इस कदर लगाव हो जाता था कि मन करता था कि शेरिल के आसपास रहा जाए. वेरी पॉजिटिव. तो जो भी उससे बात करता उसे कभी भुला नहीं पाता था. अभी जो कॉलेज की स्टूडेंट थी ये भी शेरिल के पास इस रात तकरीबन 9 बजे के करीब आई थी और उसने बताया शेरिल को. उसने बोला, यू नो आई एम रियली रियली सैड, मैं ज़रा शिफ्ट कर रही हूँ शहर में, एक और मुझे अपार्टमेंट मिल गया है. और बातों बातों में उसने बताया कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, यू नो उस अपार्टमेंट में फर्निशिंग भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, कैसे खर्चा उठाऊँगी, बजट भी नहीं है, मतलब मैं ग्रोसरी कैसे देखूंगा, आई डोंट नो. एंड लास्ट ऑफ ऑल शेरिल, आई एम गोइंग टू मिस यू. और वो शेरिल को ये सब बता रही थी. शेरिल ने उसकी पूरी बात को सुना और शेरिल ने बोला, यू नो व्हाट, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, और हाँ तुम ध्यान रखो, हाँ मैं फर्नीचर तुम्हें दूंगी, मेरे पास कुछ फर्नीचर पड़ा है घर में, डोंट वरी, मैं तुम्हें फर्नीचर देती हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करो. और पर बोलते बोलते वो चॉकलेट बार उसने अपने रैक से उठाई और उसको सीधा फ्री में दे दी. इस तरह से थी जैसे ये है तुम्हारी पहली ग्रोसरी. अभी जो सामने स्टूडेंट खड़ी थी, शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब शी फेल्ट यार क्या इंसान है ये, उसकी जेनेरोसिटी बहुत टचिंग थी. बट शी सैड, नो नो नो नो शेरिल, दिस इज टू मच, मैं ये नहीं कर सकती. बट शेरिल ने बोला, नो तुम मुझे कुछ मानती हो ना, तो कल सुबह सुबह फर्नीचर तुम्हारे पास होगा, डोंट वरी, ओके, और एक लो चॉकलेट बार, यू डोंट नीड टू पे, जस्ट गो. ये शेरिल के लिए बहुत नॉर्मल बिहेवियर था. शेरिल एक सिंगल मॉम थी, उनकी 9 साल की एक बेटी थी और एक छोटा बेटा था. शेरिल पूरे हफ्ते नौकरी करती थी विदाउट ब्रेक, विदाउट फेल, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, और वो 2 नौकरियां करती थी. शेरिल वीकेंड्स पर इसी मार्केट में होती थी, पीजेज मार्केट में, और पूरे हफ्ते वो एक कार डीलरशिप में काम करती थी. हमेशा शेरिल लॉक्ड इन रहती थी, शार्प फोकस. बेचारी को जहां टाइम मिलता था वहां दूसरों की मदद करने निकल जाती थी. किसी कलीग का रेज्यूमे बना दिया, कोई बीमार लगा तो उसके घर खाना बनाने चली गई, खाना लेकर चली गई. और शेरिल जो थी पूरी जिंदगी पोर्ट ऑर्चर्ड में ही रहती थी, 1 घंटे की दूरी पर, हालांकि बड़ा शहर था सिएटल का, पर शेरिल के लिए वो बहुत ही ज्यादा दूर था. वो सोचती भी नहीं थी उसके बारे में. वो बहुत सिंपल से ब्लू कलर के सिंगल स्टोरी घर में रहती थी और ये घर भी वुड्स में था, आसपास बड़े बड़े पेड़, थोड़ा सा आइसोलेशन. अगर किसी को शेरिल के घर की तरफ जाना है तो पूरा रास्ता भी कच्चा था, घूम फिर के जाना पड़ेगा. मगर यही था उसके पास. और जिस जगह वो रहती थी वो जगह भी सेफ नहीं थी. कुछ दिनों पहले ही एक बंदे को दिन दहाड़े वहां पे गोली मार दी गई थी. मगर शेरिल क्या करे, शेरिल इसके अलावा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी. उसके पास खुद के नाम पे किसी किस्म का एसेट, कोई सामान ही नहीं था, और जो उसके पास होता था वो दान कर दिया.

0: दी थी।
1: जैसे इस रात उसने फ्री की चॉकलेट जो थी उस स्टूडेंट को दी, स्टूडेंट ने बोला थैंक यू शेरल, और उसके बाद वो चली गई। उसने बोला चलो मैं काम करती हूँ, मैं अपने काम पे जाती हूँ, है ना, तुम अपना ख्याल रखो। शेरल ने, शेरल की ईमानदारी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, शेरल वापस अपने कैश काउंटर पे गई, उसने अपनी जेब से उस चॉकलेट के जो उसने उठा के फ्री में दी थी वो कैश काउंटर में भर दिए पैसे। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी को कुछ पता नहीं लगता कि अगर वो एक चॉकलेट बार फ्री में दे भी देती कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होते ना ब्रूटली ऑनेस्ट लोग, वैसी थी शेरल। उसके बाद उसने सारा अपना काम किया, 11 बजे तक शेरल इस पीजेस मार्केट में रही, कई सारे रेगुलर कस्टमर्स आते रहे, उससे बात करते रहे क्योंकि सब उससे बहुत प्यार करते थे। उसके बाद फ्रंट डोर उसने बंद किया, बैलेंस चेक किया सारा, 11:15 के आसपास, रात को 11:15 के आसपास उसने अपने बॉस को कॉल करी कि बॉस शिफ्ट वॉज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है और मैं निकल रही हूँ। फिर उसने कन्वीनियंस स्टोर का ताला लगाया, बत्तियाँ बंद करी और फिर वहां से अपनी छोटी सी नॉर्मल आधी टूटी फूटी सी सिल्वर सेडान में बैठी और सीधा अपने घर की तरफ निकल गई। अब जरा अगले दिन पे आ जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे कोई अते पते नहीं थे उसके, मगर क्यों नहीं थे उसके पीछे एक कहानी है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप शेरल से मिल पाएं और उस वक्त में जा पाएं जहां की ये कहानी है। जब रात को शेरल अपने इस सिल्वर सेडान में निकली थी अपने घर की तरफ, इसी टाइम उसका एक्स हस्बैंड जिसका नाम था रोलैंड पेट्री, वो टाउन की दूसरी तरफ रहता था। वो भी इसी टाइम 11 बजे के आसपास बड़ा एक्साइटेड था, अपने घर में बैठा हुआ था, बड़ा ही एक्साइटेड। वो शेरल को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, उसका प्लान ये था कि बस शेरल को मैं वापस जीत लूं। तो उसने एक प्लान बनाया था कि शेरल बस उसकी हो जाए हमेशा के लिए। एंड उसके मन में ये चल रहा था कि बस इस प्लान के बाद शेरल जो है ना मेरी दीवानी हो जाएगी, वो बोलेगी तुम्हारे सिवा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। उसने इस प्लान के बारे में बहुत कुछ सोचा था। इनफैक्ट ये आदमी अभी भी किसी और के साथ था, इसकी ये एक रिलेशनशिप में था, मगर इसने कहा इसको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे शेरल पे फोकस करना है। वो दिखाना चाहता था शेरल को कि कितनी जरूरत है उसे शेरल की। शेरल और रोलैंड इनकी बेटी थी और बेटा था। जो बेटी थी वो भी इन दोनों के अलग होने के बाद हमेशा शिकायत करती रहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। दोनों का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और रोलैंड ये जानता था कि गलती उसी की थी। दरअसल 12 साल पहले रिश्ता ख़राब हो गया था दोनों का। रोलैंड जो था वो एक लीव पर गया था, मिलिट्री लीव पर, और वो एक मरीन सार्जेंट था, साथ में एक अकम्प्लिश्ड जूडो इंस्ट्रक्टर भी। ये बंदा रोलैंड जो था काफी कैरिज्मेटिक था, काफी चार्मिंग था, इसका एक्सेंट था क्रियोल वाला, मतलब थोड़ा सा फ्रेंच एक्सेंट, और न्यू ऑर्लियंस से पला बड़ा था, अच्छे खासे खानदान से था, अच्छा खासा दिखता भी था, मगर ये बहुत ही बेकार किस्म का रोमांटिक पार्टनर था, मतलब द वर्स्ट दैट यू कैन इमेजिन। ये जिससे भी मिलता था उसको धोखा दे देता था और झूठ ऐसे बोलता था कि कवर ही नहीं कर पाता था, ऐसा आदमी था ये। मगर शेरल बेचारी वो फंस गई, क्योंकि शेरल को लगता था कि वो खूबसूरत है ही नहीं। शेरल के जो बाल थे वो ब्राउन बाल थे और वो बैंग्स रखती थी, उसकी ब्लू आंखें थी, और वो बहुत इनसिक्योर थी इसको लेके भी। वो सोचती थी यार मैं थोड़ी सी चबी हूं, कौन ही मुझे पूछेगा। और वो देखती थी जब रोलैंड मिलता जुलता था उसके सामने, तो उसकी दोस्त जो उसके साथ होती थी वो ग्लैमरस थी, खूबसूरत थी, ऐसा लगता था मॉडल्स ही हैं। तो उसे लगता था ये मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा, मगर जब वो इंटरेस्ट दिखाने लगा तो शेरल को लगा वाह यार आई एम सो लकी कि मुझे बाप दे रहा है ये। तो हुआ ये कि बात आगे बढ़ी, दोनों की शादी हो गई, इन दोनों की बेटी हुई। रोलैंड जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने शेरल को भी धोखा देना शुरू कर दिया। 1980 में, यानी 8 साल पहले इस किस्से से दोनों अलग हुए। रोलैंड ने शेरल को धोखा दिया और ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो शेरिल को धोखा दे रहा था एक और औरत से, और उसकी भी शादी कहीं और हो चुकी होती, हुई हुई थी। इस आदमी ने प्लान किया उस दूसरी लड़की के साथ कि मैं और आप मिलके आपके हस्बैंड को रास्ते से हटा देते हैं, और ये सब कुछ प्लान कर रहा था बिना शेरिल को कुछ भी भनक लगे। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। हुआ ये कि हस्बैंड को सच में रस्ते से हटा दिया गया, हालांकि प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पाए कि रोलैंड का इसमें कुछ हाथ है। थोड़ा बहुत जो प्रूव हुआ उसकी सजा मिली 6 साल की, लेकिन पूरी तरह से उसके ऊपर ये इल्जाम नहीं आया। अब कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इन 6 सालों में जब रोलैंड जेल में था, सलाखों के पीछे था, तब उसे अचानक से एहसास होने लगा, अरे यार शेरिल ही है बस, मैं क्यों गलतियां कर रहा हूं इतनी, शेरिल से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता मेरी जिंदगी के लिए। और उसने फिर लेटर्स लिखना शुरू किए, जेल के अंदर से ही वो लगातार लेटर्स लिखने लगा इस उम्मीद में कि शेरिल रिप्लाई करेगी। एंड शेरिल बेचारी मासूम सिंपैथेटिक, उसने भी लेटर्स लिखना फिर एक पॉइंट के बाद शुरू कर दिए। वो भी लिखने लगी कि हाँ मैं भी तुम्हें आज भी चाहती हूँ। एंड इवेंचुअली दोनों ने शादी करी। जब ये जेल के अंदर था उसी टाइम बाहर आकर रोलैंड ने शिफ्ट करने का फैसला किया वापस शेरिल के साथ पोर्ट आर्चर्ड में। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ फिर। अब ये फैमिली एकदम बढ़िया चल रही थी। रोलैंड जो था वो एक नर्सिंग स्कूल के साथ काम भी करने लगा था, मगर फिर से ये आदमी अपने रास्ते से भटक गया और फिर से धोखेबाजी पे उतर आया और फिर से ये दोनों अलग हो गए। तो अब फास्ट फॉरवर्ड 1988, 15th of October, रात का वक्त, जैसे मैंने कहा 11:30 बजे के करीब, अभी वो रास्ते में है दूसरी तरफ गाड़ी में, सिल्वर सिडान में घर जा रही है शेरिल। इसी टाइम पे रोलैंड अपने घर में बड़ा एक्साइटेड था, यार बस ये प्लान कामयाब हो जाए बस। वो बड़ा एक्साइटेड था कि ओह 11:30 हो रहे हैं, अब जाने का वक्त है। वो एकदम से इस प्लान को पूरा करने के लिए, शेरिल को मनाने के लिए, अपने घर में सोफे पे से उठा, फ्रंट डोर की तरफ बढ़ा, लेकिन इस कदर उसका एड्रेनल रश ज्यादा था कि कुछ और हुआ। वो उठा और उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया और सोफे पे जाके गिर गया। रोलैंड को दरअसल सीरियस ब्लड प्रेशर इश्यूज थे, तो अगर वो एकदम से उठता था, एक्साइटमेंट ज्यादा होती थी, तो वो सह नहीं पाता था। वही हुआ, एकदम से चक्कर खा के वो सोफे पे गिर गया। जब उसकी आंख खुली उसे टाइम भी नहीं पता था क्या हो रहा है, मगर उसका दिमाग एकदम फॉगी था। वो भूल गया उसे शेरिल को मनाने जाना है, कोई प्लान है उसे पूरा करना है। वो उठा झूलता हुआ, सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर पे गया और बेड में गिर कर सो गया। शेरिल को मनाना है उसे याद भी नहीं रहा। अब अगली सुबह 7 बजे के करीब पीजेज मार्केट में कस्टमर आने लगे, क्योंकि 7 बजे सुबह पीजेज मार्केट शेरिल खोलती थी वीकेंड्स पे। वो स्टूडेंट भी आई जिसको शेरिल ने बोला था कि फर्नीचर देने वाली है, लेकिन सबने देखा कि ये तो बंद है, अंदर की लाइट भी ऑफ है, और लोग जानते थे कि शेरिल जो है अपने काम को लेकर बहुत बहुत बहुत ज्यादा फोकस्ड है और डिसिप्लिन्ड है, और सब उससे बहुत प्यार करते थे। तो सबको फिक्र हो रही थी, क्या दिस इज आउट ऑफ कैरेक्टर, शेरिल कैसे नहीं पहुंची। तो सब जो है शेरिल को उसके घर पर कॉल करने लगे। अब दिस वॉज 1988, तो कोई सेल फोन्स नहीं है। अगर कोई कॉल नहीं उठाता था 80s में तो लगता था ठीक है, हो सकता है घर पे ना हो, तो लोग यही सोच रहे थे तो चलो हो सकता है कोई फैमिली इमरजेंसी होगी, हो सकता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होगी, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और दूसरी तरफ क्योंकि रोलैंड के पास शेरिल और रोलैंड की बेटी थी 9 साल की, तो उसे भी पिक करने रात को शेरिल नहीं आई थी। तो रोलैंड को जब पता चला कि है ऐसा कुछ हुआ है, तो उसने कहा हो सकता है कहीं बिजी हो रही होगी। शाम तक जब कोई अता पता नहीं था, पूरी दिन गायब थी, शाम हो गई 6:30 बज गए, मार्केट नहीं खुली, तो शाम को रोलैंड ने फाइनली कॉल करी। कॉल नहीं उठाई गई, आंसरिंग मशीन पे गई, तो उसने बहुत ही चेयरफुल सा मैसेज भेजा, मगर वो अंदर से बड़ा गुस्से में था। वो अपने आप पे गुस्सा कर रहा था कि यार मेरा प्लान था शेरिल को मनाने का और मैं कैसे सोता रह गया, ये मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्या कर रहा हूं, कितना बेवकूफ आदमी हूं मैं, और वो अपने आप को बस गुस्से में कर रहा था। लेकिन चंद घंटों के बाद जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ने के बाद भी, तब रोलैंड का फोकस शिफ्ट हुआ, वो जहां अपने आप को ताना दे रहा था अपनी बेवकूफी की वजह से कि वो मनाने जा रहा था सोता रह गया, अब ये फोकस शिफ्ट हो गया था फिक्र में कि यार आखिर शेरिल गई कहां। तो रोलैंड ने सीधा पुलिस को कॉल करी और रिपोर्ट लिखवा दी मिसिंग की। पुलिस के डेप्यूटी साहब जो थे वो सीधा रोलैंड के घर पहुंचे। वहां पर रोलैंड ने बताया जो भी कुछ दिन भर में हुआ, और उसके बाद रोलैंड ने स्पेयर की एक चाबी थी शेरिल के घर की, वो उन्हें पकड़ा दी। डेप्यूटी साहब जो थे वो सीधा वहां से शेरिल के घर गए। जब घर पहुंचे तो एवरीथिंग वाज सो क्वाइट, सब कुछ एकदम शांत नजर आ रहा था। उन्होंने सबसे पहले दरवाजे पे नॉक किया, कोई आवाज नहीं आई, तो उन्होंने चाबी जो स्पेयर की उन्हें दी गई थी उस चाबी से घर को खोला और एंटर किया। लेकिन अंदर घर के एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, सब कुछ अपनी जगह पे था, नो साइन ऑफ स्ट्रगल। वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उनकी नजर शेरिल के फोन पे पड़ी और उस पे रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी, यानी कि आंसरिंग मशीन पर मैसेजेस आए हुए हैं। तो डेप्यूटी साहब ने उन मैसेजेस को सुनना शुरू किया। ये मैसेजेस काफी सारे कस्टमर्स के थे जो फिक्रमंद थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे जो वहां पे आया करते थे। शेरिल की बेटी जो 9 साल की थी उसने भी मैसेज किया था, गुड नाइट, लव यू मॉम, वो भी इसी पे था। बॉस का मैसेज था आंसरिंग मशीन पे कि तुम हो किधर, और रोलैंड का मैसेज था जो उसने जॉयफुली मैसेज किया था उसे। मगर एक लास्ट मैसेज और था जो डेप्यूटी ने सुना और उन्हें समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये आखिरी मैसेज एक अनजान इंसान का था। ये आखिरी मैसेज जो टेलीफोन लाइन पे था आंसरिंग मशीन पर, उसमें वो कह रहा था कि मैडम आपका पर्स जो है मुझे फ्लोट करता हुआ बहता हुआ मिला है लेक यूनियन में जो सिएटल के पास है। वो कह रहा था मैम आपका बैग यहां पे कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, पर आपका बैग आप प्लीज मुझसे ले सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ये रहा मेरा नंबर। और उसने कॉल बैक करने के लिए एक नंबर भी आंसरिंग मशीन पे छोड़ा। अब लेक यूनियन पे शेरिल का पर्स पहुंचना नामुमकिन था, लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि शेरिल कभी ट्रिप पे जाती ही नहीं थी, छोटी सी ट्रिप के लिए भी उसके पास पैसे ही नहीं थे, पैसे छोड़िए टाइम ही नहीं था। तो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रहती थी, उसकी जिंदगी में उसके बच्चे, जॉब, दैट इज इट। तो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसका पर्स 1 घंटे दूर एक और जगह पे तैरता हुआ मिले। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। डिटेक्टिव्स जो पोर्ट ऑर्चर्ड के थे और पुलिस वाले जो सिएटल वॉशिंगटन के थे, दोनों ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। प्लान ये था कि लेक यूनियन जहां पे पर्स मिला है शेरिल का, वहां पे उसकी गाड़ी को ढूंढा जाए। मगर ये कोई हलवा नहीं था, लेक यूनियन में गाड़ी ढूंढना नामुमकिन सी बात थी। लेक यूनियन यूं समझ लीजिए जैसे कतर में अभी पड़ ले, राइट, आपको दिखता है कि लो है बिल्कुल पास में रहते हैं समुद्र के लोग, घर हैं, शानदार व्यू है। इसको 100 times कर दीजिए, एटलीस्ट 100 times, तो बहुत सारे लोग लेक यूनियन में रहते थे, बहुत सारे बिजनेसेस, कई लोग तो पानी पे ही रहते थे हाउस बोट्स में। इन हजारों गाड़ियों के बीच में एक सिल्वर सेडान ढूंढने में पुलिस को टाइम तो लगा, लेकिन फिर 19 अक्टूबर यानी 3 दिन बाद शेरिल की कार मिली। ये सिल्वर सेडान एक जगह पे छोड़ दी गई थी ऐसी अबैंडन करके, गाड़ी के आसपास कोई भी स्ट्रगल का साइन नहीं था, कोई स्ट्रेंज बात नहीं थी। पर अथॉरिटी ने फिर स्क्रू ड्राइवर से डिग्गी को खोला, और जब उन्होंने डिग्गी को खोला तो डिग्गी में शेरिल की डेड बॉडी पड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो सवाल पूछा जाना था इस अजीब से किस्से पर, वो रोलैंड से ही पूछा जाना था, क्योंकि रोलैंड इससे पहले भी 6 साल जेल जा चुका था, तो वो शक के घेरे में था। मगर रोलैंड के एलिबाई थे, रोलैंड पे शक करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो लेक यूनियन के आसपास भी नहीं गया और इसके कई सबूत थे। और रोलैंड ऊपर से बहुत कोऑपरेटिव भी था, वो पुलिस वालों की मदद कर रहा था, उसने सीधा पेपर साइन किया, जी आ जाओ घर, चेक कर लो पूरे घर को। और वो रेगुलरली पुलिस को खुद कॉल करके पूछ रहा था कि मामला कहां पहुंचा, कितना आप पूछ पाए, पता कर पाए। एंड रोलैंड ने पुलिस वालों को एक ऑड स्टोरी बताई, उसने बोला कि सर एक नौजवान सा लड़का है सर, वो पीछा करता था उसका, मैं जानता नहीं वो कौन है लेकिन करता था वो। अभी आधी अधूरी बात के बेसिस पर पुलिस वाले कोई फॉलोअप तो नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने जितने भी लोग थे आसपास शेरिल के सबका इंटरव्यू लिया था जिनको भी शेरिल जानती थी, एंड जिससे भी बात करी सबने ये बोला कि सर शेरिल इतनी शरीफ किस्म की औरत थी, इतनी शरीफ कि उसकी किसी से लड़ाई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब पुलिस क्या करे, केस ठंडा पड़ गया एकदम कोल्ड एक साल तक। एक साल बाद पुलिस को एक लीड मिली। एक न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट पुलिस के पास आया, उन्होंने बोला कि सर मेरे पास एक कॉल आई सर, एक यंग आवाज थी, उसने कन्फेस कर लिया फोन पे, वो बोला उसी ने शरल को मारा है और कहते के साथ ही फोन काट दिया, ना अपना नाम बताया ना कुछ बताया। अब पुलिस वालों ने कहा ये बात तो, एक काम करो तुम अखबार में हो ना छाप दो। अब ये खबर जब अखबार में छपी तो जहां पे कार डीलरशिप में शरल काम करती थी वहां पे एक बंदे ने कॉल करी, बोला सर हमारे एक बंदा काम करता था सर, वो नौजवान, वो ना बहुत चिड़चिड़ा था वो, और वो शरल को बहुत परेशान करता था, वो उसका रिज्यूमे बना रही थी सर, बहुत शॉर्ट टेम्पर आदमी था, उसके बारे में पता कीजिए आप। और मैंने सर उसके हाथों में ना उस दिन पट्टी भी देखी थी एक साल पहले, हाथ उसके कुछ दिक्कत थी उसके, हाँ आप पता कीजिए। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, उन्होंने पूरी तरह से तलाश करने की कोशिश करी, बंदा मिल गया। पता लगा ये जो बंदा था इसने शैरल के गायब होने से एक दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी थी, उसके हाथ में जो पट्टी बंधी थी उसके बारे में भी बहुत सवाल किए गए। ये भी पता लगा कि पीजेस मार्केट के पास में इसका बाप रहता था इस लड़के का, और माँ जो थी वहां रहती थी जहां पे शैरल की गाड़ी मिली थी। तो रोलैंड की जो स्टोरी थी कि एक नौजवान लड़का पीछा करता था शैरल का, अभी वो सच लग रही थी। जब उन्होंने इस लड़के से बात करी तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन उसने बताया कि साहब ये जो मेरा हाथ कटा हुआ था ना उस दिन पट्टी बंधी हुई थी सर, ये फिशिंग रॉड की वजह से, क्या बात कर रहे हैं आप। पता लगा वो सही कह रहा है। सेपरेट इंटरव्यूज में कई सारे लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा ही हुआ था, और कोई प्रूफ भी नहीं था उसके खिलाफ। ये केस कोल्ड पड़ा रहा, एवरीथिंग वाज साइलेंस, डेड साइलेंस। लेकिन फिर 14 साल बाद साल 2002 में एक जेल में पोर्ट ऑर्चर्ड के एक बंदा था, वो कैदी था। उस कैदी ने पुलिस को कहा कि सर सुनिए मेरी बात, वो जो केस है ना शेरिल नाम का, बहुत पुराना सा, सर मुझे पता है किसने मारा है उसको, और नाम भी बता दिया उसने। पुलिस वाले ने बोला हाँ तो तुझे कैसे पता कौन है वो, बोला सर उसका नाम है फ्रेडरिक जे मैकी, पता करो उसके बारे में आप। अब ये बंदा जो कैदी था इसके बारे में कोई डिटेल्स पेपर्स पे नहीं है, मगर उसने ये बताया कि उसने सुना फ्रेडरिक जे को बात करते हुए, तो जेल में ही था वो किसी और मामले में। तो पुलिस ने उसका डीएनए कंपेयर किया स्किन के जो टिश्यूज थे जो चीजें मिली थी गाड़ी से उनसे, एंड मैच हो गया, मैच हो गया, पता लग गया कि फ्रेडरिक जे मैकी ने ही शेरिल को मारा है। पर जैसे मैंने कहा कि एंडिंग तक रुकना है आपको, तो ठहरिए ठहरिए। पुलिस ने और गहराई में तफ्तीश करी और जो कहानी सामने आई वो इतनी इतनी इनसेन थी कि दुनिया के न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को छापा। ये एक ऑथर साहब ने अपनी बुक में इसका किस्सा लिखा, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी, ये इतनी इनसेन कहानी थी। तो मैं पहले आपको फैक्ट्स बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या। नाउ बी फोकस्ड विद मी। तो 15 अक्टूबर 1988 जब शेरिल गायब हुई थी तो वो अपनी घर की तरफ जा रही थी अपने सिल्वर सेडान में। फ्रेडरिक जे मैकी, फ्रेडरिक नाम का ये बंदा, वो उसके घर के पास में आया। जब वो गाड़ी से उतरी तो उस पर हमला बोल दिया, लड़ाई वड़ाई हुई, उसने उसे ज़बरदस्ती मार पीट के, और जब वो बिल्कुल हार नहीं मान रही थी तो उसने एक मेटल रॉड से मारा एंड उसे उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। और उसके बाद वो लेक यूनियन की तरफ गया, उसका पर्स फेंक दिया और गाड़ी को वहीं छोड़ के वहां से चलता बना। लेकिन बैकग्राउंड में एक और कहानी बन रही थी, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। तो पीजेस मार्केट बंद करके जब शेरिल अपने घर जा रही थी उसी वक्त उसका एक्स हस्बैंड रोलैंड अपने घर में प्लान कर रहा था मनाने का शेरिल को, क्योंकि शेरिल उसे वापस चाहिए थी अपनी जिंदगी में। लेकिन रोलैंड का प्लान कुछ और था, प्लान बड़ा वियर्ड था। उसने प्लान बनाया था मनाने के लिए कि वो शेरिल की जान बचाएगा। तो रोलैंड ने अपने दोस्त फ्रेडरिक जे मैकी को, जिससे वो जेल में मिला था, उसे हायर किया था ये कहकर कि तुझे जाना है घर शेरिल के और उसे किडनैप करना है। पूरी आगे की बात उसे बताई ही नहीं कि सिर्फ ड्रामा करना है, उसे आधी अधूरी बात बताई कि तुझे किडनैप करना है ताकि असली लगे और ये ओवर एक्टिंग ना कर दे। और बाकायदा उसे इसने रस्सी भी दी कि बांध के डिग्गी में डाल सके। मैकी जब ये फ्रेडरिक मैकी जब शेरिल से लड़ रहा था उसी टाइम रोलैंड जब टाइम देख रहा था तो उसे लगा अब तो मुझे जाना चाहिए, बचाने का टाइम आ गया, अब मैं जाऊंगा, मैं पहुंचूंगा वहां पे और मैं उसको एक हीरो की तरह, जूडो तो आता ही है मुझे, तो मैं फ्रेडरिक के मुंह पर मारूंगा, लात मारूंगा और मेरी तरफ भागती हुई आएगी शेरिल, बोलेगी वाओ तुम ही मेरे हीरो हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और हैप्पी स्टोरी, हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन जब निकलने का टाइम था अपने घर से, वो एकदम से उठा और अपने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम की वजह से वो बेहोश हो गया। वो उठा 5-10 मिनट बाद, तब उसे याद ही नहीं रहा कि उसका प्लान है जाके बचाना है शेरिल को, उस बंदे को बताया भी नहीं कि एक्टिंग करनी है, और ये सीधा अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाके कमरे में बेड पे गिरकर सो गया। फ्रेडरिक को हायर तो किया था किडनैप करने के लिए, लेकिन ये बताना भूल गया था कि नाटक करना है। रोलैंड ने फ्रेडरिक को आगे का बताया नहीं था, फ्रेडरिक को पता नहीं आगे करना क्या है, तो उसने तो सोचा कि किडनैप ही करना है, और जब वो ज्यादा बहस करने लगी तो उसने जो है उसे मार दिया। अब जब पुलिस को यह पता लगा तो एक और अजीब चीज हुई, पुलिस सीधा रोलैंड को गिरफ्तार करने के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस को पता लगा अरे ये तो पहले से जेल में, और पता है क्यों, क्योंकि ये किसी और को धोखा दे रहा था, उसको भी फंसवाने का इसका प्लान था कि उसको भी किसी से किडनैप कराएगा, लेकिन करवा नहीं पाया तो जेल में पड़ा हुआ था। रोलैंड को इस केस में 40 साल की सजा मिली, ऑलरेडी जो 25 साल की उसे मिल चुकी थी, और फ्रेडरिक जे मकी को 25 साल घटा के 20 साल की सजा सुनाई गई। इस केस पे डॉक्यूमेंट्री है, इस केस पे ऑथर्स ने लिखा है, और ये केस इतना हैरत अंगेज है कि जिसकी हद नहीं, एवरीबॉडी इज इन शॉक कि कितना बेवकूफ आदमी है ये। दिस वॉज द स्टोरी। आई नो थोड़ा टाइम लगा इसे मुझे आपको सुनाने में, लेकिन एवरी डिटेल वॉज इंपॉर्टेंट, वरना जल्दबाजी में कहानी नहीं सुनाई जा सकती। तो आपका क्या कहना है इस पे प्लीज बताइएगा 666-22107 पे। ऑल्दो आई फील रियली बैड फॉर शेरिल, बहुत ऐसे कम लोग हैं दुनिया में, बट दिस वॉज द स्टोरी। सो 666-22107, 666-22107, प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: यस, सो आज का किस्सा जिसने सुना है और पूरा प्रॉपरली सुना है वो जानता है कि एंड में क्या हुआ है, बिकॉज दिस मेड मी लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम। मतलब क्या था ये। एक कॉल उठा लेता हूँ पहले मैं, फिर मैं जरा गाना चलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे कबीर भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जान, आप सुनाइए कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह यार, कहानी का मजा तो आया बट सो सैड स्टोरी।
2: हाँ यार, मैं वही एक पार्ट है उसका बस। यस,
3: और इससे वो एक बात याद आ गई, मैंने एक बंदे की मुझे सुना था कि बोलता है बहुत दिलेर हूँ मैं, जिंदगी से लड़ता आया हूँ, ठीक है, इखलास से सबको अपनी तरफ भी किया हूँ,
2: यस,
3: बट एक मोहब्बत जो सिर्फ खा गई मुझको, वो वाली कहानी हुई कि आधी अधूरी मोहब्बत ने जान ले ली उसकी।
2: हाँ बताइए।
3: और क्या यार, बस अफसोस हो रहा है उस बेचारी पे, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी और इतने टाइम सिंगल मदर रहने के बाद भी, ठीक है, और सिर्फ एक गलती कोताही की वजह से उस बेचारी की जान चली गई।
2: वो मैं बड़ा
3: जिस वक्त आप बोले
2: नहीं, मैं कह रहा हूँ जब मैं इस कहानी को तैयार भी कर रहा था ना, तो मैं कोई भी डिटेल हटा नहीं सकता था। मैंने कहा यूजुअली क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बीच में से थोड़ा, मैं कहा चलो ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर मैं उसके बारे में एक भी चीज हटाना चाहूँ तो मुझे लगता था नहीं यार अधूरी हो रही है कहानी, सो इसलिए एक भी चीज नहीं हटाई मैंने। ठीक है, लेट इट बी।
3: वो ना जो जिस वक्त आपने इसके शोर का नाम लिया ना, जो धोखे दे रहा था, उसी वक्त मेरा क्रिमिनल माइंड जो है ना वो एक्टिव हो गया कि यार इसी की कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से ये मरी है। और जब आपने बाद में बताया है कि ये साथ दे रहा है और लड़के का बता रहा है, मुझे उस वक्त फील हो रहा था कि यार ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है या कोई ऐसी चीज है जो इसके जहन में नहीं है। हुआ वही कि इतने टाइम बाद जब पता चला तो, लेकिन वो कहते ना क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत,
2: कुछ ज्यादा ही बुरा खेत ही खा गई
3: बेचारी, तो बेचारी तो चली गई। और ऐसे इसलिए कहते हैं कि इंसान को जज्बाती फैसले नहीं लेने चाहिए कि आने वालों की जिंदगी खराब हो, और वो उसके बच्चे वो तो बेचारे रुल गए, यानी कि समझ ले कि उनके पास ना फादर है ना मदर है।
2: और ये ऐसे सरप्राइजेस प्लान भी नहीं करने चाहिए, ऐसे सरप्राइजेस प्लान भी नहीं करने चाहिए जो बिल्कुल ही
3: वो भी ना
2: ऐसे हो, तो नेवर नो व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन गो रॉन्ग, वो अलग किस्सा है। बट मुझे
3: ये सरप्राइज नहीं था, ये तो सीधी सीधी मौत को दावत थी।
2: हाँ, एक्चुअली में जानबूझ के खुद ही
3: ये सरप्राइज तो नहीं था।
2: हाँ,
3: मैं सरप्राइज में नहीं गया ना, सरप्राइज तो वो होता है कि यार चलो आप किसी को कोई चीज गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसको देख के वो शौक हो जाए, हाँ यार ये चीज मैंने एक्सपेक्ट की थी और मुझे ये नहीं एक्सपेक्ट था कि आपसे मिलेगी, ठीक है, वो एक सरप्राइज होता है, वो चीज समझ में आती है कि हाँ यार ये सरप्राइज में गिनी जाती
2: है,
3: बट उसको अगवा करा कर और फिर उसको बचाना, ये कौन सा सरप्राइज हुआ भाई? ये तो सीधी सीधी अगले की जान निकाल के वापस जान जाना डालने वाला काम हो गया कि हाँ भाई हमने तुम्हें आधा मार दिया है और बस अभी ये है कि हम तुम्हें बचा लेंगे।
2: पर मैं बड़ा शौक था भाई ये कहानी तैयार करते हैं, सो एक्साइटेड मैंने कहा सुनाते हैं, बट मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छी लगी भाई स्टोरी। थैंक यू सो मच।
3: अच्छी तो बहुत लगी बट अफसोस हो रहा है।
2: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मेरे साथ भी मेरा भी यही रिएक्शन है। थैंक यू सो मच मेरे भाई।
3: अल्लाह पाक खैर करे, बाकी को भी सुनते हैं, मजा आता है जब बाकी सब अपने राय देते हैं तो एक बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, तो इस चीज का मजा आता है बड़ा।
2: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार,
3: बहुत शुक्रिया। कोई
2: ओके भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मैसेज आया है अब्बासी भाई का, अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है भाई? बस बातें शादी चल रही हैं। एक और कॉल आ रही है, मुझसे मिस ना हो जाए, मैं ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
2: हाँ मेरा भाई,
4: कैसा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाइए।
4: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक
2: जी भाई, बताओ। अरे हिचकिया, पानी पे, पानी लाओ।
4: कबीर भाई आपकी मुझे इसलिए मैंने आप कॉल की, स्टोरी तो मैंने नहीं सुना, ठीक है, मिस हो गया। तो आप जो कि आपको कोई भाई वगैरह कॉल कर देते हैं ना, तो आप ये करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, ये मुझे नहीं
4: पता। मैं इतना हंसता हूँ ना, इतना हंसता हूँ, आप ये सुनते हैं।
2: थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, ये आपका आपकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच भाई, ख्याल रखिए, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक मैसेज, सॉरी, एक गाने के बाद मैं सबके मैसेज लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए आपने, एंड इफ़ यू हर्ड द स्टोरी डू लेट मी नो कि आपका क्या रिएक्शन था, आई वुड लव टू नो। प्लीज प्लीज बागे जी, ओ धनक दिखना जा यार, शहरली के सच्चा बुरा लगा मुझे यार, आई फील सैड। 6:16 मैं दुआ वाला कर दिया FM 107 पर।

0: जाके भाई सलाम अलैकुम, कैसे भाई? आज मैं ज़रा मैसेज पढ़ूंगा पहले, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मिस हो जाते हैं मुझसे, मैं चाहता नहीं हूँ मिस हूँ। तो मुझे मैसेज किया सबसे पहले तौकीर अहमद भट्ट साहब ने, ये कह रहे हैं, आई पार्क माई कार इन द बेसमेंट 3 वाइल कमिंग आउट ऑफ द पार्किंग एट द रैंप आई सॉ अ कार कमिंग टुवर्ड्स मी, आई टर्न्ड माई कार इमीडिएटली, लेटर आई केम टू नो इट वॉज माई ओन रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई से डर गए। और कह रहे हैं मेरा भी हाल स्टोरी वाला हुआ। भाई साहब स्टोरी सुना दूंगा रिफ्लेक्शन के भी। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी बहुत अच्छी थी, दुख उस लड़की के लिए बेचारी के साथ बुरा हुआ, सैड, पर थैंक यू सो मच फॉर द स्टोरी, ख्वाजा मोहम्मद इरफान भाई। और एक और आ रही है कमाल भाई की, अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी भाई।
1: और भाई आज तो वनडे खेलने की जगह टेस्ट खेल रहे थे भाई।
0: जी भाई आज टेस्ट खेलने का मन था मेरा भाई। तो कैसा लगा आपको टेस्ट मैच?
1: अच्छे लोग के साथ ही बुरा क्यों होता है?
0: पता नहीं क्या निजाम है यार, क्या करें, चले जाएं मार्स वार्स पे, चलो यार बात बात करते हैं इलोन मस्क, चलो
1: है वहां पे जाने के बाद जो है नहीं होगा ना, इंसान की फितरत है भाई, क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
0: हाँ इतने अच्छे हो, जब भी तो मैं गुफा में रहता हूँ बाहर आता ही नहीं हूँ, मिलना ही नहीं है मुझे।
1: नहीं गुफा में ठीक है भाई, बैठ के जो है ना प्ले स्टेशन में जो है आप भी मारते रहिए।
0: हाँ वही वही,
1: आगे रेडियो पे जो है एक दो को यहाँ पे टपकाते रहिए,
0: बस ये ठीक है, यही मेरा काम है, ये अच्छा था प्ले स्टेशन में मारते रहो और यहाँ टपकाते रहो गाली में। नहीं पर आपको ओवरऑल स्टोरी कैसी लगी, आपके जहन में क्या आ रहा था मिस्ट्री सॉल्व करते करते?
1: उसके आदमी का शक हो रहा था कि वो कुछ बहाना किया होगा,
0: पर कैसे होगा ये नहीं पता था ना,
1: लेकिन कैसे होगा ये पता नहीं है, लेकिन उसने जो जिसको दिया वो खुद ही भूल गया कि मैंने क्या किया था। किसको भेजा क्या करने के लिए।
0: हाँ हाँ चलिए अच्छी बात है, आपको जम गई कहानी, हमें ये इसी बात की खुशी है, जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और आपने जो है 80 से फिर पीछे, मतलब 88 से पीछे लेके गए, फिर उसके बाद आगे लेके आए,
0: थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ उसको, मैं आपको कॉल भी करूंगा उससे जुड़ी हुई, ठीक है फिर बात करेंगे उसके बारे में।
1: ठीक है
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो कुछ सवाल मुझसे कहानी से जुड़े पूछे हैं यूसुफ भाई ने, कह रहे हैं कहानी बहुत अच्छी थी, बस सैड एंडिंग बहुत बुरा लगा वो बेचारी का, और जब अपनी गाड़ी मिली कहाँ और डिग्गी खुली, जब आपने उसे पॉज लिया तब मेरा दिल धक धक कर रहा था, इसी बात के लिए तो पॉज लिया था, ये कामयाब हो गया मैं, कहते जो सुनना नहीं चाह रहा था वही हुआ बेचारी की लाश। इसके बाद की स्टोरी सच कहूँ समझ नहीं आई, क्या नहीं समझ में आई, कुछ लूप होल्स, क्या लूप होल्स हैं, उस बंदे को बैग मिला उसका क्या हुआ, बैग मिला कुछ नहीं हो उससे, बैग उन्होंने पुलिस वाले ने रिटेन कर लिया, इट वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बैग मिलना वाज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका कोई लेना देना नहीं था, एक सिंपल एक बैग मिला, बैग फेंक दिया था, मैं लास्ट में बताया ना उसको डिग्गी में डाल के उसने बैग फेंक दिया था। और लिखते हैं पैट्रिक वॉज कल्प्रिट बट वाई ही डिड इट, पैसे के लिए, सुपारी, उसको पैसे दिए थे, वो खुद एक क्रिमिनल था, बहुत पहले से क्रिमिनल था, दैट्स वाई उसको पैसे दिए, वो चला गया करने के लिए, इट वॉज दैट सिंपल। आगे कह रहे हैं वॉट इज द मोटिव ऑफ द मर्डर, मोटिव ये था मर्डर, उसका आपने कहानी ध्यान से नहीं सुनी यूसुफ भाई, इसका मतलब मोटिव वॉज नॉट टू किल हर, मोटिव ये था कि उसे किडनैप करे, ये जाएगा बचाने के लिए हीरो की तरह, बचा लेगा एंड एवरीथिंग विल बी हैप्पी, मगर उसको भी पता नहीं था उससे आगे क्या करना है, क्योंकि उसे पूरी बात बताई नहीं, तो वो जाके जहां उसे सिर्फ छोटा सा काम करना था वो लड़ाई झगड़े के अंदर उसको निपटा आया, सो ये मोटिव नहीं था उसका। अब एक और सवाल है आपका, वो स्टार्टिंग में बच्ची स्टूडेंट जिसको फ्री चॉकलेट मिली थी, वो कहानी से क्या कोई लिंक थी? नहीं, ये वो जो उस स्टूडेंट वाला किस्सा है वो रिपोर्ट्स में इसलिए बताया गया है ये समझाने के लिए आपको कि किस तरीके की शेरिल थी, लाइक शी वॉज सो बिलवड बाय एवरीबडी यूज टू लव हर, स्पेशली दैट स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा उससे जुड़ी हुई थी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो लड़की कहाँ गई, डजेंट मैटर बिकॉज वो केस से जुड़ी हुई नहीं है, तो उस लड़की का कुछ रिपोर्ट में भी मैंशन नहीं है, बिकॉज इररेलीवेंट है उसका होना ना होना। एंड ये सारे मैंने आपके सवाल के जवाब दे दिए, है ना, आई गेस दैट मेक्स इट अप फॉर एवरीथिंग। वैसे कबीर भाई योर शो इज जस्ट ऑसम, द वे यू टेल स्टोरीज मेक्स अस फील कनेक्टेड एंटरटेन एवरी टाइम, यू कीप अप द गुड वर्क, लव लिसनिंग टू यू। गुरमीत सिंह जी बहुत सारा प्यार मेरे भाई को, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार। मजहरुद्दीन भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, टुडे स्टोरी वाज रियली अमेजिंग, इट वाज फुल ऑफ सस्पेंस मिस्ट्री एंड केप्ट मी हुक्ड टिल द वेरी एंड, इट वाज इमोशनल टू एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट अ लिटिल सैड आफ्टर द एंडिंग, ग्रेट स्टोरी टेलिंग एज ऑलवेज, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, जज़ाकअल्लाह। और कह रहे हैं जी मैंने कहा कि वो लास्ट वर्ड्स की बात समझ नहीं, हाँ तो वो उसका मोटिव नहीं था यूसुफ भाई, मोटिव वॉज नॉट टू किल हर, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मिस्टर, बताना भूल गए थे पूरी बात. एक मैसेज है, वो बहता हुआ पर्स का फेक कॉल का क्या हुआ भाई? तो मैं बता देता हूँ, मैंने मेंशन नहीं किया कहानी बिकॉज ये इररिलेवेंट था उस इस केस के लिए. तो जो बैग था वो पुलिस ने डिटेन कर लिया था, वो बंदे को मिला था लेक यूनियन में बहता हुआ वहाँ पे, बस दैट्स इट, नॉट रियली कनेक्टेड टू द स्टोरी. एक और मैसेज है अजीज़ भाई का. अजीज़ भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह आज लेट निकला ऑफिस से, स्टोरी एंड पर ट्यून इन की आज वाली भी. मैंने कहा ये फराज भाई कह रहे हैं चाय को था क्या. अस्सलाम वालेकुम. और फिर अस्सलाम वालेकुम, ये ख्वाजा भाई का मैसेज है. फिर सेंड मी द स्टोरी आई हैव, क्या नहीं क्या लिखा आपने. जसाद भाई ने मैसेज किया, जसाद भाई का मैसेज मैं बोल भी नहीं सकता हूँ. एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम सर, कमाल की स्टोरी, हमेशा की तरह आपकी आवाज़ सुनाने के अंदाज से जान डाल देते हो. थैंक यू हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए. उस्मान भट्टी साहब को बहुत सारा प्यार. थैंक यू मेरे भाई, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये अरमान भाई का मैसेज है, साइकोपैथ किलर एंड क्या बट फील सॉरी फॉर द लेडी एंड बहुत अच्छी लगी कहानी, इमोशनल एंड स्पीचलेस टुडे, जलवाए भाई का. थैंक यू भाई, थैंक यू भाई. और अरबाज भाई ने मैसेज किया है, कुछ मोहब्बत की कहानी लग रही है, जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा मोहब्बत नहीं है इसमें. नाइसली नरेटेड, थैंक यू सीबी भाई. एंड तबसुम मैंने मैसेज किया, सो सैड की शैरल की जान चली गई, उस चीटर पे पहले ही शक था लेकिन ट्विस्ट का सोच नहीं पाई, शैरल को उससे पैचअप नहीं करना चाहिए था. डेफिनेटली रेड फ्लैग इज़ अ रेड फ्लैग. और दिशान मैंने लिखा है कि वहाँ पे रहें, वहाँ पे समंदर भी है, क्रूज भी बहुत चलते हैं वहाँ पे. थैंक यू सो मच अब्दुल करीम भाई का मैसेज. एंड लास्ट कॉल मैं जल्दी से ले लेता हूँ, एक सेकेंड. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है?
2: मेन बात तो मुझे लगता है वो हीरो बनने का था उसको.
0: हाँ भाई, हीरो ही बनने का था उसको.
2: बन गया हीरो बनने के चक्कर में निपटा दिया उसने.
0: हाँ वो हीरो बनने के चक्कर में हुआ भाई, वो ज्यादा ही जो ये बॉलीवुड का जो प्लॉट है,
2: हीरो बन के मेरा काम जो है सेट हो जाएगा, लेकिन काम पूरा बेलेन हो गया.
0: हाँ तो ऐसे हीरो नहीं बनने का, ठीक है?
2: सही है, कभी
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बस बढ़िया भाई, सब बढ़िया शानदार, आप सुनाए क्या हाल है?
2: बस अल्लाह का एहसान है.
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई. इस तरह सुनते रहे भाई और प्यार देते रहे, और क्या चाहिए.
2: नहीं नहीं बराबर सुनते कबीर भाई आपको.
0: थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ख्याल रखिए. ओके वालेकुम सलाम. सैम भाई ने मैसेज किया, कैसे हैं आप? मैं जी बढ़िया, मैं भला चंगा. यूसुफ भाई कह रहे हैं स्टोरी से क्लियरली पता चलता है कि किसी पे दूसरी बार ट्रस्ट नहीं करना चाहिए स्पेशली. या इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज उसी पॉइंट पे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. एक है कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम भाई, माजरत मैंने दोबारा कॉल कर लिया.
0: कोई मसला नहीं भाई, 10 बार कीजिए भाई, आप ही कहिए, बताइए.
3: यार मेरा काफी सैडनेस ही हो गई है, तो एक बात मैं भी पूछ लूं.
0: पूछो पूछो
3: भाई, मुझे फर्नीचर देना था.
0: क्या देना?
3: वापस जा सकते?
0: कहाँ जा सकते?
3: वापस जो स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट हुआ, वो चॉकलेट मिली लड़की को.
0: हाँ फर्नीचर चाहिए आपको, लालची आदमी.
3: नहीं वो लड़की को देना था ना यार, बेचारी अब रहेगी कैसे यार.
0: तो एक काम करो, आप सोफा लेके निकलो, मैं अलमारी लेके निकलता हूँ. आप सोफा लेके निकलो, मैं अलमारी लेके निकलता हूँ. टाइम मशीन में जाते हैं 1988 में और उसको फर्नीचर दे के आते ठीक है भाई. चलो मैं जल्दी बांध बंधवा लो, मैं भी इधर से अलमारी लेके पहुंचता हूँ, बढ़िया वाली एकदम.
3: ये बात ठीक है, किसी की हेल्प भी तो हो जाएगी ना, चलो उनकी यादें ताजा तो रहेंगी.
0: वो पता है मैंने, इसलिए
3: वो चाहिए ना भाई.
0: और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट्स में वो जो शुरुआत का टाइमलाइन है वो इसलिए भी लिखी गई होगी ताकि कैरेक्टर समझ में आए शेरल का. तो मैंने भी वहीं से शुरू करी कहानी, यहीं से बताना शुरू करता हूं.
3: नहीं वाकई किसी को समझने के लिए बाकी उसके जाना अतीत में जाना पड़ता है, वो वाली कहानी की. बाकी उनको समझने के लिए कि वो कैसे बिहेवियर था उनका, कैसा जना सर्वाइवल था उनका, वो बहुत अहम किस्सा था.
0: बस आप दुआ करें कल बहुत बहुत शुक्रिया भाई. कल उम्मीद करता हूँ कि कोई हॉरर मिल जाएगी मुझे, तो मैं कल बढ़िया से सुनाऊंगा आपको. देखिए
3: अल्लाह करे भाई, और भाई प्लीज ये वाली स्टोरी नहीं भेजना भाई. मैं और सैड नहीं होना चाहता भाई.
0: अच्छा ठीक है, डन हो गया, डन हो गया. जरूर आएगी
3: इसलिए भाई,
0: जरूर आएगी अब तो.
3: ओके
0: वालेकुम सलाम. फरद भाई लिखा है, सेकंड टाइम ट्रस्ट बोले तो ऐसी बातें कोई मजबूर ही कर सकता है जिसको प्यार हो गया. आप ये मोहब्बत में करेगा, शैल की स्टोरी से याद रखने वाली है. और क्या चाहिए कबीर भाई? भाई बिल्कुल भाई, दो बार भेजोगे ना? दो बार भेजूंगा मैं. एक समझ से लगता है सर आज की कहानी बहुत स्पेशल थी, दो काम में मिलाकर। हाँ मैं आज की कहानी भेजूंगा अरबाज भाई, आराम सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आपने मिस करी आज। एक और मैसेज है, ट्रस्टिंग समवन फॉर द सेकंड टाइम इज लाइक गिविंग देम एन एक्स्ट्रा बुलेट बिकॉज दे मिस द फर्स्ट टाइम। अरे मेरा भाई मोहम्मद भाई इतनी कर रही बात कर गए, इतनी कर रही बात। एक मैसेज, कबीर भाई बहुत करीब है आपके लिए दावत शावत तो नहीं? अच्छा मेरे ऑफिस के पास ही घूम रहे हैं आप, घूमिए घूमिए। एक मैसेज है, कबीर भाई वो बंदा जिंदा है एक्स हस्बैंड? भाई पता नहीं, बहुत साल हो गए अब तो, होगा मेरे ख्याल में अभी तो जिंदा ही होगा। मोहम्मद भाई के बाद एक और मैसेज है, पर मिलना क्यों है आपको? वैसे भाई माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आई लव यू ब्रदर, लॉट्स ऑफ लव कलीम भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई को। एंड अस्सलाम वालेकुम भाई जान, गुड इवनिंग, आज की स्टोरी उफ बहुत मस्त इकबाल भाई, थैंक यू। ओके सारे मैसेज पढ़ दिया मैंने। एक मैसेज है, ये दुनिया है ही नहीं अच्छे लोगों के लिए, गद्दार और चोर लोग हमेशा इंजॉय करेंगे दुनिया में, सो सैड फॉर ब्रेव एंड ऑनेस्ट गर्ल। मुदस्सिर बंगश था आपका मैसेज है, गुड मैसेज कबीर भाई, ऐसे हीरो नहीं बनना है एंड किसी को दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करने देना। थैंक यू सो मच कबीर भाई फॉर शेयरिंग सच मीनिंगफुल स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। भाई यही मैं चाह रहा था, असली कहानियों का मजा ही यही है ना भाई, फिक्शन होती तो इसका वो क्या है, मेरा मैसेज पूरा पढ़ोगे क्या? पूरा नहीं पढ़ा मैंने, कहानी से ज़्यादा सवाल हैं लोगों के तो वो तो है, लेकिन मैं सारे सवाल क्लियर करने को तैयार हूँ बिकॉज मैं इसको मैंने बहुत डीपली पढ़ा है भाई, इस केस को ना बहुत डीपली पढ़ा है। बाकी इंशाल्लाह आपसे बात होगी कुछ देर में, क्योंकि अभी अजान का वक्त है। थैंक यू सो मच, तो अजान के बाद मिलते हैं। कोई भी सवाल हो उस कहानी से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड 666-22107 नंबर है, 666-22107। ऑन दी अदर साइड आपसे मुलाकात होगी, बाकी शेरिल की याद में दुआ मांगते रहिएगा, और ऐसे हीरो नहीं बनने का है। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो मुझसे एक सवाल पूछा गया है, मैं दूहा वाला कबीर FM 107 पे, एक लुसेल वाला कबीर, अरे इन्होंने मैसेज किया है, हेलो ब्रो, भाई जस्ट क्यूरियोसिटी है कि आप किस स्टोरी के लिए प्रिपरेशन कितनी करते हैं, दो दिन या ज़्यादा, और याद कैसे रहती है, टॉपिक सर्च कैसे करते हैं, RJ की डेली रूटीन्स भी नॉर्मल है लाइक अस, बाय द वे लाइक योर प्रोग्राम सो मच, आई एम ऑल्सो कबीर, मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, चलो बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपने सवाल पूछा कि प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, तो प्रिपरेशन में मेरे भाई 4 से 5 घंटे, 6 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। कई मरतबा मेरी नज़रों के सामने होती है कहानी, कई मरतबा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कई मरतबा ऐसा होता है कि कहानी मैं जो रिसर्च कर रहा होता हूँ उसके आखिर में जाते जाते मुझे लगता है नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो सुनाने में भी मज़ा नहीं आएगा, सो आई कम्प्लीटली रिजेक्टेड, तो उसमें 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, नॉट वेस्ट बट ठीक है, यू कैन कॉल इट वेस्ट। तो 5 से 6 घंटे इट टेक्स टू फाइंड एंड मेक इट इन नैरेटिव फॉर्म। दूसरा बोला आपने कि याद कैसे रहती है, तो मैं भाई याद रखता हूँ कहानी की डेट्स, नाम और जगह, ये 3 चीज़ें मैं याद रखता हूँ, बाकी कहानी को क्योंकि मैं खुद लिख रहा होता हूँ, खुद याद रखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसके पॉइंटर्स लिख लेता हूँ, बुलेट पॉइंट्स, है ना, तो नाम लिखा, जगह लिखी, जॉब लिखी, है ना, एंड देन क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी 4-5 मरतबा खुद पढ़ चुका होता हूँ, लिख चुका होता हूँ नैरेटिव फॉर्म में, तो मुझे याद रह जाती है, और फिर बुलेट पॉइंट्स देख के कुछ अगर भूल जाता हूँ तो याद आ जाता है। पर आपने कहा RJ की डेली रूटीन्स भी नॉर्मली, देखो हर RJ की रूटीन डिपेंडिंग ऑन द शो अलग होती है, कुछ RJs का कंटेंट थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा लाइट रहता है, सो इट्स ईजियर फॉर देम, शिफ्ट पूरी करी घर गए आ गए कोई मसला नहीं है, और कुछ RJs का कंटेंट थोड़ा सा हैवी होता है तो उनको भी घर जाके भी काम करना पड़ता है, तो हमारी प्रोफाइल ऐसी है RJ की कि आपका काम सिर्फ ऑफिस तक महदूद नहीं रहता, लाइक यू फिनिश योर जॉब एंड यू गो होम, वैसा नहीं है, RJs को पूरे टाइम सोचना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन देयर कंटेंट, तो नॉर्मली है बट इज जस्ट दैट काम चलता रहता है कंटिन्यूसली, वो ऑफिस के आर जरूर खत्म हो जाते हैं मगर द लाइफ कंटिन्यूज। और थैंक यू सो मच भाई आपने

0: क्या हाल है भाई के?
1: एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। जो चीज मैं समझ रहा था आपके बारे में, आपके मुसरबियात में, आप जिस भाई ने सवाल किया, यकीनन मैं भी खुश हुआ हूँ आपसे खुद सुनकर।
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा था, वाकई आपका काम जो है इजी नहीं है। जिस तरह हम लोग यहाँ बैठ के आपके साथ बात करते हैं,
0: हमारा
1: हंसते
0: हमारा
1: हैं,
0: काम क्या है ना, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी ईगो या गुरूर में कह रहा हूँ, प्लीज़ कोई ना सोचे, मैं कह रहा हूँ हमारा काम कैसा है, हमारा काम शौकिया तौर पे नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं आप,
1: नहीं
0: कि
1: नहीं नहीं
0: इसमें
1: बिल्कुल
0: आपको अगर पैशन में 1% भी कमी है तो दिक्कत क्या है ना कि मेरा काम आप फौरन पकड़ लेंगे, समझ रहे हैं, अगर मेरे अंदर 1% भी
1: बिल्कुल
0: मेरे पैशन में कमी है तो मेरी बात सुनते
1: बिल्कुल
0: ही आप पकड़ लेंगे, यार इसका मन
1: बिल्कुल
0: नहीं है आज, समझ रहे हैं आप, तो वो एक चीज है
1: बिल्कुल
0: जो पकड़ी जाती है, दैट्स
1: आपके
0: व्हाई।
1: काम के लिए एक बहुत बड़ी सब्र और एक बहुत बड़ी स्टेमिना की जरूरत होती है। मुझे इस चीज का बड़ा अंदाजा है।
0: जज़ाकअल्लाह भाई,
1: एक चीज को पढ़ना फिर पब्लिक में शेयर करना, यकीनन मतलब हम कुछ लोग होते हैं, हमारे भाई लोग सुनने वालों में भी से शायद हैं, लेकिन सारे सुनने वाले माशाल्लाह अच्छे हैं सारे। तो
0: हाँ बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक
1: उन लोगों को लगता है कि मतलब अब यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस सुना रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा जो है ना, एक स्ट्रगल होता है ना
0: हाँ, बैकग्राउंड
1: कि
0: बैकग्राउंड में
1: आपने
0: है।
1: घर जाना है, यानी आप 24 घंटे अपने इसी सोच में होते हैं कि कहीं मैं इधर मिस्टेक ना करूं, कभी उधर ना करूं। तो
0: नहीं मैं,
1: यही वो
0: मुझे
1: चीज होती
0: मुझे
1: है
0: जब 2 दिन
1: कि
0: मिलते हैं ना, ये फ्राइडे सैटरडे में लता रहे, चलो कोई कहानी नहीं ढूंढनी भाई, तो फिर मैं बिल्कुल बाहर निकलता हूँ, चलो ठीक है, दिमाग खाली एकदम, पर मजा भी आता है ढूंढने, फिर
1: यकीन
0: मजा भी आता है जब कुछ
1: बिल्कुल
0: बढ़िया मिलता है तो खुशी भी होती है, तो वो वाली चीज
1: बिल्कुल
0: भी है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो मैं को जाती तौर पर खुद आपको अप्रिशिएट करता हूँ,
0: जज़ाकअल्लाह
1: यकीनन
0: भाई, बहुत
1: मैं
0: प्यार।
1: मेरे लिए तो बहुत दूर की बात है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई आरजे बन जाता
0: नहीं नहीं हर हर
1: ना।
0: काम मुश्किल, हर काम मुश्किल आसान हो सकता है डिपेंडिंग
1: बिल्कुल
0: ऑन कौन क्या करता है, तो
1: बिल्कुल
0: हमारे काम
1: बिल्कुल
0: का बस उन्होंने
1: बिल्कुल
0: पूछा तो मैंने कहा हमारे काम में सिर्फ ये चीजें हैं क्योंकि ये
1: आपके
0: खेल ही
1: काम
0: ऐसा
1: में
0: है।
1: बस जहनी दबाव है, सबसे
0: हाँ
1: दबाव जो है ना
0: मेंटली
1: आपके
0: ज्यादा है,
1: जहन पे होता है, बस
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली,
1: वो
0: दैट्स इट, पर ये है।
1: मतलब आंखें कान दिमाग बॉडी गर्दन मतलब बंदे को अजीब बना देता है यार।
0: बस यही सीन
1: तो
0: है करीम भाई, ऐसे ही चल रहा है। आप
1: बिल्कुल
0: सुनाइए कैसे सब बढ़िया,
1: तो आपसे बात होकर बहुत खुशी हुई, अल्लाह
0: जजाकल्ला
1: आपको
0: भाई,
1: खुश रखे। बस सुन रहे हैं आपको सर,
0: बिल्कुल
1: रियली सुन रहे हैं।
0: बहुत बहुत प्यार, बहुत प्यार करीम भाई, थैंक यू सो मच आपकी
1: ओके
0: मोहब्बत,
1: अस्सलाम
0: ख्याल रखिए,
1: वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और एक भाई हैं, इन्होंने मैसेज किया है मुझे, ये इनका नाम है सुमंत्रा बसु, बसु भाई लिखते हैं, सालों बाद आपको आज सुना है, एज यूजुअल लाजवाब, यू आर द बेस्ट, आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद प्रेशियस हैं, थैंक यू सो मच भाई, दैट्स अ लॉट ऑफ लव। एक भाई लिखा है कि भाई आप अपने आपको कम ना आके, आप भी सेलिब्रिटी है। नहीं कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस कहने की बातें हैं, इन बातों में अपन पढ़ता ही भी नहीं है। एक मैसेज जो है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और इन्होंने क्या लिखा है, एक सेकंड भाई, आज और कल की स्टोरी, ठीक है जी सेंड कर देंगे। और नाजिया मैंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हैं आप, और हाँ जी सारे मैसेज मैंने पढ़ दिए ना, खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, जजाकल्ला, गुड इवनिंग, आपका मैसेज थोड़ा लेट मुझे, मतलब स्क्रॉल नीचे करके जाना पड़ा। आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम आपको भी, और राव मुस्तफ़ा साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक हाई लिखा है किसी ने पाकिस्तानी नंबर से, राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, एंड क्या मैसेज आया, यूसुफ भाई को हम ये मशवरा देते हैं कि आपकी कहानी को सुने तो अच्छा है, क्योंकि क्योंकि नुक्ता चीनी के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जो प्रोफेशन में एक कमाल की बात है कि हर कोई कह देता है अरे अच्छा बोलते हो बन जाओ आरजे, ऐसा नहीं होता है ब्रो, बस यही बात मेरे को खलती है, बाकी चलेगा, इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच, कि ये लुसैल वाले कबीर जिन्होंने नाम, उनका नाम भी कबीर है इत्तफाकन, तो आपने पूछा मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बात तो बातों में बात निकल गई, बट बंटाए की पब्लिक 6:46 ऑन द क्लॉक।

સીધે ગા ક્યા હે ચાલે સાજિદ ભાઈ મુસ્કુરા રહે સાજિદ ભાઈ ક્યા દેખ લિયે હો ભાઈ और एक वॉइस नोट आया भाई ने बताया कि हिडन जेम मिला है भाई को, तो भाई का हिडन जेम भी सुनूंगा मैं कुछ देर में। बाकी तो भाई 6:50 हो लिए हैं, कल वीकेंड है आज पक्का ना, मैं ऐसी तो नहीं बोल रहा, एक सेकंड जरा देख लूँ मैं। हाँ यार आज वेंसडे हो गया, कमाल हो गया, तो कल वीकेंड है। देखो आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग, अगर कोई बढ़िया हॉरर मिली, बढ़िया एकदम मतलब हो तो मैं सुना दूंगा, वरना आई विल फाइंड सम अदर वे, कोई बढ़िया सी कोई और कहानी पर मिलेगी आपको बढ़िया। ये कहना कितने आदमी अरे भाई साहब, एक भाई लिखा है भाई आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत मेहनत से बना हुआ है, बहुत मेहनत से। आज की कहानी भेजो, कहानी आएगी आपके पास कुछ देर में, चाय पीते पीते आपको कहानी डिलीवर हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है, गर्मा गर्म कहानी आपको डिलीवर होगी, बेफिक्र हो जाएं उस चीज़ को लेके। बट फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, मगर सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar। और हाँ एक बात बता दूं भाई साहब, हाँ फिर मत कहना नहीं बताई थी, आपके लिए एक सरप्राइज आएगा वहाँ पे सोशल मीडिया पे, मुझे ढूंढ लेना, दुहा वाला कबीर, ठीक है, दुहा वाला कबीर FM107। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ सरप्राइज मिले, हो सकता है वहाँ पे कहानियाँ मिलना शुरू हो जाए, हो सकता है वाली कहानियाँ मिलना शुरू हो जाए जो आज तक आपको सुनाई नहीं मैंने, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन, आपके ऊपर है। बट फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

काबीना का हफ्तवार इजलास मुनक्किद हुआ। काबीना ने इजलास में स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले आला सतही मज़द के पहले दौर की कामयाबी को सराहा, जिसमें कतर और पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। काबीना ने उसे एतमाद साजी और मुस्तकबिल के अमन माहदे की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। काबीना ने कतर और पाकिस्तान की मुश्तरिका सफारती कोशिशों पर फख्र का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी रहेंगे। काबीना ने बैनुल अक्वामी इदारा बराए इंतजामी तरक्की IMD 2026 वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस एयर बुक में कतर की नुमाया कामयाबियों को सराहा, जहां कतर इकतसादी लचक में खित्ते में पहले नंबर पर रहा, तजारती तवाजुन में आलमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी की शरह भी रिकॉर्ड की। काबीना ने रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में हालिया सनती हादसे में जाँ भाग अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की, जबकि इमदादी इदारों की फौरी कार्रवाई को भी सराहा गया। काबीना ने शुरा कौंसिल की जानिब से मंजूर किए गए नए फूड कानून का नोटिस लिया, जिसका मकसद खुराक की हिफाजत, मेयार और सार्फीन को गजाई खतरात से तहफ़ फराहम करना है। इजलास में बैनुल अक्वामी इंसानी कानून से मुतल्लिक कौमी कमेटी की 2025 की सालाना रिपोर्ट और अक्वामे मुत्तहदा के कमीशन बराए समाजी तरक्की के 64वें इजलास से मुतल्लिक रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई उमूर कतर एनर्जी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर साद बिन शरीदा अल काबी ने आज दोहा में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफारत खाने का दौरा किया, ताकि रास लफान में बरजान गैस तनसीब के हादसे में एक पाकिस्तानी शहरी की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया जा सके। इस मौके पर साद बिन शरीदा अल काबी ने पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद आमिर से मुलाकात की और जाँ भाग होने वाले पाकिस्तानी शहरी के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कतर के तवानाई के शोबे से वाबस्ता तमाम मुलाजमीन की जानिब से भी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह जानों का ज़िया एक ऐसा सानहा है जिसका दुख हम सब महसूस कर सकते हैं। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म के मशीर और वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कल इटली के दारुल हुकूमत रोम में मुनक्किदा एक डायलॉग सेशन में शिरकत की, जिसका उन्वान था कतर और इटली बहरा रोम का मुकालमा, सालसी और बैनुल अक्वामी तआवुन के लिए मजबूत रवाबित की तश्कील। ये सेशन मेड और फाउंडेशन और अखबार दी पोस्ट इंटरनेशनल के तआवुन से मुनक्किद किया गया। सेशन के दौरान डॉक्टर माजिद अल अंसारी ने सालसी के शोबे में रियासत कतर के किरदार, मुजाकरात के अमल की हिमायत और तनाजात के पुरमन हल के लिए कतर की कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और खलीज तआवुन कौंसल के दरमियान शराकत दारी, जबकि बैनुल अक़वामी तनाजात और बहरानों से निमटने के तरीक़ा कार पर भी तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अल अंसारी ने मौजूदा इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरिका इकदामात और मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों में यूरोपीय यूनियन के किरदार को भी सराहा। सामीन, ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। रियासत कतर 4 अक्टूबर को बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग BIM समिट 2026 की मेज़बानी करेगा, जिसमें इंजीनियर्स, पॉलिसी साज, सनती माहरीन, हकूमती इदारों, निजी शोबे और तालीमी इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कतर सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स के ज़ेरे एहतमाम होने वाला ये इवेंट तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के तनाजुर में मुनक्किद किया जा रहा है। BIM टेक्नोलॉजी को मनसूबाबंदी, डिज़ाइन, तामीरात और असासों के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कारकर्दगी में इजाफ़ा, अखराजात में कमी और पायदारी के फ़रोग में मदद मिलती है। समिट का मकसद तामीराती शोबे में डिजिटल तब्दीली के हवाले से कतर की इलाकाई क़ियादत को मज़ीद मजबूत बनाना है, जहाँ मुकामी और आलमी माहरीन बेहतरीन तरीक़ों और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। कतर रेडियो कल जुमेरात को अपनी 58वीं सालगिरह मना रहा है। 25 जून 1968 को दोहा से महदूद नशरियात के साथ आगाज़ करने वाला यह इदारा आज कतर और अरब दुनिया की नुमाया रेडियो स्टेशंस में शुमार होता है। गुज़िश्ता 58 बरसों में कतर रेडियो ने मुल्क की सियासी, इक्तसादी, सकाफती और खेलों की तरक्की को उजागर करने के साथ

0: है जो अमन, समाजी इस्तेहकाम और अवाम के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। कतर की बुलंद रैंकिंग इस बात का वाज़े सबूत है कि मुल्क ने सिक्योरिटी, कानून की बालादस्ती और मुआशरे के अमन को फरोग देने में नुमाया कामयाबी हासिल की है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये आला दर्जा बंदी कतर के लिए एक नए एजाज की हैसियत रखती है और मुल्क के अमन, इस्तेहकाम और महफूज माहौल पर बैनुल अक्वामी भरोसे की मजबूत तरीन तस्दीक करती है। रियासत कतर और रशियन फेडरेशन के दरमियान सिक्योरिटी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों के सिलसिले में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर्स सिक्योरिटी ने रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द का खैर मकदम स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल नेवी हसन हमद अल सुलैती, डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर्स सिक्योरिटी ने किया। इस मौके पर जनरल डायरेक्टोरेट के कई अफसरान भी मौजूद थे। रशियन वफ्द की आदत वाइस एडमिरल कैलगुनोव विक्टर एंड्रिविच, डिप्यूटी चीफ ऑफ द नेशनल डिफेंस मैनेजमेंट सेंटर ऑफ द रशियन फेडरेशन कर रहे थे। दौरे के दौरान वफ्द को जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के फराइज और जिम्मेदारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को साहिली हदूद के तहफ्फुज, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की अंजामदेही और अहम समंदरी तनसीबात की सिक्योरिटी के हवाले से जनरल डायरेक्टोरेट रेट के किरदार और काम करने के तरीकाकार से आगाह किया गया। ये दौरा कतर और रशिया के दरमियान सिक्योरिटी और डिफेंस के मैदान में बढ़ती हुई तआवुन की अहमियत को उजागर करता है। इस किस्म के तबादले वफूद दोनों ममालिक के दरमियान तजुर्बात के तबादले, मुश्तरक फाहम और सिक्योरिटी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेहतराज ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से मुकम्मल किया जा सकता है, जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मेहतराज ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन सिलेक्ट करें। वर्क वीजा के सफह पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद दरखास्त करने वाले शख्स की नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाज़े कॉपी अपलोड करें, फिर एक साफ और वाज़े पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद ज़ाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिक अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। ये डिजिटल खिदमात वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती हैं और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती हैं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक भी नहीं, आप खुद एक पूरा आसमान।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें। आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: 기침. 일순 सम जैसे कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं तो आज भी हम बहुत अहम जो मौज़ू है वो अपनाने जा रहे हैं और गर्मी के मौसम के हवाले से ही कि किडनी या गुर्दों की क्या-क्या मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे जो अफराद हैं उसमें जो बहुत से मसाइल भी होते हैं यूरिन के हैं किडनीज के जो मसाइल हैं उन पर आज बात करेंगे इसके अलावा कि क्यों ऐसा होता है गर्मी के ही मौसम में और कौन-कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं डिजीजेस हैं वो हो सकती हैं और लिसनर्स आप हमारे साथ आ सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में हेल्थ गाइड में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 666-22107 और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं कोई भी सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछिए 443-44-377 पर और अगर आप ऐप QMC नाउ डाउनलोड करेंगे फिर हमारे साथ साथ होंगे
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
0: जी सर आपको मालूम है कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इकबाल जो कि नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में और जैसे कि लिसनर्स आज हम बहुत ही अहम एक मौजू अपनाने जा रहे हैं आपके साथ शेयर करती चुनेंगे पूरी दुनिया में जैसे कि गर्मी जैसे ज़्यादा है स्ट्रेस है हीट स्ट्रेस है तो उसमें जो पूरी ओवरऑल हेल्थ है उस पर तो असरअंदाज ये मौसम होता ही है मगर जो गुर्दों की जो सेहत है उस पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और तकरीबन 26.2 मिलियन जो केसेस हैं जैसे कि क्रोनिक किडनी के केसेस हैं वो डायरेक्टली जो हीट स्ट्रेस से या गर्मी के मौसम से वो रिलेटेड हैं और इसी तरह से जो गर्मियों के दौरान हॉस्पिटल के एडमिशन्स हैं उनमें भी 20-30% इजाफा हो जाता है तो आज हम इसी पर बात करेंगे और कतर की बात जब करें हम तो इसमें भी जैसे मुख्तलिफ स्टडीज़ की गई हैं और उनमें भी देखा गया कि जो क्रोनिक किडनी की जो गुर्दों की डिजीज़ है वो तकरीबन 13% जो है वो कतर की जो जनरल पॉपुलेशन है वो उससे मुतासिर होती है इन सब पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है तो हमारे साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इकबाल जो कि नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं वेलकम करूंगी मैं अपने तमाम लिसनर्स के साथ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
2: वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया पहले तो आपका इनवाइट करने का तो आपने जो इस प्रोग्राम का टॉपिक रखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के सीज़न के लिहाज से ख़ास तौर पे जो हमारे दोस्त भाई 10-12 घंटे इस गर्मी में काम करते हैं
0: जी
2: तो ये प्रोग्राम स्पेशली उनकी जानकारी और मालूमात के लिए बहुत मुफीद है
0: जी
2: तो इसमें
0: जी बिल्कुल और हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम जैसे जो मौसम का जैसे गर्मी का मौसम है और ये बहुत अहम एक मौजू है जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो भी होते हैं और यही पूछेंगे कि क्यों ऐसा है जब पूरी दुनिया की हमने बात की उसमें भी जो मौसम है उसकी चेंजेस हो रही हैं गर्मी की तरफ ही माइल है तो उसमें भी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो ज़्यादा ही होते जा रहे हैं जी डॉक्टर साहब गर्मी का और गुर्दों की जो सेहत है उसका क्या रिलेशन है थोड़ा सा हमें बताइएगा
2: बिल्कुल आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि गर्मी के पीक टाइम में आप बचें गर्मी से और अपनी सेहत का ख्याल रखें तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि हाइड्रेशन जो अपने आप को हाइड्रेट करते रहना तो पानी जैसे आपने पहले इसमें बता दिया कि
0: पानी जो है
2: 2 लीटर तक एटलीस्ट कम से कम वो लोग जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो 2 लीटर तक वो पी सकते हैं और जो लोग जो गर्मी में बाहर काम करते हैं उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं
0: जी।
2: तो ये एक बचाव का तरीका है लेकिन अब उसमें हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि जो लोग कौन से वो लोग हैं जिनको एहतियात ज़्यादा चाहिए
0: जो रिस्क पर हैं
2: तो एक तो वो लोग जिनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है और स्पेशली ख़ास तौर पे बाहर काम कर रहे हैं इस गर्मी में तो उनको तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अब मुसलसल अगर काम कर रहे हैं 8-10 घंटे तो उसमें वक्तन फवक्तन दरमियान में अपने आप को हाइड्रेट करते रहें और कुछ लोग उनको ख्याल नहीं होता कि अचानक से हम अब देखते हैं कि ऐसे लोग आ रहे हैं कि सीज़न के अंदर कि जिनको पेट में दर्द होता है
0: जी,
2: तो वो ख्याल नहीं कर रहे होते किस वजह से हो रहा है।
0: अच्छा।
2: तो उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही हैं, तो वो उनको जहन में नहीं आता, इग्नोर कर रहे होते हैं अपने आप को,
0: और ये समझते हैं शायद गर्मी की वजह से ऐसा है।
2: जी बिल्कुल।
0: अच्छा।
2: क्योंकि वो उस काम के अंदर इतने बिजी होते हैं कि उनको जो अलामत है उनका पता नहीं चल रहा होता कि बस औकात वो कहते हैं कि मैंने बाहर से कुछ खाया, कोई अपनी बद परहेजी जिसको हम कहते हैं वो हो गई, तो उसकी वजह से मुझे ये शायद प्रॉब्लम आ रहा है। तो और बहुत सारे इसको इग्नोर करते हैं, तो जब जो ही वो हेल्थ सेंटर या एमरजेंसी में आते हैं तो पता चलता है रीनल फेलियर हो गया। लेकिन इस रीनल फेलियर के सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है, अगर टाइम से पता चलता है फौरन से हॉस्पिटल में आ जाते हैं, हेल्थ सेंटर चले जाते हैं, वहाँ से वो हमारे पास रेफ़र करते हैं, तो उन जो ही उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो रिकवरी उसी दिन से उसी घंटों में शुरू हो जाती है।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसकी ज़ाहिर गर्मी की तो हम बात कर रहे हैं, मगर और भी जैसे वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी?
2: जी ये इस वो लोग जो जिनको इन्फेक्शन अगर हुई है बॉडी में
0: जी,
2: तो उनको किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इन्फेक्शन जैसे इसका रेट देखें जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 30-40% उनको किडनी के इश्यूज हो जाते हैं
0: जी।
2: फिर मैं वही कहूँगा कि उनमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं
0: जी,
2: तो लोग इससे डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि किडनी फेलियर हो गया और अब कुछ नहीं हो सकता, और वो फिर जो एडवाइस दी जाती है उसको सुन नहीं रहे होते कि ट्रीटमेंट कराएं, फॉलोअप करें। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं उनको जब हम एडवाइस करते हैं कि आपने फॉलोअप करना है आना है, तो वो उसको इग्नोर करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं, फॉलोअप के लिए नहीं आते, अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं आते
0: जी।
2: तो ये उनको देखना चाहिए, उनकी सेहत जो है उनके काम से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो सेहतमंद होंगे तो काम कर सकेंगे
0: जी।
2: तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोई इन्फेक्शन है तो साथ में किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और कुछ लोग अपने हार्ट डिजीज़ के साथ होते हैं
0: जी,
2: तो जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं स्पेशली उसमें डाई का वर्ड यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं।
0: अच्छा ठीक।
2: तो उसकी प्रिकॉशन है, उससे भी बचा जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस होते हैं। ये लोग जब इन स्टडीज़ के लिए जाएं तो स्पेशली जो इंस्ट्रक्शन उनको दी जाती हैं हाइड्रेशन के साथ, उनको कुछ मेडिसन होती हैं जो रोकना होती है, और बाद में उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मेडिसन को अगर लें तो कुछ मेडिसन ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट किडनी को नुकसान करते हैं, जिसमें पेन किलर मेडिसन हैं जिसको एनासिड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, और जिसमें स्पेशली हम बताते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम है और इसके ग्रुप की जो जो मेडिसन है
0: जी।
2: तो अगर गैर ज़रूरी उनका इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और डॉक्टर के मशवरे से उनको इस्तेमाल करें, और बहुत ही कम क्वान्टिटी में, तो फिर वही
0: जैसे पेन किलर्स
2: जी, पेन किलर्स जनरल पेन किलर्स हैं, लेकिन जब भी इस्तेमाल करना हो तो उसके साथ हाइड्रेशन का ख्याल रखें कि अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें ताकि किडनी का अफेक्ट ना हो, किडनी पे अफेक्ट ना हो। और इसी में मैं बताता चलूं कि हमारे बहुत सारे जो पेशेंट हैं जिनको शुगर है, तो उनके जो इम्यूनिटी लेवल है दूसरे लोगों से थोड़ा कम होता है, तो उनको भी रिस्क होता है कि किडनी इंजरी हो जाए। आप थोड़ा सा पता होना चाहिए लोगों को कि जो एक्यूट किडनी इंजरी है उसके अगर रीनल फेलियर हुआ है 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
0: ठीक है,
2: लेकिन उसका आप कंसल्ट नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो वो क्रॉनिक हो जाती है। तो क्रॉनिक का मतलब ये समझें कि उसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो टाइमली उसका चेकअप कराएं
0: जी,
2: और टेस्ट कराएं, जो ही पता चले ट्रीटमेंट कराएं, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को, उन हिदायत को सुने कि जो जो बताया जाता है उस पर अमल करें। तो ये ऐसे चीज़ें हैं
0: जैसे डॉक्टर, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे क्यूट अपने किडनी इंजरीज का जैसे वो बात की, तो वो क्या कब किस तरह से हो जाती है?
2: जैसे आप
0: और हाँ, वो तो जाहिर होता है कि वो फौरन हाँ, जो हो एकदम से तो वो एक्यूट है, मगर वो किस तरह से
2: जैसे आपके जो

0: रेगुलेशन किडनी की है वो ब्लड सर्कुलेशन स्पेशली इन मेडिसिन से अफेक्ट होती है, डिहाइड्रेशन से अफेक्ट होती है,
1: डिहाइड्रेशन से, ठीक है।
0: तो किडनी टिश्यूज की जो ब्लड सप्लाई है कम होगी, कम होते ही उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं और उसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी, तो वो डैमेज होती हैं, तो उसके डैमेज होने से उनका फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है,
1: ठीक है।
0: तो अगर डैमेज थोड़ा है तो थोड़ी उसके ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर है वो कम डैमेज होंगे और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे,
1: ठीक है।
0: अगर एडवांस हुआ है, एडवांस का पता कैसे चलेगा ये भी हमें देखना चाहिए।
1: जी, मैं पूछे वाले थे कि जैसे
0: तो कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि एडवांस है कि माइल्ड है, माइल्ड मतलब थोड़ा।
1: डॉक्टर शुरू, जैसे मैं पूछना चाहूँगी जैसे अलामतें हैं, जैसे अलामत हैं तो उसमें कैसे मतलब बज़ाहिर जैसे गर्मी का मौसम है तो क्या ज़ाहिर डिहाइड्रेशन है तो क्या वो देखता है पेशेंट को क्या महसूस होता है?
0: पहले तो उनको फील होता है कि ड्राई है, स्किन ड्राई है, बॉडी ड्राई है, तो उसके बाद जब यूरिन करने जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर डार्क हो जाता है, जैसे पेल है तो डार्क येलो हो जाएगा,
1: ठीक है।
0: और डार्क कोका कलर इस तरह का भी हो सकता है। तो ये जब अलामत हों और कुछ कंडीशन में यूरिन बिल्कुल कम हो जाता है, जब कम हो गया तो फिर आप सोचें कि किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है और डॉक्टर से कंसल्ट करें।
1: जी बिल्कुल। और जैसे ज़ाहिर हीट है तो हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक, उसमें तो हम बताते हैं कि स्पेशली यूरिन का जो है वो बहुत अहम है कि उसको आप ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है कि आ रहा है या नहीं आ रहा, या कलर क्या है, या बिल्कुल ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो ये सिंपल टूल्स हैं जो हर इंसान खुद से मॉनिटर कर सकता है, जान सकता है, और अगर उसको देखना चाहिए कि जो मेडिसिन ले रहा है तो उस टाइम पे कुछ ऐसी मेडिसिन है जो रूटीन में तो ठीक है वो ले रहे हैं और उसको उनको फ़ायदा हो रहा है, और लेकिन उस टाइम में वो मेडिसिन भी बंद की जाती हैं
1: जी, ठीक।
0: तो वो उनका फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन है और इमरजेंसी फिजिशियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो बता सकता है कि ये मेडिसिन अभी नहीं यूज़ करने की। और इसमें ये भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्त भाई जो अपना ट्रीटमेंट तो यहाँ से करा रहे हैं लेकिन बहुत सारी मेडिसिन ओवर द काउंटर वो अपने कंट्री से ले आते हैं,
1: ठीक है।
0: तो देखा ये गया कि मे भी हो सकता है कीमत की वजह से उनको वो लगता हो कि सस्ती हैं और यहाँ थोड़ा सा महंगी है, इतना फ़र्क नहीं है, जो सही अच्छी मेडिसिन के फ़ायदे वाली सब सेम है पूरे दुनिया में, तो वो लेके आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता
1: जी
0: कि मेडिसिन ये उनके फ़ायदे के लिए किडनी के लिए अच्छी हैं कि नहीं, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं, मेंशन करें
1: कि मैं कौन सी मेडिसिन जो
0: कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ,
1: ठीक।
0: तो स्पेशली मैं तो उनको कहता हूँ कि आप के मोबाइल में इतनी सारी पिक्चर हैं तो एक पिक्चर अपनी मेडिसिन की भी डालें
1: जी, और फिर दिखाएं उस वक्त
0: उस टाइम जब डॉक्टर पूछें कि कौन सी मेडिसिन ले रहे, क्योंकि आपको नाम याद नहीं होगा।
1: जी बिल्कुल, अक्सर नाम याद नहीं रहते,
0: अक्सर नाम याद नहीं होता, लेकिन जब आप पिक्चर दिखाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि कौन
1: कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं,
0: और कुछ कंट्रीज के अंदर कॉम्बिनेशन मेडिसिन ले रहे होते हैं जो कि उसमें ऐसी मेडिसिन भी है जो उस टाइम में इनको नहीं चाहिए
1: जी।
0: तो ये स्पेशली ख्याल रखें, और कुछ तो मेडिसिन बताए बगैर वो ले रहे होते हैं, कुछ अपने रूम में अपने घर में रखी होती हैं
1: जी
0: ओवर द काउंटर। तो जो भी मेडिसिन यूज़ करें आप ज़रूर शेयर करें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए अगर कोई फ़ायदा नहीं दे रही और उसको स्टॉप कर दिया जाए तो आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, किडनी रिकवर हो सकती है
1: जी।
0: और इसी के साथ ये बताता चलूँ, कुछ पेशेंट जो ज़्यादातर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में तो उनकी सर्जरीज होती हैं
1: जी,
0: तो उनको भी किडनी का फेलियर हो सकता है, तो एक्यूट किडनी फेलियर के चांसेस उनको होते हैं
1: जी।
0: तो लेकिन यही है, कुछ इलेक्टिव सर्जरीज प्रोसीजर्स होते हैं जो कि वो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं क्या क्या एहतियात करनी है, कब एडमिट होना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो उसमें तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी हैं एमरजेंसी सर्जरीज, तो उसमें डॉक्टर ही उनको एडवाइस करेगा कि क्या क्या एहतियात करनी है, क्या मेडिसिन लेनी है और उसको किस तरह फॉलो करना है।
1: ठीक ठीक जी। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं आप हमें, वैसे तो हमारे लिसनर्स जानते हैं कि जो क्यों गर्मी जो है

0: गर्मियों में जो हमारे किडनीज हैं वो इफेक्ट होते हैं, जैसे स्वेटिंग हो जाती है, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो क्यों ऐसा होता है कि स्वेटिंग से ही और फिर आफ्टर मतलब उसके जो इफेक्ट्स हैं वो किडनीज पर आते हैं।
1: कुछ लोग तो एसी के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर रहते हैं, उनको स्वेटिंग नहीं होती तो वो फील ही नहीं करते किडनी प्रॉब्लम। तो उसमें तो देखना चाहिए कि कोई मेडिसिन ऐसे ले रहे हैं जिससे उनके किडनी अफेक्ट हो रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन स्वेटिंग जब बाहर 10 घंटे 12 घंटे जो लोग काम करेंगे तो उनका सोडियम लॉस ज़्यादा होता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है
0: जी।
1: तो अलामात जो ही आपको किडनी के अलावा भी देखना है कि आपका ब्रेन एक्टिव है
0: जी।
1: आपके जो पेन बॉडी में पेन तो नहीं हो रही
0: और टेम्परेचर जो है,
1: टेम्परेचर मोनिटर करना है। और कुछ लोग जैसे बॉडी ऑर्गन में लिवर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: तो जो ही डिहाइड्रेशन होती है लिवर पे अफेक्ट होना शुरू होता है और सर्कुलेशन लिवर की कम हुई, किडनी की कम हुई और स्किन की कम होती है। स्किन का तो सिंपली आप देखेंगे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग इस चीज़ को बहुत ही इग्नोर करते हैं तो जो लोग स्वेटिंग के अंदर उनको पता नहीं चलता कि ड्राइनेस कितनी हो रही है। तो ये ऐसी एहतियात हैं जिनको करने से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं।
0: ठीक ठीक जी। आम तौर पर जैसे आपने डार्क कलर तो बता दिया कि जैसे यूरिन है तो वो बहुत ज़्यादा एक इंडिकेटर है और इसमें, और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ब्रेन की जैसे आपने बात की तो उसमें ये देखने हैं कि डिजीनेस तो नहीं हो रही, कोई अनकॉन्शियसनेस मतलब कुछ इस तरह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी।
1: और कुछ जैसे मसल डैमेज होता है, पोटाशियम लॉसेज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पोटाशियम सोडियम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पोटाशियम जो ही कम होगा तो क्रैम्प्स होंगी, बॉडी क्रैम्प्स होते हैं वो, और पता नहीं चल रहा होता उनको कि किस वजह से हो रहे हैं
0: जी।
1: और उस टाइम में अगर साथ में उनको वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है
0: जी।
1: तो और ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब होता क्या है कि जो ही वो कंसल्ट करते हैं बाहर प्राइवेट
0: जी
1: या हेल्थ सेंटर में तो उनको मेडिसिन दी जाती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो उस टाइम में एंटीबायोटिक्स चाहिए नहीं चाहिए तो कुछ एंटीबायोटिक उस टाइम वो भी अफेक्ट करती हैं तो वो किडनी को फेलियर को वर्सन करती हैं। तो उस कंडीशन में मेडिसिन भी आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें
0: जी। ठीक,
1: अगर बहुत ज़रूरी है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो बेसिकली वॉमिटिंग डायरिया ये ऐसे फैक्टर हैं जिनका कॉमन पता चल जाता है लेकिन लोग कंसल्ट नहीं करते, उसको लाइट लेते हैं और खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं और जिससे किडनी फेलियर वर्सन हो जाता है। तो अब ये गल्फ का जो जैसे आपने जिक्र किया कि
0: एक्यूट के बहुत स्टडीज हैं उसमें भी देखा गया जी
1: कि तो वो ये 30% तो इन्फेक्शन से ही हो जाता है।
0: अच्छा, और इसमें भी गर्मी का जब हम जिक्र करते हैं या समर में किडनी प्रॉब्लम उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ जैसे आपने कहा इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है क्योंकि गर्मी है या ह्यूमिड जो कंडीशंस हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं
1: जी। बिल्कुल, स्किन की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा और फिर वही चीज़ आ जाती है कुछ लोग यूटीआईज होती है। अब यूटीआईज का जो ही आप जिक्र करते हो तो फिर वो फीमेल्स को उसमें जो है ना ज़्यादा रिस्क पे होते हैं वो लोग, तो इन्फेक्शन होती हैं उसके साथ रीनल फेलियर हो जाता है। तो उसमें भी हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखें
0: जी, ठीक,
1: टाइमली कंसल्ट करें और टेस्ट ज़रूर कराएं कि क्या वजह हो रही है
0: जी।
1: और ये मैं बताता चलूं कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो रिस्क फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो शुगर का जैसे HbA1c जिसको कहते हैं
0: जी,
1: वो उसको टारगेट में रखें, कंट्रोल में रखें तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं।
0: ठीक ठीक, बिल्कुल। और क्योंकि वैसे भी अगर जब डायबिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो इन्फेक्शन्स हैं ज़्यादा होती हैं, तकरीबन स्किन की ले लें, लंग्स, तो कोई भी इन्फेक्शन्स, तो यूटीआई तो बहुत ज़्यादा है
1: जी। अब डिहाइड्रेशन से हार्ट के इश्यूज भी आ जाते हैं जैसे अरिथमियाज है और शॉक है
0: जी,
1: कोलैप्स हो गए तो हार्ट की सप्लाई अगर कम हुई है तो बॉडी ऑर्गन दूसरे भी उसके साथ अफेक्ट होंगे
0: जी। ठीक,
1: तो ये एहतियात हैं जिनको ज़हन में रखना है
0: जी। डॉक्टर साहब इसमें जो हैं अलामतें भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्या तो हमें नज़र आ रहा है मगर पेशेंट क्या जो है वो फील करता है, क्या क्या अलामतें हो सकती हैं कि हमें ज़्यादा केयरफुल होना है
1: जी
0: या डॉक्टर को कंसल्ट करना है।
1: जी बिल्कुल। अब उसमें एक तो आप देखें कि यूरिन की अमाउंट है जिसको आप रफली आप डेली देखें कितने टाइम आप यूरिन करते हैं
0: जी,
1: तो क्वांटिटी जब कम होगी उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, और यूरिन कम हो जाए तब भी। और उसके साथ उसका कलर इम्पोर्टेंट है, कलर देखते रहें, कलर चेंज हुआ स्पेशली जब आप बाहर काम कर रहे हैं और कलर आपका डार्क यूरिन आ रहा है तो उसको देखें। अब कुछ लोग में इसके साथ पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो उसको हम कहते हैं कि हीट स्ट्रोक की एक अलामत है, साथ में वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, तो उस फौरन उसमें कंसल्ट करें। जो ये रीनल फेलियर बढ़ता है तो फिर पाँव पे सूजन भी शुरू हो जाती है, तो अब वो सूजन देखना है कि किडनी की वजह से हो रही है या हार्ट की वजह से हो रही है या लिवर की वजह से हो रही है। तो फौरन जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि उसमें किडनी फेलियर अगर है और उसके साथ प्रोटीन भी लीक हो रही हैं तो दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं, शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है,
0: ठीक है,
1: इन्फेक्शन तो नहीं है। तो फौरन ब्लड टेस्ट के साथ साथ स्कैनिंग भी की जाती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। किडनी क्या देखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड साइज कैसा है, पहले से किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको इश्यू तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से अब जो कि ज़्यादा हो गया।
0: डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी जैसे अलामतें हैं उसमें वो दर्द का पूछना चाहूँगी कि क्या किस तरह की पेन जो है वो हो सकती है, कि दर्द किस तरह का जो है वो महसूस करते हैं या होता है या खाली यूरिन आप देखते हैं क्या इसमें?
1: जी पेन अब मुख्तलिफ होता है हर
0: पर्सन टू पर्सन,
1: हर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, लेकिन अलामत जैसे आप कहें कि स्टोन की वजह से अगर पेन है तो
0: जी
1: जो फ्लैंक्स हैं आपके जो साइड में पेट के साइड पे राइट और लेफ्ट होंगे पेन और नीचे यूरिन वाली साइड पे जाएगा
0: जी ठीक,
1: तो ये तो आपको आइडिया होगा कि स्टोन है और वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और उसकी वजह से फौरन से टेस्ट होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन इसके साथ जो जनरल पेन होता है जैसे कुछ लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेन शुरू हो गया, वो हॉस्पिटल आएंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि जैसे अपेंडिक्स का पेन है
0: जी,
1: तो उसको पेशेंट भी परेशान होता है कि कहीं मुझे अपेंडिक्स है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ज़रूरी कि अपेंडिक्स हो
0: जी,
1: तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, मसल डैमेज है, उससे उनको पेन हो रही होती है
0: जी,
1: साथ में वॉमिटिंग होती है। लेकिन अभी कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनमें उनको पेन के साथ स्टूल भी नहीं आ रहा, तो स्टूल अगर नहीं आ रहा तो फिर हम देखते हैं कि एब्डोमेन का मसला तो नहीं है, सर्जरी तो नहीं चाहिए।
0: ठीक ठीक जी। और लिसनर्स हम इसी पर जो है बात डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि क्या क्या अलामतें हों तो फिर कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
3: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: एलसुस हेल्थ गाइड, और आज हम बात कर रहे हैं कि किडनी की गुर्दों के मसाइल गर्मियों में क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्टर बड़ी डिटेल में बता रहे हैं। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इकबाल, क्योंकि नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं जी। डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे थे कि जो अलामतें हैं वो आपने हमें बताई, इसके अलावा और कौन सी हो सकती हैं वो भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कोई जो है यूरिन का तो आपने बता दिया मसला, पेन की हम बात कर रहे थे, स्पेशली आपने कहा कि ये जो है वो ये भी हो सकता है कि गलत फहमी हो कि जो है अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस जो है वो हो सकता है, तो उसमें कुछ डिफरेंशियल डायग्नोस या डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है?
1: तो अलामत के साथ लेकिन वो टेस्ट उस टाइमली होना ज़रूरी है, उससे पता चलता है। जैसे सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड हम करते हैं तो वहाँ से हमें क्लियर
0: तो
1: होता है।
0: एग्जामिनेशन पे भी
1: जो एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स उसमें पता चलता है कि अगर अपेंडिक्स का पेन है तो वो एक राइट साइड पे लोअर एरिया में होगा, बहुत स्वेयर होगा, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, और उसके साथ अगर रीनल कॉलिक जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन का है, तो वो जैसे मैंने बताया कि आपके राइट और लेफ्ट साइड पे होगा
0: जी।
1: तो एक उसमें होता है पैंक्रियाज लबलबा का पेन, जो कि लोग फैटी अगर उन्होंने चीज़ें ली हैं और वो स्फेयर खाने के बाद आपको पेन होगा और बिल्कुल सेंटर एब्डोमेन के दरमियान में होगा।
0: ठीक।
1: और फिर आ जाता है जनरलाइज पेन। तो जनरलाइज में पूरे पेट में पेन हो रहा है और उनको समझ नहीं आ रही, कभी वो बता रहे हैं कि राइट पे है लेफ्ट पे है, और लेकिन उसमें जब स्कैन करते हैं तो वो भी बास औकात बहुत सारे केसेस में नॉर्मल आता है
0: जी।
1: तो फिर बाकी टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है उसमें पता चलता है और कि क्रिएटिनिन कितनी है। जैसे क्रिएटिनिन एक किडनी पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है रीनल फेलियर हो रहा है
0: जी
1: और कितना स्वेयर है। और उसके साथ यूरिन का टेस्ट करते हैं, यूरिन में हमें पता चलता है कि उसमें ब्लड आ रहा है, प्रोटीन आ रहे हैं या ऐसा नहीं हो रहा या इन्फेक्शन की वजह से है। और उसके साथ ही बाकी लिवर के टेस्ट देखे जाते हैं, मसल एंजाइम देखे जाते हैं
0: जी।
1: तो इन टेस्टों के बाद आइडिया होता है कि अब इनको कौन सा पेन है
0: जी।
1: तो
0: ठीक।
1: अलामात के साथ एग्जामिनेशन और टेस्ट से हम फिर कंफर्म करते हैं इसका कि पेन किस वजह से हो रहा है। तो जो ही आपको ये अलामात हों, प्रॉब्लम हो, तो फौरन से आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको सही बता सकेगा कि पेन की वजह क्या है।
0: ठीक। डॉक्टर साहब, आपने स्टोन्स जैसे उसके दर्द में और ये कुछ डिफरेंस जैसे आपने बताया, तो इसमें क्या ये डिहाइड्रेशन से या गर्मी की वजह से स्टोन्स जो हैं वो भी बन सकते हैं, या अगर कुछ हैं तो वो एग्रीवेट मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, इसका कोई रिलेशन है?
1: जी, कुछ लोगों में स्टोन पहले से होते हैं
0: जी,
1: जिनको खुद भी नहीं पता होता या फैमिली में स्टोन है या जहाँ पे उनकी डाइट हैबिट ऐसी है कि उससे सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं और यूरिक एसिड हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उससे स्टोन जैसे बनते हैं, छोटे स्टोन हैं तो उनको पता नहीं होता, अल्ट्रासाउंड भी नहीं हुए, टेस्ट भी नहीं हुए। तो जब वो किडनी फेलियर के साथ आते हैं तो मिक्स पिक्चर होती है
0: जी।
1: तो फिर उसमें यही हम अल्ट्रासाउंड और टेस्ट से हमें पता चलता है और सीटी कंफर्म करते हैं सीटी स्कैन से कि स्टोन है या नहीं है। अब स्टोन देखें कि अगर स्मॉल है तो उसके चांसेस होते हैं कि लेस देन 5 मिलीमीटर कह लें
0: जी,
1: वो मेडिसिन से और हाइड्रेशन से निकल जाता है खुद बहुत। लेकिन वजह देखनी होती है किस वजह से बन रहे हैं, कौन से स्टोन है, फिर स्टोन एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, स्टोन का कंप्लीट टेस्ट होते हैं वो हम करते हैं
0: जी।
1: तो उसे देखते हैं कि अब सोडियम ज़्यादा लिया जा रहा है उसकी वजह से बन रहे हैं, बस लोगों में कैल्शियम और ऑक्सलेट ज़्यादा होता है बॉडी में
0: और स्वेटिंग से भी
1: जी, स्वेटिंग से एग्रवेट हो जाती हैं चीज़ें
0: है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्वेटिंग जब होगी तो स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, तो जो स्टोन पहले कम बन रहे थे वो ज़्यादा बनने के चांसेस होंगे। तो इसलिए एडवाइस ये किया जाता है कि हाइड्रेशन अपनी दो से तीन लीटर रखें, इतना पानी पिएं। तो स्टोन का अगर पता चल जाए तो फिर तो आप उसके एहतियात करें, स्पेशली डाइट में, हाइड्रेशन में, और स्टोन कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट हैं, यूरिक एसिड स्टोन है। अब कुछ लोगों में यूरिक एसिड हैं तो यूरिक एसिड आपको पता है हाई प्रोटीन डाइट से यूरिक एसिड बढ़ता है।
0: ठीक।
1: तो यूरिक एसिड रेड मीट
0: वगैरह से
1: जी, तो अपना डाइट का ख्याल रखें और साथ में चेकअप कराते रहें फ्रीक्वेंटली के उसके लेवल लिमिट के अंदर हों, अगर ज़्यादा हैं तो वो किडनी फेलियर करेगा और इसलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। और कुछ जहाँ पे आप देखें कि डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के साथ हम भूल जाते हैं कि ओबेसिटी जो है
0: जी,
1: जो कि जिसको आप मोटापा कह लें सिंपल लैंग्वेज
0: जी बिल्कुल और ये कि है भी बहुत ज़्यादा, और जैसे ही हर एक हम बात करते हैं जब किसी भी डिजीज़ की तो उसमें मोटापा ओबेसिटी जो है वो भी नंबर वन या टू थ्री इस तरह से उसके जो वजूहत हैं उसमें आती है,
1: तीसरा फैक्टर बहुत बड़ा है तो उस पर हम तवज्जो कम देते हैं
0: जी।
1: तो हमारी कैलोरी इनटेक ज़्यादा है जितना कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि लोग 10 साल पहले उनका वेट क्या था, 10 साल कतर में रहे फिर वेट क्या है, तो इसलिए हैबिट बना लेनी चाहिए कि जब आप 5 साल पहले का वेट देखें और अब क्या है, तो अब उसमें वेट जो ही बढ़ तो आपके शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में ही किडनी फेलियर भी,
0: क्योंकि स्ट्रेस उस पर ज़्यादा आ जाता है,
1: स्ट्रेस ज़्यादा है,
0: ठीक है,
1: बिल्कुल। तो ये हमें डाइट का ख्याल रखना है, डाइट जितनी हमें चाहिए उतनी, और अबव 40-50 की एज में जो लोग जा रहे हैं तो उनको मज़ीद ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ इन चीज़ों को बड़ा लाइट लिया जाता है
0: जी,
1: कि डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं की जाती, वेट का ख्याल नहीं किया जाता,
0: ठीक है। और बिल्कुल इस तरह लिसनर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पर हमें कॉल ना कीजिए, आपने कॉल कर आप पूछना है कोई भी सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434347 पर, आप कॉल करके कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए, कोई भी सवाल आप पूछिए जी। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने कहा सारी जो अलामतें हैं वो डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में हमें बताई हैं, और जो टेस्ट हैं वो तो आपने बताए हैं कि उसमें जो
1: यूरिन के टेस्ट करें, ब्लड के टेस्ट कराएं
0: ज़रूरी है,
1: तो जी उसमें कुछ लोग हेजिटेट करते हैं टेस्ट कराने से
0: जी,
1: तो उनसे यही एडवाइस है कि मशवरा है कि ज़रूर टेस्ट करा लें जब ज़रूरी है। तो बास औकात होता है कि उनके मल्टीपल फॉलोअप्स चल रहे होते हैं, तो मैंने देखा है कि वो बहुत परेशान होते हैं, तो ज़ाहिर है एंग्जाइटी फैक्टर बहुत होता है, तो हर डॉक्टर टेस्ट उसमें कुछ एडवाइस करता है, लेकिन वो थोड़ा डॉक्टर से कम्युनिकेट करें कि उनके फॉलोअप्स कितने हैं
0: जी,
1: तो ज़्यादा फॉलोअप्स भी इंसान को परेशान कर देते हैं
0: जी,
1: तो लेकिन जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो उसमें डराने चाहिए और कराने चाहिए। कुछ लोग हमारे जो एशियन कल्चर में हैं वो कहते हैं कि पता नहीं टेस्ट करते जा रहे हैं और ट्रीटमेंट जो सिंपल चल रहा
0: जी,
1: तो इस चीज़ से उन परेशान नहीं होना चाहिए,
0: टेस्ट होंगे तो उससे से वो सही डायग्नोसिस जो है वो सामने आएगा
1: जी, बिल्कुल
0: जी।
1: तो क्योंकि कुछ स्टेज में किडनी फेलियर अगर शुरू में है तो कुछ अलामत नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं, लेकिन जब जो ही टेस्ट करेंगे तो टेस्ट से पता चलेगा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइमली उसका तशखीस हो जाएगी, डायग्नोसिस हो जाएगा और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी
0: जी।
1: तो अगर टेस्ट ही नहीं करेंगे तो एडवांस स्टेज पे पेशेंट आएंगे, कुछ अपनी ट्रीटमेंट्स करते रहेंगे जिससे उनको खुद भी पता नहीं चलेगा रीनल फेलियर कितना हुआ या और कोई प्रॉब्लम हो रहा है,
0: ठीक।
1: तो प्लीज़ यही है कि टेस्ट ज़रूर कराएं
0: जी,
1: और उससे डरें नहीं।
0: ये डरने की वजह से आप जैसे प्रैक्टिस में हैं आते हैं जैसे पेशेंट्स हैं तो ये वजह होती है, और उससे भी ये है कि जो डिले हो जाता है और उनका ट्रीटमेंट भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जब पेशेंट हैं उनका मैसेजेस चले जाते हैं कि आपने इस टाइम पे आपका फॉलोअप है 6 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद
0: जी,
1: तो लेकिन देखा गया आधे से ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते, तो फिर वो आएंगे चेकअप कराएंगे फिर दोबारा, आप देखें उसमें वो टाइम लूज़ कर रहे हैं
0: जी,
1: कि टेस्ट अगर टाइमली करा लें तो उसी टाइम जब आए हैं तो उनकी जो मेडिकेशन चेंज होनी है उसमें जो एडवाइस उनको मिलनी है
0: जी
1: टाइमली मिल जाएगी, लेकिन वो टेस्ट उस टाइम नहीं कराएंगे फिर 2 माह बाद कराएंगे, तो फिर वो जो ट्रीटमेंट उनको पहले होना था, कुछ मेडिसिन शुरू होनी थी
0: जी,
1: तो वो डिले हो जाएंगी,
0: ठीक।
1: तो ये टाइम फैक्टर बहुत ज़रूरी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ पे हेल्थ जो स्टेटस है बड़ा अच्छा है, हेल्थ अवेयरनेस बहुत है और एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो लोग इससे मैक्सिमम एडवाइस ये कि फ़ायदा उठाएं
0: जी,
1: तो जब उनको एडवाइस मिल जाती है पता चल जाता है तो उसको फॉलो करें
0: जी। डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर हैं अहमद, उनका नाम है, तो पूछ रहे हैं कि आप क्या जो क्रिएटिनिन लेवल है वो भी गर्मी की वजह से ज़्यादा हो सकता है
1: जी। उसमें कुछ चीज़ें हैं वो ख्याल रखना ज़रूरी हैं कि एक तो पहली चीज़ तो है कि गर्मी से आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया। अब वेट का हम जैसे बात कर रहे थे, वेट आप देखें कि पहले लास्ट ईयर या 2 साल पहले कितना था
0: जी,
1: तो क्रिएटिनिन डायरेक्ट आपके मसल मास से भी रिलेटेड है। कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है तो क्रिएटिनिन थोड़ा ज़्यादा लेवल आ रहे होते हैं।
0: अच्छा ठीक।
1: तो लेकिन मेक श्योर यही करना होता है कि बाकी उसमें चीज़ें उनको नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, तो फिर भी अगर क्रिएटिनिन थोड़ा

0: वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करेंगी। शुगर की मेडिसिन है तो वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करेंगी
1: जी, ठीक।
0: और पेन किलर फिर मैं कहूँगा उनसे अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, स्पेशली पेन किलर जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है अननेसेसरी। और जो हमारे वर्कर हजरात हैं काम कर रहे हैं
1: जी,
0: जाहिर है वो थक जाते होंगे, पेन किलर जो ही उनको पता है कि ये पेन किलर ले लेने चाहिए, ऐसे नहीं लेने चाहिए, उसमें एहतियात करने चाहिए कि जो उनके लिए नुकसानदेह हैं वो बिल्कुल ना लें
1: जी। जी डॉक्टर साहब, हम चलेंगे अपने लिसनर्स की तरफ, सुनते हैं कि हमारे साथ कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं महमूद बोल रहा हूँ।
1: जी जी
2: जी, डॉक्टर साहब से ज़रा बात हो सकती है?
1: जी ज़रूर आप
0: जी, वेलकम जी जी, बताएं
2: जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी।
0: वालेकुम सलाम,
2: और बड़ा मालूमती प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव जी।
1: बहुत शुक्रिया आपका जी, पूछिए क्या पूछना चाहिए।
2: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अभी आपने फरमाया कि ये सप्लीमेंट जो है इनका भी कोई इफेक्ट होता है किडनी पे, तो ये मसलन आमतौर पर जो है मैं 75 प्लस हूँ तो वाइटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स B12 में लेता हूँ एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है किडनी पे?
0: जी आपने बड़ा अच्छा पूछा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि वाइटामिन डी डेफिशिएंसी है हमारे लोगों में, और एज ठीक है थोड़ा अगर 70s में भी हैं, लेकिन यंग लोगों में भी है, ये बहुत कम होती है वाइटामिन डी तो, और धूप में सन एक्सपोजर बहुत ही कम है, तो वाइटामिन डी लेने से कोई किडनी फेलियर और किडनी पे अफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके लेवल्स आप 6 माह बाद साल बाद ज़रूर चेक कर लें, तो वो जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा नहीं लें। कुछ लोग ये ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, तो जब आप एक लेवल अचीव कर लें फिर देखें कि उसी को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा ले दें। और B12 भी इसी तरह, जैसे अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, आप यहाँ पे चिकन मटन और ये फूड्स अच्छी ले रहे हैं, तो वाइटामिन B12 अब कुछ टाइम के लिए लें, तो उसके बाद उसको स्टॉप कर दें। अगर आप देखें आपका कम हो रहा है, लेवल लो है, तो फिर आप ले सकते हैं, उसका किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
2: इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका भी यही है?
0: जी, बी कॉम्प्लेक्स का इसी तरह बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि बी कॉम्प्लेक्स जैसे उसमें आप वाइटामिन की बजाय अगर आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, चिकन मटन और ये चीज़ें, तो आप वो
1: डाइट
0: से कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ठीक,
2: अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, वरना यह है कि आदमी वैसे भी खुराक इस्तेमाल करता रहे साथ में सप्लीमेंट ले, तो उसके फिर वो ओवरडोज हो जाता है।
0: तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो साइकोलॉजिकल भी जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे हमें मल्टीविटामिन लिख दें, तो अगर तो उनको चाहिए कुछ शॉर्ट टाइम के लिए लें, फिर अच्छा सेफ साइड यही है कि उसके बाद उसको बंद कर दें, तो कंटिन्यूस नहीं लें।
1: डॉक्टर साहब, कितनी देर तक कंटिन्यूस लेनी चाहिए? जैसे कि हम मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं तो कोई गैप, जाहिर सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैंने कहा मैं भी उसको ज़रा उसमें ऐड कर लूँ और पूछती चलूँ आपसे
0: जी। कुछ तो मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है, तो वो 1 माह 2 माह मैक्सिमम 3 माह इस तरह लें
1: जी।
0: आप उसमें वो देखें कि आप विटामिन A, B, C
1: जी
0: और बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स हैं, तो एज सच वो ठीक हैं, लेकिन आप उसके सब्स्टिट्यूट में देखें क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। विटामिन सी फॉर एग्जांपल आप किस में न्यूट्रिशन से पूरा कर सकते हैं
1: जी,
0: सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, चेरीज, तो ऑरेंजेस
1: जी,
0: तो आपको उसकी इतनी ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन सी आपको रेगुलरली चाहिए, तो वो डाइट से आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो
2: विटामिन सी
0: जी, विटामिन सी तो आप, और बाकी जैसे विटामिन ए है, कैरेट्स हैं
1: जी,
0: ठीक है, एप्पल है, तो उससे कंपनसेट कर सकते हैं। और बी की आपकी जो कैटेगरी आ गई, वो उसमें जो डाइट है जैसे हाई प्रोटीन डाइट है, उससे अगर आपका किडनी फेलियर नहीं है तो आप हाई प्रोटीन डाइट लें, अपनी प्रोटीन ठीक रखें, तो उसे बैलेंस रहेगा। और विटामिन ई भी, विटामिन ई बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है, तो दैट्स ए सर्टन लिमिट ठीक है, लेकिन विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी आप डाइट सप्लीमेंट भी, डाइट जैसे फ्रूट्स हैं कुछ,

0: वो ले सकते
1: जी
0: हैं, तो उसे आप वो कुछ टाइम के लिए लें, उसके बाद उसको बंद कर दें।
2: ठीक जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये किडनी का खुदा ना खासा किडनी फेलियर या इसका इफेक्ट जो है, उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं?
0: जी बिल्कुल, सिम्टम्स यही हैं कि अगर आपके यूरिन की अमाउंट कम हो रही है, लेग्स पे स्वेलिंग हो रही है और कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, तो ज़रूर आप चेकअप कराएं कि किडनी फेलियर तो नहीं चल रहा साथ में।
1: अच्छा
2: ठीक।
1: मेरा जो है ना रिसेंटली चेकअप हुआ था, क्रिएटिनिन जो है 98 UMOL है, यूरिया 5.4 UMOL है, और इसी तरह टोटल प्रोटीन 65 GM है।
0: तो ये नॉर्मल रेंज में आपके? तो फिर जी
1: नॉर्मल रेंज में
0: जी जी, तो माशाल्लाह।
1: किडनी के लिए तो
0: जी जी, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। EGFR थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आम लोग उसके पे फोकस करते हैं, तो इस प्रोग्राम की वजह से मैं बताना चाहूँगा कि 40 ईयर्स के बाद EGFR पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि
1: अच्छा।
0: जब आप 60 और 70 रेंज में पहुँचते हैं तो आइडली आपकी अगर 60 to 70 ml आ रही है, मैक्सिमम 80 ml आएगी GFR, तो 80 ml नॉर्मल है, क्योंकि एज से 40 के बाद हर साल 1 ml क्लियरेंस कम होती है किडनीज़ की, तो ये नॉर्मल है, तो इसलिए 60 और 80 के दरमियान अगर आ रही है तो उसको नॉर्मल लें। लेकिन कुछ लोग वो चूँकि ऐप अवेलेबल है उस पर जो ही लैब देखते हैं तो ये GFR जैसे थोड़ा सा कम उसमें अगर शो होता है तो उससे वो डर जाते हैं, तो एज को उसको शामिल रखें, तो एज के लिहाज से अगर आपकी 60-70 एज के लिहाज से अगर 70 ml 80 ml में आ रही है तो दैस ये नॉर्मल है, तो लेकिन वो ये है कि आप साल बाद एटलीस्ट अपना एक चेकअप करा लें।
2: ठीक।
1: अच्छा तो ये कितने अर्से के बाद करवाना चाहिए?
0: जी साल,
2: एक साल के बाद,
0: एक साल बाद चेकअप कर लें।
1: अच्छा। और अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो आपने यूरिन के कलर के बारे में कुछ बताया था कि डार्क येलो
0: जी,
1: डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन से होता है, अगर आप प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर लें, पानी नहीं पी रहे तो वो कलर चेंज होगा, तो वो ये एक सिंपल टूल है जिससे आपको पता चल सकता है कि हाइड्रेशन मैंने बेहतर करनी है।
1: मैं तो तकरीबन 12 से 14 ग्लास जो है पानी पीता हूँ, लेकिन बीच में मेरा वही जो है डार्क येलो जो है यूरिन आता है काफ़ी।
0: तो फिर डाइट में आप चेक करें कि कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कि आपके हाई प्रोटीन डाइट है और कुछ ऐसी चीज़ें उससे भी कलर चेंज होता है, लेकिन 8 से 10 ग्लास बहुत है। अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो एसी के अंदर हैं घर में, गाड़ी में होता तो इतना काफी है। बिल्कुल अपना
2: ठीक है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब
2: जी,
1: थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, गॉड ब्लेस यू बोथ,
2: थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह,
0: थैंक यू,
2: अल्लाह हाफिज,
0: थैंक यू
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बॉडी उसमें ट्रीटमेंट के हवाले से बताया, एक और प्रिवेंशन जो है बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जैसे हाइड्रेशन का आपने हमें बताया, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती हैं दरखास्ता अगर हम केयर ना करें, या जो अपनी अलामतें बताई हैं उनको इग्नोर कर दें, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
0: जी देखें, अब एक वही चीज़ है कि जैसे हमें जानकारी है, टेस्ट करा लिया तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं
2: जी,
0: लेकिन कुछ कंडीशन में अगर 6 माह तक किडनी फेलियर क्रिएटिनिन हाई रहती है तो फिर उसके चांसेस कम होते हैं ठीक होने के
2: जी,
0: लेकिन उससे भी डरना नहीं चाहिए, फॉलोअप कराएं प्रॉपरली
2: जी, जी।
0: तो कुछ लोग उसी को मेंटेन रखते हैं, तो मेन कॉम्प्लिकेशन तो यही है जिसे हम कोशिश करते हैं कि बच जाएं हमारे सारे लोग, कि वो क्रॉनिक में ना चले जाएं
2: जी, ठीक,
0: क्योंकि क्रॉनिक स्टेज में जो ही चले जाते हैं तो उनकी रिकवरी चांसेस नहीं होते, तो क्रॉनिक की आपको पता है कि फिर फॉलोअप क्लोजली करना होता है
2: जी,
0: 3 से 4 माह और कभी 6 माह में भी अगर स्टेबल चल रहे हैं तो फॉलोअप ज़रूर कराएँ, तो ये ऐसी चीज़ है जैसे आप 70% चीज़ को बचा सकते हैं तो बाकी अगर 20-30% हो गया तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि रीनल फेलियर एडवांस हो जाए और आप डायलिसिस पे चले जाएं, तो उससे पहले जो स्टेजेस हैं तो साल साल लोग फॉलोअप करते रहते हैं
2: जी,
0: और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, और किडनी के टेस्ट होते हैं जैसे रूटीन में वो करते रहते हैं और नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं
2: जी तो जी डॉक्टर साहब हमारे लिसनर है नाम इन्होंने लिखा मैं पूछ रहे हैं कि बाज़ूकात पानी कम पीने के लिए भी कहा जाता है तो ऐसा क्यों है
0: जी बिल्कुल बड़ा अच्छा पूछा इन्होंने तो अब ये देखें कि जो कुछ हार्ट के पेशेंट हैं हमारे और लिवर की डिजीज़ हैं उनमें तो उनमें कहा जाता है कि पानी कम पिएं तो अब उसमें देखा जाता है कि उनके सांस तो नहीं उखड़ रहा जिसको कहते हैं कि सांस ख़राब हो रहा है चलते हुए सोते हुए लेटे हुए तो ये एक सिंपल मेजर है जिससे आप देख सकते हो कि पानी मैंने कितना लेना है और यूरिन आपको रेगुलर आ रहा है
2: जी
0: तो एक लीटर डेढ़ लीटर इस तरह आप कम करें
2: ठीक
0: तो वो अपने हार्ट डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करते रहें कि कितना पानी मुझे चाहिए तो हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है स्पेशली जो हार्ट पेशेंट हैं लिवर के पेशेंट्स हैं
2: जी.
0: वो उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा पानी पिए एक लीटर डेढ़ लीटर तो उनकी कंडीशन के मुताबिक उनको लेना चाहिए
2: और ये कि डॉक्टर के मुताबिक जितना वो बताएं आप उसके
0: उसके मुताबिक
2: ठीक है
0: पानी लें
2: बिल्कुल लिसनर्स आप दोबारा ये प्रोग्राम सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम पेश किया जाता है तो आप रिपीट में सुन सकते हैं जी डॉक्टर साहब कोई मैसेज
0: जी बिल्कुल ये आपके प्रोग्राम की निस्बत से यही मैसेज है कि आजकल के मौसम में अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें अननेसेसरी मेडिकेशन पेन किलर स्पेशली यूज़ ना करें और स्पेशली जो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे
2: तो वो उसमें भी केयरफुल
0: उसको हाँ केयरफुली मॉनिटर करें
2: जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जो कि न्यूफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं फौजे शफीक और हमारे साथ रहे असले भंडारा इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम कतर और दुनिया भर में हमें सुनने वाले तमाम लिसनर्स को FM 107 कतर का प्यार भरा सलाम. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एक बहुत ही खास, पावरफुल और दिल को छू लेने वाला शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स. साथियों, कभी आपने ये सोचा है कि एक फुटबॉल ग्राउंड, एक क्रिकेट पिच या एक रनिंग ट्रैक सिर्फ गेम की जगह नहीं होते, बल्कि वो मुकाम होते हैं जहां ख्वाबों को पर लग जाते हैं, जहां एक छोटी सी लड़की पहली बार रेस जीतकर सिर्फ मेडल नहीं अपना कॉन्फिडेंस भी जीतती है, जहां एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ पॉइंट का गेम नहीं होता बल्कि सोसाइटी की सोच को चेंज करने का नाम बन जाता है. आज का हमारा शो ऐसी ही कहानियों का नाम है, उन लड़कियों के नाम है जो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं खेल रही बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी की सोच को तोड़ रही हैं. वो लड़कियां जो ग्राउंड पर उठकर दुनिया को ये कह देती हैं कि भाई हम भी कर सकते हैं. साथियों, एक वक्त था जब कई जगहों पर लोग कहते थे कि लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, वो स्पोर्ट्स में क्या करेंगी, इतनी धूप में इतनी मेहनत, ये फील तो बॉयज के लिए है ना. लेकिन फिर किसी स्कूल टूर्नामेंट में एक लड़की ने रेस जीती, किसी ने वॉलीबॉल ट्रॉफी उठाई, किसी ने मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में मेडल जीता और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच तब्दील होने लगी. और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब एक लड़की ट्रॉफी लेकर घर आती है ना, तो सिर्फ उसका मेडल नहीं चमकता, पूरा घर चमक उठता है. पेरेंट्स की आंखों में फखर होता है, मोहल्ले में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, स्कूल में उसके नाम की अनाउंसमेंट होती है और फिर दूसरी छोटी छोटी बच्चियां उसे देख कर ये सोचती हैं कि भाई अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. मतलब ये कि मोटिवेशन मिलता है दूसरों को भी. देखिए साथियों, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं होते, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, डिसिप्लिन और टीम वर्क का लेसन देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लड़कियों की एक आवाज बन जाते हैं. आज दुनिया भर में विमेन एथलीट सिर्फ मेडल्स नहीं जीत रही, वो रिस्पेक्ट जीत रही हैं, वो स्टीरियोटाइप्स को हरा रही हैं, वो ये प्रूव कर रही हैं कि स्ट्रेंथ सिर्फ मसल का नाम नहीं है, हिम्मत का नाम है. देखिए, सोशल मीडिया ने भी इस सफर को ना काफी पावरफुल बना दिया है. आज जब कोई यंग एथलीट अपनी ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड करती है ना या टूर्नामेंट जीत कर फोटोज शेयर करती है, तो हजारों लड़कियां इंस्पायर होती हैं. एक सिंपल सा पोस्ट किसी का ड्रीम बन सकता है. कतर हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो, दुनिया का कोई भी कोना, आज लड़कियां स्पोर्ट्स का सीन बदल रही हैं. स्कूल्स और कॉलेजेस में फीमेल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, फैमिलीज एनकरेज कर रही हैं अपनी बच्चियों को और कम्युनिटीज आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ रही हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एम्पावरमेंट है. लेकिन साथियों, ये जर्नी हमेशा तो ऐसी नहीं थी ना. कई लड़कियां आज भी क्रिटिसिज्म फेस कर रही हैं भाई. कभी कभी फैसिलिटीज कम होती हैं, कभी सपोर्ट कम मिलता है और कभी सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है. मगर फिर भी हर सुबह कोई ना कोई लड़की अपने जॉगर्स पहनती है, ट्रेनिंग ग्राउंड में उतरती है और अपने ख्वाबों को जिंदा रखती है, क्योंकि उसे पता होता है ना कि जीत सिर्फ मेडल की नहीं होती, जीत उस दिन होती है जब सोसाइटी का एक माइंडसेट चेंज होता है. जरा इमेजिन कीजिए ना, एक छोटी सी लड़की टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है, स्टेज पर उसका नाम अनाउंस होता है और ऑडियंस, ओ भाई, ऑडियंस तालियां बजा रही है, शोर मचा रही है उसके नाम का. उस मोमेंट में सिर्फ एक विनर सेलिब्रेट नहीं होता बल्कि फ्यूचर सेलिब्रेट होता है एक सोसाइटी का. आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन्हीं पावरफुल मोमेंट्स की, उन्हीं विमेन एथलीट की जो मिलियंस ऑफ मिलियंस गर्ल्स के लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं. हम जानेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जेंडर नॉर्म्स को रीशेप कर रहे हैं, कैसे एक सिंपल गेम कॉन्फिडेंस और करेज की कहानी बन जाता है और कैसे स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स को सिर्फ स्ट्रांग नहीं, फियरलेस बनाता है. हम बात करेंगे फैमिली सपोर्ट की, कम्युनिटी प्राइड की और उन इमोशंस की जो तब फील होते हैं जब एक बेटी अपने मुल्क, अपने स्कूल या अपनी टीम को रिप्रेजेंट करती है. क्योंकि साथियों, जब एक लड़की फील्ड में उतरती है ना, तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके ड्रीम्स होते हैं, उसके साथ उसके पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं और उन तमाम लड़कियों की होप्स होती हैं जो अभी तक सिर्फ ऑडियंस में बैठी हुई हैं. तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग सफर के लिए, एक ऐसी जर्नी जहां पसीना भी है, स्ट्रगल भी है, इमोशंस भी हैं और विक्ट्री का वो एहसास भी है जो दिल को गूज़बम्प्स दे देता है. आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स, only on FM 107. मैं हूँ आपकी होस्ट सफा. और हाँ, अगर आप भी किसी इंस्पायरिंग फीमेल एथलीट को सपोर्ट करते हैं और अगर आपके घर में भी कोई स्पोर्ट्स स्टार तैयार हो रही है तो हमें जरूर मैसेज कीजिएगा. FM 107 हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar. और चाहें तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर. सो साथियों, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी एक चैंपियन की, जो सिर्फ गेम नहीं जीती, दुनिया की सोच भी जीत गई. साथियों, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की दुनिया में अक्सर स्कोर बोर्ड्स हेडलाइंस बना जाते हैं, लेकिन कुछ एथलीट्स ना ऐसे होते हैं जो स्कोर बोर्ड से कई ज्यादा बड़ी स्टोरीज लिख जाते हैं. आज की हमारी स्टोरी भी एक ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट की है, एक ऐसी प्लेयर जिसने सिर्फ टेनिस नहीं खेली बल्कि साउथ एशिया में विमेन्स टेनिस का पूरा नैरेटिव बदल कर रख दिया. आज हम बात करने वाले हैं सानिया मिर्जा की. भाई, मेरी तो ये बहुत ज्यादा फेवरेट है. एक ऐसा नाम जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में विमेन एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस की मिसाल बन गया. देखिए, मुझे लगता है जब भी साउथ

एशियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री लिखी गई ना, सानिया मिर्जा का नाम उसमें बोल्ड लेटर्स में नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं जीते, उन्होंने बैरियर्स तोड़े, उन्होंने वो दरवाजे खोले जो बहुत सी यंग गर्ल्स के लिए पहले बंद समझे जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका सफर सिर्फ टेनिस कोर्ट तक लिमिटेड नहीं था, उनका सफर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट भी था। अच्छा, ये कैसे था मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जरा सोचिए ना, जरा इमेजिन कीजिए, एक यंग सी लड़की रैकेट हाथ में लिए टेनिस कोर्ट में खड़ी है। आसपास एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स को सीरियस करियर माना ही नहीं जाता, जहाँ लोग पहले सवाल पूछते हैं, स्पोर्ट्स क्यों भाई, ऐसा क्यों, इतना एक्सपोजर क्यों, लड़कियां इतना ट्रैवल कैसे करेंगी। लेकिन फिर भी ये वो लड़की थी जो प्रैक्टिस करती थी, क्रिटिसिज्म सुनती थी, और फिर क्या होता है, इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस, इतना कुछ, और फिर उसके बाद एक दिन दुनिया उसी लड़की को सेंटर कोर्ट पर देख रही थी। ये सिर्फ एक एथलीट की विक्ट्री नहीं होती, ये माइंडसेट का डिफीट होता है साथियों। देखिए, अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे देखा जाए ना, तो मैं कहूंगी कि हम सानिया मिर्जा के करियर को देखते हैं, ठीक है, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर देखा जाए तो भाई उनकी इम्पोर्टेंस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में मेजर नहीं की जा सकती। हाँ, उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनी, काउंटलेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया का नाम रोशन किया, लेकिन उनकी रियल सक्सेस नंबर से कहीं ज्यादा इम्पैक्ट में नजर आती है साथियों। देखिए, जब सानिया ने इंटरनेशनल लेवल पर जीतना शुरू किया ना, तब साउथ एशिया की बहुत सारी फैमिलीज ने पहली बार ये सोचा कि शायद उनकी बेटी भी स्पोर्ट्स में करियर बना सकती है। देखें, एक जमाना था जब साउथ एशिया में ना क्रिकेट को ऑलमोस्ट रिलीजन की तरह देखा जाता था और बाकी स्पोर्ट्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब यूं समझ लें कि भाई लोग पागल थे, दीवाने थे लोग क्रिकेट के पीछे, और वहीं वुमेन्स स्पोर्ट्स वो तो और भी पीछे थे भाई। लेकिन फिर सानिया मिर्जा टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आई, पावरफुल सर्व, फियरलेस एटीट्यूड और फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ। भाई, मुझे याद है जब मैं सानिया मिर्जा के मैचेस देखा करती थी ना, तो आई वाज लाइक टोटली मेरी नजर टीवी पर होती थी एंड आई लीस्ट केयर के आसपास क्या चल रहा है, मेरी नजर सिर्फ उनके प्ले पर होती थी, वो जिस तरह से खेलती थी। उस वक्त बहुत सी यंग गर्ल्स ने पहली बार टेनिस रैकेट को सिर्फ एक गेम का इक्विपमेंट नहीं देखा था, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा था। अच्छा, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे ना स्ट्रगल होती है बाबू, ऐसा नहीं है कि किसी ने रात को सोचा और दिन में वो सुपरस्टार बन गया। सानिया मिर्जा की भी ऐसी ही स्टोरी है, उनकी स्टोरी कोई अलग नहीं है, उनके पास भी उतनी ही स्ट्रगल्स थी। उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया, उनके कपड़ों पर कमेंट्स हुए, उनके करियर चॉइस पर डाउट्स हुए, डिबेट्स हुई, उनकी पर्सनल लाइफ तक हेडलाइंस का हिस्सा बनी। मगर रिमार्केबल बात पता है क्या थी? ओ भाई, रिमार्केबल बात ये थी कि वो हर कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद वो लड़की कोर्ट पर फोकस करती थी, उसका फोकस और कुछ नहीं था। देखिए, ये जो क्वालिटी होती है ना, ये ग्रेट एथलीट्स को ऑर्डिनरी प्लेयर्स से अलग बना देती है। प्रेशर को अब्सॉर्ब करना, क्रिटिसिज्म के नॉइस को साइड पर रख देना और परफॉर्मेंस से जवाब देना। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं यही कहूंगी कि भाई सानिया मिर्जा ने साउथ एशियन फीमेल एथलीट्स को एक नई आइडेंटिटी दी। अच्छा, मामला पता है क्या था? उनसे पहले ना फीमेल एथलीट्स को अक्सर डिफेंसिव टोन में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन सानिया अलग थी, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन भाई, और अनअपोलोजेटिक, बिल्कुल एम्बिशन से भरी हुई। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि साउथ एशियन वुमेन सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करती, भाई डोमिनेट कर सकती है। तो साथियों, स्पोर्ट्स का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट यही होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। जब एक यंग लड़की टीवी पर किसी फीमेल एथलीट को जीतते हुए देखती है ना, तो उसे लगता है कि भाई उसका ड्रीम अनरियलिस्टिक नहीं है। और सानिया मिर्जा ने एग्जैक्टली यही किया, उन्होंने मिलियंस ऑफ गर्ल्स को इंस्पायर किया कि वो कोर्ट पर कॉन्फिडेंस के साथ उतरे, कि वो सिर्फ ऑडियंस में बैठकर तालियां नहीं बजाएं, वो वाली जनरेशन नहीं बने, बल्कि खुद स्पॉटलाइट का हिस्सा भी बने। और मुझे याद है, मैंने भी अगर कभी टेनिस में इंटरेस्ट लिया था ना, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ सानिया मिर्जा, क्योंकि हमारी अपनी अपनी लगती थी एंड द थॉट वॉज वेरी रिलेटिव, इफ शी कैन देन आई कैन ऑल्सो, वेल आई एम नॉट दैट गुड, बट एट लीस्ट आई लव दैट स्पोर्ट बिकॉज

और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझना जरूरी है साथियों, जब कोई मेल एथलीट सक्सेसफुल होता है ना तो उसकी सक्सेस को नॉर्मल समझा जाता है। आदमी है, खेल रहा है, जानदार है, फिजिक है, सब नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन जब साउथ एशियन वुमेन के बारे में बात करते हैं ना, जब साउथ एशिया की कोई फीमेल एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर जीतती है तो उसकी विक्ट्री सोशल चेंज बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मेडल नहीं जीत रही होती, वो स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रही होती है, वो फैमिलीज को कन्विंस कर रही होती है, वो यंग गर्ल्स को करेज दे रही होती है। देयर इज अ लॉट बिहाइंड, हम कहते हैं ना बैक स्टेज, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बैक स्टेज। तो एग्जैक्टली यही काम सानिया मिर्जा ने भी किया। सानिया मिर्जा की जर्नी हमें ये भी सिखाती है कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, सानिया मिर्जा की बॉडी लैंग्वेज ना कोर्ट पर हमेशा पावरफुल होती है, चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, उन्होंने कभी अपने आप को वीक प्रोजेक्ट नहीं किया। और यही लेसन लाइफ में भी अप्लाई होता है साथियों। जब लड़कियां अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करती है ना, सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता उनकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है। आज भी अगर आप किसी टेनिस एकेडमी में जाएं ना, तो भाई आपको बहुत सी यंग गर्ल्स मिलेंगी जो सानिया मिर्जा को अपना रोल मॉडल समझती हैं। कुछ उनकी प्लेइंग स्टाइल कॉपी करती हैं, कुछ उनका कॉन्फिडेंस एडमायर करती हैं, और कुछ सिर्फ इतना फील करती हैं कि अगर सानिया ग्लोबल स्टेज तक पहुंच सकती हैं तो वो भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकती हैं। विमेन इन स्पोर्ट्स का आज का एपिसोड सिर्फ एक एथलीट की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है, एक स्टोरी है, एक ऐसी मूवमेंट जो कहती है कि गर्ल्स को सिर्फ परमिशन नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, सपोर्ट भी मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा बिलीफ मिलना चाहिए। तो साथियों, आज जब आप ये शो सुन रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, एक लड़की को ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज तक पहुंचने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, कितना पेशेंस चाहिए होता है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और कितना सेल्फ बिलीफ। और अगर आप घर में, स्कूल में या कम्युनिटी में कोई यंग गर्ल स्पोर्ट्स का ड्रीम देखती हैं, तो शायद आपके ख्वाबों को सिर्फ एक चीज की जरूरत हो, किसी का ये कहना कि हाँ भाई तुम भी कर सकती हो। तो साथियों, आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 कतर। मैं हूँ सफा और हम चाहते हैं कि आप भी हमारी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। हमें मैसेज कीजिए 666-222-107 पर। आपके नजदीक स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स की जिंदगी कैसे चेंज कर सकता है, जरा हमें बताइए मैसेज कर, या चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, विच इज @FM107 कतर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद बात करेंगे सानिया मिर्जा की स्टोरी पर। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: RJ Safa ke saath. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
1: वेलकम बैक साथियों, अस्सलाम वालेकुम. कतर और दुनिया भर में हमें सुनने वाले तमाम लिसनर्स को एफएम 107 कतर का प्यार भरा सलाम. मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 कतर. सोर्स और वो शो जहां हम सिर्फ स्कोर्स और ट्रॉफीज के बारे में बात नहीं करते बल्कि उन तब्दीलियों के बारे में भी बात करते हैं या उन कहानियों के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए सोसाइटीज को रीशेप कर रही हैं. आज का हमारा ये शो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन हेडलाइंस की जो क्वाइटली लेकिन स्टेडिली कतर में विमेंस स्पोर्ट्स का फ्यूचर चेंज कर रही हैं, खासकर विमेंस टेनिस का. देखें, कतर को अक्सर दुनिया फुटबॉल स्टेडियम्स, फॉर्मूला वन एक्साइटमेंट और मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स की वजह से जानती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो एक और साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है और वो रेवोल्यूशन है गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. पिछले कुछ सालों में कतर ने विमेंस एथलेटिक्स, फिटनेस और रैकेट स्पोर्ट्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई है. टेनिस कोर्ट्स जो पहले मोस्टली एडल्ट रिक्रिएशनल स्पेसेस समझे जाते थे, आज उन पर स्कूल गर्ल्स, टीनेजर एथलीट्स और यंग फीमेल ट्रेनीज रेगुलर प्रैक्टिस करती नजर आती हैं. स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक कतर में स्कूल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन स्टेडिली ग्रो कर रही है, स्पेशली गर्ल्स टेनिस प्रोग्राम्स में. दोहा और दूसरे अर्बन एरियाज के कई स्कूल्स ने स्ट्रक्चर्ड कोचिंग सेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं जहां गर्ल्स को अर्ली एज पर टेनिस फंडामेंटल सिखाए जाते हैं. फुटवर्क हो गया, रैकेट्स, कंट्रोल, डिसिप्लिन और मैच टेम्परेचर.

एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ स्कूल हॉबी नहीं रही, ये अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। साथियों, आज कतर में डजन्स ऑफ प्राइवेट एंड कम्युनिटी बेस्ड अकेडमीज फीमेल टेनिस कोचिंग ऑफर कर रही हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सर्कल्स में ये एस्टिमेट किया जाता है कि पिछले 8 से 10 सालों में जूनियर गर्ल्स रैकेट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ है, स्पेशली पोस्ट 2015 एरा में पेरेंट्स का एटीट्यूड काफी पॉजिटिव हुआ है। पहले फैमिलीज स्पोर्ट्स को सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी समझती थी, लेकिन अब कई पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेकर स्पोर्ट्स के लिए कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनको वो बिल्ड कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। लीडरशिप और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। देखिए, कतर टेनिस फेडरेशन का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन ने विमेन और यूथ पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए जूनियर इवेंट्स, स्कूल आउटरीच और कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम पर फोकस किया है। कतर इंटरनेशनल टेनिस होस्टिंग का हब भी बन चुका है। जब वर्ल्ड क्लास विमेन एथलीट्स दोहा में कम्पीट करती हैं ना, तो लोकल गर्ल्स को लाइव एक्सपोजर मिलता है। वो सिर्फ टेलीविजन पर स्टार्स को नहीं देखती, बल्कि सेम कोर्ट्स पर प्रैक्टिस करने का ड्रीम भी डेवलप करती हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दोहा रेगुलरली इंटरनेशनल विमेन्स टेनिस टूर्नामेंट्स होस्ट करता रहता है, जहां टॉप रैंक्ड फीमेल एथलीट्स पार्टिसिपेट करती हैं। और ऐसे इवेंट्स का साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जब एक यंग कतरी या एक्सपेक्ट गर्ल स्टेडियम में बैठ कर इंटरनेशनल विमेन प्लेयर को देखती है ना, तो उसके लिए भी विमेन्स स्पोर्ट्स सडनली पॉसिबल लगना शुरू हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन

कॉन्टेक्स्ट में कतर ने बहुत फास्ट डेवलपमेंट दिखाई है. एयर कंडीशन इंडोर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल हार्ड कोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सर्टिफाइड कोचिंग एनवायरमेंट्स लड़कियों की पार्टिसिपेशन को सेफ और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि फैमिलीज तभी अपनी डॉटर्स को जो है ना वो स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंटली भेजती हैं जब उन्हें पता हो कि भाई एनवायरमेंट जो है जहाँ पे वो जा रही है वो प्रोफेशनल और सिक्योर नजर आए. अच्छा, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, माइंडसेट भी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है ना. आज कई स्कूल्स गर्ल्स इंटर स्कूल टेनिस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं. कुछ इंस्टीट्यूशंस एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स में गर्ल्स टेनिस कैटेगरी को प्रोमिनेंट पोजिशन देते हैं. अच्छा, ये सुनने में बड़ा छोटा सा स्टेप लगता है लेकिन सोशल इम्पैक्ट के परस्पेक्टिव से ये बहुत मीनिंगफुल है. देखिए, ग्लोबली अगर हम विमेंस टेनिस पार्टिसिपेशन को देखें ना, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टडीज रिपीटेडली शो करती हैं कि विमेन रैकेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ग्रो कर रही है, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट और साउथ एशियन डायस्पोरा कम्युनिटीज में. अच्छा, कतर की मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन ने भी इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है. इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, अरब और यूरोपियन कम्युनिटीज की फैमिलीज इंक्रीजिंगली डॉटर्स को स्पोर्ट्स एकेडमीज में एनरोल कर रही हैं. इस कल्चरल मिक्स ने विमेन टेनिस को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है. स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि टेनिस स्पेशली गर्ल्स के लिए अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स बनता जा रहा है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल ग्रोथ क्लियरली विजिबल होती है. हर मैच सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, हर ट्रेनिंग सेशन डिसिप्लिन क्रिएट करता है और हर टूर्नामेंट पब्लिक रिकॉग्निशन का सोर्स बन सकता है. जब भी कोई यंग गर्ल मेडल या ट्रॉफी लेकर घर आती है ना, तो उस सक्सेस का इमोशनल इफेक्ट पूरी फैमिली पर पड़ता है. साथियों, कतर में कम्युनिटी बेस्ड वुमेन फिटनेस और टेनिस प्रोग्राम भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. दोहा के कई स्पोर्ट्स क्लब्स बिगिनर्स टू एडवांस फीमेल कोचिंग सेशंस ऑफर करते हैं. कुछ एकेडमीज गर्ल्स ओनली ट्रेनिंग आवर्स भी प्रोवाइड करती हैं ताकि बिगिनर्स कंफर्टेबल फील करें. ये इंक्लूसिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सिर्फ एलीट एथलीट से नहीं होता, पार्टिसिपेशन बेस स्ट्रॉन्ग होने से भी होता है. अच्छा, एक और, उस वक्त इंडिया में विमेंस टेनिस का सीन बहुत लिमिटेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं था, फीमेल टेनिस रोल मॉडल्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे, लेकिन सानिया के फादर ने अर्ली स्टेज पर ही उनका टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया था. और वही स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी एथलीट की सक्सेस में फैमिली सपोर्ट बहुत क्रूशियल होती है और सानिया मिर्जा की स्टोरी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है. उनके फादर सिर्फ पेरेंट नहीं थे, कोच, मोटिवेटर और मैनेजर भी थे. उन्होंने फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस भी किए ताकि सानिया प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके. इंटरनेशनल जूनियर टूर्नामेंट्स चीप नहीं होते साथियों, ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, कोचिंग होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, कोर्ट फीस होती है, सब कुछ कॉस्टली होता है, सस्ता नहीं होता. लेकिन मिर्जा फैमिली ने टैलेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना बिल्कुल भी नहीं, नो. हाँ, लेकिन लिसनर्स, जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी आपको सुनने में लग रही है. इंडिया और साउथ एशिया के सोशल एनवायरमेंट को अगर रियलिस्टिकली देखा जाए ना, तो 90s और 2000s में गर्ल्स स्पोर्ट्स को उतनी एनकरेजमेंट नहीं मिलती थी जितनी आज मिलती है, ये बात तो तय है. देखें, एकेडमिक प्रेशर अलग था, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस अलग थी. लोग उनसे पूछा करते थे कि भाई, लड़की प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कितना ही आगे चली जाएगी, फ्यूचर क्या होगा इसका, इतना ट्रैवल कैसे करेगी. ये वो सवाल थे जो बहुत सी टैलेंटेड लड़कियों के ड्रीम्स को स्टार्ट होने से पहले ही रोक दिया करते थे. मगर सानिया मिर्जा डिफरेंट थी भाई, कोर्ट उनकी लैंग्वेज बन गया था. जब वो टेनिस खेलती थी तो उनके शॉट्स कॉन्फिडेंस स्पीक करते थे. जूनियर सर्किट में ही उन्होंने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी थी. इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन ने उनको ग्लोबल एक्सपोजर दिया. 2003 में विंबलडन गर्ल्स डबल टाइटल जीतना उनके करियर का अर्ली मेजर माइलस्टोन था. ये सिग्नल था कि भाई, साउथ एशिया से एक सीरियस वुमेन टेनिस टैलेंट उभर रहा है. और फिर भाई, फिर आया वो फेज जहां सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाना स्टार्ट की, यानी कि 2005 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है. इसी साल उन्होंने हैदराबाद ओपन जीत कर हिस्ट्री क्रिएट की. वो पहली इंडियन वुमेन बनी जो WTA सिंगल्स टाइटल जीतने में सक्सेसफुल हुई. ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ना ना ना ना भाई, ये इंडियन वुमेन्स टेनिस के लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट था.

ने लिखा था कि सानिया मिर्जा ने इंडिया टेनिस को नए लेवल पर पहुंचा दिया है और ऑनेस्टली वो एग्जैगरेशन नहीं थी। पहली बार साउथ एशिया में यंग गर्ल्स टेनिस रैकेट को सीरियसली देख रही थी। टेनिस सडनली एलीट फॉरेन स्पोर्ट्स नहीं लग रहा था बल्कि अचीवेबल ड्रीम लगना शुरू हो गया था। अच्छा, सानिया की प्लेइंग स्टाइल भी बहुत यूनिक थी। वो डिफेंसिव प्लेयर नहीं थी, का पावरफुल फॉरवर्ड उनकी आइडेंटिटी बन चुका था। एग्रेसिव बेसलाइन गेम, फियरलेस रिटर्न्स और अटैकिंग माइंडसेट ने उनको स्टैंड आउट एथलीट बनाया। वो कॉशियसली सर्व करने के लिए नहीं खेलती थी, डोमिनेट करने के लिए खेलती थी। इसी वजह से मीडिया और फैंस दोनों उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। लेकिन जितनी रैपिडली फेम आई उतनी ही रैपिडली क्रिटिसिज्म भी आया जेब में। देखिए भाई, साउथ एशियन फीमेल एथलीट्स को अक्सर परफॉर्मेंस के साथ साथ अपीयरेंस और पर्सनल लाइफ पर भी जज किया जाता है और सानिया मिर्जा ने भी यही इंटेंसिटी फेस की। कभी उनके आउटफिट्स हेडलाइन बने, कभी उनकी ऑप्शंस कंट्रोवर्सीज का पार्ट बने, लेकिन रिमार्केबल बात ये थी कि वो प्रेशर के बावजूद कम्पीट कर रही थी, उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा। मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ग्रेटनेस सिर्फ ट्रॉफीज से मेजर नहीं होती, प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी से होती है और सानिया मिर्जा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर हैंडल किया भाई। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर पब्लिक अपीयरेंस और हर इंटरनेशनल मैच में उनको सिर्फ एथलीट नहीं सिंबल के तौर पर देखा जा रहा था। करियर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो भाई नंबर्स खुद स्टोरी सुना देते हैं। तो सानिया मिर्जा ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते जिनमें विमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स कैटेगरीज शामिल हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जैसे प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट्स में टाइटल हासिल किए और हाँ, 2015 में वो विमेंस डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनी और ये अचीवमेंट हासिल करने वाली पहली इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर थी। अच्छा, उनकी पार्टनरशिप विद मार्टिना हैंगिस भी विमेंस डबल हिस्ट्री की मेमोरेबल पार्टनरशिप में काउंट की जाती है। अच्छा, दोनों को मीडिया ने संतीना निकनेम दिया। 2015 से 2016 के दौरान उन्होंने 40 से ज्यादा कंसेक्यूटिव मैचेस जीते और मल्टीपल मेजर टाइटल्स अपने नाम किए। अच्छा, ये डोमिनेंस ना किसी भी लेवल पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानी जाती है। लेकिन लिसनर्स, सानिया की स्टोरी सिर्फ स्टैटिस्टिक तक लिमिटेड नहीं है, उनकी रियल अचीवमेंट सोशल इम्पैक्ट है। साउथ एशिया में मिलियंस ऑफ गर्ल्स ने उनकी वजह से स्पोर्ट्स को डिफरेंटली देखना स्टार्ट किया। पहले फैमिलीज, ज्यादा विजिबल मत बनो, सेफ रहो, लेकिन सानिया ने एक डिफरेंट नैरेटिव क्रिएट किया। उन्होंने प्रूव किया कि कॉन्फिडेंस परमिशन से नहीं, परफॉर्मेंस से बिल्ड होता है। जब वो टेनिस कोर्ट पर पावरफुल फॉरहेड मारती थी तो वो सिर्फ ओपोनेंट को चैलेंज नहीं कर रही होती थी, वो स्टीरियोटाइप को भी चैलेंज कर रही होती थी। 2005 में जब उन्होंने हैदराबाद ओपन जीतकर WTA सिंगल्स टाइटल हासिल किया तो वो पहली इंडियन वुमेन बनी जो ये अचीवमेंट हासिल कर सकी। ये विक्ट्री सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नंबर नहीं देती, ये साउथ एशियन वुमेन एथलीट्स के लिए साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। और लिसनर्स, कॉन्फिडेंस कभी भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, इसके पीछे होता है डिसिप्लिन। सानिया मिर्जा का पूरा करियर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, रेपिटेशन और रिलेंटलेस फोकस का एग्जाम्पल है। रिस्पेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो रिस्पेक्ट ये वो चीज है जो सानिया मिर्जा ने ग्लोबली अर्न की। और रिस्पेक्ट सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस से मिलती है। करियर के दौरान उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया, इंजरीज फेस की, मीडिया प्रेशर फेस किया, लेकिन फिर भी परफॉर्म करती रही। जब एथलीट्स एडवर्सिटी के बावजूद कमबैक करते हैं तब दुनिया उन्हें सीरियसली लेना स्टार्ट कर देती है। मदरहुड के बाद कमबैक करना भी उनके करियर का इंस्पिरेशनल चैप्टर था। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कमबैक आफ्टर मैटरनिटी फिजिकली और मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन सानिया ने कमबैक करके टाइटल्स जीते और ये प्रूव किया कि विमेन एथलीट्स मल्टीपल आइडेंटिटीज बैलेंस कर सकती हैं, एथलीट भी, मदर भी और मेंटोर भी। अच्छा, अगर देखा जाए तो सानिया मिर्जा की लेगेसी को अगर समराइज करूं तो भाई मैं कहूंगी कि उन्होंने सिर्फ टेनिस मैचेस नहीं जीते, उन्होंने माइंडसेट्स चेंज किए, उन्होंने गर्ल्स को सेल्फ बिलीव दिया, उन्होंने मीडिया को विमेन्स स्पोर्ट्स को सीरियस कवरेज देने पर फोकस कराया। और साथियों, यही स्पोर्ट्स की रियल पावर है। कभी कभी एक एथलीट पूरी सोसाइटी की इमेजिनेशन एक्सपेंड कर देता है। और भाई, अगर दोहा या साउथ एशिया में कोई यंग गर्ल टेनिस एकेडमी ज्वाइन करती है, कॉन्फिडेंटली रैकेट शोल्डर पर उठाकर कोर्ट में एंटर करती है, तो उस मोमेंट में कहीं ना कहीं सानिया मिर्जा का इन्फ्लुएंस भी एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि उन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया है, वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती रही। पर सानिया मिर्जा ने हमें ये सिखाया कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए हिम्मत, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ को भी सामने रखना जरूरी होता है। हर वो लड़की जो आज किसी स्पोर्ट फील्ड पर खड़ी है ना, वो सिर्फ गेम नहीं खेल रही, वो फ्यूचर लिख रही है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ इजाजत दीजिए अपनी होस्ट सफा को। आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107। तो भाई, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इन

0: सपोर्टिंग वुमेन इन स्पोर्ट्स और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट एफएम 107 कतर। दिल से देसी।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ एफएम 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: क्रिकेट हो
6: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स फोर रन।
5: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
7: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
5: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
7: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
8: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सब की खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

से भी जाए कुर्बान हम सौ दफा जानम हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम एक ऐसे मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, और ये एक ऐसा मौजू है जिसके दरवाज़े पर अमीर व गरीब, आलिम व जाहिल, ताकतवर व कमज़ोर सब बराबर खड़े होते हैं, और वो मौजू है दुआ। कुरान करीम दुआ के बारे में क्या कहता है? अल्लाह ताला अपने बंदों को दुआ की तरफ क्यों बुलाता है? और दुआ सिर्फ मांगने का नाम है या इससे कहीं बढ़कर कोई हकीकत है? तो चले जानते हैं कुरान मजीद में दुआ के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले जो बात सामने आती है सामने किराम, वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें दुआ का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, तुम्हारा रब फरमाता है मुझे पुकारो मैं

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतरी गोल्फर सालेह अल काबी के बारे में। या दोस्तों, सालेह अल काबी कतर के सबसे नुमाया गोल्फर्स में से एक हैं और उन्होंने मुल्क में गोल्फ के फरोख में अहम किरदार अदा किया है। दोहा में परवरिश पाने वाले सालेह ने कम उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया और जल्द ही कतर नेशनल गोल्फ टीम का हिस्सा बन गए। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और लगन ने उन्हें कतर के बेहतरीन एमेचर गोल्फर्स की सफ में ला खड़ा किया। सालेह अल काबी ने कई मरतबा कतर मास्टर्स में कतर की नुमाइंदगी की, जहां उन्हें दुनिया के मशहूर गोल्फर्स के साथ मुकाबला करने का मौका मिला। एंड ही गेन्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम प्लेइंग इन दिस कतर मास्टर्स, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिस रीजन। उनकी लंबी ड्राइविंग और कोर्स पर पुरसुकून मिजाज को उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से शुमार किया जाता है। 2025 में सालेह ने कतर ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने फाइनल राउंड में शानदार परफॉर्मेंस देकर टाइटल अपने नाम किया और इस फतह के जरिए कतर मास्टर्स के लिए भी क्वालिफाई किया। ये कामयाबी कतर गोल्फ के लिए फखर का लम्हा थी और उनकी सालों की मेहनत का सबूत भी। दोस्तों आज सालेह अल काबी कतर के नौजवान गोल्फर्स के लिए एक मिसाल है। उनका सफर यह दिखाता है कि लगन और मेहनत के जरिए कतर के खिलाड़ी भी बैन अक्वामी सतह पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। Are you ready? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद तरीके से अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। बहुत से अफराद बहुत जल्दी में वजन कम करने के लिए सख्त डाइट्स या गैर महफूज तरीके अपनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सेहतमंद और पायदार वजन में कमी आहिस्ता आहिस्ता और बैलेंस जो या मतवाजन आदत के जरिए हासिल होती है। वजन में इजाफे की सबसे जो बड़ी वजूहात हैं उनमें गैर मतवाजन गजा और इसी तरह जिस्मानी सरगर्मी यानी एक्सरसाइज की कमी, ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल, नाकाफी नींद और जहनी दबाव शामिल हैं। अच्छी खबर ये है कि चंद आसान तब्दीलियों लाकर आप अपने आप को सेहतमंद वजन की तरफ ले जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला कदम वो है बैलेंस डाइट। और वजन कम करने के लिए भूखा रहना ज़रूरी नहीं है। अपनी गिज़ा में फल, सब्जियां, दालें, अनाज और जो कम चिकनाई वाली प्रोटीन है वो शामिल कीजिए। तली हुई अशिया, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज़्यादा चीनी वाली गिज़ाओं का इस्तेमाल कम कीजिए। छोटी प्लेट इस्तेमाल करने से भी खाने की मकदार को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा अहम कदम वो है पानी ज़्यादा पीना। कई मरतबा हमें प्यास लगती है, लेकिन हम समझते ये हैं कि हमें भूख लग रही है। दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीने से जिस्म हाइड्रेट रहता है और गैर ज़रूरी खाने की ख्वाहिश कम होती है। और एक अहम जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो एक्सरसाइज जो है वो कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की आप तेज़ कदमों से आप एक्सरसाइज या वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए या फिर हल्की वर्जिश जो है वो भी वजन जो है कम करने में मदद देती है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल कीजिए और इस तरह अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रहिए। चौथा जो कदम है वो है अच्छी नींद, यानी क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर नींद की कमी हो तो फिर जिस्म के हार्मोन्स से मुतासिर होते हैं, जिससे हमारी भूख ज़्यादा हो जाती है। और बालिग जो अफराद हैं उन्हें रोज़ाना 7 से 9 घंटे की मायारी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। सेहतमंद वजन कम करने का मतलब है कि हर हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता वजन में कमी हो। फौरी नतीज के वादा करने वाली जो डाइट्स हैं अक्सर नुकसानदेह साबित होती हैं। तो नाश्ता हर किसी ना छोड़िए, खाना आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाइए, स्क्रीन के सामने खाने से गुरेज कीजिए। मीठे मशरूबात की बजाय पानी या बगैर चीनी वाले जो मशरूबात हैं या चाय है उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने वजन और आदत का बाकायदगी से आप जायजा लीजिए। लिसनर्स, याद रखिए कि वजन कम करना सिर्फ ज़ाहरी शक्ल का मसला नहीं है, बल्कि मजमूई सेहत को बेहतर बनाने का एक अहम जरिया है। छोटी लेकिन मुस्तकिल तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी कामयाबी का राज हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक आप सेहतमंद रहिए, एक्टिव रहिए और अपना ख्याल रखिए।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और एनर्जेटिक और हेल्दी लाइफस्टाइल एपिसोड। तो भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंपल और अच्छी सी हैबिट के बारे में जो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त मुफ्त का तो हम किसी का बुखार ना छोड़ें, तो ये तो हैबिट है भाई अच्छी वाली, लेकिन उसके फायदे हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए बहुत पावरफुल है। मुफ्त तो है लेकिन पावरफुल है, पॉजिटिव चीज है भाई। देखिए हम बात करेंगे आज वॉकिंग कल्चर प्रमोट करने की। साथियों जरा सोचिए, आपको पास वाली ग्रोसरी स्टोर जाना है जो कि मुश्किल से कितना 5 से 10 मिनट वॉक पर होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, नहीं भाई मैं जो ना गाड़ी में चला जाता हूँ, गर्मी है एसी चला लूंगा। आपने गाड़ी स्टार्ट की, एसी ऑन किया, शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव होती है तो आपने कहा ये जा वो जा मैं ड्राइव करके चला जाऊंगा। या फिर बिल्डिंग के अंदर ही लिफ्ट यूज कर लेते हैं हम अक्सर औकात, सिर्फ एक या दो

0: फ्लोर्स के लिए ही हम कहते हैं भाई एक या दो फ्लोर, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हूँ तो भाई फर्स्ट फ्लोर मैं सोचूंगी अरे नहीं भाई कौन ही नीचे जाए, अरे भाई ये तो सोचो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का कितना ही फासला है, बजाय इसके कि आप एलिवेटर यूज करो आप स्टेयर्स भी यूज कर सकते हो, अक्सर लोग नहीं करते। आपको लगता है कि ये चीज नॉर्मल है लेकिन जब ये एक डेली रूटीन बन जाती है ना तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और फ्यूल कंजम्पशन अननेसेसरीली बढ़ जाता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। देखिए वॉकिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी है। जब हम शॉर्ट डिस्टेंसेस वॉक करते हैं ना तो हम फ्यूल यूजेज जीरो कर देते हैं, इमिशंस एलिमिनेट कर देते हैं और अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। यानी एक ही हैबिट से दो बेनिफिट्स, एक के साथ एक मुफ्त। वैसे तो बड़ी प्रमोशंस आप जो है ना वो अवेल कर लेते हो, ये वाली नहीं करोगे? एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है, फ्यूल भी बच रहा है और एक अच्छी हैबिट भी मिल रही है, हेल्थ हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों बचते हैं इससे। देखिए इको स्विच सिचुएशन में क्या है, आइडिया बड़ा सिंपल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग को प्रेफरेंस दें, मतलब जब भी पॉसिबल हो गाड़ी के बजाय अपने पैरों को यूज करें ना, अच्छी बात है, इस्तेमाल करने के लिए है दो पैर। W11 पकड़ो यानी कि अपने दो पैर पकड़ो नहीं मतलब चलते हुए आप 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लें। अब बात करते हैं कि वॉकिंग कल्चर प्रमोट करने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा होता है हेल्थ इंप्रूवमेंट, वॉकिंग से हार्ट की जो हेल्थ है ना वो बेटर होती है, स्टेमिना इंप्रूव होता है आपका और ओवरऑल फिटनेस आपकी मेंटेन रहती है। दूसरा फायदा ये होता है कि फ्यूल इमिशंस जो होती हैं वो रिड्यूस होती हैं, कम ड्राइविंग का मतलब है कम पेट्रोल यूज और कम कार्बन इमिशंस। तीसरा फायदा स्ट्रेस रिडक्शन है, वॉकिंग स्पेशली आउटडोर एनवायरमेंट में मेंटल रिलैक्सेशन देती है। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को सुनकर तो जरूर मानोगे कि कॉस्ट सेविंग होती है, कम फ्यूल यूज का डायरेक्ट मतलब है कम मंथली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। अब एक रिलेटेबल बात यह है कि जरा सोचिए आप ऑफिस या मॉल जा रहे हैं और पार्किंग दूर मिलती है, अक्सर हम इरिटेट हो जाते हैं ना इस बात से कि भाई पार्किंग इतनी दूर है भाई मैं क्या करूं यार, लेकिन अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी समझे ना तो वो एक्स्ट्रा वॉकिंग स्टेप्स आपकी डेली एक्टिविटी की एक हेल्दी पार्ट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। देखिए दोहा जैसी सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, फुटपाथ्स और वॉकवेज का सिस्टम भी काफी डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ वॉकिंग कल्चर अडॉप्ट करना कंपैरेटिवली इजी और सेफ है, स्पेशली पार्क्स मॉल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में बहुत इजी है। अच्छा अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूँ ना इसके बारे में तो मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट डिस्टेंस रूल फॉलो करें। अगर आप यूं कह लें कि 5 से 15 मिनट या 10 से 15 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं ना, आपका कोई ऐसा फासला है जो 10 से 15 मिनट का, तो वॉक करने की कोशिश करें, कंफर्टेबल फुटवेयर यूज करें, वॉकिंग को इजी और एंजॉयबल बनाने के लिए प्रॉपर शूज इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स अडॉप्ट करें, गर्मी के वक्त के बजाय कूलर टाइमिंग्स चूज करें ना वॉकिंग के लिए, अपने ऊपर बर्डन ना बनाए ना उसे, फैमिली वॉक्स प्लान करें, इवनिंग वॉक को फैमिली एक्टिविटी बनाकर हैबिट डेवलप करें। अच्छा पांचवी चीज है स्टेप वॉकिंग यूज करें, मोबाइल या स्मार्ट वॉच से डेली स्टेप्स मॉनिटर करें ताकि मोटिवेशन रहे आपको। देखिए अगर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेगुलर वॉकिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिड्यूस करने में बहुत बड़ी हेल्प देती है और अर्बन प्लानर्स भी अब सिटीज को वॉकेबल सिटीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों कम हो। तो भाई अक्सर हम ये सोचते हैं कि वॉकिंग में टाइम ज्यादा लगता है लेकिन अगर हम डेली रूटीन को ऑब्जर्व करें तो शॉर्ट वॉक्स एक्चुअली मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी बूस्ट भी देती हैं। अच्छा अगर बिहेवियर चेंज देखा जाए ना तो जब आप वॉकिंग कल्चर को अडॉप्ट करते हैं ना तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा एक्टिव और इको कॉन्शियस बना रहे होते हैं, आप सिर्फ कम्यूटर नहीं रहते बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं अपनी हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए। तो भाई इको स्विच सिंपल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग को अपनी पहली चॉइस बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि आज कम से कम एक शॉर्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई करें जहां आप गाड़ी या ट्रांसपोर्ट के बजाय वॉक कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी वॉकिंग हैबिट फॉलो करते हैं तो किसी और को भी इसी हेल्दी हैबिट या इसी हेल्दी कल्चर के लिए इंस्पायर करें। साथियों याद रखें कि हर स्टेप सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं होता बल्कि हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों को इम्प्रूव करता है। जब हम वॉकिंग कल्चर प्रमोट करते हैं ना तो हम सिर्फ चल नहीं रहे होते बल्कि एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे। तो भाई इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: मैक्सिमम म्यूजिक मैक्सिमम फन ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Hamara aaj ka topic hai gusse ko control karna. Gussa ek fitri jazba hai. लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। गुस्से में इंसान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है जिसके लिए बाद में उसे पछताना पड़ता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार करें और अपने आप को कंट्रोल करें। थोड़ा रुक जाएं और गहरी सांस लेना भी मददगार होता है। गुस्सा कंट्रोल करना कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी ताकत की निशानी है। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वो असल में अपने नफ्स को जीत लेता है। आज का अमल ये है कि जब भी गुस्सा आए फौरन रिएक्ट ना करें बल्कि थोड़ा रुक कर सोचें और फिर जवाब दें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है ग्लोबल कॉम्पिटिशन।

0: फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होता है. न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है. इससे लोकल बिजनेसेस भी लर्न करते हैं और इम्प्रूव करते हैं. रिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का एक और एस्पेक्ट ब्रांडिंग भी है. जब कंट्री की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे सेफ एनवायरमेंट, मॉडर्न फैसिलिटीज और साथ ही स्किल्ड वर्कफोर्स, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन जाती है. इसीलिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हम कह सकते हैं कि ग्रोथ का गेटवे है. कतर का नेशनल विजन 2030 पहले से ये मान चुका है कि ऑयल और गैस हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे. इसीलिए विजन का स्ट्रॉन्ग फोकस पोस्ट ऑयल फ्यूचर पर है. जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और ये डाइवर्सिफिकेशन एजुकेशन, रिसर्च, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पर हैवी इन्वेस्टमेंट से हो रहा है. मिसाल के तौर पे आपको पता ही है कि यहाँ कतर पे एजुकेशन सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऑयल के अलावा इनकम रिसोर्सेज क्रिएट करता है. जब कंट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करती है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, तो इकोनॉमी फास्ट और सस्टेनेबली ग्रो करती है. विजन 2030 इसी ग्लोबल एक्सेलेंस को अचीव करने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग विजन है, जिसको आज हमने हाईलाइट किया. कल आऊंगी तो किसी और टॉपिक पे बात करूंगी. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूं दुहा वाला कबीर और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूं ना मैं, ये बड़ा ही क्रिएटिव स्कैम है और ये वक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कैम है, इसलिए आपको भी कदम से कदम मिलाना पड़ेगा अगर इन स्कैमर्स से आपको डील करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्कैम दरअसल है क्या। अब देखिए, स्कैमर्स हो चुके हैं काफी स्मार्ट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हो रही है स्मार्ट। पहले फेक मैसेजेस आ रहे थे, पता लग जाता था कौन से फेक मैसेजेस हैं कौन से नहीं है, क्योंकि आपकी जब कंपनी, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो आपका बैंक हो या आपकी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी हो, सबके मैसेजेस एक थ्रेड में आते हैं, एक साथ आते हैं। लेकिन अब स्कैमर्स हो चुके हैं और भी ज्यादा खतरनाक। अब वो इस्तेमाल करते हैं आप ही का डेटा आप ही के अगेंस्ट और आप ही की कंपनी के थ्रेड्स में आपको मैसेजेस मिलते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप जो है अपनी बैंक की ऐप खोलते हैं और खोलने के साथ आपको एक मैसेज आता है कि दैट यू हैव लॉग्ड इन टू योर फना फना बैंक। उसके बाद अगर आपने मैसेजेस ढंग से चेक नहीं भी किए, अब अपना अकाउंट चेक कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स यू डोंट चेक योर अकाउंट और फिर आपके पास कोई भी रीसेंट परचेज के बाद एक मैसेज आता है जो आपका बैलेंस दिखाता है। आप कहते हैं इतना खर्च कब हुआ, एंड देन द कंफ्यूजन बिगिंस और आप घबरा कर नीचे दी हुई लिंक को क्लिक कर लेते हैं क्योंकि भरोसा बन जाता है, सेम थ्रेड में मैसेज आएगा तो कौन चेक करेगा। मगर यही तो खेल है और यहीं से शुरू होता है ये खेल, और आपको लगेगा कि आप ही के बैंक ने आपको ये ऑफर दिया है, आप क्लेम कर लें फला फला प्रोडक्ट खरीदने, एंड देन यू गो एंड पुट इन योर कार्ड डिटेल्स और फिर खेल खत्म। इसलिए इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे आइडेंटिफाई करें, ये अब आप जानें। सबसे पहले अगर फंस गए, हो गया काम, तो अब क्या किया जाए। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आप फंस चुके हैं, सबसे पहले काम सीधा अपने बैंक का जो कार्ड है उसे आप करेंगे ब्लॉक, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। और उसके बाद जब आप नया कार्ड बनवाने जाएंगे तो मैसेजेस सबसे पहले बैंक को दिखाएं कि देखिए मेरे पास मैसेज आया है आप ही के दिए हुए थ्रेड में, प्लीज हेल्प मी आउट। सबसे पहले बैंक आपकी हेल्प करेगा, आपको एक नया कार्ड देगा और फिर आपके अकाउंट को आप ट्रैक करने के लिए हमेशा तैयार कैसे रहें आपको बैंक अपने अपने पॉलिसीज के हिसाब से बताएगा। मगर जो एक काम आपको करना है वो है आपके पासवर्ड को चेंज करना। ना सिर्फ एक नया कार्ड लेना काफी है बल्कि आपकी जो बैंक की ऐप है, नेट बैंकिंग है, उसका पासवर्ड भी चेंज आपको करना है। एंड अगर आप मुझसे सजेशन मांगे तो एक एक्स्ट्रा सजेशन में देना चाहूंगा, हर 2-3 हफ्ते में एक मरतबा अपना पासवर्ड चेंज जरूर क्या करें, इसे एक आदत बना लीजिए। और इससे होगा क्या, दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपना पासवर्ड याद रहेगा क्योंकि हम रिमेंबर मी करने में यकीन रखते हैं, देन वी फॉरगेट कि पासवर्ड आखिर था क्या, है ना। तो इसलिए ये आदत अगर आप बनाएंगे तो पासवर्ड आप चेंज भी करते रहेंगे, और दूसरी बात पासवर्ड याद भी रहेगा, आसानी रहेगी, एंड यू विल बी लेस वल्नरेबल। इन बातों को जरा ध्यान में रखें। अब एक और चीज, आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचाने कैसे इन स्कैमर्स को जो आपके ही जो कंपनी है उसके थ्रेड में मैसेजेस कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव, तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका यह है कि उसमें एक वेबसाइट जरूर आएगी। अगर उसमें लिंक और वेबसाइट आ गई है तो वो मैसेज आपके किसी काम का नहीं है, दैट इज अ फेक मैसेज। चलिए आपने वेबसाइट खोल ली, मान लेते हैं वेबसाइट खोलने के बाद आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो निहायत ही सस्ते रेट पे मिल रहे होंगे। यहां पे आपकी शक की घंटी बज जानी चाहिए क्योंकि आपसे सीधा बिना किसी दूसरे चीज की आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई। अच्छा, एक और तरीका आइडेंटिफाई करने का, आपका जब बैंक बैलेंस आपके मैसेजेस में आता है और आपको लगता है ये आपका करेक्ट बैलेंस नहीं है, वहीं रुक जाइए, कोई दूसरी तीसरी लिंक पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। डू टू थिंग्स, ईदर यू कॉल योर बैंक एंड चेक करें अगर आप श्योर हैं कि आपका बैंक बैलेंस इतना नहीं होना चाहिए, या फिर सीधा ऐप पे जाएं और अगर ऐप पे भी आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है तो सीधा अपनी नेट बैंकिंग को लिटरली ऑन अ लैपटॉप ऑन अ सिस्टम ओपन करें और वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअली में एक स्कैम था। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल और लोगों को इस बारे में बताएं क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन स्कैम बन चुका है जहां पे यू नीड टू बी रियली रियली स्मार्ट, क्योंकि ये मैसेजेस आपके जो कॉमन थ्रेड मैसेजेस होते हैं, ऑफिशियल मैसेजेस होते हैं फ्रॉम योर बैंक और एनी अदर ऐप, ये उसी को अटैक करते हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, और आपको सब कुछ बता दिया गया है, अब आपका काम है कि औरों को बताएं, एंड जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल एंड बी सेफ। स्कैम अलर्ट।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। सिर्फ एफएम 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो चाहे आप बाजार जा रहे हों, बिल पे कर रहे हों, या अपनी फैमिली के लिए मंथली खरीदारी कर रहे हों, भाई आज के दौर में ये चीज हर जगह आपको महसूस होती है, और वो क्या है? वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। भाई महंगाई एक ऐसा लफ्ज है जो हर इंसान के दिल में हल्का सा डर पैदा कर देता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो चीज कल 10 रुपए की थी वो आज 12 की हो गई और कल शायद 15 की हो जाए। ये सिलसिला चलती हुई जिंदगी का एक हिस्सा तो है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा आम आदमी की ही जेब पे पड़ता है।
0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: आपने देखा होगा दोस्तों, बाजार में एक छोटी सी सब्जी या फल के भाव बढ़ने से पूरे घर के खर्चे उलट जाते हैं। स्कूल की फीस, पेट्रोल की कीमत, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हत्ता के एक कप चाय की प्राइस भी बढ़ जाती है, और फिर हम सब कहते हैं अरे भाई महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात हम अपनी जिंदगी में इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। आज का हमारा पूरा प्रोग्राम इसी पे फोकस्ड है। मैं आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि सिंपल जिंदगी से जुड़े मसाइल भी बताऊंगा। हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में फर्क क्या है, और ये किस तरह से बाजार और घर दोनों पर असर डालता है। साथ ही हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप अपना मंथली बजट प्लान करते हैं। दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे, या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से है FM 107। दोस्तों कुछ

इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने एपिसोड में डिस्कस करेंगे, तो चलिए एक छोटी सी ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI क्या है। भाई ये बताता है कि रोजमर्रा की चीजों, खाना, कपड़े, सर्विस की कीमतों में कितनी तब्दीली आई है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है। दूसरे नंबर पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI, ये मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स के लेवल पर प्राइस की तब्दीली को मेजर करता है। इससे फ्यूचर महंगाई का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। नंबर तीन पे है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI। ये चीजों की कीमतों को होलसेल लेवल पर ट्रैक करता है। रिटेल प्राइसेस का आगाज अक्सर यहीं से होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो क्या होता है। इन्फ्लेशन बेसिकली एक रेट है जिससे चीजों की कीमत हर साल बढ़ जाती है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इसका मतलब ये है कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 106 की हो जाएगी। मतलब जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। अगर आपका पैसा इस रेट से ग्रो नहीं कर रहा तो असल में आपका पैसा कमजोर हो रहा है। भाई मान लीजिए आपके पास 500 रियाल हैं और आज आप उसमें एक ग्रोसरी फुल ऑफ बास्केट ले सकते हैं, लेकिन एक साल बाद वही बास्केट अगर 550 की हो गई तो ऑब्वियसली आपके 500 रियाल से अब वो नहीं आएगी। मतलब पैसा उतना ही है पर उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। यही इन्फ्लेशन का असल इम्पैक्ट है। पैसा वैल्यू लूज करता है और जिंदगी महंगी होती जाती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए आप अपना पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं। वहां आपको 5% रिटर्न मिलता है और आप सोचते हैं कि आपको बिना रिस्क के हर साल 5% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप 100 रियाल डालते हैं तो अगले साल वो 105 हो जाएगा। लेकिन असल मसला ये है कि वो 100 रियाल की चीज जो पहले मिल रही थी अगले साल 106 की हो जाएगी। तो यहाँ पैसा बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी हैसियत घट गई है। यानी असल में आप 1% घाटे में चले गए। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: भी यहाँ।
1: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
2: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। भाई जब डिमांड ज्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ पाती तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर लोगों की इनकम अचानक बढ़ गई और सब नए मोबाइल फोन खरीदने के लिए निकल गए लेकिन मार्केट में उतने फोन अवेलेबल ही नहीं है तो नेचुरली उनकी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़

जाती है। मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल महंगा हो गया, भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, या मजदूर की सैलरी ज्यादा देनी पड़ी, तो कंपनीज अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देती हैं। और वहीं तीसरे नंबर पर है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये एक साइकिल होती है, जब लोग देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो वो अपनी सैलरी और ज्यादा मांगते हैं, और जब सैलरी बढ़ जाती है तो कंपनीज प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देती हैं और फिर चीजें और महंगी हो जाती हैं, मतलब एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये तीन मेजर तरीके होते हैं इनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इन्फ्लेशन मेजर करने का क्या तरीका होता है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम फिर एक बास्केट ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब सरकार एक लिस्ट बनाती है, जैसे चावल, दाल, दूध, तेल, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, जो आम इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा है। फिर देखा जाता है कि इस बास्केट की टोटल प्राइस लिस्ट पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है। अगर बास्केट 1000 रियाल की थी और अब 1070 की हो गई, मिसाल के तौर पे, तो मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन 7% है। इसको कैलकुलेट करने के लिए CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज होता है। CPI बताता है आम कंज्यूमर के लिए प्राइस कितनी बढ़ी है और WPI बताता है होलसेल लेवल पे कितना बदलाव आया है। अब यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मसलन अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसों की वैल्यू हर साल 6% घट रही है। मतलब आपके 100 रुपए की ताकत एक साल बाद सिर्फ 94 रुपए के बराबर रह जाती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से इम्पैक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के जो हमारी जिंदगी को मुतासिर करते हैं। भाई सबसे पहला इफेक्ट होता है सेविंग्स पर। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रख रहे हैं और इंटरेस्ट रेट 4% है लेकिन इन्फ्लेशन 7% है, तो आप असल में 3% लॉस में हैं। मतलब पैसा तो बैंक में बढ़ रहा है लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। दूसरा असर होता है लोन्स पर। अगर आपने लोन लिया और इन्फ्लेशन हाई है तो आपके लिए लोन चुकाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि आप फ्यूचर में जो पैसा देंगे उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन ये बैंक्स के लिए नेगेटिव होता है। तीसरा इम्पैक्ट होता है डेली लाइफस्टाइल पर। भाई जब पेट्रोल, दूध, सब्जी, एजुकेशन और हेल्थ केयर सब महंगा हो जाता है तो आम आदमी की सैलरी उसके खर्च के साथ मैच नहीं करती और रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो इसीलिए सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है ताकि इकॉनमी स्टेबल रहे। तो दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्यों है। सबसे बड़ी वजह है मनी सप्लाई का बढ़ना। जब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है लेकिन गुड और सर्विसेज उतनी फास्ट नहीं बढ़ती तो नेचुरली चीजों की कीमत बढ़ जाती है। भाई मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई मुल्क की सरकार ने अचानक बहुत सारा पैसा छाप दिया और लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या होगा, सब के पास ज्यादा पैसा है, सब ज्यादा खरीदारी करने निकलेंगे, इससे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी नहीं होगी और आखिरकार प्राइस शूट अप कर जाएंगी। दूसरी वजह होती है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर कोई रॉ मटेरियल जो हम बाहर से लेते हैं, दूसरे ममालिक से लेते हैं, उनकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए तो उसका डायरेक्ट असर हमारे मुल्क में भी होता है। और तीसरी वजह होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। मसलन अगर टैक्सेस ज्यादा हो गए या सब्सिडीज कम हो गई तो भी चीजों की प्राइस बढ़ जाती है। तो मतलब ये है दोस्तों कि इन्फ्लेशन एक सिंपल चीज नहीं, ये अलग अलग फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सबसे पहला टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है ताकि लोग कम लोन लें और कम खर्च करें। जब डिमांड्स कम होती हैं तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आने लगती हैं।
दूसरा टूल होता है फिस्कल पॉलिसी, मतलब सरकार अपने खर्चे और टैक्सेस एडजस्ट करती है। अगर गवर्नमेंट खर्च कम करे या टैक्सेस ज्यादा लगा दे तो लोगों के पास कम पैसा

और इसी के चलते इन्फ्लेशन स्लो हो जाता है। तीसरा तरीका होता है सप्लाई बढ़ाना। अगर एसेंशियल चीजें जैसे अनाज, दूध, सब्जी, फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक डेलिकेट बैलेंस है। अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, और अगर पॉलिसी लूज नहीं तो इन्फ्लेशन रन अवे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि आम आदमी इन्फ्लेशन से कैसे बच सकता है। भाई सबसे पहला रूल है सिर्फ सेविंग नहीं इन्वेस्ट भी करिए। अगर आप पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं जहां 5-6% रिटर्न मिलता है लेकिन इन्फ्लेशन 7% है तो आप लॉस में हैं। इन्वेस्टमेंट्स जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देते हैं, मतलब आपके पैसों की वैल्यू सिक्योर रहती है। दूसरा रूल, अपने खर्च को स्मार्टली प्लान करिए। हर साल अपना बजट रिवाइज करिए और देखते रहिए कि महंगाई के हिसाब से आपकी इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। और तीसरा रूल, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए, यानी सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड मत रहिए। साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या पैसिव इनकम सोर्स बना के आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो खातिनो हजरात ये याद रखिए कि इन्फ्लेशन से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आपके पैसों का ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से हमेशा ज्यादा हो। आइए सामीन प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में नजर डालते हैं वर्ल्ड वॉच पे, और उसमें एक अहम बात कि सरकार के ज्यादा नोट छापने से पैसे की कीमत गिर जाती है और ये एक बहुत ही खतरनाक वजह है। ये चीज हाइपर इन्फ्लेशन भी ला सकती है जो कि आजकल वेनेजुएला में हो रहा है और 2008 में जिम्बाब्वे में भी हुआ था। अगर किसी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 10% तक भी पहुंच जाए तो लोग कहने लगते हैं कि चीजें बहुत तेज महंगी हो रही हैं। लेकिन वहीं वेनेजुएला में 2016 से 2019 तक इन्फ्लेशन रेट 5% से भी ज्यादा था। वहीं जिम्बाब्वे की मिसाल लेते हैं, 2008 के करीब जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी तेज गिर रही थी कि सरकार ने $1 मिलियन और $1 बिलियन के नोट छापना शुरू कर दिए और वहीं $1 ट्रिलियन का नोट भी मौजूद था। और क्या आप जानते हैं कि उस $1 ट्रिलियन नोट की असल कीमत क्या थी? भाई सिर्फ $1। ये है वो हद जहां हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत में पैसा अपनी कीमत खो देता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को इग्नोर करना एक बड़ी गलती है। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इसे अकाउंट नहीं किया तो आपको लगता रहेगा कि आपके पास सेविंग है लेकिन असल में उनकी वैल्यू घट रही होगी। इसीलिए अपने गोल्स जैसे

घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट वगैरह सब कैलकुलेट करते वक्त इन्फ्लेशन को जरूर इंक्लूड करा कीजिए। भाई आज 10 लाख का जो गोल लगता है 15-20 साल बाद वो 30 से 40 लाख भी हो सकता है, तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से ही ये होता है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बेटर प्लानिंग कर पाएंगे और फ्यूचर में शॉर्टेज का स्ट्रेस नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिए, इन्फ्लेशन पैसों की वैल्यू खत्म करता है। सिर्फ सेविंग्स पर ही भरोसा मत कीजिए, हमेशा इन्वेस्टमेंट भी कीजिए और आखिर अपने फाइनेंशियल गोल्स को इन्फ्लेशन एडजस्टेड सोच कर ही प्लान करिए। मैं हूं सरवर मिर्जा, साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी के साथ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: music station. Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
3: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक. मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा.
4: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम.